सुप्रभात, नमस्कार। मीडियम वेव 336.7 मीटर अर्थात 891 किलोहर्ट्ज और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। आज रविवार है। शक संवत 1948 के वैशाख मास की 28वीं तिथि, तदनुसार 17 मई सन 2026। सवेरे के 5:56 होने वाले हैं। प्रभात की इस पावन बेला में आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। यह यात्रा भारत और स्वीडन के बीच मजबूत होते गठबंधन में ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ वार्ता करेंगे। इसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। दोनों प्रधानमंत्री के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लाइन भी यूरोपीय उद्योग जगत के गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करेंगी। यह यूरोपीय उद्योगपतियों का एक प्रमुख मंच है। इस वर्ष जनवरी में भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के लागू होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी की यूरोप की यह पहली यात्रा है। यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करना और तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों का समाधान तलाशना है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारतीय राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करेगी।
1: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
2: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
1: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
0: इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। पांच देशों की यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी ने नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की भूमि बनकर उभर रहा है।
3: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नेदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने कल बेंगलुरु में राजनीतिक दलों, वैधानिक संस्थाओं और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से गहन विचार विमर्श किया। समिति के सभापति पीपी चौधरी ने कहा कि देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए कुछ राज्यों की विधानसभाओं को निर्धारित समय से पहले भंग करना होगा। उन्होंने कहा कि दल बदल विरोधी कानून, अविश्वास प्रस्ताव तथा राष्ट्रपति शासन के माध्यम से समस्याओं का निदान भी करना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल में आरजी कर मेडिकल कॉलेज दुष्कर्म और हत्या मामले की सुनवाई कलकत्ता उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति शंपा सरकार और न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की खंडपीठ करेगी। इससे पहले न्यायमूर्ति राजा शेखर मंथा और न्यायमूर्ति राय चट्टोपाध्याय ने 11 मई को इस मामले से खुद को अलग कर लिया था। इसमें एकमात्र दोषी संजय रॉय को जनवरी 2025 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। इस मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो कर रही है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रन से हरा दिया है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने निर्धारित 20 ओवर में 2 विकेट पर 247 रन बनाए। जवाब में गुजरात टाइटंस 4 विकेट पर 218 रन ही बना सकी। सुनील नरेन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज धर्मशाला में दोपहर 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। वहीं दिल्ली में शाम 7:30 बजे डेल्ही कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स आमने सामने होंगे। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया

0: के लियो रूली कॉर्नेटो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से होगा। इससे पहले भारतीय जोड़ी ने कल सेमीफाइनल में मलेशिया के गो सी फेई और नूरिज़ुद्दीन को हराया। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। 6:05 हुए हैं। निवेदित है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

राधे राधे की धुन में मन को सुकून मिलता है। गोविंदा के नाम से भी दिल का दर्द मिटता है जब हरि का स्मरण पूरे मन से हो जाए, जीवन का हर पथ सुगम सरल बन जाए।

कण कण में उनकी सत्ता है, सांसों में उनका विस्तार। जो भीतर झांकना सीख गया, पा लिया उसने सकल संसार।

खता मेरी है मगर तेरी रहमत बड़ी है, डूबते दिल को सहारा तेरी रोशनी है, झोली मेरी खाली सही दिल में अरमान तो है, तेरे करम पे ऐ मौला आज भी ईमान तो है।

तूने ही तो सब कुछ दिया है मालिक, तेरा शुक्रिया है। हर सांस हर खुशी का मुझ पर तेरा कर्मिया है। जब जब मैं राहों में भटका, तूने हाथ को थाम लिया। गिरकर भी मैं संभल गया तब, जब तूने अपना नाम दिया।

आज वंदना में ये भावांजलि थी हरिओम शरण सुरेश वाटकर राजा सरफराज चिश्ती और साथियों के साथ भाई गोपाल सिंह रागी के स्वर में। वंदना अब संपन्न हुई।

0: वंदना। अभी आप भक्ति संगीत का हमारा ये दैनिक कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। सुबह के 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है आज का चिंतन।
1: जीवन एक वरदान है और इस जीवन में हर समस्या किसी न किसी कारणवश उत्पन्न होती है और अधिकतर कारण उसके अपने मन के भीतर से उत्पन्न होते हैं। बाहरी प्रभाव का भी अपना महत्व है, परंतु यदि मन में बल हो तो बहुत सी स्थितियों का शांति से मुकाबला किया जा सकता है। बाहर से आ रहे प्रभावों पर हमारा अधिक नियंत्रण नहीं होता तो बाह्य प्रभावों से कुछ आघात तो लगेगा, परंतु मन उसे गहराई तक नहीं जाने देगा। इसके प्रतिकूल मन की भावना जब दुर्बल हो जाती है तो बाहर की छोटी सी घटना या किसी का एक शब्द हमारे मार्ग को टेढ़ा मेढ़ा कर देता है। मनोवैज्ञानिकों ने हीनता को मानसिक समस्याओं का मूल कारण माना है। मन में हीनता के कारण एक ओर तो कठिनाइयों का आकार बढ़ जाता है, दूसरी ओर स्वयं की दुर्बलता भी अधिक बोझिल प्रतीत होने लगती है। इन दोनों के मिल जाने से मनुष्य की शक्तियां बिखर जाती हैं और ऐसी स्थिति में बाहर की घटना से जो छोटा सा आघात लगता है, मन उसे बहुत बड़ा अनुभव करता है। दूसरी बात जो हीनता उत्पन्न करती है वो है कष्ट को बढ़ाकर महसूस करना। छोटी सी बात को अपनी कल्पना से बढ़ा कर लिया जाता है और स्वयं ही डर लगना शुरू हो जाता है। हर बात में भूत की तरह डर मस्तिष्क पर छाया रहता है और मनुष्य भूल कर जाता है। तीसरा और अति सरल मार्ग जो हीनता को बाह्य रूप से प्रकट करता है वो है आलोचना अथवा बड़बड़ाना। छोटी छोटी बात पर मनुष्य आलोचना करता है। बालकों में ये कमजोरी अधिक होती है, वो अन्य बालकों की त्रुटियां निकालता है, शिक्षकों के बारे में गलत प्रतिक्रिया व्यक्त करता है तथा हर समय प्रयत्नशील रहता है कि वो किसी न किसी पर सब दोष थोप दे। ये व्यवहार मनोबल को कमजोर बनाता है और हीनता की भावना बढ़ती जाती है। कुछ लोग दूसरों पर अपना अनावश्यक प्रभाव डालने का प्रयत्न करते हैं जो उन्हें स्वयं मकड़ जाल में फंसा देता है। हीनता की भावना को कम करने या मन से हटाने के लिए किसी योग्य व्यक्ति पर विश्वास करना चाहिए। यह विश्वास रखना चाहिए कि उसके ज्ञान की कमी को वही पूर्ण करेगा। जो ही किसी व्यक्ति को हीनता के कारण का पता चल जाएगा वो उसे तुरंत दूर कर देगा। कारण इतने काल्पनिक होते हैं कि उन्हें दूर करना कठिन नहीं होता है। हीनता की जड़ एक भय के भीतर होती है और भय मानसिक शक्ति का घातक शत्रु है।
0: हीनता निवारण पर केंद्रित था आज का चिंतन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से प्रसारित किया जा रहा था।

0: मीडियम वेव 336.7 मीटर और FM 102.9 MHz पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 6:35 हुए हैं। समय है स्वास्थ्य संदेश का। आज कार्यक्रम का विषय है त्वचा की देखभाल। जानकारी के साथ हैं डॉक्टर रमेश गुप्ता।
1: आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि त्वचा की देखरेख हम कैसे करें जिससे कि हमारी त्वचा स्वस्थ बनी रहे।
2: त्वचा की देखरेख के लिए सबसे जो जरूरी चीज होती है वो होती है हमें अपनी त्वचा को पहचानना कि हमारी त्वचा है कैसी। यदि हम अपनी त्वचा को पहचान लेते हैं कि हमारी त्वचा कैसी है तो हमें उसका देखभाल करना, उसकी देखरेख करना, उसे स्वस्थ बनाए रखना आसान हो जाता है। कुछ तो तरीके ऐसे हैं जो सामान्य सभी को, चाहे वो किसी एज ग्रुप का हो, जवान हो, बूढ़ा हो, सब उसे कर सकते हैं। और कुछ होती है विशेष देखभाल। तो विशेष देखभाल त्वचा के टाइप पर डिपेंड करता है
1: जी।
2: या उसे कोई और परेशानी है त्वचा में, तो जिस तरीके की त्वचा में परेशानी है उस हिसाब से उसकी त्वचा की देखभाल भी की जाती है। सामान्यतः त्वचा की देखभाल के लिए हमें उसकी स्किन के टाइप को जानना थोड़ा आवश्यक होता है। देखिए, सामान्यतः जो हमारी त्वचा होती है वो 5 तरीके की होती है। किसी किसी की त्वचा शुष्क होती है, किसी की तैलीय होती है, किसी किसी की मिश्रित होती है।
1: अच्छा।
2: सूखी भी हो सकती है, तैलीय भी हो सकती है। और एक तो सामान्य त्वचा होती है, और जो पांचवी है वो होती है सेंसिटिव त्वचा, यानी वो कुछ भी थोड़ा सा बाहर की चीज़ें, जैसे धूप पड़ गई, थोड़ी सी धूप पड़ गई, या कोई दवाई खा ली, या कोई लोशन लगा लिया, या कोई कॉस्मेटिक यूज़ कर लिया, तो उसका जो स्किन होता है उस पर रैसेज आने लगते हैं, खुजली होने लगती है। तो जिनकी सूखी त्वचा होती है उनके रोम छिद्र कम दिखाई देते हैं और उस पर रफ होता है, खुरदुरा होगा, उस पर स्केल आ जाएंगे, छोटी छोटी पपड़ी आ जाती है। तो ऐसे लोगों को पहचानना चाहिए कि हमारी त्वचा शुष्क है।
1: अच्छा।
2: तैलीय त्वचा, इसमें जो पोर्स होते हैं वो बड़े हो जाते हैं, रोम छिद्र दूर से दिखाई देती है, स्किन जो होती है वो थोड़ी चमकीली दिखाई देती है, दूर से ही लगता है कि उस पर कुछ लगा हुआ है, तो तैलीय त्वचा, और उसमें सीबम ज्यादा सिक्रेट होता है।
1: अच्छा।
2: और जो मिश्रित त्वचा होती है उसमें हमारे चेहरे का टी जोन होता है, जो ललाट और नाक और पूरे मुंह से होता हुआ आता है, ये टी जोन कहते हैं।
1: अच्छा।
2: टी जोन तैली होता है और गाल जो होते हैं वो शुष्क होते हैं, तो इन्हें मिश्रित कहते हैं। संवेदनशील त्वचा के बारे में मैंने पहले ही जिक्र कर दिया था। और जो सामान्य त्वचा होती है, सामान्य त्वचा बहुत ही अच्छी, देखने में अच्छा, कांतिमय दिखता है, और उसमें जो पोर्स हैं, हमारे रोम छिद्र जो हैं, वो बिल्कुल दिखते नहीं हैं।
1: अच्छा।
2: होते तो हैं लेकिन वो बड़े नहीं होते, दिखते नहीं हैं।
1: डॉक्टर साहब, देखरेख में क्या करें जिससे त्वचा हमारी ठीक बनी रहे?
2: त्वचा ठीक बनाए रखने के लिए सबसे जरूरी है कुछ चीज़ों का ध्यान रखें। जैसे सबसे जरूरी चीज़ है सफाई।
1: ठीक।
2: रेगुलर समय पर सफाई करें। सफाई के लिए आप चाहें तो हमारे अपने घर में जो प्रोडक्ट्स हैं, जो घर में रसोई में चीज़ हैं, उनसे भी आप चेहरे की, बदन की सफाई रख सकते हैं। सफाई के साथ साथ जरूरी है उसको मॉइस्चराइज करके रखना। जैसे अच्छा। जिनकी त्वचा सूखी है उनको चाहिए कि अच्छा मॉइस्चराइज उसको रखें। जैसे हमारे घर में बादाम का तेल होता है, बादाम का तेल उस पर इस्तेमाल करें, और पानी खूब पिए।
1: अच्छा।
2: क्योंकि पानी जितना ही ज़्यादा हम पिएंगे, हमारा जो स्किन होगा, वो बॉडी जो होगी, हाइड्रेटेड होगी, सिकुड़ने लगती है। अच्छा। स्मोकिंग वालों में तो वहाँ तक स्किन तक ब्लड नहीं पहुंच पाता, और जब हमारी स्किन की त्वचा तक ब्लड नहीं पहुंच पाएगा तो जाहिर सी बात है उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, एनर्जी नहीं मिलेगी, तो स्किन जो होगी वो ख़राब होती जाएगी।
1: अच्छा।
2: तो हमें इन सब चीज़ों से भी दूर रहना, यदि हम चाहते हैं कि हमारा स्किन बढ़िया रहे, त्वचा बढ़िया रहे, तो इससे दूर रहना है। फिर खान पान का बहुत ज़्यादा इस पर है रोल।
1: हाँ, वो तो ही है डॉक्टर साहब।
2: खान पान में हमें ऐसी चीज़ें लेनी चाहिए, और फास्ट फूड को तो अपने थाली से आप हटाएं
1: जी।
2: फास्ट फूड, जंक फूड, ज़्यादा तैलीय चीज़ें, ज़्यादा मसालेदार चीज़ें, इनको हटाएं। बल्कि सलाह के, मेरी सलाह में नहीं लेना चाहिए।
1: तो आपके कहने का मतलब ये है कि अगर हमको त्वचा स्वस्थ रखनी है तो एक तो ये है कि हम सफाई रखें
2: जी। हाँ।
1: खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखें।
2: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: और धूप से बचाएं, धुआं से बचाएं, धूल से बचाएं।
2: जी जी जी बिल्कुल सही।
1: तो ये सब चीज़ अगर हम अपनाएंगे तो हमारी त्वचा स्वस्थ रहेगी।
2: जी जी।
0: त्वचा की देखभाल, ये था विषय आज के स्वास्थ्य संदेश का। डॉक्टर रमेश गुप्ता से भेंट कर रहे थे रामस्वरूप गंगवार। स्वास्थ्य संदेश कार्यक्रम अब समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी रामपुर है। 6:40 हुए हैं। श्रोताओं, आइए आपको जानकारी दे दें हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के संबंध में।

आज रात्रि में 9:30 पर नाटकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे और दिल्ली केंद्र से ही रात 10 बजे रिले होगी रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा।

अब से थोड़ी देर के बाद 6:45 पर सुनिएगा श्री रामचरित मानस कान। लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम लोक रंग 7 बजे प्रसारित होगा। कलाकार होंगे विनय कुमार निगम। इन्फोटेनमेंट कार्यक्रम सुबह सवेरे आप सुन सकेंगे रोज की तरह 7:31 पर हमारी इसी सभा में। 8:45 पर हम आपको सुनवाएंगे नए फिल्मी गीत। कार्यक्रम होगा 102.9 मॉर्निंग हिट्स। समय एक चर्चा 9:15 पर आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले की जाएगी। 9:25 पर सुनिएगा गौरव भारत देश के। इस कार्यक्रम श्रृंखला में गोदावरी पर लेकर की गौरव का था। उर्दू कार्यक्रम में सुबह 9:30 पर समात फरमाइएगा श्री नशिस्त। शुरुआत होंगे जनाब गजनफर अली, जनाब असलम अली और जनाब अजहर अब्बास। आपका पत्र मिला, ये कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा 10 बजे। 10:45 पर हम आपको सुनवाएंगे नीलम सक्सेना की लिखी झलकी जिन ढूंढा तिन पाइया। प्रस्तुति राम कुमार सक्सेना की है।

धरोहर कार्यक्रम प्रसारित होगा दिन में 11 बजे। इन दिनों आप सुन रहे हैं धारावाहिक जिंदगी के आईने में। इसकी चौथी कड़ी में एक साक्षात्कार सुनिएगा श्री महेंद्र प्रसाद गुप्त के साथ। आज का मन भवन श्रोताओं की शब्दावली पर आधारित है और यह कार्यक्रम दिन में 11:30 पर श्रोताओं को सुनवाया जाएगा।

गीत आपके नाम। हमारे श्रोता साथी सुनते हैं ये कार्यक्रम दिन में 12:10 पर। 1:15 पर बच्चों के लिए कलियां कार्यक्रम होगा, जिसमें आज का आकर्षण है चर्चा, नन्हे बोल, बाल गीत, पंचतंत्र की कहानियां और मासिक पत्रोत्तर। सुनहरे दौर कार्यक्रम में दिन में 2:30 पर आज का आकर्षण है 50 के दशक के फिल्मी गीत। ये वाणी शाम 5:15 पर होगा। कृषि जगत कार्यक्रम सुनिएगा 6:20 पर। क्षेत्रीय गतिविधियों की रिकॉर्डिंग पर आधारित कार्यक्रम

कार्यक्रम आसपास शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। सुगम संगीत में 7:31 पर आज हम आपको पंकज उधास की गाई हुई गजलें सुनवाएंगे और गीत गाथा चल कार्यक्रम होगा रात्रि 8 बजे। यह था विवरण आज प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों का। यह आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 6:45 हुए हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान। आज सुनिए इसकी भाग संख्या 300।

भयभीत सागर ने ब्राह्मण का रूप धारण कर श्री राम के समक्ष घुटने टेक दिए। अपनी उद्दंडता के लिए क्षमा याचना करता हुआ बोला, हे नाथ, आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी, ये पांच तत्व स्वभाव से ही जड़ होते हैं। आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि करने के लिए उत्पन्न किया है। जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है, वो उसी प्रकार रहने में सुख पाता है। आप जैसा आदेश करें, मैं वैसा ही करूंगा। सागर का निवेदन सुनकर कृपालु श्री राम प्रसन्न हुए, बोले, तुम वो उपाय बताओ जिससे हमारी सेना पार उतर जाए। हे नाथ, वानर सेना में नल और नील ऐसे दो भाई हैं जिन्हें बचपन में ऋषि से ये आशीर्वाद प्राप्त हुआ था कि उनके स्पर्श मात्र से भारी भारी पत्थर और पहाड़ जल में तिरते रहेंगे, डूबेंगे नहीं। अतः आप इनसे सेतु निर्माण कराइए और उस पार जाकर पापियों का विनाश कीजिए।

कांड आज प्रसारित किया गया। इसकी भाग संख्या 300। गायक कलाकार थे सुरेश वाटकर और संगीत निर्देशन सतीश भाटिया का था। यह आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। मीडियम वेव 336.7 मीटर और FM 102.9 MHz पर 6:55 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप संस्कृत में समाचार सुनेंगे।

0: कार्नांडो डेनियल मार्थिनाभ्याम स्पर्धिष्येते। इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट स्पर्धा मालिकायां गतरात्रौ कोलकातायाः ईडन गार्डन्स क्रीडांगणे आयोजिते द्वन्द्वे कोलकाता नाइट राइडर्स दलेन गुजरात टाइटन्स दलम् ऊनत्रिंशत् धावनांकैः पराजितम्। आदोपणं विजित्य गुजरात टाइटन्स दलं क्षेत्ररक्षणं कर्तुं निर्णीतवत्। अद्यतने द्वन्द्वद्वये प्रथमं धर्मशालायां अपराह्णे सार्धत्रिवादने पंजाब किंग्स दलं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलेन स्पर्धिष्यते, ततः सायं सार्धसप्तवादने दिल्ल्यां दिल्ली कैपिटल्स दलं राजस्थान रॉयल्स दलं सम्मुखीकरिष्यति। इति वार्ताः।
1: आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है, 7 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम लोक रंग। आज के कलाकार हैं विनय कुमार निगम।

लोक रंग कार्यक्रम में आज आपने सुने विनय कुमार निगम के स्वर में कुछ लोकगीत। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से प्रसारित किया जा रहा था।

0: आकाशवाणी 90।
1: यह आकाशवाणी रामपुर है। 7:18 होने वाले हैं। अगला प्रसारण आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र के माध्यम से रिले होगा।

0: जीवन का लक्ष्य है आत्म विकास। अपने स्वभाव को पूर्णतः जानने के लिए ही हम इस दुनिया में आए हैं। ऑस्कर वाइल्ड।
1: अगर हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कर्म करें तो खुद को भी अचंभित कर सकते हैं। थॉमस एडिसन।
0: हर तरफ फैल रहा है कूड़ा कचरा, दिन प्रतिदिन पर्यावरण पर गहराता जा रहा है खतरा।
1: प्रदूषण की समस्या आज इतनी बड़ी हो गई है कि पर्यावरण के रास्ते में बाधक बनकर खड़ी हो चुकी है। नेल्सन मंडेला।
0: प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसे ज्यादा टाला नहीं जा सकता है। प्रदूषण को मिटाना है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
3: वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम। असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती।

0: उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
1: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का किया भूमि पूजन और शिलान्यास। कहा, प्रदेश में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दे रही है सरकार। डिजिटल जनगणना के पहले चरण में मुख्यमंत्री ने भी पूरी की स्वगणना की प्रक्रिया। सभी नागरिकों से जनगणना में सहभागिता दर्ज कराने का किया आह्वान। सीबीएसई ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन किया अनिवार्य। 3 में से 2 भाषाएं भारतीय मूल की होंगी। और प्रदेश में 18 जून को गोरखपुर के रास्ते दस्तक देगा मानसून। सिंचाई और जल संसाधन विभाग ने सभी 18 मंडलों में 31 मई तक बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित करने का दिया निर्देश। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में वाराणसी राजमार्ग पर स्थित ताल नदौर में करीब 393 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के बगल में 60 एकड़ भूमि पर नया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए हर गांव में खेल का मैदान बनाया जा रहा है।
2: हर गांव में हम खेल का मैदान बना रहे हैं, हर विकास खंड स्तर पर मिनी स्टेडियम और हर जिले में एक स्टेडियम बने, इस पर कार्य प्रारंभ हुआ है। 18 कमिश्नरी हैं, हर कमिश्नरी स्तर पर एक स्पोर्ट्स कॉलेज बने। प्रदेश में अपना एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हो, इसके लिए मेजर ध्यानचंद के नाम पे मेरठ में हम लोग स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण कर रहे हैं। इसी सत्र में हम उसका उद्घाटन भी करने जा रहे हैं। वाराणसी में बीसीसीआई की मदद से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है। और उत्तर प्रदेश सरकार और भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सहयोग से गोरखपुर में भी एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है।
1: मुख्यमंत्री ने कहा कि गोरखपुर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनने से पूर्वी उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए खेलकूद गतिविधियों को आगे बढ़ाने में सहायता मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से देश में नई खेल संस्कृति आगे बढ़ी है।
2: प्रधानमंत्री जी ने 2014 में देशवासियों से एक बात कही थी, खेलो इंडिया खेलो के एक स्लोगन दिया था। फिर उन्होंने फिट इंडिया मूवमेंट की बात कही थी, सांसद खेल कूद प्रतियोगिता को आगे बढ़ाने की बात कही थी। देश के अंदर इनके माध्यम से एक नई खेल संस्कृति आगे बढ़ी।
1: श्री योगी ने कहा कि ओलंपिक, एशियाड, कॉमनवेल्थ गेम्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप तथा नेशनल चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति पत्र प्रदान किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम निर्माण के लिए सीएसआर फंड से 100 करोड़ रुपए देने के लिए पेट्रोलियम मंत्री, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के प्रति आभार व्यक्त किया। शिलान्यास कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश सुशासन, निवेश और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जाना जाता है। राज्य में कानून व्यवस्था में आए सुधार ने आम नागरिकों से लेकर उद्योग जगत तक नया विश्वास पैदा किया है। उन्होंने विश्वास जताया कि इस स्टेडियम से प्रशिक्षण लेकर ऐसे खिलाड़ी निकलेंगे जो देश का नाम दुनिया भर में रोशन करेंगे। शिलान्यास समारोह में केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान, प्रदेश के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद, खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। गोरखपुर में 46 एकड़ में बनने वाले इस स्टेडियम की दर्शक क्षमता 30,000 होगी। प्रदेश में जारी डिजिटल जनगणना के पहले चरण के अंतर्गत स्वगणना की प्रक्रिया 7 मई से जारी है। 21 मई तक चलने वाली इस प्रक्रिया में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कल गोरखपुर में स्वगणना का डिजिटल प्रपत्र भरा। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी नागरिकों से इस प्रक्रिया में सहभागिता दर्ज कराने की अपील करते हुए कहा है कि ये देश की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना है। इसका मुख्य उद्देश्य सटीक आंकड़े जुटाकर देश के विकास

0: कल्याणकारी योजनाओं की रूपरेखा तैयार करना है। अंशकालिक अनुदेशकों के बढ़े हुए मानदेय वितरण को लेकर आज प्रदेश भर में उनके सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। लखनऊ के लोकभवन में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अंशकालिक अनुदेशकों के सम्मान और बढ़े हुए मानदेय वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। सरकार द्वारा पूर्व में जारी शासनादेश के तहत अंशकालिक अनुदेशकों का मानदेय 9,000 रूपये से बढ़ाकर 17,000 रूपये प्रतिमाह करने का निर्णय लिया गया था। बढ़ा हुआ मानदेय 1 अप्रैल से प्रभावी किया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड ने एक वक्तव्य में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम 2023 के अनुरूप इन 3 भाषाओं से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। CBSE ने स्पष्ट किया है कि कक्षा 10वीं में तीसरी भाषा R3 के लिए कोई बोर्ड परीक्षा नहीं होगी और R3 के लिए सारा मूल्यांकन पूरी तरह से विद्यालय आधारित तथा आंतरिक होगा। सपा नेता और पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खां को एक विवादित बयान के मामले में कल रामपुर की MP MLA कोर्ट ने 2 वर्ष की कैद और 20,000 रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। उन पर वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान थाना भोट क्षेत्र में एक सभा के दौरान तत्कालीन जिलाधिकारी के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने का आरोप था। भदोही में काशी नरेश विश्वविद्यालय की प्रथम नवनियुक्त कुलपति प्रोफेसर उमा श्रीवास्तव ने कल अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है। कार्यभार ग्रहण करने के बाद मीडिया से बातचीत में प्रोफेसर उमा श्रीवास्तव ने कहा कि विश्वविद्यालय में शोध कार्यों और गुणवत्तापूर्ण पठन पाठन सुनिश्चित करना उनकी प्राथमिकता होगी।
1: बहुत पुराना कॉलेज है आजादी के बाद का पहला, और अब ये यूनिवर्सिटी में तब्दील हो गया है। इसमें रिसर्च वगैरह भी अब शुरू हो जाएगी या हो रही होगी, लेकिन अब क्या है कि रिसर्च बहुत पुरजोर तरीके से की जाएगी सबके साथ। तो फिर हाई क्वालिटी रिसर्च हो, स्टूडेंट्स रिसर्च ओरिएंटेड हो, कैंपस का माहौल बहुत अच्छा हो, और इसमें मेरा प्रयास रहेगा।
0: केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कल मिर्जापुर में ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की तरफ से तैयार किए गए विंध्य प्रसादम गिफ्ट बॉक्स का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मंत्री ने कहा कि ये पहल वोकल फॉर लोकल और महिला सशक्तिकरण का जीवंत उदाहरण है। विंध्याचल में आने वाले दर्शनार्थियों के लिए विंध्य प्रसादम में चुनरी से लेकर पूजा की सामग्री और प्रसाद उपलब्ध है। प्रदेश के नगर विकास और ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने कल वाराणसी में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को बारिश से पहले नालों की सफाई, शहर की स्वच्छता और बिजली आपूर्ति दुरुस्त करने के निर्देश दिए। बैठक में राज्य मंत्री हंस राज विश्वकर्मा भी मौजूद रहे। चित्रकूट नगर पालिका क्षेत्र में 90 करोड़ रूपये की लागत से विभिन्न विकास कार्य कराए जाएंगे। कल नगर पालिका परिषद की बैठक के बाद अध्यक्ष नरेंद्र गुप्ता ने बताया कि नगर में बुनियादी सुविधाओं का विकास करने के साथ ही इसे सुंदर बनाया जा रहा है।
2: उत्तर प्रदेश के फिर से मुख्यमंत्री जी के निर्देशन पर चित्रकूट के विकास के लिए चित्रकूट नगर में 90 करोड़ के आसपास का बजट प्रस्तुत किया गया है। इसमें सड़कों का निर्माण, नालियों का निर्माण और नगर के सुंदरीकरण, नगर के चमुखी विकास के लिए इस 26 और 27 इसका क्रियान्वयन किया जाएगा।
0: मथुरा सहित समूचे ब्रजमंडल में 1 माह तक चलने वाला पुरुषोत्तम मास मेला आज से शुरू हो गया है। श्रद्धालुओं की भीड़ और सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने गोवर्धन और वृंदावन समेत पूरे ब्रज क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए हैं। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार मानसून 18 जून को गोरखपुर के रास्ते प्रदेश में दस्तक देगा। इस वर्ष मानसूनी सीजन में सामान्य से कम वर्षा की संभावना है। सिंचाई और जल संसाधन विभाग की ओर से प्रदेश के सभी 18 मंडलों में 31 मई तक बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित करने का निर्देश दिया गया है। बाढ़ और प्रभावित क्षेत्रों की निगरानी के लिए ये कक्ष 15 जून से 15 अक्टूबर तक 24 घंटे सक्रिय रहेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का किया भूमि पूजन और शिलान्यास। कहा, प्रदेश में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दे रही है सरकार।

डिजिटल जनगणना के पहले चरण में मुख्यमंत्री ने भी पूरी की स्वगणना की प्रक्रिया। सभी नागरिकों से जनगणना में सहभागिता दर्ज कराने का किया आह्वान। CBSE ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन किया अनिवार्य। 3 में से 2 भाषाएं भारतीय मूल की होंगी। और प्रदेश में 18 जून को गोरखपुर के रास्ते दस्तक देगा मानसून। सिंचाई और जल संसाधन विभाग ने सभी 18 मंडलों में 31 मई तक बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित करने का दिया निर्देश। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार आपसे थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

मीडियम वेव 336.7 मीटर और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 7:31 हुए हैं। अगला कार्यक्रम फिल्मी गीतों पर आधारित इन्फोटेनमेंट का कार्यक्रम सुबह सवेरे कुछ ही पलों में है।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: पुलिस?
4: मिस सीमा
3: जी,
4: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
3: क्यों, लेकिन मैं
4: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
3: डिजिटल अरेस्ट?
4: 1,00,000 दो, बच जाओगे।
3: इतने पैसे?
4: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
3: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
5: हेलो मम्मा।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

नमस्कार साथियों, स्वागत आपका सुबह सवेरे। रोज का सिलसिला है हमारी आपकी मुलाकात का। और वैसे भी कहते हैं कि सेहत के लिए सुबह जागना बहुत ज़रूरी भी है और अच्छा भी है। धीरे धीरे देखिए, हम सुबह होते ही पूरी तरह से उस दुनिया में चले जाते हैं जो इंटरनेट की दुनिया है, सोशल मीडिया है, मोबाइल की दुनिया है। भले ही हम इंटरनेट के ज़रिए दुनिया से जुड़े हुए हैं, पर रोज़ की बातचीत कहीं कम नहीं हो रही है। इसका एहसास आपको भी ज़रूर होता होगा कि अब हम कम बोल रहे हैं, कम बात कर रहे हैं, लोगों से कम मिल रहे हैं, इमोजी और लिखित संदेश से ज़्यादा काम चला रहे हैं। सेल्फ पेमेंट काउंटर, ऑनलाइन बुकिंग, GPS जैसी तमाम तकनीकें, तमाम सुविधाएं बातचीत के मौक़ों को कम कर रही हैं और बदलता संवाद का स्वरूप हमारे रिश्तों को खोखला सा कर रहा है, हमारे मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर रहा है। सेहत के लिए मौन अच्छा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपनी बातचीत को हम रिएक्शन बटन, एनिमेटेड थम्सअप जैसे भावनात्मक संकेतों में ही समेट दें। ये कभी भी आमने सामने की बातचीत जैसा असर नहीं छोड़ते। संवाद की वापसी के लिए कदम उठाने होंगे और हम ये प्रयास लगातार कर रहे हैं। आकाशवाणी के 90 वर्षों की इस यात्रा में हमने संवाद को हमेशा प्रमुखता दी है, बोलचाल को प्रोत्साहित किया है और खुद बोलकर आपके मन की भावनाएं आपके साथ जोड़ी हैं। आकाशवाणी के इन 90 वर्षों की यात्रा में आप हमारे सहभागी रहे हैं, इसका हमें गर्व है।

0: आकाशवाणी के यूं तो सभी केंद्र अपने श्रोताओं के साथ मिलकर इन 90 वर्षों की यात्रा का जश्न मना रहे हैं। अनेक कार्यक्रम आप लगातार सुन भी रहे होंगे। आपने अगर कल हमारा प्रसारण सुना तो 3 बजे से हमने आपको उस कार्यक्रम के संपादित अंश सुनवाए थे, जो कार्यक्रम आकाशवाणी के 90 वर्षों को समर्पित था। सुरमई सफर के 90 साल एक संगीत संध्या का आयोजन आकाशवाणी रामपुर ने किया था 15 मई को, और श्रोताओं का साथ हमेशा से आकाशवाणी रामपुर के लिए बहुत खास रहा है। 90 वर्षों की इस यात्रा में हमारे श्रोता भी हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। एक युवा श्रोता जो कि आकाशवाणी से बड़ी गहराई से, बड़े मन से जुड़े हुए हैं, अनेक कार्यक्रमों को सुनते हैं और उन्होंने कार्यक्रमों के माध्यम से लाभ भी उठाया है। आज उनसे एक मुलाकात।
1: नमस्कार दोस्तों, आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर मैं इमरान शेख आकाशवाणी का बहुत पुराना श्रोता सन 2007 से आकाशवाणी सुन रहा हूं। सबसे पहले आकाशवाणी की पूरी टीम, तमाम श्रोताओं को दिली मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं। आकाशवाणी के बहुत सारे कार्यक्रम सुने, जिसमें किसानवाड़ी कार्यक्रम, जो किसानों के लिए बहुत बेहतरीन प्रोग्राम लेकर आए, किसानों को अच्छी जानकारी, किसानों को खेती बाड़ी की जानकारी आकाशवाणी केंद्रों से प्राप्त हुई। युवाणी के कार्यक्रम, जिसे युवाओं ने सुना, ज्ञान की बात सीखी, रोजगार की बात सीखी, शिक्षा की बात सीखी, और हर एक युवा आकाशवाणी के प्रोग्राम सुनकर आगे बढ़ा। दोस्तों, ये सफर सन 2007 से शुरू हुआ और आज तक चलता आ रहा है। आकाशवाणी से जो जुड़ाव रहा है वो अपने आप में बहुत ही अनमोल रहा है। आकाशवाणी दिल से दिल तक पहुंचने का काम करती है। आकाशवाणी शिक्षा, सूचना और रोजगार की शानदार जानकारी हम तक पहुंचाती है। दोस्तों, आकाशवाणी से समय समय पर जो समाचार सुने, आकाशवाणी के बहुत सारे प्रोग्राम सुने, आकाशवाणी के बहुत सारे अधिकारियों ने बहुत सारी मेहनत करके हम तक प्रोग्राम पहुंचाए। दोस्तों, मैं सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। साथ ही अभी मैं अपने जिले से दूसरे जिले में काम करता हूँ, लेकिन यहाँ पर आकाशवाणी की रेंज नहीं आ पाती, जिससे मैं प्रोग्राम नहीं सुन पाता। लेकिन इस नए जमाने में आकाशवाणी ने अपने आप को बदला और हमें एक मोबाइल एप्लीकेशन दिया, जिसके माध्यम से हम अपने घर बैठे, अपने ट्रैवल करते समय, या आप कहीं भी हो, देश में हो, विदेश में हो, आकाशवाणी के प्रोग्राम सुन सकते हैं। दोस्तों, मैं एक बार पुनः आपका अपना रेडियो दोस्त इमरान शेख 90 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी की पूरी टीम, भारत की पूरी आवाम को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। दोस्तों, ये सफर में सबसे ज्यादा योगदान मेरे बड़े भाई जिशान वारसी का रहा। उन्होंने रेडियो को बहुत प्यार किया और काफी अरसे से रेडियो सुनते चले आ रहे हैं। उनके साथ मुझे भी लगा कि आकाशवाणी के कार्यक्रमों से जुड़ना चाहिए, मेरी भी आवाज आकाशवाणी के माध्यम से हजारों लोगों तक पहुंचे। आकाशवाणी एक ऐसा माध्यम है जो आपको आकाशवाणी से दिल से जोड़ देता है, शिक्षा से जोड़ देता है, रोजगार से जोड़ देता है। सभी अधिकारियों ने बहुत मेहनत करके हम तक एक से बढ़कर एक प्रोग्राम पहुंचाए। आकाशवाणी को एक बार फिर बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं। आपका अपना दोस्त इमरान शेख, एकता क्लब सिंधौली, तहसील मीरगंज, जिला बरेली से।

आकाशवाणी और श्रोताओं के साथ की यह यात्रा 90 वर्षों से जारी है और आगे भी जारी रहेगी। लेकिन आज जिंदगी की तेज रफ्तार हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर रही है। हमने बहुत कुछ पा तो लिया है, लेकिन इस भागदौड़ में, इस आपाधापी में अपने स्वास्थ्य को, अपनी शांति को कहीं पीछे भी छोड़ दिया है। आधुनिक जीवन शैली है, तनाव, अनियमित खानपान है और भागती दिनचर्या है। एक ऐसी समस्या सामने है जो बिना शोर किए धीरे धीरे हमारे शरीर को प्रभावित करती है, और वो है उच्च रक्तचाप। इसे अक्सर मूक घातक कहा जाता है, और आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस है। इस पर विचार करने की जरूरत

इसका ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि ये बिना कोई संकेत दिए हमारे शरीर को भीतर ही भीतर नुकसान पहुंचाता है। ये दिवस केवल स्वास्थ्य दिवस नहीं, अपनी जिंदगी के प्रति जागरूक होने का संदेश है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि यदि हम समय रहते अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख पाए तो छोटी सी लापरवाही बड़ी समस्या का रूप जरूर ले लेगी, और परिवार के साथ बिताने वाले अनमोल क्षण, सपने, जिंदगी की खुशियां तभी तो संभव होंगी जब शरीर स्वस्थ हो, मन शांत हो। दवाओं की जरूरत उतनी नहीं है जितनी जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव की जरूरत है। संतुलित भोजन, नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद, तनाव से दूरी हमें उच्च रक्तचाप की समस्या से बचा सकती है। नमक जितना कम खाएंगे उतना ही बेहतर होंगे, ये कहना है चिकित्सकों का। प्रतिदिन 4 ग्राम से अधिक नमक अगर हम खा रहे हैं तो ये नुकसान पहुंचा रहा है। नियमित योग, व्यायाम, पैदल चलने की आदत, साइकिल चलाना ये जरूरी है, क्योंकि स्वस्थ लोगों के जो मानक हैं वो ये हैं। रक्तचाप रहना चाहिए 80 से 120 mmHg, कोलेस्ट्रॉल 200 mg/dl, शरीर का तापमान 98.6 फारेनहाइट, नमक केवल 4 ग्राम रोजाना, और हाइपरटेंशन के जो मरीज हैं वो केवल 2 से 3 ग्राम नमक रोज खा सकते हैं। तेल घी 1 ग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से आपको लेना है। प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से हम 3 गुना तक नमक खा जाते हैं एक दिन में, और ग्रामीणों की तुलना में शहरों के लोग ज्यादा नमक खा रहे हैं। 35% लोगों में हाई ब्लड प्रेशर की समस्या मिल रही है। बाहर से जो भोजन करने के शौकीन हैं उनमें 30 वर्ष की जो युवा अवस्था के लोग हैं वो भी बीमारी की जद में आ रहे हैं। अब नमक हम ऐसे ही खा लेते हैं, कभी सलाद में, कभी छिड़क कर, कभी ब्रेड पर, कभी फ्रूट चाट में, फास्ट फूड के जरिए, ये हमारे लिए नुकसानदेह है। हमें हमेशा कम नमक खाना है, इस बात का ध्यान हमें हमेशा रखना है, और इस गाने को भी अपने जहन में जरूर रखिएगा।

हर रोज हम चर्चा करते हैं उस दिन के इतिहास की। एक स्थायी क्रम है हमारी और आपकी बातचीत के बीच। आज 17 मई है। आज जो जो घटनाएं अतीत में हुई उनके बारे में जान लेते हैं। 1769 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के कपड़ा उद्योग को बर्बाद करने के लिए बुनकरों पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए थे। 17 मई 1975 को जापानी महिला श्रीमती जुनको तेबेई माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला बनी। सुनील गावस्कर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया था 17 मई 1987 को। भारत और पाकिस्तान के बीच समग्र वार्ता का दौर शुरू हुआ था 2007 में, वो भी 17 मई का ही दिन था। भारतीय बॉक्सरों ने कॉमनवेल्थ बॉक्सिंग चैंपियनशिप के सभी 6 स्वर्ण पदक जीत लिए थे 2010 में, आज ही के दिन। और आज जिनकी जन्म जयंती ये देश मना रहा है उसमें भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति श्री रूसी मोदी 1918 में 17 मई को जन्मे। हिंदी सिनेमा की चरित्र अभिनेत्री प्रीति गांगुली 1953 में। हिंदी और ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि और लेखक धीरेन्द्र वर्मा का जन्म 17 मई 1897 में हुआ। 1749 में प्रसिद्ध कार्य चिकित्सक और चेचक के टीके के आविष्कारक एडवर्ड जेनर का जन्म हुआ था, वो भी 17 मई की ही तारीख थी जिनकी पुण्यतिथि है। उनमें भारतीय चिकित्सक और हृदय रोग विशेषज्ञ के अग्रवाल का 17 मई 2021 को देहावसान हुआ। होटल उद्योग में एक जाना माना नाम सीपी कृष्ण नायर का 2014 में और पद्मश्री से सम्मानित मूर्तिकार रघुनाथ कृष्ण फड़के का 1972 17 मई को देहांत हुआ था। आज एक और खास दिन है, आज दूरसंचार दिवस है। हर साल 17 मई को ये मनाया जाता है। उद्देश्य है लोगों को दूरसंचार के प्रति, सूचना प्रौद्योगिकी के प्रति, इसके महत्व के प्रति बताया जाए, जागरूक किया जाए। दूरसंचार ने देशों, शहरों और लोगों के बीच दूरियां कम कर दी हैं। कह सकते हैं दुनिया को जोड़ने का ये माध्यम बना है। इंटरनेट, मोबाइल और संचार तकनीकों ने जिस तरह से आधुनिकता को अपने भीतर समावेशित किया है, सूचनाओं का तेज आदान प्रदान अब संभव है। शिक्षा और स्वास्थ्य में भी इसके योगदान को नकारा नहीं जा सकता। अब ऑनलाइन शिक्षा, टेलीमेडिसिन, डिजिटल सेवाओं का विस्तार हुआ है। आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिला है। व्यापार, बैंकिंग और रोजगार के नए अवसर दूरसंचार से ही विकसित हुए हैं। आपदा प्रबंधन में सहायता इसने सुलभ कराई है। दूर दराज के क्षेत्रों तक नई तकनीक पहुंचाकर विकास की नई संभावनाएं डिजिटल समावेशन के जरिए संभव हो पाई हैं। ये दिन हमें याद दिलाता है कि आधुनिक युग में दूरसंचार केवल तकनीक नहीं बल्कि मानव जीवन को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण शक्ति है। आज का दिन पंकज उधास को भी हम याद कर रहे हैं जिन्होंने भारतीय संगीत जगत में अपनी एक अद्भुत पहचान बनाई। और वो ऐसे पार्श्व गायक थे जो हिंदी सिनेमा और भारतीय पॉप में अपने काम के लिए जाने जाते थे। उनका जन्म हुआ था 1951 में 17 मई के दिन। ये तो बहुत सारे गाने उन्होंने गाए हैं लेकिन उन्होंने जिस गीत को अमर कर दिया और जिस गीत से उनका नाम हमेशा हमेशा के लिए जुड़ गया वो ये गीत है। आज उनकी जयंती के अवसर पर उन्हें याद करते हुए, उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए सुनते हैं ये गीत।

हम में से बहुत से लोग पंकज उधास की आवाज के दीवाने हैं। आज उनकी जयंती का दिन है, उनका जन्म दिवस है आज। तो आकाशवाणी रामपुर से जो सुगम संगीत कार्यक्रम प्रसारित होगा शाम को 7:31 पर, उसमें हमने आपके लिए चुनी है पंकज उधास की गाई हुई कुछ गजलें भी, जरूर सुनिएगा। और जहां तक चिट्ठी की बात है तो आपकी चिट्ठियां हमेशा से हमारे लिए खास रही हैं। चिट्ठियों पर आधारित कार्यक्रम, जो ईमेल आप भेजते हैं उस पर आधारित कार्यक्रम आपका पत्र मिला आज 10 बजे होगा, हमें उसमें आपके साथ की जरूरत है, जरूर शामिल होइएगा। और अब सुबह सवेरे कार्यक्रम से असीम को इजाजत दीजिए, फिर मिलने के वादे के साथ नमस्कार।

0: यह था आज का कार्यक्रम सुबह सवेरे। आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। मीडियम वेव 336.7 मीटर और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज पर। 8 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येथिन के बीच विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन की स्वीडन यात्रा पर आज गोथेनबर्ग पहुंचेंगे, स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ बातचीत करेंगे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने भोजशाला परिसर में हिंदुओं के निर्बाध प्रवेश की अनुमति दी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाया, इसे मुक्त से प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन टरबाइन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट को 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशियाई जोड़ी से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येथिन के बीच हेग में व्यापक विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत नीदरलैंड्स के संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।
2: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों को नवाचार, निवेश, सतत विकास और रक्षा क्षेत्रों में अपने सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की आवश्यकता है। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येथिन ने भी भारत के साथ संबंधों के बढ़ते महत्व पर जोर दिया और आर्थिक और रणनीतिक क्षेत्रों में मजबूत सहयोग का समर्थन किया। 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी ने नीदरलैंड्स के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की भूमि बनकर उभर रहा है।
3: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं, इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
1: प्रधानमंत्री मोदी आज स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। ये यात्रा भारत और स्वीडन के बीच मजबूत होते गठबंधन में ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ वार्ता करेंगे, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। एक रिपोर्ट।
4: दुनिया की सबसे नवाचारी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल स्वीडन को भारत की डिजिटल प्रतिभा और तकनीकी क्षमता के साथ स्वाभाविक साझेदारी मिलती है। वर्तमान में भारत में 280 से अधिक स्वीडिश कंपनियां सक्रिय हैं, जबकि लगभग 75 भारतीय कंपनियों ने स्वीडन में अपनी उपस्थिति स्थापित करी है। इस यात्रा का एक विशेष आकर्षण यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री का संबोधन है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री और यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष के साथ करेंगे। भारत यूरोपियन संघ फ्री ट्रेड समझौता भारतीय निर्यात के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है, जिससे वस्त्र, लेदर, इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों को व्यापक बाजार पहुंच मिलने की संभावना है। रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी अब दोनों देशों की साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ बन चुका है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गोथेनबर्ग यात्रा ऐतिहासिक विश्वास और भविष्य की साझेदारी के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु का कार्य कर रही है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
1: आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारतीय राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करेगी।
5: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
6: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
5: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
1: एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने कल बेंगलुरु में राजनीतिक दलों, वैधानिक संस्थाओं और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से गहन विचार विमर्श किया। समिति के सभापति पीपी चौधरी ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली और भारतीय जनता पार्टी तथा अन्य पार्टी के नेताओं ने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि कई राज्यों की यात्रा के दौरान समिति आपत्तियां और सुझाव एकत्रित कर रही है। इससे जुड़ी चुनौतियों पर उन्होंने कहा कि देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए कुछ राज्यों की विधानसभाओं को निर्धारित समय से पहले भंग करना होगा और दल बदल विरोधी कानून, अविश्वास प्रस्ताव तथा राष्ट्रपति शासन के माध्यम से समस्याओं का निदान करना पड़ेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
7: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
8: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
7: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए निर्बाध प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
9: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के आदेश का हवाला देते हुए एक अधिकारी ने कहा कि भोजशाला एक मंदिर होने के साथ साथ संस्कृत भाषा, व्याकरण और साहित्य के अध्ययन और अनुसंधान का केंद्र भी है। हिंदू समाज को प्राचीन परंपरा के अनुसार माँ देवी सरस्वती की पूजा अर्चना और अध्ययन के लिए इस परिसर में बिना किसी रोक टोक के आने का अधिकार होगा। हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के उस 7 अप्रैल 2003 के आदेश को भी रद्द कर दिया, जिसमें मुस्लिम समुदाय हर शुक्रवार भोजशाला परिसर में नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई थी। कोर्ट ने यह भी कहा है कि मुस्लिम समुदाय जिले में मस्जिद निर्माण के लिए अलग जमीन के आवंटन के लिए राज्य सरकार से संपर्क कर सकता है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में पुणे से एक अन्य अभियुक्त प्रोफेसर मनीषा मंधारे को गिरफ्तार किया है। वे पुणे के एक कॉलेज में वनस्पति शास्त्र के अध्यापक हैं। सीबीआई के अनुसार राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने मंधारे को परीक्षा प्रक्रिया में विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया था। इससे पहले सीबीआई ने 14 मई को पुणे से ही मनीषा वाघमारे को गिरफ्तार किया था। पश्चिम बंगाल में आरजीकर मेडिकल कॉलेज दुष्कर्म और हत्या मामले की सुनवाई कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति शंपा सरकार और न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की खंडपीठ करेगी। इससे पहले न्यायमूर्ति राजा शेखर मंथा और न्यायमूर्ति राय चट्टोपाध्याय ने 11 मई को इस मामले से खुद को अलग कर लिया था। इसमें एकमात्र दोषी संजय राय को जनवरी 2025 में आजीवन कारावास की सजा हुई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अध्यादेश 2026 के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अलावा न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 करने की मंजूरी दे दी है। इस अध्यादेश के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन किया गया है। कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाने के कुछ ही दिनों बाद सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि सोने और प्लैटिनम से मणि हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को मुक्त से प्रतिबंधित करके संशोधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। प्रतिबंधित श्रेणी के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं के आयात के लिए सरकारी लाइसेंस की आवश्यकता होती है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संपर्क और आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने के अनुरूप लिया गया है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
6: जी लवलीन, खेल खबरों में सबसे पहले बात बैडमिंटन की। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लियो रोली कॉर्नेडो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से होगा। और अगर बात करें टेनिस की तो भारत के सिद्धांत बंथिया और बुल्गारिया के अलेक्जेंडर डोंस्की की जोड़ी ने पुर्तगाल में ओइरास 480 चैलेंजर 100 टूर्नामेंट में पुरुष डबल्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। और टेनिस में ही इटली ओपन टूर्नामेंट में विश्व के नंबर एक खिलाड़ी इटली के यानिक सिनर फाइनल में पहुंच गए हैं। फाइनल में आज सिनर का सामना कैस्पर रूड से होगा। उधर बेंगलुरु में भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान सलीमा टेटे ने आगामी ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले टीम की तैयारियों पर जोर दिया है। भारतीय टीम 26 से 30 मई के बीच पर्थ हॉकी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 मैच खेलेगी। और अगर बात करें क्रिकेट की तो आईपीएल में कल रात कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज धर्मशाला में दोपहर 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा और 7:30 बजे से दिल्ली में राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने होंगे। जी लवलीन, खेल जगत से बस आज इतना ही।
1: मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान द्वीप समूह के कई हिस्सों और पूरे निकोबार द्वीप समूह में आगे बढ़ चुका है। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मॉनसून के 26 मई को केरलम तक पहुंचने की संभावना है। अगले 3 से 4 दिन के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह, हिमालय के तराई क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरल, माहे और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस है। इसका उद्देश्य उच्च रक्तचाप के बारे में वैश्विक जागरूकता, रोकथाम, पहचान और नियंत्रण को बढ़ावा देना है। इस वर्ष का विषय है उच्च रक्तचाप को मिलकर नियंत्रित करें, नियमित रूप से अपने रक्तचाप की जांच करें और इस बीमारी को हराएं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
10: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दशक को आपदाओं का दशक बताते हुए इस स्थिति को बदलने की अपील की है। लोक सत्य की सुर्खी है, मानवता के सामने कई बड़ी चुनौतियां, हालात नहीं बदले तो गरीबी के दलदल में फंसेगी दुनिया। प्रधानमंत्री की चेतावनी शीर्षक से दैनिक जागरण ने संपादकीय में लिखा है, एक ऐसे समय जब भारत पिछले कुछ वर्षों में करोड़ों लोगों को गरीबी से उबारने में सफल हुआ है, तब इससे अधिक चिंता की बात कोई और नहीं हो सकती कि फिर से न सिर्फ भारतीयों के बल्कि पूरी दुनिया के सामने आर्थिक संकट तेजी से बढ़ रहा है। भोजशाला में अब बिना रोक टोक के 365 दिन हो सकेगी पूजा। दैनिक जागरण ने इसे पहली खबर बनाते हुए लिखा है, प्रवेश और पूजा की नई व्यवस्था, भोजशाला में लौटा आस्था का उल्लास। नीट यूजी पेपर लीक मामले में दैनिक ट्रिब्यून लिखता है, रक्षक ही भक्षक। पत्र के अनुसार एनटीए ने 4 नए अफसरों की नियुक्ति हुई, कथित सरगना कुलकर्णी को 10 दिन की हिरासत में भेजा। नवभारत टाइम्स की खबर है, जुलाई से सीबीएसई के अंतर्गत 9वीं और 10वीं के विद्यार्थी पढ़ेंगे तीसरी भाषा, इनमें 2 भारतीय भाषाएं अनिवार्य होंगी। पत्र के अनुसार नए नियम 1 जुलाई से प्रभावी हो जाएंगे। आज विश्व दूर संचार दिवस पर राजस्थान पत्रिका लिखता है, धरती के संसाधनों को निचोड़ रहा आपके फोन में पड़ा डार्क डेटा। पत्र के अनुसार हर दिन अनावश्यक फाइल और चैट से बढ़ रहा है डार्क डेटा, जिसे संभालने में खर्च हो रही है बिजली और पानी। मॉनसून के अंडमान पहुंचने की खबर हिंदुस्तान में है। पत्र के अनुसार अगले हफ्ते दक्षिण पूर्वी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में पहुंचने के आसार।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री के बीच विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन की स्वीडन यात्रा पर आज गोथेनबर्ग पहुंचेंगे, स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेसन के साथ बातचीत करेंगे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने भोजशाला परिसर में हिंदुओं के निर्बाध प्रवेश की अनुमति दी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाया, इसे मुक्त से प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन टर्बाइन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट को 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये

0: में बॉटनी के उस्ताद हैं। सीबीआई के मुताबिक कौमी जांच एजेंसी ने इम्तिहान के अमल में एक एक्सपर्ट के तौर पर उनका तकर्रुर किया था। इससे पहले 14 मई को एक और मुलजिमा मनीषा वाघमारे को भी पुणे से गिरफ्तार किया गया था। दोनों मुलजिमान को पुणे की एक अदालत में पेश किया गया था और बाद में मजीद तफ्तीश के लिए उन्हें दिल्ली लाया गया। कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस शंपा सरकार और जस्टिस तीर्थांकर घोष की एक डिवीजन बेंच की जानिब से आरजीकर मेडिकल कॉलेज असमतदरी और कत्ल केस की समाअत की जाएगी। इससे पहले इस हफ्ते जस्टिस राजा शेखर मांथा और जस्टिस राय चट्टोपाध्याय ने ज्यादा मसरूफियत का हवाला देते हुए खुद को इस केस से अलग कर लिया था। इस केस में संजय राय जनवरी 2025 में उम्र कैद की सजा पाने वाले वाहिद मुजरिम हैं। मुतवफी डॉक्टर की वालिदैन ने कोलकाता की सियालदा अदालत में एक केस दायर किया था जिसमें उन्होंने टीएमसी के साबिक एमएलए निर्मल घोष, संजीव मुखोपाध्याय और घोला पुलिस स्टेशन के उस वक्त के इंचार्ज की गिरफ्तारी की अपील की थी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद से मुतालिक तरमीमी ऑर्डिनेंस 2026 के निफाज के जरिए भारत के चीफ जस्टिस को छोड़कर सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद 33 से 37 तक बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। कानून और इंसाफ की वजारत की तरफ से शाया करदा एक गेजेट नोटिफिकेशन के मुताबिक इस ऑर्डिनेंस में सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद से मुतालिक एक्ट 1956 में तरमीम की गई है। एक मुल्क एक चुनाव बिल से मुतालिक मुश्तरका पार्लियामानी कमेटी ने कल सियासी पार्टियों, कानूनी बिरादरी और सिविल सोसाइटी के साथ बेंगलुरु में वसी तर तबादले ख्याल किया। बाद में अखबार नवीसों को जानकारी देते हुए कमेटी के चेयरमैन पीपी चौधरी ने बताया कि मुख्तलिफ रियासतों के अपने दौरे के दौरान मुश्तरका पार्लियामानी कमेटी की तरफ से एतराजात और सिफारिशात जमा की जा रही हैं। बैडमिंटन में बैंकॉक में जारी थाईलैंड ओपन के मर्दों के डबल्स के फाइनल में आज सत्विक साईराज रेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लियो रॉली कॉर्नेंडो और डेनियल मार्टिन से जोड़ी से होगा। इससे पहले कल सेमीफाइनल मुकाबले में भारतीय जोड़ी मलेशिया के गो ज़ीफी और नूर इजुद्दीन को हराकर फाइनल में पहुंची है। टेनिस में आलमी नंबर एक खिलाड़ी यानिक सिनर इटालियन ओपन के फाइनल में पहुंच गए हैं। उन्होंने सेमीफाइनल मुकाबले में रोम के कैंपो सेंट्रल में डेनियल मेदवेदेव को हराकर फाइनल में जगह बनाई है। आज फाइनल में सिनर का मुकाबला कैस्पर रूट से होगा। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं जमीर रजवी।
1: शुक्रिया आसिया। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले ज्यादातर उर्दू अखबारात ने मुख्तलिफ खबरों को नुमाया तौर पर जगह दी है। रोजनामा इंकलाब ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के नीदरलैंड दौरे की खबर को सफ़े अव्वल की शह सुर्खी बनाया है। वज़ीर-ए-आज़म कल एम्स्टर्डम पहुंचे जहां भारतीय बिरादरी ने उनका पुरतपाक खैर मकदम किया। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मशरिक़ वुस्ता में जंग और बढ़ती आलमी गैर यकीनी कई दहाइयों की तरक्की को उलट सकती है और बड़ी आबादी को दोबारा गुर्बत में ढकेल सकती है। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने तमिलनाडु में वुज़रा में कलमदानों की तकसीम से मुतालिक खबर को नुमाया तौर पर जगह दी है। अखबार के मुताबिक वजीर आला जोसेफ विजय ने दाखला और आम इंतजामिया जैसे अहम महकमे अपने पास रखे हैं। रोजनामा प्रताप ने दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता के उस बयान को अपनी चैसुर्खी बनाया है जिसमें उन्होंने कहा है कि बेटियों की तालीम सिर्फ खानदान ही नहीं बल्कि समाज और मुल्क के रोशन मुस्तकबिल की बुनियाद होती है।
0: आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के उनके हम मनसब रॉब जेटन के दरमियान बातचीत के बाद दोनों मुल्कों ने अपने ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में बदल दिया है। वजीर आजम मोदी स्वीडन के अपने दो रोजा दौरे पर आज गोटनबर्ग पहुंचेंगे। इस दौरान वजीर आजम स्वीडन के अपने हम मनसब उल्फ क्रिस्टर्सन से बातचीत करेंगे। महकमा आसार कदीमा ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले के बाद हिंदुओं को भोजशाला मंदिर में बिला रुकावट दाखिले की इजाजत दे दी है। हुकूमत ने चांदी की दरामद में कटौती करते हुए इसे पाबंदी वाली अशिया के जुमरे में डाल दिया है। दिल्ली हुकूमत ने कौमी राजधानी में हवाई जहाजों के ईंधन पर वैल्यू एडिड टैक्स में कटौती करते हुए इसे 25% से घटाकर 7% कर दिया है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: मीडियम वेव 336.7 मीटर और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 8:45 हुए हैं। श्रोताओं, अब सुनिए नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम 102.9 मॉर्निंग हिट्स।

0: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
1: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस, सब हो गया।
2: बन गया बजट?
1: हाँ,
2: 5,000 बच गए।
1: तो नई साड़ी ले ले।
2: ना,
1: पिछले महीने तो ली थी।
2: एक और?
1: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
2: बढ़िया, जाओ भाई।
3: RBI कहता है,
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।

अभी आप सुन रहे थे खान साहब और शाश्वती सचदेव को फिल्म धुरंधर में। 102.9 मॉर्निंग हिट्स का ये अगला गीत अरिजीत सिंह की आवाज़ में, फिल्म का नाम ओ रोमियो।

0: वो भी ऐप से। वाह,
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
4: आगे सैलरी? नहीं झुमके ना, पहले बचत,
5: पहले झुमके।
4: सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री।
5: लेकिन झुमकों का क्या?
4: जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
1: RBI कहता है,
3: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।

बस एक धड़क, ये नाम था उस फिल्म का जिसका गीत अभी आपने जुबिन नौटियाल और श्रेया घोषाल की आवाजों में सुना। अब सुनिए श्रेया घोषाल के साथ आईपी सिंह को, फिल्म का नाम सूबेदार।

और अब 102.9 मॉर्निंग हिट्स कार्यक्रम के आखिर में सुनिए फिल्म एनिमल के लिए अरिजीत सिंह का गाया ये गीत।

आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। मीडियम वेव 336.7 मीटर और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज पर। 9:15 होने वाले हैं। थोड़ी देर में सामयिक चर्चा कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से अनुप्रसारित होगा।

0: ये आकाशवाणी लखनऊ है, आइए सुनते हैं सामयिक चर्चा।
1: सामयिक चर्चा में आज आप सुनेंगे कृषि के क्षेत्र में नवा

0: में उत्तर प्रदेश का अग्रणी स्थान है। प्रदेश की इस उपलब्धि ने युवा पीढ़ी को भी बागवानी को करियर के रूप में चुनने के लिए प्रेरित किया है। आज काफी संख्या ऐसे युवाओं की है जो उच्च शिक्षा हासिल करने के बाद स्टार्टअप के तौर पर कृषि क्षेत्र में भविष्य तलाश रहे हैं। कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ने की इच्छा रखने वाले लोगों की मदद के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है और कैसे वो इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, इन सभी बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक मनीष मिश्रा। मनीष जी, सरकार कृषि में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठा रही है?
1: सबसे पहले ऑल इंडिया रेडियो के सभी श्रोताओं को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, नमस्कार करता हूँ। जो आपने प्रश्न उठाया बड़ा ही प्रासंगिक प्रश्न है। पूरे देश में न सिर्फ कृषि में बल्कि बहुत सारे क्षेत्रों में जो विज्ञान के क्षेत्र हैं, जैसे कि मेडिकल रिसर्च जिसमें ICMR, इंडस्ट्रियल रिसर्च है जिसमें CSIR और जो कृषि का शोध है जिसमें कि ICAR जैसे संस्थान रोज नवाचार कर रहे हैं और नई नई तकनीक का विकास कर रहे हैं। इन तकनीकियों के माध्यम से स्टार्टअप का बहुत सारा सृजन हो रहा है। अब भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप का देश
0: जी।
1: और लगभग समय 5000 स्टार्टअप एग्री स्टार्टअप काम कर रहे हैं, बहुत बड़े जैसे कि देहात है, निंजा कार्ट है, ऐसे तमाम स्टार्टअप आज इस देश में विकसित हैं। और ये तब संभव है जबकि कृषि तकनीकी नवाचार के माध्यम से विकसित हो गई हैं और इनके माध्यम से लोगों तक पहुंचने का, डिजिटाइजेशन का, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग का, AI लेड प्रिसीजन फार्मिंग का एक बहुत बड़ा बाजार उपलब्ध हो गया है
0: जी। मनीष जी, एक खास रुझान जो देखने को मिल रहा है कि जो आजकल के युवा हैं वो पढ़ाई करके हायर स्टडीज करने के बाद भी जॉब करने के बजाय कृषि की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, तो कोई युवा अगर स्टार्टअप के तौर पर कृषि को अपनाना चाहता है तो वो कहाँ से शुरुआत कर सकता है?
1: कृषि आज भी इस देश का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है और जो स्टार्टअप की संभावनाएं हैं जो वो सबसे बड़ी कृषि में है। तो मुझे लगता है कि कोई भी युवा जो निकलते हैं पढ़ करके, उनको कृषि एक बहुत ही आकर्षक माध्यम दिखाई पड़ता है और इसमें संभावनाएं इसलिए बहुत हैं क्योंकि बाकी सारे जो व्यवसाय हैं उनका एक डिक्लाइनिंग पॉइंट होता है, कृषि का कभी नहीं हो सकता है क्योंकि हमेशा हमको खाद्यान्न की, हमेशा में उद्यान फसलों की, हमें सब्जियों की हमको हमेशा जरूरत पड़ने वाली। तो इस नाते से कोई भी अगर युवा एक कृषि व्यवसाय शुरू करना चाहता है तो पूरे देश में एक बहुत ही परंपरागत ढांचा है इन लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए। इनको बोलते हैं एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर, जो पूरे देश में खाली भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में 50 के करीब पूरे देश में है। इसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT में बहुत सारे हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यानी कि IIM में बहुत सारे हैं। ऐसे देश में बहुत सारे इंक्यूबेटर्स हैं जो आपको तकनीक के माध्यम से, आपको फंडिंग के जरिए, आपको तकनीकी कौशल के माध्यम से ये आपको प्रोत्साहित करते हैं और आप एक स्टार्टअप अपना शुरू कर सकते हैं। तो कोई भी युवा किसी भी जगह जहां भी रहता हो पूरे देश में, वो अपने पास का जो एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर है उसको संपर्क कर सकता है, उसके माध्यम से एक अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है
0: जी। खासतौर से अगर फसलों की बात करें कि एक रूटीन जो हमारी जो पारंपरिक फसलें हैं उनके अलावा भी बहुत तरह की फसलें इंट्रोड्यूस हुई हैं जो आमदनी को बढ़ाती हैं, तो आप एज एन एक्सपर्ट क्या सलाह देते हैं कि ऐसी कौन सी फसलें हैं जिनसे आय बढ़ाने में मदद मिल सकती है और उनकी ज्यादा डिमांड है मार्केट में?
1: मुझे लगता है कि सारी फसलें आपकी अच्छी होती हैं, उसमें कोई फसलों में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन क्या है डिमांड और सप्लाई का जो गैप होता है उसका अध्ययन करना जरूरी है। किसी भी जगह में आप ऑफ सीजन वेजिटेबल्स को अगर आप उत्पादन करते हैं तो आपको ज्यादा लाभ होता है। कहीं भी बहुत बड़ा देश है तो उसकी जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है, उसकी जो क्लाइमेटिक कंडीशन है अलग अलग होती है, तो एक जवाब तो उसके लिए मुफीद नहीं हो सकता, लेकिन आप बहुत सारी ऐसी फसलों को नेट हाउस कंडीशन में उगा सकते हैं जबकि वो सामान्य दशाओं में उगाई नहीं जा सकती, तो उनमें आपको बहुत लाभ होता है। बहुत सारे किसान खीरे की खेती करते हैं एक प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, टमाटर की खेती करते हैं, अन्य सब्जियों की खेती करते हैं जिनको उनको अतिशय लाभ होता है। तो ऐसी फसलों के चुनाव के लिए क्या करना होगा कि आपको वहाँ के जो किसानों का जो भी वहाँ पर एक इंक्यूबेशन सेंटर होगा, चाहे वो ICR का हो या स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का हो, उनसे संपर्क करना पड़ेगा और उनसे एक पूरी जानकारी लेनी पड़ेगी कि इस समय में, इस वातावरण में मैं कौन सी ऐसी खेती कर सकता हूँ कि मुझे अधिक लाभ हो। तो इसके लिए जो है एक मतलब एक सामान्य उत्तर नहीं हो सकता कि पूरे देश में कौन सी फसल फायदेमंद होगी, लेकिन ये अलग अलग क्षेत्रों पे निर्भर करेगी।
0: मनीष जी, आपका खास जुड़ाव आम के रिसर्च से है, आपका इंस्टीट्यूट में आम को लेकर काफी काम होता है और यूपी में खासकर मलिहाबाद का दशहरी आम या प्रदेश के अन्य हिस्सों

0: जो आम की फसल है वो एक्सपोर्ट भी होती है और बहुत फेमस भी है, तो अगर इससे जुड़ना चाहते हैं युवा तो वो कैसे शुरुआत करें?
1: जो मलिहाबाद का दशहरी आम है ये विश्व का बहुत प्रख्यात आम है और इसको एक प्रोटेक्शन मिला हुआ है जिसको बोलते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन 125, GI 125, यानी कि इस तरह का आम मलिहाबाद के किसान या आसपास के किसान ही उगा सकते हैं और कोई नहीं उगा सकता। और इसकी मार्केटिंग और इसकी ब्रांडिंग और इसका प्रमोशन और इसका एक्सपोर्ट पे तमाम सारी CISS लखनऊ ने पहल की है। ये आम पिछले वर्ष यहाँ से समुद्र के माध्यम से सिंगापुर तक भेजा गया जो बहुत ही लोकप्रिय हुआ, और इस फसल को इससे पहले भी हम लोगों ने अमेरिका में भेजा था एयर के रूट से और वहाँ भी लोकप्रिय हुआ। तो इसकी अपार संभावनाएं हैं, युवाओं को चाहिए कि इस बहुत ही खूबसूरत फसल के साथ जुड़े और इसको बहुत बढ़ावा दें क्योंकि इस पूरे विश्व में बहुत लोकप्रियता है।
0: जी मनीष जी, जो आम एक्सपोर्ट होते हैं एक बड़ा हिस्सा उसका है जो मलिहाबाद से जाता है, और जैसा कि आपने बताया कि जगह जगह पर निर्यात किया जा रहा है और काफी दूर तक इसने अपनी पहुंच बना ली है, तो इसमें बीते कुछ सालों में आप कितना सुधार लगता है कि आया होगा?
1: उत्तर प्रदेश एक लैंड लॉक्ड स्टेट है, यहाँ पर कोई भी समुद्र की सीमा नहीं लगती, तो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि आप आम को अगर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो सिर्फ आपके पास एक वायु का माध्यम रह जाता है, और एयर का जो माध्यम होता है वो बड़ा महंगा होता है, करीब 450 रुपए किलो होता है उसका खर्चा आता है।
0: जी।
1: अगर आप समुद्र से ले आते हैं तो वो बेहद सस्ता हो जाता है, यानी कि आपका 50-60-100 रुपए के, तो ये माध्यम सबसे बढ़िया माध्यम है अगर समुद्र से ले जाए। लेकिन दिक्कत क्या आती है कि आप ले जाओगे वायु मार्ग से तो आपका 4 दिन में आम पहुंच जाएगा, 2 दिन में आम पहुंच जाएगा, लेकिन आप अभी समुद्र के मार्ग से ले जाते हैं तो वो लगता है 30-35 दिन, अगर आप दुबई पहुंचाना है तो कम लगता है, लेकिन अगर आप सिंगापुर ले जाओगे तो आपको लगभग 22-25 दिन लग जाता है, आपको आप रशिया ले जाओगे तो लग जाता है 30-32 दिन। तो ये समुद्र का मार्ग से ले जाने के लिए सबसे पहले क्या है कि आम की शेल्फ लाइफ बढ़ानी पड़ेगी। तो सबसे पहले जो केंद्रीय उपज बागवानी संस्थान है उसने एक तकनीक विकसित की जिसको सी रूट प्रोटोकॉल कहते हैं, यानी समुद्र से ले जाएं तो उसका पूरा प्रोटोकॉल विकसित किया कि इस तरह से आम को आप तोड़ें, इस तरह से आम को उगाएं, इस तरह से आम को पैक हाउस में लाएं, ऐसे पैक करें, और इस तरह से अगर आम धीरे धीरे समुद्र में जाता है तो 30-35 दिन आराम से आम रहता है। तो ये बहुत बड़ी संभावना जो है पिछले कुछ सालों में खुली है जिसकी वजह से बहुत सारे निर्यातक अभी सामने आ रहे हैं, पूरे देश से आ रहे हैं सामने, और वो हमारी तकनीक का हमारे प्रोटोकॉल का उपयोग करके विभिन्न देशों में आम को भेजा। तो ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि इस तकनीक के द्वारा हमारा आम जो है पूरे विश्व में जा।
0: जी एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि युवाओं को क्या संदेश देंगे आप जो मन बना रहे हैं कृषि के तरफ आने के लिए और वो चाहते हैं कि कृषि के माध्यम से वो आगे बढ़े और अपनी आय को बढ़ाएं, उनके लिए आप क्या संदेश देंगे?
1: मैं तो ये कहता हूँ कि युवाओं के लिए कृषि एक बहुत ही सशक्त माध्यम है, पूरे दुनिया में सारे व्यवसाय में उतार चढ़ाव आ सकता है, कृषि में नहीं आ सकता, क्योंकि कृषि आपकी से उपजे हुए जो उत्पाद होते हैं आपकी जिंदगी का हिस्सा होते हैं, आपको रोज खाना चाहिए होता है, आपको रोज फल चाहिए होते हैं, रोज सब्जियां चाहिए होती हैं, और इसमें अगर आप युवा आगे आते हैं तो उनके पास बेहद बड़े अवसर हैं। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसमें वो खासतौर पर प्रोसेसिंग में आते हैं जहाँ पर कि फलों को या अनाज को या सब्जियों को प्रोसेस करके और एक प्रोडक्ट फॉर्म में लाते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा मार्केट इस देश में भी है और जो कि बहुत तेजी से विकसित हो रहा है, तो उसमें अपार संभावनाएं हैं किसी भी स्टार्टअप के लिए। मैं सारे युवाओं का आह्वान करता हूं कि इस क्षेत्र में आए और देखें कि तरह से आपका विकास हो।
0: जी हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू।
2: सामयिक चर्चा में आज आपने सुना कृषि के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सरकार के प्रयासों पर केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक मनीष मिश्रा से खास बातचीत। वार्ताकार थी आकाशवाणी संवाददाता तनवीर फातिमा।
3: सामयिक चर्चा, आप सुन रहे थे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से।
4: ये आकाशवाणी रामपुर है। 9:25 हो चुके हैं। गौरव भारत देश के प्रस्तुत है ये कार्यक्रम श्रृंखला। आज सुनिए गोदावरी पारुलेकर की गौरव गाथा।

जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया। वो महान थीं, पराक्रमी थीं, जिन्होंने अपना सब कुछ देश पर न्योछावर कर दिया। ऐसी ही एक महान स्वतंत्रता सेनानी थीं महाराष्ट्र की गोदावरी पारुलकर। आपका जन्म 1907 में हुआ था। आप कानून में स्नातक करने वाली पहली महिला थीं। ब्रिटिश शासन के खिलाफ छात्र आंदोलन में आप सक्रिय थीं और स्वतंत्रता संग्राम के लिए अथक रूप से आपने काम किया और फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह में शामिल हो गईं, जिसके लिए आपको 1932 में ब्रिटिश शासन द्वारा दोषी ठहराया गया था। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, जिसकी स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने की, इस सोसाइटी की आजीवन सदस्य के रूप में शामिल होने वाली आप पहली महिला बनी। गोदावरी मार्क्सवादी विचारधाराओं से प्रभावित थीं और उन्होंने दादरा और नागर हवेली को पुर्तगाली शासन से और 1945 में वारली आदिवासी विद्रोह से मुक्ति के लिए सशस्त्र संघर्ष का नेतृत्व किया। ऐसी महान स्वतंत्रता सेनानी को हमारा शत शत नमन।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 9:30 हुए हैं। अब पेशे खिदमत है हमारा उर्दू प्रोग्राम।
1: अदब नवाजों का हम एहतराम करते हैं, अदब नवाजों का हम एहतराम करते हैं, मोहब्बतों से सबको सलाम करते हैं। सामीन के बेहद पसंदीदा उर्दू प्रोग्राम के साथ आपकी मेज़बान शमामा मसूद एक बार फिर हाजिर खिदमत है। हमारा सलाम अदब कबूल करें। गालिब करंग मीर का लहजा मुझे भी दे, गालिब करंग मीर का लहजा मुझे भी दे, लफ्ज़ों से खेलने का सलीका मुझे भी दे। और तेरी नवाजिशें हैं हर एक ख़ास आम पर, तेरी नवाजिशें हैं हर एक ख़ास आम पर, दरिया है तेरा नाम तो ख़तरा मुझे भी दे। समीन उर्दू अदब वो ज़रिया ख़याल है जो अपनी राय और अपनी बात कहने में मददगार होती है। वो शायरी हो, अफसाना हो या फिर तकरीर का कोई भी मौजू क्यों ना हो। समीन शायरी वो ज़रिया है अपनी बात और एहसासात को बखूबी बयान करने का, और यही वजह है कि शोरा हजरात अपनी शायरी के ज़रिए मकबूल से मकबूल आम बन जाते हैं। वो अपनी शायरी के ज़रिए दिलों के जज्बात की ऐसी तस्वीर खींचते हैं कि मानो ज़िंदगी की हकीकत बयान हो रही हो। इसीलिए शेर व सुखन की महफिल से इंसान हटना ही नहीं चाहता, क्योंकि हर शायरी की महफिल हर दिल अज़ीज़ हो जाती है। सामीन शायरी की महफिल में शोरा हजरात अपने कलाम के ज़रिए माहौल ही दिलचस्प कर देते हैं। कुछ अशआर ऐसे होते हैं जो दिल को छू जाते हैं। सामीन ऐसी नशिस्त या शायरी की महफिल इंसान को सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या खूबसूरत महफिल शेरो सुखन से सजी है, और अदब अल्फाज की खूबसूरती महफिल में साफ नज़र आती है। हर शायर का लहजा और अंदाज अलग अलग होता है, मगर हर शायर अपने खूबसूरत अंदाज से महफिल को रंगीन बना देता है। सामीन, हमने भी आपके लिए बहुत खूबसूरत और ताज़ा तरीन शेरी नशिस्त सुनवाने का एहतमाम किया है। आज की ये शेरी नशिस्त अल्फाज और एहसासात से के अशआर से सजाई गई है, तो सामीन ताखीर ना करते हुए सुनते हैं ये ताज़ा तरीन शेरी नशिस्त।
2: आकाशवाणी रामपुर के स्टूडियो में आज शेरी नशिस्त का इनाकाद किया गया है। हमारी आज की शेरी नशिस्त में मुल्क के मशाहीर शोरा किराम शिरकत कर रहे हैं। शेरी नशिस्त का आगाज़ करने से पहले आइए मैं उन शोरा किराम के असमाए गिरामी आपके सामने पेश करता हूँ। आज की शेरी नशिस्त में जो शोरा किराम शिरकत कर रहे हैं उनमें जनाब असलम अली साहब असलम हैं। मैं नाचीज़ गजनफर अली सेथल से तशरीफ लाया हूँ, और आज की इस शेरी नशिस्त में जनाब अजहर अब्बास साहब अजहर मुरादाबादी साहब भी अपना कलाम पेश करेंगे। आइए मैं सबसे पहले इस शेरी नशिस्त का आगाज़ करने के लिए और कलाम पेश करने के लिए दावत सुखन दे रहा हूँ जनाब असलम अली साहब असलम से कि वो तशरीफ़ लाएं और अपनी गज़ल से सामईन को महसूस फरमाएं। तशरीफ़ ला रहे हैं जनाब असलम अली साहब असलम। बिस्मिल्लाह।
3: आशिक हूँ मैं तुम्हारा अब सांस आखिरी है।
2: अच्छा है भाई।
3: आशिक हूँ मैं तुम्हारा अब सांस आखिरी है, आ जाइए खुदारा अब सांस आखिरी है।
2: आइए खुदारा अब सांस आखिरी है।
3: आशिक हूँ मैं तुम्हारा अब सांस आखिरी है, आ जाइए खुदारा अब सांस आखिरी है। दुश्मन कदम कदम पे खंजर लिए खड़े हैं, दुश्मन कदम कदम पे खंजर लिए खड़े हैं। दे दो मुझे सहारा अब सांस आखिरी है, दुश्मन कदम कदम पे खंजर लिए खड़े हैं। दे दो मुझे सहारा अब सांस आखिरी है, मरने के बाद शायद तुम फैसला करोगे। जीता है कौन हारा अब सांस आखिरी है, मरने के बाद शायद तुम फैसला करोगे। जीता है कौन हारा अब सांस आखिरी है। पाला था जिनको मैंने قاتل ہیں وہ ہمارے، پالا تھا جن کو میں نے قاتل ہیں وہ ہمارے، گردش میں ہے ستارہ اب سانس آخری ہے،
2: گردش میں ہے ستارہ واہ،
3: گردش میں ہے ستارہ اب سانس آخری ہے، صورت کوئی نکالو اے غیرتوں کی ملکہ، مل جائیں ہم دوبارہ اب سانس آخری ہے، صورت کوئی نکالو اے غیرتوں کی ملکہ، مل جائیں ہم دوبارہ،
2: غیرتوں کی ملکہ اچھا ہے،
3: صورت کوئی نکالو اے غیرتوں کی ملکہ، مل جائیں ہم دوبارہ اب سانس آخری ہے، مانا کہ غیرتوں کے پردے ہیں درمیان میں، مانا کہ غیرتوں کے پردے ہیں درمیان میں، آنکھوں سے کر اشارہ سانس آخری ہے، مانا کہ غیرتوں کے پردے ہیں درمیان میں، آنکھوں سے کر اشارہ سانس آخری ہے، حسرت ہے میرے دل میں دیدار ہو تمہارا،
2: حسرت ہے واہ،
3: حسرت ہے میرے دل میں دیدار ہو تمہارا، مر جاؤں نہ کنوارا اب سانس آخری ہے، جا کر اسے بتا دو مجبوریاں ہماری،
2: جا کر اسے بتا دو
3: مجبوریاں ہماری، جا کر اسے بتا دو مجبوریاں ہماری، ملتا نہیں کنارہ اب سانس آخری ہے، جا کر اسے بتا دو مجبوریاں ہماری، ملتا نہیں کنارہ۔

0: आप सांस आखरी
1: वाह
0: है,
1: वाह
0: रहना नहीं चाहता तेरे बगैर जिंदा, रहना नहीं मैं चाहता तेरे बगैर जिंदा, रहना नहीं मैं चाहता तेरे बगैर जिंदा, गम ने है तेरे मारा अब सांस
1: वाह
0: आखरी है।
1: वाह भाई वाह,
0: तू कितनी बेवफा है ये तू भी जानती है,
1: तू
0: तू
1: कितनी
0: कितनी
1: बेवफा
0: बेवफा
1: है।
0: है ये तू भी जानती है, न तोड़ दिल हमारा अब सांस
1: बहुत
0: आखरी
1: अच्छा है,
0: है,
1: वाह वाह,
0: ना तोड़ दिल हमारा अब सांस आखरी है। असलम को तू दिखा जा एक बार अपनी सूरत, असलम को तू दिखा जा एक बार अपनी सूरत, दिल से तुझे पुकारा
1: बहुत
0: अब
1: अच्छा है भाई,
0: सांस
1: बहुत
0: आखरी
1: अच्छा
0: है।
1: है,
0: असलम को तू दिखा जा एक बार अपनी सूरत, दिल
1: दिल
0: से
1: से
0: तुझे
1: तुझे
0: पुकारा
1: पुकारा।
0: अब सांस आखरी है।
1: मैं चाहूंगा कि गजल आप और पेश करें अपनी, जनाब असलम साहब। असलम,
0: गले से अपने लगाओ तो बात बन जाए, गले से अपने लगाओ तो बात बन जाए, गले से अपने लगाओ तो बात बन जाए, जरा सा अश्क बहाओ तो
1: बहुत अच्छा
0: बात
1: है भाई,
0: बन जाए।
1: बहुत अच्छे, बहुत
0: बुझी
1: अच्छे,
0: नहीं है मेरे दिल की आग आए यारों, बुझी नहीं है मेरे दिल की आग आए यारों, हवाएं तेज चलाओ तो बात बन
1: बहुत
0: जाए।
1: अच्छा है, बहुत
0: ये
1: अच्छा है।
0: मसलहत के अंधेरे मुझे कबूल नहीं,
1: ये मसलहत के अंधेरे
0: ये
1: मुझे कबूल
0: मसलहत के
1: नहीं।
0: अंधेरे मुझे कबूल नहीं, कोई चराग जलाओ तो बात
1: बहुत
0: बन
1: अच्छे,
0: जाए।
1: बहुत अच्छे,
0: अभी तो खून से लिखनी है दास्तान मुझे,
1: अच्छा
0: अभी
1: मिसरा
0: तो खून से लिखनी है दास्तान मुझे, मेरा लहू ना बहाओ तो बात बन जाए। वो जुल्म करके समझता है मात दे दी है, वो जुल्म करके समझता है मात दे दी है, उसे ये बात सिखाओ तो बात बन
1: वाह
0: जाए, उसे
1: वाह,
0: ये
1: बहुत
0: बात सिखाओ तो बात बन
1: अच्छा,
0: जाए।
1: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे,
0: पुकारता है मुझे फिर से करबला का अलम, पुकारता है मुझे फिर से करबला का अलम, शकिस्ता शाने उठाओ तो बात
1: बहुत
0: बन
1: अच्छा साहब, बहुत
0: जाए,
1: अच्छा शेर, बहुत
0: शकिस्ता
1: अच्छा,
0: शाने उठाओ तो बात बन
1: वाह बहुत
0: जाए।
1: अच्छा। कलाम पेश कर रहे थे आज की इस शेरी नशिस्त में जनाब असलम अली साहब। असलम, मैं एक मतला और दो शेर हाजिर करता हूँ और उसके बाद खुद अपना कलाम पेश करता हूँ। वो गुल जो रौनक़े फसले बहार होता है,
0: वाह वाह,
1: वो गुल जो रौनक़े फसले बहार होता है, हर एक फूल उसी पर निसार होता
0: बहुत अच्छा
1: है,
0: है, वाह
1: हर
0: वाह
1: एक
0: वाह,
1: फूल
0: उसी पर
1: उसी
0: निसार
1: पर
0: होता
1: निसार
0: है।
1: होता है, जो आबरूए चमन को सदा रखे कायम,
0: वाह वाह
1: जो
0: वाह,
1: आबरूए चमन को सदा रखे कायम, वो बागबान बड़ा होशियार होता है,
0: बहुत अच्छा है,
1: वाह
0: वाह
1: वो
0: वाह वाह,
1: बागबान बड़ा
0: वाह वाह
1: होशियार
0: वाह,
1: होता है। मैं नाचीज़ गज़नफ़र सेतली आपके सामने गज़ल के चंद अशार पेश करता हूँ, समाप्त करें।
0: अच्छा
1: गज़ल का
0: अच्छा
1: मतलब हाजिर करता हूँ,
0: पेश करें।
1: मुलाहिज़ा करें कि गलों से जुल्म की तलवार काट देते हैं,
0: अच्छा है मत मिश्रा।
1: गलों

0: बहुत अच्छा है।
1: गलों से जुल्म की तलवार काट देते हैं। और शेर हाजिर
0: करें,
1: करता
0: अता
1: हूं,
0: करें।
1: जो चढ़ के सूली पे भी हक बयान देती हो,
0: वाह वाह वाह वाह।
1: जो चढ़ के सू

0: शायद कोई तारीख हो
1: आता
0: शेर
1: करें आता
0: में,
1: करें।
0: मौलाना फरमाए कि
1: हाँ
0: छिपा के रखता है गुल जिनको अपने
1: वाह,
0: पहलू
1: बहुत
0: में,
1: खूबसूरत मिसरा है। वाह
0: छिपा
1: वाह,
0: के रखता है गुल
1: बहुत खूबसूरत
0: जिनको
1: मिसरा है।
0: अपने

0: मगर परों को मेरे यार काट देते हैं। और ये पैगाम भी है और शेर भी है और आखिरी शेर है ज़ुल्फ़िकार का, शहीद मरते नहीं है कभी जमाने में,
1: वाह वाह खूबसूरत।
0: शहीद

शबनम चले भी आओ हुजूर, ये बरगे गुल की भी शबनम तुम्हारे चेहरे को देखा

0: हाजरीन मैं गजल पेश कर रहा था अभी आपके सामने। आइए चार मिसरों से मैं इस शेरी नशिश के आखिरी शायर को सुखन देता हूँ। बात की हक की तो इनामे तकल्लुम ले जा, बात की हक की तो इनामे तकल्लुम ले जा, नुसरते हक की अलमदारी का परचम ले जा, मेरे हिस्से के अंधेरे मुझे दे जा राही, अपने हिस्से के उजाले मेरे हमदम ले जा, अपने हिस्से के उजाले मेरे हमदम ले जा। आइए मैं गुजारिश करता हूं इन अशार के साथ जनाब अजहर अब्बास साहब अजहर मुरादाबादी से कि वो तशरीफ लाएं और अपनी गजल के अशार पेश फरमाएं। तशरीफ ला रहे हैं जनाब अजहर अब्बास साहब अजहर मुरादाबादी।
1: अभी आप जनाब गजनफर साहब को समाप्त फरमा रहे, बहुत खूबसूरत निजामत कर रहे हैं। गज़ल का मतला पेश खिदमत है, इस गज़ल की रदीफ गुलशन है, मतला समाप्त फरमाएं।
0: अता
1: कदम कदम पे बिछाओ न खार गुलशन में, कदम कदम पे बिछाओ न खार गुलशन में, अगरचे लानी है तुमको बहार गुलशन में, कदम कदम पे बिछाओ न खार गुलशन में, अगरचे लानी है तुमको बहार गुलशन में, अगर बचाना है तुमको जवाल से गुलशन, फसाद का ना करो कारोबार गुलशन में, फसाद का ना करो कारोबार गुलशन में।
0: और
1: भाई
0: शेर
1: पेश खिदमत है कि बदन गुलों का उन्होंने ही कर दिया जख्मी,
0: बदन गुलों का उन्होंने ही कर दिया जख्मी,
1: गुलों के साथ वो जितने थे खार गुलशन में, गुलों के साथ वो जितने थे खार गुलशन में, और सिवाय सूखी हुई शाख के बचा क्या है, सिवाय सूखी हुई शाख के बचा क्या है, खिजा ने लूट ली सारी बहार गुलशन में, खिजा ने लूट ली सारी बहार गुलशन में। और शेर देखें कि तुम ही नहीं हो अकेले ही मालिक गुलशन,
0: बहुत अच्छा है,
1: तुम ही नहीं हो अकेले ही मालिक गुलशन, हमारा भी है सुनो इख्तियार गुलशन में, हमारा भी है सुनो इख्तियार गुलशन में, और जिन्होंने सींचा था अपने लहू से गुलशन को, जिन्होंने सींचा था अपने लहू से गुलशन को, उन्हीं से छीना है हक़े बहार गुलशन में, उन्हीं से छीना है हक़े बहार गुलशन में, और लिया है जिसने तेरा नाम बावजू होकर, लिया है जिसने तेरा नाम बावजू

0: होकर उसी के हिस्से में आई बहार गुलशन में, उसी के हिस्से में आई बहार गुलशन में, और हर एक दौर की तारीख में रकम होगा, हर एक दौर की तारीख में रकम होगा हमारे खून से आई बहार गुलशन में, हमारे खून से आई बहार गुलशन में। उसी को दारो रसन पे चढ़ा दिया आखिर, उसी को दारो रसन पे चढ़ा दिया आखिर, गुलों का जिसने बढ़ाया वकार गुलशन में, गुलों का जिसने बढ़ाया वकार गुलशन में। और मकता भी पेशे खिदमत है कि कोई तो बात है उनकी नियत में है अजहर, कोई तो बात है उनकी नियत में है अजहर, लगा रहे हैं वो खंजर पिधार गुलशन में, लगा रहे हैं वो खंजर पिधार गुलशन में,
1: लगा रहे हैं वो खंजर पिधार गुलशन में। वाह।
0: और एक गजल
1: बताओ
0: मतलब और समाज फरमाए के मोहतात होके हमसे करें आप गुफ्तगु।
1: अच्छा लफ्ज है,
0: मोहतात होके हमसे करें आप गुफ्तगु, मुमताज और आला हमारी है आबू। गजन भाई शेर समाज फरमाए के मोहतात होके हमसे करें आप गुफ्तगु,
1: अच्छा मतलब
0: मुमताज और आला हमारी है आबू। कातिल लरस रहा था परेशान फौज थी, मैं मुतमईन खड़ा था जो खंजर के रूबरू, मैं मुतमईन खड़ा था जो खंजर के रूबरू।
1: बहुत अच्छा है।
0: और खूने जिगर बहा के ही आता है इनकलाब,
1: अच्छा है वाह,
0: खूने जिगर बहा के ही आता है इनकलाब, हर दौर के

0: सामीन, अभी आप माजूज हो रहे थे नावेद कैसर शाह की आवाज़ में गज़ल सुनकर। इसी के साथ आज का हमारा उर्दू प्रोग्राम पहुंचता है अपने इख्तिताम की जानिब। अपनी मेज़बान शमामा मसूद को दीजिए इजाज़त।
1: अभी आपने सुना उर्दू कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से प्रसारित किया जा रहा था। लीजिए अब सुनिए प्रत्युत्तर कार्यक्रम। आपका पत्र मिला।

0: श्रोताओं, शुक्रिया के साथ कबूल कीजिए असीम का नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत आपका आपका पत्र मिला कार्यक्रम में। और आज इस महफिल में हमारे साथ हैं रेणु तिवारी, जिनके पास हैं आपके भेजे हुए तमाम ईमेल और साथ में खत भी। लेकिन हमने आपसे एक वादा किया था पिछले कार्यक्रम में कि इस बार जो कार्यक्रम की शुरुआत होगी वो उन खतों के साथ होगी जो पिछले हफ्ते पढ़ने से रह गए थे, और आज रेणु उन्हीं खतों को लेकर आपके बीच हैं। तो रेणु, बताओ कि पिछली बार जो चिट्ठी रह गई थी उसमें क्या लिखा है, कि कौन कौन से श्रोता शामिल हैं?
1: बिल्कुल, ये हमारे श्रोता हैं जसपुर रोड दूलापुर जिला मुरादाबाद से महबूब दुकानदार, बेगम साहिबा महबूब, समीर अंसारी, मोहम्मद वारिस अंसारी, अलशिफा परवीन और जिया नूर। आदाब के साथ आपका पत्र मिला प्रोग्राम पेश करने वालों को नमस्कार, आदाब। और लिखते हैं कि सभी प्रोग्राम सुनते हैं, आपका पत्र मिला गीत आपके नाम, गीत गाता चल, गीतांजलि, दिल ढूंढता है, हेलो रामपुर, हेलो फरमाइश, हेलो फ्रेंड्स, मन भावन, लगभग सभी फिल्म संगीत के कार्यक्रम इन्होंने पसंद किए, सभी कार्यक्रम इनको अच्छे लग रहे हैं।
0: कार्यक्रम आपको अच्छे लग रहे हैं, इसके लिए जसपुर रोड के अपने सभी सुनने वालों का हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और ये गुजारिश करते हैं कि आप इसी तरह से कार्यक्रम सुनते रहिए, क्योंकि कई कार्यक्रम आकाशवाणी रामपुर ने प्रसारित किए हैं खासतौर से इन दिनों में, क्योंकि ये जो वक्त चल रहा है आकाशवाणी के 90 साल पूरे होने के जश्न को हम अपने श्रोताओं के साथ मना रहे हैं, तो कई कार्यक्रम तैयार हुए हैं और श्रोता उन्हें सुन भी रहे हैं।
1: बिल्कुल, खुशी की दुआ के साथ ये हैं छोटे अंसारी, आलम अंसारी, पंजू सराय संभल से जी। असीम भाई जो भी प्रोग्राम पेश करते हैं उसमें जान डाल देते हैं, आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया कहा है इन्होंने, और साथ ही इनको मनोज के प्रोग्राम बहुत पसंद आते हैं। बाकी आकाशवाणी रामपुर के सभी प्रोग्राम एक से एक बढ़कर चल रहे हैं, नंबर वन चल रहे हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया आपका पंजसराय संभल के छोटे अंसारी साहब, आपकी ये बात पिछले हफ्ते आई थी और आपकी ये बात इस हफ्ते भी हमारे साथ है।

0: जी
1: बहुत कोशिशों के बाद कोई कार्यक्रम अपने श्रोताओं तक पहुंचाते हैं, कोई भी प्रस्तुतकर्ता, और सबकी चाहत यही रहती है कि बेहतर से बेहतर चीज़, बेहतर से बेहतर प्रस्तुतिकरण हमारे श्रोताओं तक पहुंचे। और इस कोशिश में अपने श्रोताओं का सहयोग भी हमें चाहिए होता है कि वो कार्यक्रम को सुने और सही प्रतिक्रिया लिखकर भेजें। अच्छा लगे तो भी बताएं, ना लगे तो भी बताएं, और हमारे श्रोता ऐसा करते हैं। इसके लिए खुशकिस्मत हैं हम कि हमारे पास श्रोताओं का एक ऐसा वर्ग है। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: ये श्रोता हैं बांसुरी नगरी चौक बाजार पीलीभीत से डॉक्टर देवेंद्र कन्हैया। आपका पत्र मिला कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ताओं को नमस्कार। साथ ही ये लिखते हैं, आकाशवाणी के कार्यक्रम उम्मीदों पर खरे उतर रहे हैं। हर कार्यक्रम दिल की गहराइयों को छू रहा है। सभी उद्घोषक कार्यक्रमों को तैयार करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। सुबह सवेरे से लेकर रात 11 बजे तक के सभी कार्यक्रम कर्णप्रिय, रोचक और ज्ञानवर्धक हैं। उत्कृष्टता से सराबोर होते हैं, जिसके बारे में जितनी तारीफ की जाए कम है। कुछ विशेष कार्यक्रमों का इन्होंने जिक्र किया है, जिसमें बुधवार रात 10 बजे भारत में आकाशवाणी प्रसारण की 90 वर्ष की गौरवशाली यात्रा पर विशेष कार्यक्रम का दूसरा भाग सुनते सुनाते 90 साल सुना, जिसमें संकलन मनोज कुमार का था, आलेख व वचन असीम सक्सेना जी का और प्रस्तुति विक्रांत चौधरी जी की थी। कार्यक्रम इन्हें बहुत अच्छा लगा और जिन आवाजों से ये चिरपरिचित हैं उनको सुनने के लिए मिला। सभी श्रोताओं के नाम लिए गए, जिसमें मोहन सिंह रावत जी, सत्येंद्र कुमार चंसोलिया, हाजी गफ्फार खां, छोटे अंसारी सहित समस्त श्रोताओं को सुना। उनकी आवाज सुनकर कार्यक्रम में दिल गदगद हो गया। श्रोताओं पर पूरी तरह से आधारित इस कार्यक्रम में समूचे देश के कोने कोने से श्रोताओं की आवाजें और उनके विचार सुने। आकाशवाणी रामपुर के प्रति उनका प्रेम, स्नेह और लगाव जानने का अवसर मिला। यही दस्तूर श्रोताओं के बीच बना हुआ है और भरोसा है कि ये आजीवन बना रहेगा। सुबह सवेरे कार्यक्रम असीम सक्सेना जी का इन्हें बहुत पसंद आया। 90 वर्ष पूरा होने पर आधारित श्रृंखला में प्रयागराज से सेवानिवृत्त सहायक निदेशक श्री लोकेश कुमार शर्मा को सुनवाया, इन्हें पसंद आया है। और साथ ही साथ ये लिखते हैं, श्रोताओं और केंद्र का चोली दामन जैसा साथ हमेशा बना रहेगा, यही उम्मीद है।
1: देवेंद्र जी, आप हमारे कार्यक्रम में शामिल थे, जो सुनते सुनाते 90 साल कार्यक्रम था, इसमें आपकी भी सहभागिता है। आपने आकाशवाणी रामपुर के कार्यक्रमों को बहुत मन से सुना है और आप ऐसा लगातार करते आए हैं, क्योंकि आकाशवाणी रामपुर आपके दिल के बहुत करीब है। कार्यक्रम आपको पसंद आ रहे हैं, हमें लग रहा है कि हमारी कोशिश, हमारा उद्देश्य और हमारा वो मन, जिस मन के साथ हम कार्यक्रम लेकर आपके बीच आते हैं, उसको आपकी सराहना मिली है, आपका साथ मिला है, आपका प्यार मिला है। ये सिलसिला अगर लगातार बना रहेगा तो अच्छा लगेगा। और लोकेश कुमार शुक्ला जी, जो कि आकाशवाणी रामपुर में भी रहे और आकाशवाणी प्रयागराज से वो सहायक निदेशक के पद से सेवानिवृत्त हुए, उन्होंने रामपुर में बिताए गए अपने उन लम्हों को याद किया। और ये जो 90 वर्ष की यात्रा है, एक अतीत पर नज़र डालने का माध्यम है कि हम ठहरें, सोचें कि हमने क्या खोया, क्या पाया, क्या कुछ हासिल किया और क्या कुछ हासिल करना अभी बाकी है। मंजिलें अभी और भी हैं, तो आप हमारे साथ रहेंगे तो हम उन मंजिलों की तरफ सफलतापूर्वक बढ़ पाएंगे। कार्यक्रम सुनने के लिए, खत भेजने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
0: और ये जो चिट्ठी हमारे पास आई है, ये हमारे उन श्रोता की है जो लगातार हमारे साथ जुड़े रहते हैं और काफी विस्तृत।
1: इस चिट्ठी के साथ एक इत्तेफाक ये हुआ कि यूं तो ये चिट्ठी अगले कार्यक्रम में शामिल होनी थी, पिछले कार्यक्रम में, लेकिन कुछ चूक हुई और इनकी ये चिट्ठी शामिल होने से रह गई। तो हमने कोशिश की है कि उनकी ये चिट्ठी और इस बीच में एक चिट्ठी और आई है, तो दोनों चिट्ठियों को आज के कार्यक्रम में शामिल करें। और रेणु, आपने विस्तार से पढ़ लिया है इन चिट्ठियों को, कितने पन्ने हैं, क्या क्या लिखा है, बताइए।
0: बिल्कुल, इनकी हमें दो चिट्ठियां मिली हैं, जिसमें से एक चिट्ठी 18 पेज की है और एक 14 पेज की है। एक चिट्ठी में इन्होंने दूरदर्शन केंद्र के संबंध में जो पत्र व्यवहार किया है उसके कार्यक्रमों की समीक्षा वो हमें विस्तार से लिख भेजी है।
1: और इरफान खान साहब, इसके लिए वैसे तो दूरदर्शन केंद्र ने आपका शुक्रिया अदा किया ही होगा, हम भी कर दें क्योंकि प्रसार भारती वो माध्यम है जिसमें आकाशवाणी और दूरदर्शन दोनों शामिल हैं। आप दूरदर्शन के कार्यक्रमों को भी सुनते हैं, नोट करते हैं और इतना वक्त निकालते हैं, ये खासा एक मेहनत वाला काम है और इसके लिए आप सचमुच बधाई के पात्र हैं। तो इस चिट्ठी को, तो इसमें दूरदर्शन के सारे कार्यक्रम हैं इसलिए इसको पढ़ पाना शायद संभव भी नहीं है और उचित भी नहीं होगा, लेकिन आपकी चिट्ठी हमारे पास है और हमने पढ़ लिया है, जान लिया है कि आप किस तरह से दूरदर्शन से जुड़े हैं। अब रामपुर से जो पिछले महीने आपने कार्यक्रम सुने, 139 कार्यक्रम आपने सुने और 18 पेजों में रेणु आपने अगर इन पेजों को गिना है तो शायद ठीक
0: जी।
1: तो उन
0: बिल्कुल इस चिट्ठी का सार ये है कि सबसे पहले तो इन्होंने संख्या लिखी है कि इन्होंने 139 कार्यक्रम सुने और कार्यक्रम इनको पसंद आए हैं। 5 अप्रैल से आकाशवाणी रामपुर ने अपने कार्यक्रमों में जो परिवर्तन किया है वो एक सराहनीय कदम है। कृषि जगत कार्यक्रम में भी परिवर्तन किया गया है। लोक मंजरी, आकाशवाणी गांव में भेंट वार्ताएं, अन्य परिवर्तन की गई, ये भी इनको पसंद आए हैं। हेलो फरमाइश का कार्यक्रम बढ़ाया गया है, ये भी इनके दिल को भाया है। आकाशवाणी रामपुर का प्रसारण FM पर कई बार बंद हो रहा है, क्या कारण है, इस तरफ ध्यान दें, ये इन्होंने लिखा है। साथ ही साथ कार्यक्रमों की सराहना की है लेकिन एक शिकायत है इनकी। वो शिकायत ये है कि जो हमारे फ़ोन इन प्रोग्राम होते हैं, हेलो फरमाइश, हेलो रामपुर, उसमें श्रोता नाम बदल कर कॉल करते हैं।
1: और हमारी समस्या ये है कि हम अभी तक इस समस्या को दूर कर पाने की कोशिश में कामयाब नहीं हो पाए हैं और श्रोता बराबर इस तरह से कर रहे हैं कार्यक्रम में सहभागिता की नाम बदल देते हैं। और कितनी बार रेणु इनसे अनुरोध किया है, आग्रह किया है कि मत बदलिए अपनी बल्दियत, मत बदलिए अपनी पहचान, मत बदलिए अपने रहने की जगह, आप जो हैं वही रहिए क्योंकि यही आपकी सच्चाई है। और कुछ श्रोता इस पर मान भी जाते हैं, कुछ नाराज भी होते हैं, कुछ ऐसा ना करने की कसम खाकर शामिल
0: बिल्कुल उसके बाद शामिल होते हैं। इससे असीम जी ये होता है कि एक तो कार्यक्रम में जो बातें होती हैं कि एक ही श्रोता से कहां तक बात की जाए
1: जी।
0: दूसरी बात ये होती कि जो हमारे नए श्रोता हैं वो नहीं जुड़ पाते
1: और हमारी मजबूरी ये हो जाती है, अगर कार्यक्रम रिकॉर्ड होता तो निश्चित रूप से हम आराम से उस आवाज को सुनते भी, पहचान में अगर आती तो उसको शामिल नहीं किया जाता। लेकिन जब लाइव प्रोग्राम कर रहे हैं तो इरफान खान साहब एट द स्पॉट डिसाइड करना, क्योंकि अनाउंसर, हमने पहले भी बताया कि कई जगह उसका माइंड डाइवर्ट रहता है, उसको आपकी पसंद का गीत भी बजाना है, उसको अन्य श्रोता जो आपके बात कॉल आनी है उससे भी बात करके उसको लाइन पर रखना है, तो इस बीच में ये जान पाना मुश्किल हो जाता है कि अभी किसकी आवाज़ थी। इसके लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए और वो वक्त हमें नहीं मिल पाता लाइव प्रोग्राम के दौरान, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे, देखें क्या हो सकता है। श्रोताओं से एक बार फिर हाथ जोड़कर विनती है कि ना करिए ऐसा।
0: ये अगला खत है गांधी समाधि रोड रामपुर से हाजी गफ्फार खान, रजिया खान और सिमरन खान का। कार्यक्रम पेश करने वालों को प्यार भरा आदाब। 10 मई आपका पत्र मिला कि महफिल सजाई असीम सक्सेना और मनोज कुमार जी ने बेहतरीन अंदाज में पत्र पढ़े और असीम सक्सेना जी ने पत्रों के शानदार अंदाज में जवाब दिए। झलकी कविता एक बीमारी अच्छी लगी, शब्दावली का कार्यक्रम भी पसंद आया इनको, बच्चों का कार्यक्रम कलियां, आसपास साहित्यिक पत्रिका सब इनको पसंद आए हैं। 11 मई को अपर्णा जी का आपके अनुरोध पर शानदार लगा, आंचल कार्यक्रम पसंद आया इनको। सरस्वती सिंह का हेलो रामपुर अच्छा लगा। स्वास्थ्य संदेश 12 मई का पसंद आया है। रोहित कुमार जी का गीतांजलि, दीक्षा का मन भावन, अखिलेश कुमार जी का सुबह सवेरे आपके अनुरोध पर लाजवाब था।
1: रेणु ने दिल ढूंढता है के लिए कुछ
0: दिल ढूंढता है के लिए भी इन्होंने लिखा है कि प्रोग्राम पसंद आता है लेकिन एक बड़ी कमी नज़र ये आती है, वो ये है कि अंजुम भाई, नवाबुद्दीन भाई, मुजफ्फर अली खान, आरिफ आज़ाद साहब, अनिल गंगवार जी, बेबी तबस्सुम, दिल ढूंढता है में उनकी गैर हाजिरी रहती है। तो उन सब से गुजारिश है कि दिल ढूंढता है में ज़्यादा से ज़्यादा अपनी शिरकत करें तो इन्हें पसंद आएगा। अच्छा लगेगा श्रोताओं के लिए,
1: हमें भी अच्छा लगेगा, हम भी इंतजार करते हैं और कई बार अनुरोध भी किया है श्रोताओं से कि सहभागिता दीजिए इस कार्यक्रम के लिए, अपने जज्बात हमारे साथ बांटिए, क्योंकि यादें तो सबके साथ हैं, बस कोई जाहिर करता है कोई

0: अपने दिल के भीतर छुपा कर रख लेता है। तो अगर आप उसे ये समझते हैं कि जाहिर किया जा सकता है, बहुत पर्सनल नहीं है, तो आप दिल ढूंढता है में शेयर कीजिए। क्योंकि दिल ढूंढता है में हम उन पुरानी चीज़ों को, उन पुरानी बातों को याद करते हैं जो आजकल कहीं मिसिंग है, नहीं है।
1: बिल्कुल
0: तो ये सिलसिला ज़रूर आप बनाए रखिएगा। हमारा
1: जी
0: भी उन सभी से अनुरोध है जिनका नाम गफ्फार खान साहब ने लिया, और उन सभी से अनुरोध है जो चाहते तो हैं लेकिन लिखते नहीं हैं, और उन सभी से अनुरोध है जो आगे लिखेंगे कि ज़रूर लिखिए।
1: साथी, सुरमई सफर आकाशवाणी का 90 साल का 110 मिनट का जो प्रोग्राम प्रसारित हुआ, ये इनको पसंद आया है। साथ ही श्रोता मंच में जीशान वारसी से बातचीत भी इन्हें पसंद आई है।
0: इसके लिए आपका हम धन्यवाद देते हैं कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आए। आकाशवाणी ने जो कार्यक्रम किया था 15 मई को, सफ़र 90 सालों का सुरमई सफ़र था, और इसको विभिन्न कलाकारों ने सुरमई बनाया, और हमारे श्रोताओं, हमारे वार्ताकारों, हमारे जो साहित्यकार हैं, जो कलाकार हैं, उनकी सहभागिता रही, उन आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष ये कार्यक्रम हुआ और सबने इसको पसंद किया। इसकी सफलता का श्रेय हमारे श्रोताओं को जाता है, कार्यक्रम में जो शामिल हुए उनको जाता है, कलाकारों को जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम को सुनने के लिए, पसंद करने के लिए।
1: ये श्रोता हैं तौफीक अहमद सिद्दीकी, अतीक अहमद सिद्दीकी, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी, हमजा सिद्दीकी और गुलशन साहिबा, ग्राम महेशपुर खेम, जिला मुरादाबाद से।
0: जी
1: 10 मई का इनको आपका पत्र मिला, कार्यक्रम बहुत पसंद आया है। खूबसूरत अंदाज में पत्र पढ़े गए और जवाब बहुत ही अच्छे अंदाज में दिए गए। 11 मई का सुबह सवेरे, 12 मई का गीत आपके नाम, 13 मई का आपके अनुरोध पर सुना, अच्छा लगा। 14 मई का मन भावन सुना, अनुराग जी ने अच्छा पेश किया, लेकिन शब्दावली बहुत धीरे धीरे पड़ी जा रही थी, ये थोड़ी सी इनकी शिकायत है। 15 मई का गीत गाता चल पसंद आया है, 16 मई हेलो फरमाइश सुना, रामचरितमानस गान श्रोता मंच हेलो रामपुर, और 90 वर्ष पूरे होने पर अनेकों कार्यक्रम सुने, सभी प्रस्तुतियां इनको पसंद आई हैं। आकाशवाणी रामपुर से बहुत पुराना रिश्ता है और ये रिश्ता यूं ही कायम रहे, ये इनकी दुआ है।
0: और आकाशवाणी रामपुर ये वादा करता है आपसे कि आपको आगे भी नए नए कार्यक्रम सुनने को मिलते रहेंगे। आकाशवाणी के जो 90 वर्ष हुए हैं,

0: निश्चित रूप से प्रयास करेंगे कि जब भी संभव होगा तो आपको कार्यक्रम में आमंत्रित किया जाएगा। ये अगली चिट्ठी मुझे दिख रही है, तहसील स्वार मोहल्ला पंजाबी कॉलोनी से आई है
1: लिखने
0: जी।
1: वाले हैं त्रिलोकीनाथ राठौर, अजय, विजय, विनय, विकास, आकाश, शिवांशी, प्रियंका और शिवाय राठौर।
0: जी
1: प्रोग्राम पेश करने वालों को नमस्कार। आपका पत्र मिला पिछले हफ्ते का, इन्होंने सुना, इन्हें पसंद आया, मन भावन भी इनको अच्छा लगा है। 4 तारीख का हेलो रामपुर सुना, अच्छा लगा। अपर्णा जी ने मधुर आवाज में पेश किया। 6 तारीख को गीत आपके नाम असीम जी ने पेश किया, बहुत अच्छा लगा। इसी दिन का गीत गाता चल सरस्वती जी ने अच्छा किया। सुनते सुनाते 90 साल कार्यक्रम का भाग दो सुना, बहुत अच्छा लगा। दूर दूर से श्रोताओं की बात सुनने को मिली, उनके विचार सुने, अच्छे लगे। 7 तारीख को आपके अनुरोध पर पसंद आया है 9 का हेलो फरमाइश। 13 तारीख को दिल ढूंढता है, असीम जी की मीठी आवाज़ में श्रोताओं के दिल की बात, बहुत ही अच्छा लगा। 15 तारीख को गीत आपके नाम सुरेंद्र कौर जी ने बहुत अच्छे अंदाज में पेश किया। रोहित जी का हेलो रामपुर इन्हें पसंद आया है। और साथ ही साथ ये एक चीज़ लिख रहे हैं कि आपका पत्र मिला का जो वक्त है वो कुछ ठीक नहीं लग रहा है, 10 बहुत जल्दी बज जाते हैं, कभी कभी प्रोग्राम सुनने को नहीं मिलता है, हो सके तो पत्र मिला का वक्त वो ही कर दीजिए।
0: इस संबंध में हमने श्रोताओं से अनुरोध किया था कि वो अपनी अपनी बात हमें लिखकर भेजें, और अगर बहुत सारे सुझाव मिलते हैं तो इस पर विचार अगले जब परिवर्तन होंगे उस समय हम ज़रूर करेंगे। फिलहाल 10 तो अपने ही समय पर बज रहे हैं, ये हमारे ऊपर है कि हम अपना रूटीन किस तरह से तय करते हैं। और इस समय भी देखो रेनू, बहुत सारी चिट्ठियाँ श्रोताओं की हमें लगातार मिल रही हैं। हम कोशिश करते हैं कि उन चिट्ठियों को शामिल करें, बहुत सारी चिट्ठियाँ रह भी जाती हैं, तो जब भी संभव होगा आपके अनुरोध को ज़रूर ध्यान में रखेंगे। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने विभिन्न कार्यक्रमों को सुना, फोन इन कार्यक्रमों में भी रेनू इन्होंने वो कार्यक्रम पसंद किया है जिसे आपने पेश किया था, इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी की तरफ से धन्यवाद, क्योंकि इनको बहुत सारी पेशकश अच्छी लगी है। अगली चिट्ठी किसकी है?
1: ये चिट्ठी है लाल मोहम्मद अंसारी जी की। लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद मुनाजिर अंसारी, अबरार हुसैन अंसारी, ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से।
0: जी
1: इन्हें पिछले हफ्ते का आपका पत्र मिला कार्यक्रम पसंद आया है। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर सभी स्टाफ और श्रोताओं को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। केंद्र से प्रसारित होने वाले सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं। 10 मई को सुबह सवेरे कार्यक्रम असीम भाई ने खूबसूरत अंदाज में पेश किया, बहुत से इतिहास की जानकारी दी गई, कुछ की पुण्यतिथि और कुछ के जन्म दिवस पर जानकारी सुनी, बहुत अच्छी लगी। इसी दिन आपका पत्र मिला भी इन्हें पसंद आया। लोक मंजरी कार्यक्रम के लिए कौन सी आईडी पर इन्हें संपर्क करना है ये पूछ रहे हैं, और बाकी सभी कार्यक्रम इनको पसंद आए हैं।
0: आपने एक बात लिखी है कि आपने कहकर टाल दिया कि कृषि अनुभाग बताएगा, तो हमने कृषि अनुभाग से पता किया है, और आपने लोकमंजरी के लिए ईमेल भेजा भी है, उसी ईमेल को आपको यूज़ करना है। और हम फिर से बता दें कि पत्र मिला AIR रामपुर के लिए जो आप चिट्ठियाँ भेजते हैं उसके लिए जिस ईमेल का उपयोग करते हैं वही हमारे लोकमंजरी कार्यक्रम के लिए भी है। आप फ़ोन करके लाइव प्रोग्राम के दौरान या फिर व्हाट्सएप के लिए एक नंबर जो दिया गया था 9410087876, फिलहाल ये नंबर अभी उपयोग में नहीं है कुछ समस्या के चलते, हम कोशिश कर रहे हैं कि वो समस्या दूर हो। आप पत्र के माध्यम से भी इन दोनों कार्यक्रमों में हिस्सा ले सकते हैं, लोकमंजरी में भी, कृषि शंका समाधान में भी। आकाशवाणी रामपुर द्वारा केंद्र निदेशक आप भेजिए, और आपकी मेल भी शामिल होगी, आपके खत भी शामिल होंगे, आपके अगर संदेश किसी और माध्यम से मिलते हैं तो वो भी। कार्यक्रमों को सुनने के लिए, पसंद करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, दुख होता है जब श्रोताओं की सहभागिता कम मिलती है किसी कार्यक्रम में। कार्यक्रम में अगर श्रोताओं की संख्या ज़्यादा होगी तो कार्यक्रम और रोचक और विस्तार ले पाएगा, इसके लिए एक बार फिर से श्रोताओं से हमारा अनुरोध रहेगा।
1: ये श्रोता हैं मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी।

0: खान, बिट्टू भैया, हिना कौसर और शबाना नाज, आपको हमारा प्यार भरा सलाम। हम सब आपके रेगुलर लिसनर हैं, सभी प्रोग्राम सुन रहे हैं, पसंद आते हैं। जैसे आपके अनुरोध पर गीत आपके नाम, गीत गाता चल, मन भावन, दिल ढूंढता है, हेलो रामपुर, हेलो फरमाइश, आपका पत्र मिला आदि। 16 मई का आपके अनुरोध पर जो सुनील सक्सेना जी ने पेश किया, बहुत अच्छा लगा गीत आपके नाम, अपर्णा जी का इनको पसंद आया है। गीत गाता चल अर्शी मसूद जी ने पेश किया, अच्छा लगा। व्हाट्सएप मैसेज शामिल नहीं किए जा सके हैं, वो इनको वजह हमने श्रोताओं को बता दी है।
1: हमने एक थोड़ा सा व्यवस्था में थोड़ा सा परिवर्तन किया है कि जो गीत गाता चल कार्यक्रम है जो व्हाट्सएप पर आधारित था, उसमें अभी व्हाट्सएप पर मैसेज हम नहीं ले पा रहे हैं। हमने श्रोताओं से आग्रह किया है कि वो इस कार्यक्रम के लिए भी अगर ईमेल के माध्यम से अपनी फरमाइश भेजें तो उनका स्वागत है। फिलहाल ये मानिए कि ये कार्यक्रम भी ईमेल पर आधारित है, और जब हम उस तकनीकी व्यवधान को दूर कर लेंगे, ज़रूर व्हाट्सएप संदेश पर आधारित कार्यक्रम फिर से प्रसारित होगा।
0: बिल्कुल, फिल्म संगीत से पर आधारित काफ़ी कार्यक्रम इनको पसंद आए हैं और काफ़ी लंबी फहरिस्त इन्होंने दी है। सुरेंद्र कौर जी हैं, आकांक्षा है, अखिलेश सक्सेना है, इन सभी के कार्यक्रम इनको पसंद आए हैं।
1: इन सब की तरफ से आपका शुक्रिया। और मोहन सिंह रावत जी की एक चिट्ठी मुझे दिखाई दे रही है, और एक बड़ी चिट्ठी है, रेनु पढ़ दीजिए।
0: बिल्कुल, इस हफ्ते एक से बढ़कर एक कार्यक्रम केंद्र से सुनने को मिले जो कि पसंद आए। लगता है आपने ठान रखा है कि श्रोताओं को कार्यक्रम में कोई खामी निकालने का मौका नहीं देना है।
1: ऐसा हम चाहते तो हैं करना, लेकिन फिर भी कमियां निकल जाती हैं, और ये हमारे लिए बेहतर है, अच्छा है, क्योंकि उन कमियों को हम दोबारा ना करें, इस तरफ हमारा ध्यान रहता है, और श्रोताओं का ये दायित्व भी बनता है कि वो कमियों की तरफ भी इशारा करें।
0: शुरुआत 15 मई को आकाशवाणी की स्वर्णिम यात्रा के 90 साल पूरे होने के अवसर पर आकाशवाणी रामपुर द्वारा आयोजित सुरमई संध्या से। सुरमई सफर के 90 साल शीर्षक से क्या बेहतरीन संगीतमयी सांझ सजोई थी आपने। फेसबुक लाइव के जरिए कार्यक्रम से जुड़कर ऐसा लगा कि हम भी आपके साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं। भजन गायक अरुण मोहन शांकेदार के भक्ति रस में डूबे भजन, तहरीम निषाद और नियाजी साहब की सुमधुर गजलें, हितु मिश्रा के मिट्टी के सुगंध लिए लोकगीत, सभी ने खूब समा बांधा और इस शाम को यादगार बना दिया। असीम जी और अपर्णा जी को स्टूडियो में कार्यक्रम संचालित करते हुए तो अक्सर सुनते हैं, लेकिन सजीव कार्यक्रम के दौरान श्रोताओं और दर्शकों के बीच 3-4 घंटे बांधे रखने की कला में भी आप निपुण हैं। कार्यक्रम देख सुनकर इस हुनर से परिचय हुआ। इस हफ्ते एक और शानदार कार्यक्रम 12 मई को आज के मेहमान के अंतर्गत रजा लाइब्रेरी रामपुर के निदेशक डॉक्टर पुष्कर मिश्र से विक्रांत चौधरी जी की बातचीत रही। किसी भी संस्थान का मुखिया यदि विजनरी है तो वो उस संस्थान को किस मुकाम तक पहुंचा सकता है, ये इस बातचीत से जाना। वर्तमान में डॉक्टर पुष्कर मिश्र जी के नेतृत्व में रजा लाइब्रेरी के विस्तार, स्कॉलर और आमजन के लिए लाइब्रेरी को और अधिक उपयोगी बनाने, पांडुलिपि, यहाँ की पेंटिंग्स, म्यूजियम आदि धरोहर और कलाकृतियों के संरक्षण के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं वो बेमिसाल हैं। समय समय पर गोष्ठियां, कार्यशाला और सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं, ये भी विशेष रूप से ध्यान खींचते हैं। फेसबुक पोस्ट में इस कार्यक्रम की सूचना प्रसारित की गई थी, जानकारी हो गई तो ज्यादा से ज्यादा श्रोता हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ सके। इसमें इमारतें बोलती हैं लिखा था और उद्घोषणा हुई आज के मेहमान के कार्यक्रम की।
1: इसका भी हम स्पष्टीकरण आपको जरूर देंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कार्यक्रम का भी शीर्षक होता है और उसका एक उप शीर्षक भी बन जाता है। तो आज के मेहमान तो वो क्रम था, मंगलवार को, दूसरे मंगलवार को रात 9:30 पर आज के मेहमान कार्यक्रम होता है। तो आज के मेहमान कार्यक्रम में जिस शख्सियत को हमने आमंत्रित किया था, उनका पूरा पूरा विजन रजा लाइब्रेरी की उन्नति के लिए है, उसको महफूज करने के लिए है, उसमें जो सामग्री है उसको संरक्षित करने की दिशा में है, इसलिए हमने उसको एक उप शीर्षक दिया, इमारतें बोलती हैं। और इससे दोनों ही प्रभावित नहीं हुए, बल्कि आज के मेहमान हमारे किस विषय पर बोलेंगे ये थोड़ा सा स्पष्ट करने का हमारा प्रयास था। अगर ठीक लगा तो आगे भी इस तरह की कोशिश जारी रहेगी, और अगर ठीक नहीं लगा हो तो रोक देंगे।
0: 13 मई को सुबह सवेरे में अखिलेश जी ने

0: फिंगरप्रिंट्स क्लोनिंग के जरिए होने वाले ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में बताया। ये इनको जागरूकता बढ़ाने वाली
1: बात लगी।
0: जानकारी लगी और ये लाभान्वित हुए हैं। सुबह सवेरे कार्यक्रम में एक दिन निश्चित कर साइबर फ्रॉड पर स्पेशल सेगमेंट भी ऐड कर सकते हैं। इसी कार्यक्रम में शहनाज रहमान ने आकाशवाणी से अपने जुड़ाव और इस माध्यम की उपयोगिता को बहुत खूबसूरती से बयान किया। 16 मई को सुबह सवेरे कार्यक्रम में बहुत दिनों के बाद सुनील सक्सेना जी को सुनकर इन्हें अच्छा लगा। आकाशवाणी के 90 साल के सफर पर उनकी बरेली के केंद्र कार्यक्रम अधिशासी गौरव सक्सेना जी से बहुत सारगर्भित और सार्थक बातचीत हुई। साथ ही 16 मई को श्रोता मंच में मीरगंज बरेली के जीशान वारसी जी से असीम जी की बातचीत सुनी, इनको पसंद आई है। और मुरादाबाद के श्रोता अयूब खान और उनके साथी जो जिन्होंने अनाउंसर्स को, ब्रॉडकास्टर्स को, प्रेजेंटर्स को सम्मानित किया, वो उसके लिए इन्होंने बधाई दी है।
1: आकाशवाणी देहरादून और नजीबाबाद में भी वो ये सम्मान कार्यक्रम कर चुके हैं। निश्चित रूप से ये जीशान वारसी साहब और अयूब खान साहब का दिल है कि वो कितने प्यार से चाहते हैं इस केंद्र को, इस केंद्र के कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ताओं को, और निश्चित रूप से उनके द्वारा सम्मानित किया जाना, श्रोताओं का प्यार मिलना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और इसके लिए हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। कार्यक्रम में आकाश रस्तोगी और रवि रस्तोगी भी आए थे, उन्होंने भी सराहना की और सम्मानित किया अपने उन प्रेजेंटर्स को जो उनको अच्छे लगते हैं। तो ये एक अच्छा प्रयास था श्रोताओं की ओर से, बहुत बहुत धन्यवाद उनका देते हैं और इस प्यार के लिए उनका शुक्रिया अदा करते हैं।
0: ये श्रोता हैं यवतमाल विदर्भ से संतोष खड़से और विनोद खड़से। आकाशवाणी के 90 वर्ष की पूर्ति के उपलक्ष्य में 15 मई को संगीत संध्या का आयोजन किया गया। इस विशेष कार्यक्रम का प्रसारण हुआ था। ये सुरीला कार्यक्रम हमें बहुत मनभावन लगा। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि हम स्वयं इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं। कार्यक्रम के सफल एवं यादगार प्रस्तुति एवं आयोजन के लिए आकाशवाणी रामपुर परिवार को हार्दिक बधाई और धन्यवाद। चिंतन कार्यक्रम में हीनता निवारण शीर्षक पर बहुत सुंदर एवं मार्मिक विचार सुनने को मिले, इन्हें पसंद आए हैं। स्वास्थ्य संदेश कार्यक्रम में त्वचा की देखभाल विषय पर बहुत सुंदर और स्वास्थ्यवर्धक जानकारी दी गई, इसके लिए बधाई और धन्यवाद। लोक रंग कार्यक्रम में विनय कुमार जी के गाए लोकगीत इन्हें पसंद आए हैं। मॉर्निंग हिट्स में नए गीतों को सुनकर मन तरोताज़ा हो गया। गौरव भारत देश के कार्यक्रम में महान पराक्रमी महिला स्वतंत्रता सेनानी गोदावरी पारोलेकर जी के स्वतंत्रता आंदोलन में किए गए योगदान पर प्रकाश डाला गया, सारे कार्यक्रम इनको ये पसंद आए।
1: और रेणु खास बात यह है कि बड़ी ताज़ा ताज़ा हवा का झोंका लेकर आई है ये चिट्ठी, क्योंकि आज सुबह ही कार्यक्रम प्रसारित हुए और हमारे इन श्रोता साथियों ने इतनी दूर से इन कार्यक्रमों को सुनने के बाद अपनी प्रतिक्रिया भी भेज दी। एक बार पुनः आभार आपके लिए कि आप कार्यक्रमों को सुनते हैं और अपनी बात हमें लिखकर भेजते भी हैं। विभिन्न कार्यक्रम आपको पसंद आए हैं, हम कोशिश करेंगे कि आगे भी ऐसे कार्यक्रम आप तक पहुँचाएँ जो आपकी कसौटी पर खड़े उतरे, आपको पसंद आए। ये अगली चिट्ठी किसकी है?
0: अगली चिट्ठी है नई बस्ती पतेई खालसा से बहारुल हसन सिद्दीकी, मोहम्मद आलम सिद्दीकी, यूसुफ सिद्दीकी की। लिखते हैं, आपके अनुरोध पर गीत आपके नाम, ये जो फरमाइशी कार्यक्रम होते हैं इसमें हमारी चिट्ठियां काफ़ी दिनों से शामिल नहीं हो रही हैं, साथ ही साथ इन्होंने श्रोता मंच में शामिल होने की इच्छा
1: जताई है। अब क्या करें, स्थिति यह है रेनू कि कुछ ही कार्यक्रम हैं पूरे महीने में और तीन कार्यक्रम कभी कभी पड़ जाते हैं, वरना दो ही कार्यक्रम रहते हैं, और श्रोताओं का प्यार है, उनकी चाहत है कि वो श्रोता मंच कार्यक्रम में आए, और कई बार समय की भी मजबूरी हो जाती है कि हम चाहकर भी श्रोताओं को नहीं बुला पाते, लेकिन कोशिश जारी रहेगी, जब भी संभव होगा, वादा तो नहीं करते लेकिन कोशिश करेंगे आपको इस कार्यक्रम में हम बुला पाएं, आमंत्रित कर पाएं, ये हमारे लिए भी सम्मान की बात होगी।
0: ये श्रोता हैं मोहल्ला बारातेरी महमूद खान रामपुर से।
1: इससे पहले रेनू एक बात मैं अपने श्रोताओं से कहती हूँ कि हमारे एक श्रोता हैं मुंबई से अनुबड़ जात्या शमसुल खान और अनुराज बेनारा, अब इन्होंने एक चिट्ठी भेजी है, लेकिन ये स्पष्ट नहीं हो रहा है कि आपके जो विचार हैं ये मनभावन कार्यक्रम के लिए हैं, क्योंकि पत्र मिला कार्यक्रम जैसा तो इसमें कुछ है
0: नहीं है।
1: तो अगर आप कार्यक्रम किसमें ये चिट्ठी भेज रहे हैं, अगर ये ऊपर स्पष्ट कर दें तो वो सही जगह पहुंचेगी।

0: पता सही होना बहुत
1: बहुत
0: जरूरी
1: जरूरी
0: है। तो
1: है।
0: अनुपम अजाता जी, अगर आप मनभावन के लिए ये चिट्ठी भेज रहे हैं तो ऊपर मनभावन जरूर लिखकर भेज दीजिए, ताकि जो कार्यक्रम प्रेजेंट कर रहा है उसको भी पता रहे, वरना ये चिट्ठी छूट
1: बिल्कुल,
0: जाती
1: कभी कभी ऐसा होता है कि जब पता सही नहीं होता है तो वो
0: है।
1: चिट्ठी छट्टे से रह जाती है।
0: जी,
1: ये श्रोता है मोहल्ला बारादरी महमूद खान रामपुर से, भाई रफत साहब, सईद भाई मंसूरी, राशिद भाई मंसूरी, असद भाई, अब्दुल अहद, फिरोज़ा मुस्कान और नगमा नाज मंसूरी। आपका पत्र मिला कार्यक्रम पेश करने वालों को हमारा प्यार भरा आदाब। रेडियो रामपुर के हम पुराने और नियमित श्रोता हैं, सभी कार्यक्रम दिल से सुनते हैं। शुरुआत सबसे पहले ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि रेडियो के प्रसारण के 90 वर्ष हो चुके हैं। आपको भी बहुत बहुत बधाई मुबारकबाद। रेडियो के नेटवर्क के लिए विभिन्न कार्यक्रम सुने, आकाशवाणी रामपुर से रेडियो दिवस के बारे में बहुत अच्छा लगा सुनकर इनको। रेडियो रामपुर के जो कार्यक्रम हमने सुने, शनिवार 16 तारीख को सुबह में सुनील सक्सेना जी को सुना, आपका कार्यक्रम इन्हें पसंद आया है।

0: ये इन्होंने
1: बिल्कुल क्यों नहीं ले पा रहे हैं, इसके बारे
0: बताएं।
1: में भी हम अपनी बात आप तक पहुंचा चुके हैं कि कुछ तकनीकी कमी उस माध्यम में, उस व्यवस्था में आ गई है कि हम व्हाट्सएप संदेश आपके पढ़ नहीं पा रहे हैं, वो संदेश हम तक पहुंच नहीं रहे। फिलहाल प्रयास किया गया है कि उस शंका का, उस समस्या का समाधान किया जाए और आगे जल्दी ही हम व्हाट्सएप संदेश शामिल करेंगे। फिलहाल जो कार्यक्रम अभी तक व्हाट्सएप पर हो रहा था, हमने एक ऑप्शन दिया है अपने श्रोताओं को, वो ईमेल के माध्यम से इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता दे सकते हैं। कार्यक्रम आपको पसंद आ रहे हैं? हाँ, ये है कि पिछले हफ्ते ज़्यादा कार्यक्रम प्रस्तुत नहीं कर पाए क्योंकि कहीं और व्यस्तता थी, आपने ठीक लिखा है, लेकिन कोशिश करेंगे, कोशिश यही रहती है कि अपने श्रोताओं से मिलने का जितना भी मौका मिले, ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले, उस मौके का लाभ उठाया जाए, उनसे बात की जाए, उनकी पसंद जानी जाए, उनको सुना जाए और उनको कुछ सुनाया भी जाए। तो यही प्रयास रहता है रफत साहब आकाशवाणी रामपुर का और हमेशा से रहा है। आप तो इस सफ़र में बहुत लंबे समय से हमारे साथ हैं, शुक्रिया आपका जो आप अपना ईमेल हमें भेजते हैं। एक दिल की बात कहें आपसे, अगर मुमकिन हो पाए तो इतना ज़रूर कीजिएगा कि जो आप टेक्स्ट लिखकर भेजते हैं, अपनी भावनाएं हमें लिखकर भेजते हैं, वो अंग्रेज़ी में होती हैं और कभी कभी स्पेलिंग नेट से आप लिखते हो तो इधर की उधर भी हो जाती हैं और पढ़ने में भी वो रवानगी नहीं आ पाती, अटक अटक कर पढ़ना पड़ता है। तो अगर हमारी सुविधा आप जानना चाहें तो अपना वो टेक्स्ट अगर आप हिंदी में लिखेंगे तो हमें पढ़ने में भी अच्छा लगेगा और आसानी भी रहेगी। ये हमारा एक अनुरोध है, वरना स्वागत आपके हर तरह से भेजे गए ईमेल का है। ये कोई बाध्यता नहीं है कि आपको अंग्रेजी में नहीं लिखना है, आप लिख सकते हैं, लिखिए, लेकिन अगर संभव हो, अगर हिंदी में आप लिखेंगे तो हम उसको और बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर पाएंगे। रेणु, श्रोताओं के जो मेल थे इस कार्यक्रम के लिए आज हमने विस्तार से शामिल किए। अनु बड़जात्या जी की जो भावनाएं हैं वो कम से कम पढ़ी तो जा सकती हैं क्योंकि एक श्रोताओं की जो भावना है वो इन 90 सालों में लगातार आकाशवाणी केंद्र के साथ जुड़ी है। जो 90 साल की यात्रा आकाशवाणी ने तय की है वो बिना श्रोताओं के सहयोग के संभव नहीं थी और 90 साल चुनौती भरे 90 साल पूरे कर पाना किसी भी संस्था के लिए अकेले तो संभव नहीं है जब तक उसके साथ उसके चाहने वाले न जुड़े। और हमारा ये सौभाग्य है कि हमारे साथ ऐसे चाहने वाले हैं जो सुबह से लेकर शाम तक हमारे साथ रहते हैं।
0: बिल्कुल,
1: सुबह से उनका जो रेडियो खुलता है या फिर आजकल तो मुट्ठी में सिमटाया है रेडियो, उनका मोबाइल खुलता है तो फिर देर रात तक साथ बना रहता है। अब ऐसे ऐसे श्रोता भी हैं जो दिन रात कान के पास उस मोबाइल को रखते हैं, नोट करते हैं। इरफान खान साहब उसी में शामिल हैं कि किस तरह से
0: सिलसिलेवार पूरी समीक्षा
1: ताज्जुब होता है हमें, नहीं सबको ताज्जुब होता है कि कैसे मुमकिन है इतना समय दे पाना, लेकिन है।
0: ये हमारे श्रोताओं का समर्पण है रेडियो के लिए, आकाशवाणी के लिए,
1: और ये समर्पण हमारे अन्य श्रोताओं का भी है क्योंकि देखो रेणु, किसी को भी सुनना आजकल कितना मुश्किल है। हम घर पे नहीं सुनते किसी की, आपस में नहीं बात करते, अपने रिश्तेदारों से बात करे हुए कितना समय बीत जाता
0: बिल्कुल
1: है।
0: और समय ये है, आजकल जो भागदौड़ का समय है उसमें किसी के लिए समय निकालना ये बहुत बड़ी बात है। श्रोता हमें समय निकालते हैं हमारे लिए, आकाशवाणी के कार्यक्रम सुनते हैं, समीक्षा लिखते हैं, जुड़े रहते हैं और भावनात्मक रूप से बहुत गहरे से जुड़े हैं, सुख दुख में शामिल होते हैं।
1: तो जरा पढ़कर सुनाइए कि जो हमारे श्रोता हैं अनु बड़जात्या और साथ में और नाम भी हैं तो क्या लिखते हैं।
0: ये श्रोता हैं अनु बड़जात्या, शमसुल और अनुराज बेनारा। गर्मी से खुद को बचाए रखें, गर्मी ने जीना बड़ा बेहाल किया है। इसी पर इन्होंने एक छोटी सी कविता हमें लिख भेजी है, आजकल मेरा गांव गर्मी से बहुत ही उबलने लगा, सुहानी सुबह से मचलती हुई शाम तक जलने लगा, सूरज थोड़ा सा तो रहम कर, पेड़ों की छाव नबिश नहीं किसी को, इंसान संग पशु भी तरसने लगा, पेड़ों का कत्ल कर देने से ऑक्सीजन भी कम मिलने लगा, अब तो आंखें खोल देना तुम, बिना पेड़ के देखो किस हाल में इंसान जीते जी मरने लगा, आने वाली बरसात में सब मिलकर पौधे लगाने की

0: मुहिम चला देना। समझ के इतना करोगे तुम, समझो नया जीवन नया गीत गाने लगा।
1: जीवन नया गीत जरूर गाएगा, और अगर किसी भी केंद्र के पास आप जैसे श्रोता हो तो वो गीत मधुर भी होगा, वो गीत उन मंजिलों तक ज़रूर हम सबको लेकर जाएगा, वो मंजिलें जहाँ सफलता है, जहाँ उम्मीदें हैं, जहाँ आशाएं हैं।
0: आशाओं पर जीवन चलता है, और हम भी उम्मीद करते हैं कि हमारे श्रोता जागरूक होकर समाज के लिए हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ेंगे और इस देश के समाज की उन्नति में अपना लगातार योगदान देंगे।
1: और ये जो 90 साल का जश्न इन दिनों हम अपने कार्यक्रमों के माध्यम से, विभिन्न आयोजनों के माध्यम से मना रहे हैं, आगे भी ये सफर इसी तरह से चलता रहेगा, क्योंकि बड़ा गर्व होता है आकाशवाणी से जुड़ने के बाद एक प्रेजेंटर के रूप में, एक श्रोता के रूप में। ये वो संस्थान है जिसने साहित्य कला संस्कृति को सहेजा है, तो क्यों ना उस बीते दौर की गरिमा को याद करने थोड़ा सा।
0: बिल्कुल।

श्रोताओं, आकाशवाणी के साथ आपका जो संबंध है वो संबंध और मजबूत हो, हम और आप सुनते रहें, सुनाते रहें।

0: और आकाशवाणी के कार्यक्रमों से हम जुड़े रहें। हम उन सभी बातों को पूरा करने की कोशिश करेंगे जिनसे आपको सूचना भी मिले, जिनसे ज्ञान में भी इजाफा हो, जिनसे आपका मनोरंजन भी हो। और आपका पत्र मिला कार्यक्रम में ज़रूर अगले हफ्ते हमें बताइएगा कि कार्यक्रम आपको कैसे लग रहे हैं। आपकी प्रतिक्रियाओं का हमेशा से स्वागत है। ईमेल के जरिए भी आप प्रतिक्रिया भेज सकते हैं। पत्र मिला AIR Rampur@gmail.com हमारा पता है। और साधारण चिट्ठियां भेजने के लिए भी आप केंद्र निदेशक आकाशवाणी रामपुर पिन 24490 का उपयोग कर सकते हैं। तो आज रेणु श्रोताओं के साथ रही, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और श्रोताओं आपका भी शुक्रिया कि आप 10 बजे से लगातार हमारे साथ बने रहे हैं इस कार्यक्रम में। तो अब इस कार्यक्रम को समाप्त करने की असीम को और
1: रेणु तिवारी को दीजिए अनुमति।
0: नमस्कार, नमस्कार।

आपका पत्र मिला। अभी श्रोता ये साप्ताहिक कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। 10:45 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए नीलम सक्सेना की लिखी हुई झलकी, जिन ढूंढा तिन पाइयां। प्रस्तुत करता है राम कुमार सक्सेना।

0: बहुत मुश्किल से मैंने तुम्हारे लिए होम ट्यूटर का प्रबंध किया है। खबरदार, जो तुम तीनों में से किसी ने भी इनके साथ कोई बदतमीजी की या शैतानी की। अरे सुनती हो?
1: अरे सुन रही हूँ ना जी।
0: हाँ मैं ऑफिस जा रहा हूँ, टीचर के आने का समय हो रहा है, जरा ध्यान रखना। अब मुझे कोई शिकायत सुनने को नहीं मिलने चाहिए। कैसी नालायक औलाद पैदा की है।
1: वही तो मैं कह रही हूँ, कैसी नालायक औलाद पैदा की है आपने।
0: क्या क्या कहा तुमने?
1: अरे कुछ नहीं, मतलब हमने कैसी औलाद पैदा की है।
0: ला हौल वला कुव्वत, कैसी बीवी पल्ले पड़ी है, मेरी जिंदगी नर्क बना दी है।
1: जी हाँ वही तो मैं कह रही हूँ, सबने मिलकर मेरी जिंदगी नर्क बना दी है।
0: ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं चलता हूँ।
1: अरे सुनो जी, वो ना मेरी नज़र ना थोड़ी कमजोर हो गई है, आज शाम को जल्दी आ जाओ तो मैं आपके साथ डॉक्टर को आँखें दिखाने चलूँगी।
0: दिन रात मुझे आँखें दिखाती रहती हो, हैं? उससे मन नहीं भरा जो बेचारे डॉक्टर को आँखें दिखाने चलोगी।
1: आपकी तो बात और है जी, डॉक्टर तो बहुत पढ़ा लिखा काबिल इंसान होता है।
0: अच्छा क्या मतलब है तुम्हारा?
1: नहीं कुछ नहीं जी।
0: बोलो कहना क्या चाह रही हो, हैं? मैं बेहद नाकाबिल, अनपढ़ और निकम्मा इंसान हूँ।
1: मैं क्या बोलू जी, आप तो खुद ही सब कुछ जानते हैं। खैर छोड़ो ये सब, शाम को आप चलेंगे ना तो मैं वो कांजीवरम वाली साड़ी पहनकर तैयार मिलूंगी आपको।
0: कांजीवरम? क्यों, वो शादी वाली साड़ी पहनकर तैयार मिलना?
1: सोच तो वही रही थी जी, लेकिन तीन तीन इतने बड़े बड़े बच्चे, सो थोड़ी सी शर्म आती है अब।
0: कोई सादा सी साड़ी पहनकर तैयार मिलना? डॉक्टर के यहाँ जा रही हो? हाँ कोई अपनी नुमाइश लगाने नहीं जा रही हो
1: जी? ठीक है अब तो आँखें दिखाने चलोगे ना?
0: जी नहीं, अगर तुम डॉक्टर को आँखें दिखाओगी तो वो तुमसे नाराज नहीं होगा क्या, हैं? तुम्हारा इलाज क्या हक करेगा?
1: तो क्या करूँ जी?
0: यही कि आँखें टेस्ट कराने चलूंगी।
1: तो क्या वो मेरी आँखें टेस्ट करेगा?
0: बिल्कुल करेगा।
1: फिर क्या वो टेस्ट करके बताएगा कि मेरी आँखें टेस्टी हैं या नहीं?
0: अरे बाबा, टेस्ट नहीं, टेस्ट चेक करेगा वो तुम्हारी आँखें। हाँ
1: अब इतना बुद्धू भी मत समझिए आप हमें, इतना तो हम जानते हैं कि चेक क्या होता है, चेक तो बैंक का होता है।
0: हे भगवान, ये क्या रचना है तेरी?
1: कौन रचना? वो पड़ोस वाली? अजय आपका उससे क्या लेना देना, आपकी बेटी की उम्र की है वो, बूढ़े हो गए हो लेकिन शौक नहीं बदले अभी तक। हाँ
0: अरे भगवान, अरे मुझे माफ कर दे, तुझसे तो बस बात करना ही बिल्कुल फिजूल है।
1: तो चीख क्यों रहे हो, बहरी थोड़ी हूँ मैं?
0: जानता हूँ, तभी तो जब कभी माँ से कोई बात करता हूँ तो सबसे पहले तुम्हें ही सुनाई देता है वो।

0: बेचारी तो तुम्हारे बात ही सुन पाती है। अरे अच्छा? आज भी देर हो गई, आज भी देर हो गई दफ्तर को।
1: अच्छा अब मैं चलती हूँ, अंदर जाकर शाम के लिए तैयार भी होना है।
2: अब महादेव जी का घर यही है क्या?
3: लगता तो यही है।
2: आप तीनों को पढ़ाने के लिए ही मुझे आपके पिताजी ने यहाँ बुलाया है।
1: नहीं तो आप क्या समझ रहे थे, बच्चों की माँ को पढ़ाने के लिए आपको यहाँ बुलाया है?
2: जी आपकी तारीफ
1: जितनी भी की जाए कम है सर जी। आप अपने ही मुंह से अपनी क्या तारीफ करूं? वैसे इन तीनों होनहार बच्चों की माँ मैं ही हूँ जी।
2: ओके ओके, हाउ आर यू चिल्ड्रन?
3: बेटर देन यू सर।
1: देखा आपने, तीनों के तीनों कितने इंटेलिजेंट हैं। रटा रटाया नहीं बोलते हैं, कुछ हटके करते हैं सारे काम।
2: हाँ जी बिल्कुल ठीक कह रही है आप, वो तो दिख ही रहा है।
1: अच्छा अब मैं भी चलती हूँ, मुझे भी तैयार होना है शाम के लिए। देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए। सर जी जरा ध्यान से मन लाकर पढ़ाइएगा।
2: अच्छा बच्चों, पढ़ाई आरंभ करने से पूर्व परिचय हो जाए, एक एक कर आप अपना नाम तथा कक्षा बताइए।
4: सर मैं अर्जुन, कक्षा 10।
5: सर मैं भीम, कक्षा 6।
6: सर मैं कर्ण, कक्षा 8।
2: ठीक है, मैं आपका नया शिक्षक चितरंजन दास। आज की कक्षा में सामूहिक रूप से आप तीनों के ज्ञान का स्तर जांच लेते हैं। अर्जुन सबसे पहले आप बताइए, ये करेला क्या होता है?
4: करेला सर
2: हाँ, बताइए। आप कक्षा 10 के विज्ञान के विद्यार्थी हैं, बहुत साधारण सा प्रश्न है आपके लिए तो।
4: हाँ याद आया सर, करेला करेला नामक सब्जी का अपभ्रंश है। ये खाने में अत्यंत कड़वा होता है, प्रायः बच्चे करेले की सब्जी को पसंद नहीं करते हैं, परंतु करेला पेट के लिए बहुत ही लाभकारी एवं गुणकारी होता है सर। हृदय रोगी को ना इसके रस का सेवन अत्यधिक लाभकारी होता
2: क्या,
4: है सर।
2: क्या क्या क्या क्या अब क्या कहा तुमने? मैं करेला नहीं करेला कह रहा हूँ।
5: तो क्या हुआ सर, आप दक्षिण भारतीय जिसे करेला कहते हैं उसे ही हम करेला कहते हैं?
2: यू आर रॉन्ग कर, करेला इज ए पार्ट ऑफ द फ्लावर।
5: यू आर 100% रॉन्ग सर, अर्जुन भाई बिल्कुल सही कह रहा है। जब कभी मम्मी करेले की सब्जी बनाती है मैं उसे छूता तक नहीं, रियली सर बहुत कड़वी होती है।
2: शांत रहो, इतना भी नहीं पता। अच्छा भीम तुम बताओ, पापा शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है?
5: पापी सर, पापी, पापा का स्त्रीलिंग होगा पापी।
2: क्यों भाई, पापी कैसे हो सकता है?
4: कैसे नहीं हो सकता सर, चाचा का चाची हो सकता है, दादा का दादी हो सकता है, और नाना का नानी हो सकता है सर, तो पापा का पापी क्यों नहीं हो सकता है?
2: अरे बड़े बुरे फंस गए चितरंजन, आज बड़े बुरे फंस गए।
5: अभी कहाँ सर, आगे आगे देखिए होता है क्या। हम सब भाइयों को तो सारे प्रश्नों के उत्तर पहले से ही आते हैं, हमें तो पढ़ने की आवश्यकता नहीं है।
2: बिल्कुल वजह भरवा रहे बरखुरदार। अच्छा भीम, ये जो तुमने किताब खोल रखी है उसे जरा स्पेलिंग सहित पढ़कर तो सुनाओ, क्या लिखा है?
5: यस सर, PUT PUT, BUT BUT, SUT HUT,
2: ओफो,
5: NUT NUT, CUT CUT।
2: बस करो, सब गलत पढ़ रहे हो।
5: क्यों सर जी?
2: ये PUT PUT होता है परंतु BUT BUT होता है और HUT HUT होता है।
5: क्यों सर जी, जब PUT PUT होता है तो BUT BUT ही हुआ ना?
2: नहीं बिल्कुल नहीं, इनका उच्चार अलग प्रकार से होता है।
5: मगर क्यों सर जी? देखिए UT से UT हो गया, जो कि सब शब्दों में लगा हुआ है, बस पहला अक्षर ही तो बदला हुआ है। तो हम सभी जानते हैं P से पा, B से पा, H से हा, ऐसे ना का उच्चारण होता है।
4: सर कर्ण कह तो बिल्कुल सही रहा है, अब आप भी मान ही
2: जाइए। कोई नहीं बोलेगा, बड़े आए शब्दों का विश्लेषण करने वाले, पता नहीं कैसे 10वीं क्लास में आ गए। अब ठीक है अर्जुन, तुम्हें बीच में टांग अड़ाने की बहुत आदत है ना, तो तुम बताओ साइक्लोन क्या होता है?
4: वेरी सिंपल सर, जो लोन साइकिल पे लिया जाता है ना उसे साइक्लोन कहते हैं।
2: क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या खूब उत्तर दिया है। साइक्लोन का अर्थ होता है चक्रवात।

0: जो वायु
1: चक्रवात, साइकिल पर लोन, ये सब अलग अलग बातें हैं सर, प्लीज इन्हें मिक्स मत करिएगा वरना वही कहावत सिद्ध हो जाएगी, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा और भानुमती ने कुनबा जोड़ा।
0: इसका मतलब ये है कि आप मुहावरों में पारंगत हैं।
1: जी सर।
0: ठीक है, तो फिर एक मुहावरा है, दो जून की रोटी, इसका क्या अर्थ हुआ?
1: ये तो बहुत ही आसान है सर, इसे तो भीम भी बता देगा।
0: भीम तो बता ही देगा, तुम बताओ ना।
1: सर इतने आसान से मुहावरे का अर्थ बताकर मैं क्या करूंगा, दसवीं का छात्र हूँ। चल भीम तू ही बता दे।
2: सर दो जून की रोटी का अर्थ हुआ, जो रोटी दो जून को खाई जाए उसे ही दो जून की रोटी कहते हैं सर।
1: साफ बात, देखा सर। मैं क्या कहता था, भीम सब बता देगा।
0: बहुत खूब, बहुत अच्छे, खोदा पाप और निकली चुईया।
1: कहा है सर? सर कहा है?
3: मुझे चुईया से बहुत लगता है सर।
1: और मुझे भी सर।
3: अच्छा सर, सर मेरी तो जान ही निकल जाती है, बताइए ना कहा है चुईया।
0: वाह तुम तो महावीर महाधनुर्धर अर्जुन हो ना, चुईया के नाम से ही डर गए।
1: सर मैं वो नहीं हूँ, मैंने तो आज तक धनुष बाण हाथ में नहीं लिया सर।
0: और तुम भी अर्जुन से कोई कम थोड़ी ही हो, तुम भी महावीर महापराक्रमी और महादानी हो का?
3: सर ये आपको क्या हो गया सर? हम वो नहीं है सर जो आप समझ रहे हैं, हम तो बच्चे हैं, मासूम बच्चे, हम वो महाभारत वाले नहीं है।
0: अच्छा तो तुम वो महाभारत वाले नहीं हो, तो ये भीम इतना भीमकाय क्यों है?
3: सर, are you okay सर? आप ठीक तो हैं? आपको अचानक से ये क्या हो गया सर?
0: ठीक हैं। अरे मैं तुम जैसे नालायक बच्चों को नहीं पढ़ा सकता, कदापि नहीं, मैं चला।
2: सर प्लीज ऐसा मत कहिए सर, पापा ने बहुत मारेंगे, घर से निकाल देंगे सर, प्लीज सर।
1: आप जैसा कहेंगे
2: वैसे ही हम करेंगे
1: सर, प्लीज सर, अब हम कुछ नहीं करेंगे।
2: हम आपको जाने ही नहीं देंगे अब। सर विश्वास कीजिए हम पर, हम अब कुछ नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे।
0: ठीक है जाओ, जाकर बैठो अपने स्थान पर। अब कर तुम बताओ, अगर तुम्हें मंत्री बना दिया जाए तो क्या करोगे?
2: सर मैं कुछ नहीं करूंगा, अभी अभी मैंने आपसे प्रॉमिस किया है सर।
0: अरे अभी नहीं, मंत्री बनने के बाद।
2: सर मैं मंत्री नहीं बनूंगा, मैं तो आपको मंत्री बना दूंगा चाहे कुछ हो जाए।
0: मान लो तुम्हें कोई जबरदस्ती मंत्री बना ही दे, तब क्या करोगे?
2: तब भी सर मैं कुछ ही नहीं करूंगा, जैसे और मंत्रीगण कुछ कार्य नहीं करते हैं, मैं भी कुछ नहीं करूंगा सिवाय विदेश यात्रा के।
0: अच्छा चलो छोड़ो ये, भीम तुम बताओ जानवर किसे कहते हैं?
2: सर जो जान भी हो और वर भी उसे जानवर कहते हैं।
0: गुड, वेरी गुड, कोई उदाहरण दे सकते हो?
2: जी सर, वो क्या नाम है उसका, क्या नाम है?
0: अर्जुन चलो तुम दो कोई उदाहरण जानवर का।
1: सर उदाहरणार्थ हम पति को जानवर कह सकते हैं। क्योंकि क्योंकि एक पत्नी के लिए ना उसका पति जान भी होता है और उसका वर भी।
0: उत्तम, अति उत्तम।
1: थैंक यू सर।
0: भीम अपने पिता का नाम बताओ।
2: महादेव।
0: केवल महादेव? नाम के आगे कुछ नहीं लगाते हैं क्या?
2: लगाते हैं ना सर, हरे हरे महादेव।
0: बहुत अच्छे, बहुत खूब, जीवन में खूब उन्नति करोगे।
2: जी सर।
0: कर तुम माँ की ममता का वाक्य बनाओ।
2: माँ की ममता अशुद्ध है सर।
0: अच्छा तो फिर शुद्ध क्या है?
2: मेरी माँ का नाम ममता है सर।
4: जी हाँ एकदम सच्ची कहा इसने, मैं ही ममता हूँ।
0: ममता जी आपके बच्चे तो बहुत ही बुद्धिमान है।
4: 16 ने सच्ची कहा है सर जी, और ऐसा भी ना है कि अंग्रेजी स्कूल में पढ़कर हिंदी का ज्ञान ना हो, सब आता है हिंदी में, वर्णमाला गिनती दिन महीने वार सब कुछ, ना मानो तो बूझ के देख लो।
0: हाँ, जी, जी जी जी जी, मैं सब कुछ पूछ चुका हूँ।
4: अरे पूछो तो, हमारे सामने भी तो पूछ कर देखो।
0: ठीक है तो ये बताओ कि ये कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष क्या होता है?
4: अरे इतनी सी बात, जे तो हम ही बता देंगे। जो लोग कृष्ण जी का पक्ष ले वे कृष्ण पक्ष वाले, और जो शुक्ल जी का पक्ष ले वे वो शुक्ल पक्ष वाले।
0: हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तभी तो मैं सोचूं बच्चे इतने होशियार कैसे हैं, पूरे के पूरे माँ के गुण हैं। बच्चे तो बच्चे, माँ सुभान अल्लाह,
4: और क्या।
0: हाँ, अच्छा एक बात और बताइए, ये कृष्ण जी तो समझ में आता है, परंतु शुक्ल जी कौन है?
4: अरे सर जी, शिक्षक होकर इतना भी ना पता? पंडित रामचंद्र शुक्ल और कौन, बहुत बड़े साहित्यकार हुए हैं अंग्रेजी के।
0: ओ, मैं तो भूल ही गया था, आप तो महाज्ञानी हैं। अरे रंजन, हमें अपने नए कॉमेडी सीरियल के लिए कहानी तथा पात्र दोनों ही मिल गए हैं। कब से ढूंढ रहे थे, क्या धांसु थीम है, सुनोगे तो तुम भी उछल पड़ोगे। चल अब ये तलाश तो पूरी हो, रखता हूँ। ओके, अच्छा मैं अब चलता हूँ।
4: ठीक है सर जी, कल फिर किस समय आएंगे आप?
0: क्या कल फिर आना पड़ेगा?
4: क्यों नहीं सर, आप ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, आना तो रोजाना ही पड़ेगा।
0: ओ हाँ, मैं तो ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, आना तो रोजाना ही पड़ेगा। तो फिर ऐसा करते हैं, कल से मैं डेली सपने में आया करूँगा।
2: तो फिर पक्का कल से डेली सपने

अभी आप सुन रहे थे झलकी। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 11 बजे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम धरोहर। आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सुनवा रहे हैं धारावाहिक जिंदगी के आईने में। आज इस धारावाहिक की कड़ी संख्या 4 आप तक पहुंच रही है।

जिंदगी के आईने में। सभी श्रोताओं को असीम सक्सेना का नमस्कार। जिंदगी सांसों की सरगम पर एहसासों की रवानी। समय इंसान को बहुत कुछ देता है, बहुत कुछ हाथों से फिसल भी जाता है। जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आता है जब हम कुछ पल ठहरते हैं। जिंदगी के आईने में बीते हुए लम्हों को निहारने की कोशिश करते हैं।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम में आज हमारे साथ ऐसा व्यक्तित्व है जिसकी अपनी पहचान है। निर्भीक निडर पत्रकार के रूप में उनकी अपनी ख्याति है। साहित्य और पत्रकारिता जगत को उन्होंने बहुत ऊंचाइयां दी हैं, प्रतिमान स्थापित किए हैं। रामपुर में पत्रकारिता के स्तंभ अगर गिने जाएं तो उसमें उनकी गणना होती है। हमारा सौभाग्य है कि आज स्टूडियो में हमारे साथ हैं श्री महेंद्र प्रसाद गुप्त जी। एक जाना पहचाना नाम, एक आदर्श व्यक्तित्व, एक जिम्मेदार नागरिक। महेंद्र जी, आपके किस रूप से बातचीत शुरू की जाए? मुझे लगता है कि शुरुआत करें सहकारी युग से। दूर दूर तक साहित्य जगत में भी और पत्रकारिता जगत में भी इसकी ख्याति रही है, एक युग का प्रतिनिधित्व करता है।
1: सहकारी युग का तो कोई विचार मन में नहीं था, लेकिन 1945 में मैं 8वीं कक्षा का छात्र था। मेरे अंग्रेजी के अध्यापक थे अशरफ साहब, उनको मैंने देखा कि वो मुस्लिम लीग का बैच लगा के आते थे। वो वहां से मेरे मन में हलचल और उद्वेलना ये सब पैदा होने शुरू हो गई। उन्हीं दिनों में मेरे हाथ कुछ ऐसी पुस्तकें लगी जिनमें से मैं एक का जिक्र कर दूं, वंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय
0: जी
1: की आनंद मठ,
0: वंदे मातरम जिसकी रचना है।
1: तो उसको मैं क्लास में बैठकर पढ़ा करता था, डेस्क के नीचे रख, डेस्क के ऊपर कोर्स की किताब, उसके नीचे बंकिम की पुस्तक, और पढ़ता था और क्लास में ही उबलता रहता था मैं। तो अक्सर आप ये देखिए, मैं इसको ईश्वर की और अपने बड़ों की कृपा मानता हूं, उन्होंने डांटने के लिए, क्या पढ़ रहे हो तुम? इनके साहब, जो मैं पढ़ रहा हूं मुझे पढ़ने दीजिए, आप ये देख लीजिए कि जो आप पढ़ा रहे हैं वो मैं पढ़ रहा हूं या नहीं पढ़ रहा हूं। तो उन्होंने जो पढ़ाया था इंग्लिश का उसमें से पूछ लिया, मैंने तुरंत उत्तर दे दिया, क्योंकि वो पाठ मेरा पहले से पढ़ा हुआ होता था। अब मुस्लिम लीग का एक व्यक्ति और कितना उदार हो सकता है, ये सोच के मैं आज उनको प्रणाम करता हूँ। उन्होंने बजाय मुझसे क्रुद्ध होने के, डिबेट प्रतियोगिता में मुझे खड़ा कर दिया बोलने के, और उसमें नवाब रामपुर की स्टेट का एजुकेशन मिनिस्टर वहां मौजूद
0: जी,
1: उसमें एक्सटेम्पोर बोलने के लिए मुझे खड़ा कर दे, वो भी इंग्लिश में, 8वीं क्लास। यहाँ से मेरे मन में ये हुआ कि भाई जब वंकिम लिख रहे हैं तो मुझे क्यों नहीं लिखना शुरू करना चाहिए। उन्हीं दिनों में यहाँ एक साप्ताहिक पत्र हाथ से लिखा हुआ अक्सर मुझे देखने को मिलता था, अच्छा लगता था बहुत, और उससे भी उबाल आता। उस पत्र के संपादक के दफ्तर में पहुंच गया, उनका जगदीश रस्तोगी नाम था। तो 8वीं क्लास का छात्र, 16 साल का, 15 साल का, और जब उसने कहा कि मैं लिखना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा चाय पियो और चले जाओ यहाँ से। मैंने उनकी चाय छोड़ी और मैं चला आया। वो दिन था कि एक मन में भावना सी पैदा होने लगी। तो लिखने के मौके तो नहीं मिले 8वीं 9वीं तक, 10वीं में आके नवभारत टाइम्स और हिंदी के एक दो पत्र पढ़ने को मिलते थे, उनमें कभी कभी अपनी टिप्पणियां में भेज दिया करता था, और मुझे खुशी है कि वो प्रकाशित होती थी। इसके बाद धीरे धीरे किसी तरह से इंटर हमने पास किया। हाई जब बीए में हम आए तो वहाँ दिमाग को खुरेदने वाली बहुत सारी घटनाएं होती थी। वो अब जैसे एक बार उर्दू एसोसिएशन का प्रोग्राम हुआ, मैं हाल को खूब सजाया गया, मैं हिंदी, उस पर हमें एतराज नहीं था, मैं हिंदी एसोसिएशन का प्रेसिडेंट था, और प्रोफेसर भोलानाथ बरेली डिग्री कॉलेज में बड़े वरिष्ठ और बड़े योग्य व्यक्ति थे, उनको मैंने बुलाया था, वो आ गए थे बिना पैसे लिए, उनका भाषण था। तो मैंने प्रिंसिपल को कहा, मैंने कहा कि ये आप हमारे हाल को हमारे प्रोग्राम में कुछ थोड़ा सा तो सुसज्जित कराइए। नहीं, बोले ऐसे ही होगा। खैर वो हो गया, मैंने भोलानाथ जी को मैंने बता दिया कि यहाँ ये परिस्थिति। बोले चिंता मत करो, तुमने मुझे बुलाया है, हाल को सुसज्जित देखने को थोड़ी बुलाया है। इसके बाद एक और व्यक्ति उस संगठन के जिस पर सरकार की कोप दृष्टि थी, थे वो विद्वान, मैं उनको बुलाना चाहता था, और प्रिंसिपल हमारे, उनसे मैं मिलने के लिए गया, शकूर साहब थे, उनको मैं पुनः स्मरण करके अपना सर नवाता हूँ। उनसे मैंने कहा, बोले महेंद्र कैसे आए? मैंने कहा उनको कि मैंने कहा देखिए हमारा एक कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में मैं इस व्यक्ति को बुलाना चाहता। किस संगठन से है? मैंने कहा सरकार विरोधी संगठन। तो आप देखिए, मैं उस घटना को जीवन भर नहीं भूल सकता। उस हमारे प्रिंसिपल ने एक मिनट मस्तक पर उंगली रखने के बाद मौन धारण कर लिया और फिर जो मुंगली हटी एक तो बोले बताओ कौन है, नाम बताया मैंने, बोले बुला लीजिए, मेरी जिम्मेदारी, लेकिन शर्त यह है कि उस फंक्शन को मैं प्रिसाइड, क्योंकि मैं ना बोल सकूं, थोड़ा सा आग होती थी मेरे बोलने में। उन्होंने प्रिसाइड किया, लेकिन संयोजन के लिए तो उन्हें मुझे ही बुलाना था, मैं संयोजन में अपने खड़ा हुआ, मुझे जो कुछ कहना था मैंने कह दिया। तो ये सब घटनाएं धीरे धीरे धीरे धीरे मुझे पत्रकारिता की ओर ले आई, और बीए में रहते रहते मैंने नवभारत टाइम्स को अपना संवाददाता बनाने के लिए प्रार्थना पत्र भेजा। डेढ़ साल तक उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया उसका, डेढ़ साल तक मेरे समाचार छापते रहे। डेढ़ साल के बाद देखिए आपका कितना कठिन होता था उस समय संवाददाताओं का चयन। लिखा 6 महीने आपको ट्रायल देना होगा। अच्छा। 6 महीने ट्रायल देने के बाद उन्होंने मुझे बना दिया, लेकिन मुझे उससे संतुष्टि नहीं। 1955 में मैंने एक इंग्लिश पत्र टाइम्स ऑफ इंडिया को अपना आवेदन भेजा, उन्होंने मुझे अपना संवाददाता बना दिया। और 1955 से 1960 के बीच टाइम्स ऑफ इंडिया तो था ही, नेशनल हेराल्ड, नॉर्दर्न इंडिया पत्रिका, और ये पायनियर, नेशनल हेराल्ड, नॉर्दर्न इंडिया पत्रिका और टाइम्स ऑफ इंडिया, ये चार पत्रों को,
0: ये देश के

0: के प्रमुख समाचार पत्रों में गिनती थी।
1: 1967 आया
0: जी जी,
1: तब पीटीआई को मैंने अप्लाई किया, उन्होंने, यह मेरा सौभाग्य रहा कि तुरंत बना दिया, और 96 में सब पत्रों ने सब जिलों से अपने अपने संवाददाता हटा लिए थे, मुझे भी हटा लिया गया, लेकिन ये पीटीआई जो है वो आज तक में।
0: एक लंबी यात्रा है और एक क्रांति के साथ आपने इस यात्रा का आरंभ किया। कोई भी काम हम करते हैं या कोई भी नाम अपनी किसी रचना को देते हैं, एक सोच रख, नाम आपने दिया सहकारी युग, क्या सोच रही है?
1: सोच सिर्फ इतना था कि मैंने सबसे पहले जो अपना आवेदन रजिस्ट्रार को भेजा उसका नाम इंसान रखा था अपने पत्र का नाम, तो वहां से उत्तर आ गया कि इंसान नाम का पत्र है, कोई दूसरा नाम।
0: अच्छा अच्छा।
1: एक आध और भेजा, इसी तरह के उत्तर आते रहे, तो मैंने कहा कुछ बेतुका सा नाम रखो, सहकारी युग भेजा, वो मंजूर हो गया, मंजूर हो गया, हमने उस नाम से शुरू कर दिया।
0: आपने महेंद्र जी वो दौर भी देखा जब देश गुलाम था और आप साक्षी रहे हैं देश की आजादी के भी, कैसी स्थिति थी? अगर रामपुर की बात करें, आजादी पाने से पहले किस तरह यहाँ पर क्रांति की सुगबुगाहट थी, कौन कौन आए, क्या कुछ यादें आपके जहन में?
1: हाँ, मुझे याद है, देखिए प्रोफेसर मुकुट बिहारी लाल
0: जी,
1: आज नाम नहीं लेते रामपुर के लोग, और उसमें मैं अपने को गणना करके कहता हूँ कि हम लोग बड़े एहसान फरामोश, जिन्होंने गांधी हमारा मालवीय के साथ रहकर जेलों में रहकर इतना तपस्या की कि आज उसके उदाहरण आपको नहीं मिलेंगे। एक और नाम सुरेश राम भाई, गांधी जी के साथ रहे, जेलों में रहे, अंत में यहाँ रामपुर के एक वैश्य परिवार के वो व्यक्ति थे।
0: अच्छा।
1: गांधी जी ने उनसे कहा कि तुम अब शादी कर लो भाई, इनकार किया एक आध दफा, उनका नहीं, मैं आदेश देता हूँ कि तुम्हें करना, ठीक है आदेश है तो मानेंगे आपकी बात, लेकिन तुम्हें एक हरिजन लड़की से शादी करनी है, बोले ये भी मानूंगा, और मैं उनकी पत्नी से भी मिला हूं, और वो तो मेरे पास प्रेस में आके, अगर उनको रामपुर आना है तो प्रेस में आके बैठना, साक्षात्कार देना, उसका प्रकाशन मैं बराबर करता था। एक और थे, मैंने दो नाम बताया
0: जी जी,
1: सतीश चंद्र गुप्ता।
0: अच्छा।
1: बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में वो छात्र थे, डॉक्टर राधा कृष्णन उस समय कुलपति थे, तो मुझे घटनाएं सब सुनाया करते, मैंने छापा भी है, बोले एक दिन वो अपना भाषण दे रहे थे, तभी 1942 में गांधी ने कहा कि अब मरो या करो, और वहीं उन्होंने अपना व्याख्यान जो था बंद कर दिया, तो बोले हम लोग उठे सब और पूरा प्लान बना लिया कि किस तरह से हमें आजादी की लड़ाई में योगदान देना है, और उस सतीश चंद्र गुप्ता को हवाई जहाज उड़ाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया रामपुर से। फिर 45 में आता हूँ, मैंने उनको यहाँ जो हमारी अब पुरानी तहसील है
0: जी जी जी,
1: इसके बाहर उस वक्त कचहरी थी, उसके बाहर रस्सियों से बंधे हुए जितने भी लोग थे उनके बीच में खड़े हुए देखा, तो उस श्वेत वस्त्रधारी और अत्यंत गंभीर धीर व्यक्ति को इस तरह से बंधे हुए देखकर मैं फिर से उबल पड़ा, और मैंने धीरे धीरे मालूम करना शुरू किया कि भाई ये कौन है, ये कौन है, और करते करते करते उनके घर में पहुंच गया जहाँ उनके माता पिता स्वाभाविक था रो रहे थे, खड़े होकर देखा, देखते रहे, लेकिन लेकर आए प्रेरणा कि इनके पद चिन्हों पे हमें भी चल। ये तीन नाम तो है ही सामने,
0: बहुत सारे साक्षात्कार भी आपके यादगार साक्षात्कारों में होंगे, तो कौन कौन से ऐसे व्यक्तित्व थे जिनसे आपका साक्षात्कार हुआ और उनके बारे में, उनकी कृतियों के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में आपको जानने का मौका मिला?
1: मैं अगर कहूं कि मैं बड़ा असभ्य था अपने लेखन में तो ये गलत। सबसे पहला पत्र 1957 में मैंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को लिखा और उनको लिखा कि आप तो जनतंत्र के बड़े समर्थक और उसके झंडा बरदार हैं, आप सब बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, ये रामपुर छोटा सा शहर है, क्या यहाँ नहीं आ सकते? ज्ञान मंदिर का उस वक्त में जनरल सेक्रेटरी था
0: जी जी।
1: अरे साहब, उनका उत्तर आ गया, मैं आ रहा हूँ। वो आए इंस्पेक्शन हाउस, पहले किले में था, उसमें वो ठहरे हुए थे, तो मेरे साथ जो लोग थे, कृष्ण शरण आर्य, राम भरोसेलाल भूषण
0: जी जी,
1: राम भरोसेलाल और ये सब बड़े अच्छे भले राजनेता, हम सब ने ये सोचा औपचारिकता वश उनको चल के नमस्कार करना है। जैसे ही हम पहुंचे हैं उनके कमरे में, ये बड़ा यानी उनका एक विचित्र सा रूप सामने आएगा आपके, तो उन्होंने कहा कि तुम ज्ञान मंदिर के लोग हो, मुझे धोखा दिया गया, जिस वेशभूषा के लोग उनके सामने थे, बोले ये लोग कभी देशभक्त हो ही नहीं सकते। हम सब मौन। मैंने कहा मेरे वस्त्र तो खादी के नहीं है जिन पर आप आरोप लगा रहे हैं। बोले आप किस पार्टी से हैं? मैंने कहा मेरा किसी पार्टी से संबंध। बोले तुमसे ज्यादा खतरनाक कोई नहीं हो सकता। मैं मौन होके नीचे को सर लटका लिया। तो खुद ही उन्होंने उसको पूरा किया, क्योंकि आज के नवयुवक को अगर राजनीति से सामीप्य नहीं बना पाता तो ये उसका देशद्रोह माना जाना चाहिए। ये उनका उत्तर था। मेरे पत्रों को, मेरे लेखों को देख के आप भी देखिए, एक बहुत बड़े साहित्यकार बीबीसी वॉइस ऑफ अमेरिका पर डॉक्टर लक्ष्मीनारायण लाल, उनका एक दिन पत्र मेरा जाता था उनको, एक दिन उनका एक पोस्टकार्ड मेरे पास आया। बोले महेंद्र मैंने तुम्हें देखा नहीं है, तुमने मुझे देखा नहीं है, तुम मुझे नहीं जानते लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ, और उस जान पहचान, उस जानने के आधार पर काम सौंप रहा हूँ। मेरा बेटा पीसीएस है आनंद वर्धन, उसके लिए रामपुर से एक प्रस्ताव आया है एक लड़की का, उस लड़की को तुम देखो और अगर तुम अप्रूव करके लिख दोगे मुझे तो मैं उसको मान लूं। शायद मेरे
0: बहुत
1: लिए
0: बड़ी जिम्मेदारी,
1: इतना बड़ा पुरस्कार है भैया,
0: बिल्कुल
1: बहुत बड़ा पुरस्कार है। वो लड़की आपके आकाशवाणी पर क्योंकि आती थी, नाम ले लेता हूँ, अनुपम श्रीवास्तव, उसको मैं अच्छी तरह से जानता था और जानकारी के, और जो मैंने लिखा है तो रिश्ता करने के लिए आए थे वो, और ये भी लिखा था उन्होंने कि जब दिन मैं रिश्ता करने आऊंगा तुम्हारी स्वीकृति पर उस दिन मेरे लिए सभा करना, 10,000 लेता हूँ, 10,000 दे के जाऊंगा तुम्हें।
0: क्या बात।
1: लक्ष्मीनारायण लाल आए, विष्णु प्रभाकर पढ़ते थे, टिप्पणियां देते थे स्वयं। एक दिन हमने यहाँ रिश्ता किया शहर में, मेरे दामाद हैं रवि प्रकाश, वो कुछ नहीं, मैं तो बिल्कुल यानी कुछ नहीं कमाया कभी, वो शख्स और उनके पिताजी और उनका परिवार अगर पहाड़ है तो मैं चूहा हूँ आर्थिक दृष्टि से। मेरे पत्र को देखकर वो एक दिन पिताजी के साथ मेरे पास आए और उनके पिताजी ने कहा कि इसके लेख तुम्हारे अखबार में छपे, इस आग्रह के साथ में आया, लेख लिखे तो क्या कहने उनका।
0: बहुत बढ़िया।
1: बस वहां से एकदम उन्होंने कहा, मुझे ये ऐसा लगा जो उनके लेख आते थे कि ये व्यक्ति ना तो इस बात को मानता है कि किस बिरादरी का हूं मैं, और ना ये मानता है कि मुझे पैसा चाहिए। मैं अपनी बेटी का फोटो उनको दिया, कुछ सर्कमस्टेंसेस, कुछ परिस्थितियां ऐसी आई कि उन्होंने तुरंत मेरे पास कहला के भेजा कि मैं आ रहा हूं। आए, बोले हम रिश्ता मंजूर है लेकिन एक शर्त है, उन्होंने कहा मेरी जो इसकी बारात आएगी उसमें 1,000 लोग होंगे, उन्हें सिर्फ खाना खिलाना है, उसके अतिरिक्त अगर तुमने एक रुमाल भी दिया दहेज में तो मैं रिश्ता कैंसिल कर दूंगा। इतनी बड़ी बात, ये कलम की देन है, कलम जिसमें सत्य होना चाहिए वो अगर है तो क्या क्या ना मिल जाए।
0: महेंद्र जी, आपको आपके बचपन की तरफ लेकर जाना चाहेंगे पुरानी स्मृतियों में। कब जन्म हुआ, कैसा पारिवारिक परिवेश रहा, किस तरह की आपको अपने परिवार से सीख मिली, किस तरह का माहौल था?
1: 23 अगस्त 1931 को मेरा जन्म हुआ। बेहद गरीब, एक जोड़ी कपड़ा होता था, दूसरा सिलवाने का जब भी कह

0: और शाम को 7 बजे लौट के आती थी। मैं उसमें बैठ गया, मुरादाबाद पहुंचा किसी तरह से उस जुलूस तक, उस जुलूस पे जिसमें नेहरू जी को जाना था, उनके बिल्कुल उनकी बग्घी तक पहुंचने के बाद स्वयंसेवकों ने हटाया। बोले मैंने कहा ना हटना नहीं है। बोले क्या चाहते हो? मैंने कहा नेहरू जी को नमस्कार करूंगा। जैसे वो आए मैंने कहा नमस्कार नेहरू जी, उसका जवाब मुझे मिला। उसके बाद हम घिसकते रहे, फिर एक दूसरा तीसरा, बड़े बड़े नेता जितने भी रामपुर में आए किसी को छोड़ा नहीं मैंने बातचीत की। आप देखिए मैं आपको बताता हूँ, एजी खेर आत्माराम गोविंद खेर यहाँ यूपी असेंबली के अध्यक्ष थे, स्पीकर थे, रामपुर आए। हमने क्या ज्ञानेंद्र इनको आना चाहिए, स्वीकृति दे दी। फिर जो दूसरे विचारों के लोग थे, राजनीतिक विचारों के लोग, उन्होंने उनसे कहा कि ये तो इस इन विचारों का है। उनका मन तो बदला लेकिन वो वहां आ गए और छत पर था ज्ञान मंदिर, और वहां आकर उन्होंने कहा कि भाई मैं तो हार्ट का पेशेंट हूं, मैं छत पर नहीं चलूंगा। तो हमारे यहाँ मैं नाम आज उनका बड़ा श्रद्धा के साथ लेता हूँ, राम भरोसे लाल भूषण, जो उन विचारों के थे जिन्होंने उनको आने से रोका था। उन्होंने कहा कि आप छत पे ना चढ़ गए, हरगिज ना चढ़िए, और झुक कर खड़े हो गए, बोले चढ़ जाइए मेरी पीठ। वो चढ़ गए, पीठ पर चढ़ा के उनको ऊपर ले गए। ज्ञान मंदिर का भवन आज अगर आपकी नजर पड़ा हो तो उसकी कीमत 1 करोड़ है। सन 55-56 में जब मुझे मालूम हुआ कि ये खाली होने वाला है, मैंने एप्लीकेशन दे दी कि इसको ज्ञान मंदिर को अलॉट कर देना चाहिए। जितने कलेक्टर थे उसमें, एबी मलिक से लेके शिवराम सिंह, उषा चतर, सब ने कहा कि महेंद्र तुम पछताओगे, ये तुम्हारे नाम हम अलॉट कर देते हैं, इसको ले लो। मैंने कहा ना, आप ज्ञान मंदिर के नाम कीजिए, वही मुझ पर एहसान होगा। और उन्होंने वो किया, और कमलापति त्रिपाठी आए, शिक्षा मंत्री थे उस वक्त और बहुत बड़ी हस्ती थी। आज शिक्षा मंत्री का कोई महत्व नहीं है, लेकिन उस वक्त बड़ा पूरा जितना ज्ञान मंदिर के नीचे का सड़क थी सब वो भरी हुई थी, छत सब भरी हुई थी। और वहां पर प्रसन्न होकर उन्होंने कहा कि मैं इस संस्था को 250 रुपए सालाना दूंगा। आपको कुछ नहीं लग रहा है कि 250 रुपए क्या होते हैं, लेकिन ये
1: उस दौर में 250 रुपए
0: 55 रुपए के, और वो भी गवर्नमेंट के ग्रांट। हम प्रसन्न होकर नीचे आ गए। तो उससे पहले रजिस्ट्रेशन के लिए मैं अपनी कार्य समिति में जब प्रस्ताव रखता था और 27 रुपए उनसे मांगता था तो कहते थे 27 रुपए हमारे पास नहीं है। मैं अपने पैसे से वहां गया, मैंने रजिस्ट्रेशन कराया, और जब लोगों ने कहा कि भाई अब रजिस्ट्रेशन कराने जाओ, मैंने कहा आपके पास तो 27 रुपए नहीं है। मैंने कहा रजिस्ट्रेशन हो, वो ग्रांट आज तक मिलती है।
1: महेंद्र जी आज उस दौर को याद करते हैं तो निश्चित रूप से गर्व का एहसास होता है, लेकिन जब वर्तमान दौर को देखते हैं तो अब ना साहित्य के प्रति उतना रुझान है ना उतना समर्पण है, तो दिल को एक पीड़ा, एक कसक जरूर होती होगी। क्या लगता है क्यों ये दौर बदल गया?
0: बड़ा अच्छा प्रश्न किया है आपने, और मैं आपको बहुत पीछे ले जाता हूँ। कन्हैया लाल नंदन का नाम आपने सुना?
1: जी जी।
0: कवि सम्मेलन में ये लोग आया करते, उनके साथ उमाकांत मालवीय का, ये नाम भी सुना है?
1: बिल्कुल।
0: तो ये लोग आए हुए थे, मुझे मेरे प्रेस से मेरे मित्र उठाकर ले गए कि इन लोगों से मिलने चलते हैं। तो नंदन जी से मैंने प्रश्न किया, मैंने कहा नंदन जी ये बताइए कि आप जो कुछ लिख रहे हैं आजकल उसका किसी प्रकार से परिवर्तन समाज में दिखाई नहीं देता, उसका कोई रिएक्शन नहीं दिखाई देता, और लोग जिस दिशा में चलना चाहिए वो नहीं दिखाई देता। जिस तरह से आजादी से पहले क्रांति के लिए लोग लिखा करते थे उसका असर होता था, वो खामोश हो गए। उमाकांत मालवीय ने अपनी आस्तीनें चढ़ाकर और ये कहा, मैं जवाब देना चाहता हूँ। बोले तुलसी को आज तक हम पढ़ते हैं, याद करते हैं, नमन करते हैं, उसका कारण क्या था? उनकी तपस्या, उनका त्याग। उसने झूठे खाने के ढेरों में से अपना खाना निकाला है और इस प्रकार से पेट भर भर के लिखा है। आज का साहित्यकार लेखक त्याग, अपने अपने त्याग से दूर है। ये वही मैं समझता हूँ आज कि अगर कुर्बानी नहीं करता तो आदमी क्या कर सकता। 1974 में राज्यपाल महोदय आए, डॉक्टर एम चेन्ना रेड्डी, सब पत्रकारों ने मुझसे क्या किया, भाई इन्हें चाय पे आप बुलाइए। मैंने कहा रामपुर भूखा है, आपने क्या कुर्बानी की है रामपुर की भूख को मिटाने के लिए? तो मैंने कहा मत बुलाओ इनको, क्या खिलाओगे तुम? बोले बुलाओ। एकदम दिमाग में मेरा आया कि इनको क्यों ना भुने हुए चने कुल्हड़ में चाय इनको खिलाई जाए। सब लोग एतराज करते रहे। मैंने कहा मेरी शर्त यही है कि मैं अगर कलेक्टर से और कमिश्नर से कहूंगा कि आप इनको बुलाइए, हम बुलाना चाहते हैं, तो इस शर्त पर आएंगे। सब लोग तैयार हो गए, कलेक्टर को मैंने बताया, वो भी तैयार हो गए। इसके बाद जब चने और वो कुल्हड़ में चाय उनको पिलाइए, तो मैंने खड़े होकर सिर्फ इतने कहा कि आज

0: आप सुदामा की नगरी में आए, वहां चावल थे तो यहाँ चना है, आप इसका प्रतिफल क्या देते हैं हमें, यह हमें देखना है। उसी ये फिर इमरजेंसी लग गई थी 75, वो आए और उन्होंने बड़ा क्रोधित, मैं उस सभा में भी था, क्रोधित होकर कहा था कि एक नौजवान ने मुझे चने खिलाए थे, मैं उसे देखना चाहता हूँ, मुझसे गलती हुई कि मैं उठ के खड़ा नहीं हुआ और चुपचाप बैठा रहा। तो इस तरह की घटनाएं हैं कि कुछ थोड़ा त्याग करें, कुर्बानी करें, तभी तो लेख लिखेंगे, लेख लिखेंगे उनका प्रभाव होगा, और जब प्रभाव होगा तब कुछ हमें मिलेगा, हमारे देश को मिलेगा, हमारे जिले को मिलेगा।
1: महेंद्र जी, साहित्य के साथ संस्कृति एक अभिन्न हिस्सा है भारत का, तो कुछ ऐसे व्यक्तित्व भी आपके संपर्क में जरूर आए होंगे।
0: सबसे ज्यादा जो मुझे प्रसन्नता होती है और मैं गर्व का अनुभव करता हूँ और एक अपनी पूंजी समझता हूँ, वो है एस निजलिंगप्पा। जब लाल बहादुर शास्त्री के अवसान के बाद उस पार्टी में जो क्राइसिस आया था, उस समय ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, एस निजलिंगप्पा यहाँ रामपुर आए, तो कांग्रेस के जितने भी यहाँ के कार्यकर्ता थे, लीडर्स थे, वो सब बैठे उनके सामने उनसे बातचीत करने के लिए, और मुझे भी ले गए, वो मुझे बहुत प्यार करते थे वो लोग, मुझे ले गए। तो आते ही निजलिंगप्पा साहब आए और आते उनका हाउस रामपुर, अब मेरे अगल बगल जितने भी थे सब खामोश। तो जो दो महानुभाव थे, उन्होंने एक ने इधर से कोनी मारी, एक ने उधर से मारी, इशारा था कि अब तू चालू हो जा। मैंने उनको रामपुर के बारे में बताना शुरू, करीब पौन घंटा जब गुजर गया तो सरदार चंचल सिंह कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा कि सर चाय के लिए चलिए। बोले आप पीजिए चाय, हमारे लिए दो कप भेज दीजिए, मुझे अभी बहुत बात है। दूसरा देवराज हर्ष, वो भयंकर आदमी था, भयंकर राजनीति में अगर किसी को भयंकर कहेंगे तो देवराज हर्ष। मेरे पास आमंत्रण आया कि देवराज हर्ष रात्रि में 10 बजे इंस्पेक्शन हाउस में तुमसे मिलना चाहते हैं, कुछ और पत्रकार भी अगर जाना चाहे। कोई नहीं गया, मैं चला गया, मुझे मालूम था कि इनसे तो हिंदी आती ही नहीं होगी। एक दैत्य जैसा आदमी वहां बैठा हुआ था गंडे शरीर पर, मैंने कहा कि मैं ऐसा ऐसा हूँ, इन इन पत्रों से, इस न्यूज एजेंसी से, प्रश्न शुरू किए। प्रश्न करते करते एक घंटा गुजर गया तो मैं पतला दुबला आदमी, मैं थक गया, सर आई फील यू आर टायर्ड। उन्होंने तुरंत जवाब दिया कि आई एम टेकिंग कीन इंटरेस्ट इन योर क्वेश्चंस, बट आई फील दैट यू आर टायर्ड, यू आर ए वेरी कनिंग मैन, प्लीज गो यू। और मैं हाथ जोड़ के चलाया था। नृत्य के क्षेत्र में उमा शर्मा, उनको पुरस्कार, ये राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया जाता, और नैना देव। यहाँ 74 की बात है, मुझसे कहा गया कि भाई आप इंटरव्यू लेकर आइए। मैंने क्या कहा, मैं जिसको नृत्य को देखा तक नहीं, संगीत को सुना तक नहीं, और उसको आप क्या इंटरव्यू लेके आइए। बोले देखिए हमारी लाज रख ली। मैंने कहा ठीक है, बायोडाटा लिया और चला गया। सुबह को जाके उनका दोनों इंटरव्यू ले लिया, उन्हें भी आनंद आया, मुझे भी आनंद आया। एक का तो रिकॉर्ड करके लाया, तो जो एडीएम जिसने मुझे भेजा था वो शाम को आकर, शाम को मैंने फोन किया, बोले अरे तुम गए नहीं। मैंने कहा मैं ले आया सब, तो वो प्रेस में आ गया, और जो मैंने उसको ऑन किया है अपने रिकॉर्डर को, तो एक्चुअली वो नाचने लगा और बहुत बहुत खुश हुए। बोले बिल दीजिए, 74 की बात है, 27 रुपए का मैंने बिल दी। बोले 200 रुपए सेंक्शन। मैंने कहा ना 27 लूंगा, इससे ज्यादा नहीं लूंगा।
1: महेंद्र जी, एक पत्रकार के रूप में आपने बहुत सारे ऐसे व्यक्तित्वों का साक्षात्कार किया होगा जिनसे साक्षात्कार लेना उस वक्त में एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी मानी जाती होगी।
0: 50 के दशक की बात है जी, अटल जी यहाँ आए थे, मुझे बुलाया गया उनका साक्षात्कार करने के लिए। तो मैंने जहाँ और बहुत सारी बातें हुई, जो उल्लेखनीय बात है वो ये है, मैंने उनसे पूछा, वो विपक्ष में थे उस समय जी, मैंने कहा क्या विपक्ष की एक ही भूमिका होती है आलोचना, डिस्ट्रक्शन। एक मिनट को अपने माथे पर उन्होंने हाथ रख लिया और मौन हो गए, क्योंकि मैंने उनसे पूछा कि कंस्ट्रक्टिव क्या करते हैं आप।
1: जी जी जी।
0: लेकिन तुरंत ही उनको स्मरण करके और प्रणाम करना चाहता हूँ, उन्होंने इतना अच्छा उत्तर दिया। बोले देखो, किसी भवन का निर्माण ठेकेदार करता है, लेकिन वहाँ इंजीनियर होता है, वो उसमें जो त्रुटियां होती हैं उनको इंगित करके भवन को सुदृढ़ बनाने का काम करता है, वही हम विपक्ष का काम। पार्श्व गायक मुकेश, उससे मिलने का मौका मिला अच्छा। मुझे लेखनी के प्रभाव अगर वो सत्य पर आधारित होकर चल रही है तो बड़े अच्छे हो। मेरे साथ जितने लोग आज वो बड़े बड़े पदों पर जा चुके हैं, शैलेंद्र सागर, दूसरा नाम कमर रजा हैदरी, मेरे पत्र में बहुत बड़ा सहयोग करता था, राष्ट्रीय सहारा में कानपुर संस्करण का एडिटर बना।
1: महेंद्र जी, आप तो उस दौर के साक्षी रहे हैं जब बड़ी मेहनत के बाद किसी भी पत्रकार संवाददाता चुना जाता था, मनोनीत किया जाता था, एक लंबी प्रक्रिया होती थी। लेकिन आज वो दौर है कि हर दूसरा तीसरा व्यक्ति स्वयं को पत्रकार समझता है। पत्रकारिता के सामने अब बहुत सारी चुनौतियां भी हैं जिसमें स्वार्थपरता ज्यादा हावी हो गई है, तो इस गिरावट के लिए कौन कितना जिम्मेदार है और क्या कुछ करना चाहिए कि पत्रकारिता का जो मानदंड है वो बना रहे?
0: आजादी है ना, ऊपर से देखिए, ऊपर से नीचे तक आजादी का लोग दुरुपयोग कर रहे हैं, उसका सुखोपभोग कर रहे हैं। शासन का सुख पाने के लिए आजादी की लड़ाई में भाग लेना, उसी प्रकार से आजादी के मिलने के बाद लेखनी का और बाकी और लोगों का जो अग्रिम श्रेणी में आते हैं

0: हमें बहुत पीछे की तरफ ले जाता है और ये लगता है कि हम पता नहीं कितने पीछे हम लोग और चले जाएंगे।
1: अब थोड़ी सी बात महेंद्र जी, आपकी दिनचर्या को लेकर। स्वास्थ्य की अपनी भी चुनौतियां होती हैं, कुछ समस्याएं शारीरिक भी उभर कर सामने आती हैं। किस तरह से आपके दिन की शुरुआत होती है और किस तरह से शाम ढलती है?
0: सुबह को 4 बजे मेरा बेटा, छोटा बेटा, चाय बना के देता है और चाय पीने के बाद करीब 5-5:30 बजे मैं घर से निकल पड़ता हूँ। जितने अखबार मुझे देखने को मिल सकते हैं मिलते हैं, लेता हूँ। हिंदी के हों कुछ तो, अंग्रेजी के हों तो, और एक अंग्रेजी का अखबार लेकर मैं वापस। उसके बाद कम से कम 1 घंटा व्यायाम करना। व्यायाम करने के बाद, बहुत कठिन व्यायाम, अपना स्नान और भी जो कुछ भी थोड़े बहुत काम होते हैं वो सब करने के बाद 10 बजे मैं, मेरे बेटे की यहाँ पर दुकान है, वहाँ आकर बैठ जाता हूँ और जो कुछ भी समाचार मेरे पास आते हैं उनको ड्राफ्ट करना, कंप्यूटर पे ये इंटरनेट जो होता है उस पर पहुँच के उसको बोलना और बोल के उसको मेल कर देना, निपट के चले आना। बाकी फिर अपने पत्रों को देखना, जो समाचार पत्र मैं लाता हूँ उसको पढ़ना। इस तरह से रात शाम तक व्यतीत हो जाती है। घर पर पहुँचे रेडियो लेके बैठ जाता हूँ, रामपुर सुनता हूँ, फिर BBC सुनता हूँ, उसके बाद कोई और लग जाता है स्टेशन उसको सुनता हूँ, और वो सब दिमाग को मेरी ताजगी देते हैं, मुझे जिंदगी देते हैं।
1: महेंद्र जी, हर इंसान अपनी जिंदगी में बहुत कुछ पाने की कोशिश करता है और बहुत कुछ पाता भी है। कुछ सपने ऐसे रहते हैं जो सच नहीं हो पाते। हम कोशिश तो करते हैं पर भी अधूरे रह जाते हैं।
0: टाइम ही नहीं मिला मुझे सपने देखने। 1960 में अपने व्यापार के लिए, अपनी रोटी रोजी के लिए मैंने प्रेस शुरू किया और उसमें आपको आश्चर्य होगा, आपको शायद विश्वास भी ना हो कि सुबह अगर 6 बजे आवश्यकता है तो 6 बजे जाना और रात को 8 बजे 10 बजे तक आना, तब कहीं रोटी और बाकी के खर्चे पूरे हो पाते थे। वो जो कुछ मैं बना वो अंतिम था और सर्वोत्कृष्ट। बस मैं तो इतना चाहता हूँ कि लोग भी, ने पत्रकार हैं तो रास्ते पे चढ़ते हुए उस पथरी को भी देख लें कि जिस पथरी पर हो सकता है आतंकवाद लिखा हो और हो सकता है उस पर शिवशंकर लिखा हो। किसी पर्चे को पढ़ा हुआ देखें, उस पर मुझे, मैंने देखा है, पर्चे उठाए हैं और उस पर मुझे अपनी संपादकीय का विषय मिला है। 2000 संपादकीय मैंने लिखे हैं तो जो घटनाएं मेरे सामने आती थी, सड़क पर चलते हुए जो कुछ मुझे मिल जाता था उसको आधार बनाकर मैंने लिखा है। तो मैं तो उनसे ये कहूंगा कि जो कुछ भी सामने आए उसको बहुत गहरी नजर से देखकर बिना चश्मे के का अध्ययन करें।
1: महेंद्र प्रसाद गुप्त जी, आपने अपने व्यस्त कार्यक्रम में से हमारे लिए समय निकाला, हम आभारी हैं आपके। यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओ, ये थी जिंदगी के आईने में कार्यक्रम की आज की कड़ी। अगले अंक में फिर हमारे साथ होगी एक और शख्सियत। तब तक के लिए असीम को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक जिंदगी के आईने में। कार्यक्रम धरोहर अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं।

मन भावन कार्यक्रम सुनने वालों को एमन तंजील का नमस्कार। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हम शामिल करेंगे आपकी भेजी हुई चिट्ठियां, जिसमें आपने हमें शब्दावली भेजी है और उस पर आधारित गीत हम आपको सुनवाएंगे। आइए कार्यक्रम का सिलसिला शुरू करते हैं और पहली चिट्ठी, पहला पत्र हमारे पास मौजूद है इंदिरा कॉटेज तल्लीताल नैनीताल से मोहन सिंह रावत की। लिखते हैं कि राह चलते, सड़क किनारे या बस स्टेशनों पर भीख मांगते कुष्ठ रोगियों पर किसकी नजर नहीं पड़ती। ये कुष्ठ रोगी जब हमसे भीख मांगते हैं तो हम बड़ी बेरुखी से उन्हें छिड़क देते हैं या फिर बड़े गर्व के साथ एक या दो रुपये का सिक्का इनके कटोरे की तरफ उछाल देते हैं। कभी हमने सोचा है कि सामान्य सा कुष्ठ रोग जो कि नियमित इलाज से ठीक हो सकता है, उसी की ये परिणति कि इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को अपने जीवन यापन के लिए भीख मांगने तक के लिए विवश होना पड़े। संचार माध्यमों के दिनों दिन फैलते मकर जाल व विभिन्न प्रचार माध्यमों द्वारा निरंतर जागरूकता कार्यक्रमों के बावजूद अशिक्षा के कारण आज भी हमारे गांव कस्बों में कुष्ठ रोगियों को समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है। रोगी के परिवारजन जो कि पीड़ित व्यक्ति का इलाज कराकर उसे नया जीवन दे सकते हैं, यदि वो उसका तिरस्कार करें तो फिर समाज की अपेक्षा भी क्या की जा सकती है। कोई भी समाज अपनी अच्छाई या बुराइयों की वजह से पहचाना जाता है। दुनिया में सबसे ज्यादा कुष्ठ रोगी हमारे देश में हैं। हमारी संवेदनहीनता, सामाजिक उपेक्षा तथा नियमित इलाज का अभाव वगैरह से अनेक कारण हैं जिससे इनकी संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। समाज के एक हिस्से के प्रति हमारा ये नकारात्मक रुख हमारी सारी प्रकृति को धूमिल कर देता है। अपने उत्तरदायित्व से मुंह मोड़कर हम अपनी उपलब्धियों के कितने ही डंके पीट लें, कितने ही सम्मान हम क्यों ना अर्जित कर लें, लेकिन ऊपर वाले की अदालत में जब हमारे अच्छे बुरे का हिसाब मांगा जाएगा, तब शायद हमारे पास इसका कोई जवाब ना हो। सारी अदालतों से बरी होने पर भी उसके अदालत से बरी हो पाना मुश्किल है। सच ही है, उसके यहाँ देर है, अंधेरा नहीं।

ये कार्यक्रम इस वक्त आप सुन रहे हैं और आप सभी की शब्दावलियां हम तक पहुंच रही हैं। अगर हमारे श्रोता भी शब्दावली भेजना चाहते हैं तो एक बार ईमेल एड्रेस नोट कर लें, पत्र मिला airrampur@gmail.com। इस पर आप अपनी शब्दावली हमें भेज सकते हैं और हम आपकी शब्दावली को अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे और आपको उस पर आधारित गीत सुनवाएंगे। कार्यक्रम की अगली शब्दावली है हमारे पास निकट विद्युत सब स्टेशन नैनीताल रोड बरेली से अर्चना जोहरी और कृतिका जोहरी लिखते हैं कि जहां तक धरती आसमान का विस्तार है, प्यार का आलम भी वहां तक फैला है। प्यार का रंग बड़ा चटक होता है, मुश्किल होता है इस रंग को फीका कर पाना। जब से मन की झील में ठहर गया, तब से तुम्हारा चेहरा पानी की सतह पर प्रेम का गुलाबी रंग की तरह झिलमिला रहा है। दिल ढूंढता है वो लाल फूल जिसे देखकर तुम्हारा चेहरा लाल हो जाए, वो नगमा जो तुम्हारे लिए गाया जा सके, संसार का वो कोना जहां सिर्फ तुम्हारा ही साथ हो, वो लम्हा जो सिर्फ तुम्हारे साथ बीते। दिल की गलियों में आज भी वो साया है, दर्द के मौसम में भी एक रोशनी है, वो है तुम्हारी यादों का दिया। हमारी उम्र की तन्हाइयों के जंगल में सफर तो आया, मगर हम सफर

0: पुलिस?
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों? लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 दो, बच जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: कार्यक्रम मन भावन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम का अगला पत्र हमारे पास है ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी का। लिखते हैं कि हर इंसान दिल का बुरा नहीं होता, हर कोई चाहने वाला बेवफा नहीं होता। बुझ जाते चराग कभी तेल की कमी से, हर बार कसूर हवाओं का नहीं होता। कभी कभी कुछ लोगों को इतना खराब समझ लेते हैं हम, जितना बुरे वो होते नहीं हैं। आज जिस तरह लोग अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं ना, तो ना तो उनके पास किसी के लिए वक्त है, ना वो किसी के काम आना चाहते हैं। कोई अपनापन उनके अंदर नहीं रहा। रिश्तों में कड़वाहट, एक दूसरे पर तानाकशी, ये सब आम सा हो गया है। एक बात कहकर सारी बातें खत्म कर दी जाती हैं कि माहौल बदल गया है, मगर ये एक पल भी नहीं सोचते कि माहौल बदलने वाला कोई और नहीं बल्कि हम खुद ही हैं। अगर हम किसी के बुरे वक्त में काम आएंगे तो क्या हर्ज है, भले वो हमारे किसी काम ना आए, मगर उसका बदला हमें कहीं ना कहीं तो ज़रूर मिलेगा। अगर हम किसी के बारे में बुरा सोचते हैं तो वो बुराई हमें कहीं ना कहीं भरना पड़ सकती है। हमें चाहिए हम हमेशा अच्छा काम करें, लोगों की मदद करें और ईश्वर पर भरोसा करें, क्योंकि जैसा हम करेंगे वैसा ही हमको मिलेगा।

और अब एक और चिट्ठी हमारे पास है राजद्वारा कोठी अफसर आला रामपुर से। रूमा खान, मदीहा, रजिया गफ्फार, गुलफशा, जीनत अमान, शबनम अब्बासी, गफ्फार साहब, शमा परवीन और इनके सभी साथी लिखते हैं कि कुछ चीज़ें इंजॉय करने के लिए होती हैं मगर कुछ चीज़ें महसूस की जाती हैं, जैसे सच्ची मोहब्बत, गहरी शायरी, फूलों की खुशबू, आंसुओं की कहानी और होठों की मुस्कुराहट। हर इंसान कुदरती खूबसूरती और कशिश रखता है, ज़ाहिरी खूबसूरती से बढ़कर सच्चे जज्बात ही असल खूबसूरती होते हैं। एक और पत्र हमारे पास है गंज डुंडवारा से शमसुल कमर राही का। लिखते हैं, हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ यूं ही सलामत रहेगा। दुआ कीजिए हमारे आपके रिश्ते रहें कायम, ये रिश्ते अगर टूटे तो भारत टूट जाएगा। भारत एक महान देश है, सभ्यता के यहाँ फूल खिलते हैं, संस्कृति यहाँ जन्म लेती है, यहाँ के सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते हैं, यहाँ का भाईचारा, यहाँ का अपनापन देखते बनता है। यही वजह है कि जो भी हिंदुस्तान आता है वो यहीं का होकर

0: जाता है। यहाँ की मिट्टी में मोहब्बत की खुशबू बसती है। आओ हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि जिंदगी में हमेशा मिलजुल कर रहेंगे और आने वाली नस्लों को मोहब्बत का पैगाम देंगे।
1: नफरत

0: और अब कार्यक्रम मन भावन से अमन को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: गीतों का सतरंगी सावन मन भावन, मन भावन।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मन भावन, ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 12 बजने वाले हैं, अब सुनिए समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
2: आकाशवाणी है, नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। दोनों पक्ष व्यापार बढ़ाने, हरित प्रौद्योगिकी अपनाने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु परिवर्तन और जनसंपर्क में सहयोग के नए रास्ते तलाशेंगे। दोनों प्रधानमंत्रियों के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन भी यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को संबोधित करेंगी। श्री मोदी की इस यात्रा का उद्देश्य तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों के दौर में सहयोग के नए आयाम तलाशना है। इससे पहले कल हेग में प्रधानमंत्री मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन के बीच वार्ता के बाद भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। सहयोग को मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स को भारत का एक प्रमुख यूरोपीय साझेदार बताया। उन्होंने उभरते क्षेत्रों में अधिक सहयोग का आह्वान किया।
3: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत के स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
2: नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन ने कहा कि भारत के साथ संबंधों का महत्व लगातार बढ़ रहा है और दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक और रणनीतिक सहयोग जरूरी है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज से सीएनजी की कीमतों में 1 रुपए की बढ़ोतरी की है। अब दिल्ली में 1 किलोग्राम सीएनजी की नई दर 80.09 रुपए, गाजियाबाद और नोएडा में 88.70 रुपए और गुरुग्राम में 85.12 रुपए हो गई है। इस सप्ताह की शुरुआत में भी आईजीएल ने सीएनजी की कीमतों में 2 रुपए की वृद्धि की थी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि सोने और प्लेटिनम से मढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को संशोधित करके मुक्त से प्रतिबंधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संपर्क और आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने के अनुरूप लिया गया है। केरल से दिल्ली आ रही तिरुवनंतपुरम हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस के B1 कोच में आज तड़के आग लग गई। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, कुछ रेलगाड़ियों की आवाजाही पर असर पड़ा है। यह घटना मध्य प्रदेश के रतलाम में कोटा डिवीजन के लूणी, रिच्छा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशनों के बीच तड़के 5:20 पर हुई। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASI ने मध्य प्रदेश के धार जिले में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। आंध्र प्रदेश में एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत युवा संगम का 6ठा चरण कल से शुरू हो गया। तिरुपति के जिलाधिकारी डॉक्टर एस वेंकटेश्वर ने जिले के येरपेडू स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT में इसका उद्घाटन किया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान, बौद्धिक विकास और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम 27 मई तक चलेगा। टेनिस में यूक्रेन की एलिना स्वितोलिना ने इटालियन ओपन का महिला सिंगल्स खिताब जीत लिया है। 7वीं वरीयता प्राप्त एलिना ने फाइनल में अमेरिका की कोको गॉफ को हराया। आज इटली के जैनिक सिनर का मुकाबला नॉर्वे के कैस्पर रूट से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 8:30 से खेला जाएगा। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लिया रोली कार्नेंडो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से होगा। आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में दोपहर बाद 3:30 से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashwani, the news read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi will reach Gothenburg today on a two-day visit to Sweden. He will hold bilateral talks with Swedish Prime Minister Ulf Kristersson to review cooperation in trade, green transition, emerging technologies,
0: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्स और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 12:05 हुए हैं। अब सुनिए खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना। प्रभारी निरीक्षक थाना बनियाठेड़ जनपद संभल हमें सूचित करते हैं कि अरसी पत्नी जीशान निवासी जनेटा बनियाठेर संभल विगत 29 अप्रैल 2026 से लापता हैं। अरसी की उम्र 22 वर्ष है और शरीर औसत है। अरसी का चेहरा गोल है, आंखें औसत हैं। अरसी का कद 4 फीट 3 इंच है और रंग गोरा है। अरसी के बाल काले हैं और उन्होंने फिरोजी शलवार सूट पहना हुआ है। यदि आप में से किसी व्यक्ति को इनके बारे में कोई जानकारी हो अथवा सूचना प्राप्त हो तो कृपया इस पते पर सूचित करने का कष्ट करें। प्रभारी निरीक्षक थाना बनियाठेर जनपद संभल। सूचना समाप्त हुई।
5: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
6: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
5: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी

0: इस चिंगारी से दिल मोम हुआ है पत्थर का, अजमेर की जामा मस्जिद में खुद अक्स है जैनी मंदिर का।
1: जी हाँ, कसरत में वहदत की शानदार मिसाल।
0: मुख्तलिफ रंगो नस्ल और अलग अलग खुशबुओं के खूबसूरत फूलों का हसीन गुलदस्ता।
1: हमारा प्यारा वतन हिंदुस्तान,
0: दुनिया का एक वाहिद मुल्क,
1: गंगा जमुनी तहजीब की एक अनूठी मिसाल।
0: आइए रखें इस इत्तेहाद को कायम,
1: अपने मुल्क को बनाएं अमनो सुकून का गहवारा।
0: हम एक थे,
1: हम एक हैं,
0: हम एक रहेंगे,
1: कायम करेंगे अमन,
0: देंगे सबक दुनिया को
1: प्यार का।

मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और FM 102.9 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 12:10 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गीत आपके नाम।

गीत आपके नाम कार्यक्रम सुनने वालों को एमन तंजील का नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको

आपके फरमाइशों पर आधारित फिल्मी नगमे। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आपको अपना नाम, अपना पता, अपनी फरमाइश लिख भेजना है गीत आपके नाम airrampur@gmail.com पर। चलिए आज का ये सिलसिला शुरू करते हैं और पहला पत्र हमारे पास, पहली फरमाइश है आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेराज जहां। गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार, रामदेवरा से दिनेश चौहान, डांगरी से बाबूराम जयपाल, खलीफों की बावड़ी से खुदा बख्श खलीफा। पटियाली रोड गंज डुंडवारा से मोहम्मद खलील कुरैशी, नुसरत बेगम, एजाद कुरैशी और बेबी अरीबा हबीबा। दतरेंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा। मारेरा दरवाजा एटा से नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी, रशीद वारसी, अनम अब्बासी, यशफ अब्बासी। सिकंदरा राव से मुबीन अब्बासी। जसपुर रोड उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन और माहिरा नूर। सहारनपुर से सुरेश नारंग, आशा सोनाली, अदीबा कौर, रेशमा चौहान, वली भाई और जलील भाई। कृष्ण की नगरी मथुरा से सबा अंसारी, शकील अंसारी, बुशरा अंसारी, हिना अंसारी, गुलिस्ता रानी, नंदिनी और अंजलि। करणवीर हाउस से प्रेम सिंह जौड़ा, मनजीत कौर जौड़ा, करणवीर करण, दपिंदर वरिंदर, कुलदीप, सिमू, एकम दमन और अभिजोत। आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से वैशाली शैलेश, प्रिंस एकांश, सुमित, कुमारी ध्वनि और महनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत, सरिता, प्रणीता, सिद्धांत और टुक टुक। जिला मुरादाबाद ग्राम धूलापुर से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह। आप सबकी फरमाइश पर पेश है कुमार सानू की आवाज में ये गीत।

गीत आपके नाम कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम का अगला गीत सुनने वाले हैं आप सब मुंदी चक भागलपुर बिहार से दिलीप कुमार सोनी, कमल किशोर शाह और इनके सभी साथी। वार्ड नंबर 1 भोपाली जिला यवतमाल से दिशांत कुमार और अर्पिता। श्रीरामपुर महाराष्ट्र से नासिर शेख और इनके सभी साथी। शाहूनगर यवतमाल से राहुल मनवर सरला, मनवर विशाल, मनवर चेतन, मनवर रोशनी, बेबी प्रियांशी और इनके सभी साथी। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोलवार, कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश। नई बस्ती पतई खालसा जिला अमरोहा से बहारुल हसन सिद्दीकी, मोहम्मद आलम सिद्दीकी, मोहम्मद सिफान सिद्दीकी, मोहम्मद यूसुफ, अनाबिया सिद्दीकी, अलीशा, शकील, फहीम, मोहम्मद यासीन अंसारी और सुदेश चौहान। पाकुंड झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु तासु, अर्णव आनंद सत्यम। करूला मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया और इनके सभी साथी। नई बस्ती गंज टंडवारा से मोहम्मद यासीन और इनके परिवार के समस्त सदस्य। आप सबकी फरमाइश पर पेश है अभिजीत और कुमार सानू की आवाजों में ये गीत।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से?
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए, अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: सर, 2 लाख?
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं। काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: गीत आपके नाम कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक बार फिर हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने एक बार मेल भेज दिया है तो कृपया करके उसको दोबारा नहीं भेजें। हमारे स्क्रीन पर एक एक नाम के 20-20 ईमेल हैं और उसके बाद भी उनके 8 या 9 ईमेल्स लगातार इस तरीके से आ रहे हैं, तो बताइए कि इस तरीके से बाकी श्रोता कैसे शामिल होंगे। अगर सिर्फ 2-3 श्रोता इस तरीके से अपने नामों को बार बार बार बार भेजेंगे तो बाकी श्रोताओं के नाम तो उसी में चले जाएंगे। तो आप लोगों से हम पहले भी रिक्वेस्ट कर चुके हैं और अब भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर आपने ईमेल भेज दिया है तो वो शामिल हो जाएगा। बार बार उसको भेजने से कोई फायदा नहीं है। 20 बार 25 बार ईमेल भेजने से आप दूसरे श्रोताओं का नुकसान करा रहे हैं। तो अभी भी स्क्रीन पर सेम एक ही नाम बार बार आ रहा है और इसकी वजह से हमें दूसरे श्रोताओं के नाम ढूंढने में टाइम लगता है और हम क्योंकि लाइव प्रोग्राम कर रहे होते हैं तो इससे एक गैप भी आने लगता है। तो कृपया आप इस चीज को समझिए और एक बार में एक ही ईमेल भेजिए, एक सभा में एक ही ईमेल या पत्र आपका शामिल होगा। चलिए कार्यक्रम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, लेकिन जिन श्रोताओं ने कई ईमेल भेजे हैं हम उनका नाम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो दूसरे श्रोताओं के नाम इस चक्कर में गायब करवा रहे हैं और हमें उनके दूसरे श्रोताओं के नाम नहीं मिल पा रहे, तो अब उनके नाम भी नहीं पढ़े जाएंगे। और जो ये ईमेल काफी बार भेज रहे हैं उनको इस बात का अंदाजा है कि वही लगातार मेल भेज रहे हैं। रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी की फरमाइश हमारे पास आई है। दत्रेंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा। बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी और सुरीत रामेश साहू। डुमराव बिहार से डॉक्टर W अंसारी, डॉक्टर सोना मदीबा और दानिश अंसारी। गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभियानंद आर्य और परमानंद आर्य। सानिमपुर बक्सर से राज SD अंसारी और आसमा खातून अंसारी। राजद्वारा रोड मीठा कुआं रामपुर से आकाश रस्तोगी, दीपक रस्तोगी, रवि रस्तोगी, अभय, रिया, आरुष और फिरासत। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से TD मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप। कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। जिला अमरोहा नई बस्ती पताई खालसा से बहारुल हसन सिद्दीकी, मोहम्मद आलम सिद्दीकी, मोहम्मद सिफान सिद्दीकी, मोहम्मद यूसुफ सिद्दीकी, अनाबिया, अलीशा, शकील, फहीम, मोहम्मद यासीन अंसारी और सुदेश चौहान। जिला मुरादाबाद ग्राम महेशपुर खेम से तौफीक अहमद सिद्दीकी, अतीक अहमद सिद्दीकी, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी, हमजा, गुलशन साहिबा और इनके परिवार के सभी साथी। एक पत्र हमारे पास है लेकिन उसमें इन्होंने एड्रेस नहीं लिखा है लेकिन नाम हम शामिल कर लेते हैं। मोहम्मद आमिर अंसारी, शमीम अंसारी, नसरीन अंसारी, समान अंसारी और माहे नूर अंसारी। तहसील रोड गंज डुंडवारा से कैच राही गुड़िया बेगम, वकील प्रेमी और हमाद जमील। आप सबकी फरमाइश पर पेश है अलका याग्निक और साथियों की आवाजों में ये गीत।

गीत आपके नाम, ये कार्यक्रम इस वक्त आप सुन रहे हैं और कार्यक्रम का अगला गीत सुनने की फरमाइश हमारे इन साथियों की फातिमा कॉलोनी श्री रामपुर महाराष्ट्र से नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिद शाहिद। पंजू सराय संभल से छोटे अंसारी, आलम अंसारी, असद अंसारी और फैसल अंसारी। जेल रोड रायगढ़ छत्तीसगढ़ से सौरभ निषाद, प्रकाश कुमार, बल्लू निषाद और तरुण यादव। गांव शोभापुर मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता। ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी और इनके सभी साथी। ग्राम व पोस्ट हररपुर मटकली जिला बरेली से शाहरुन नूर अंसारी, फरियाद हुसैन अंसारी, शकील अहमद इदरीसी, मुइन अंसारी, तस्लीम अंसारी और डीजे प्रधान। आप सबकी फरमाइश पर पेश है ये गीत।

और अब गीत आपके नाम कार्यक्रम का अगला गीत सुनने वाले हैं आप सब। ग्राम मुंगीसापुर कानपुर देहात से रामेश्वर कठेरिया, उमा कांति कठेरिया, कमलेश कठेरिया, निशा कठेरिया, प्रज्ञा प्रतिमा कठेरिया और वेद बाबू कठेरिया। मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब बाजार रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरुन्निसा शबिस्ता मोहम्मद, नसीब पलक लुबना और यश मंसूरी। जेल रोड रायगढ़ से प्रकाश निषाद और इनके सभी साथी। गांव उगाला जिला अंबाला हरियाणा से राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव हरमन और परिवार के सभी सदस्य। मोहल्ला बारादरी महमूद खान रामपुर से भाई रफत साहब, सईद भाई मंसूरी, राशिद भाई मंसूरी, फौजिया रोशनी, शाइना काजल, असद, फिरोजा मुस्कान और नगमा नाज मंसूरी। मोहल्ला मजार चांद शामिया रामपुर से मोहम्मद रमजान, अदनान अली मंसूरी, अरमान अली मंसूरी, रायना चांदनी, अनमता राहिमीन और आशु भाई। वेडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू टोमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा। पटियाली रोड गंज टुंडवारा से आमिर हुसैन, बेगम तैयबा शेख, फौजिया शेख, आहिल हुसैन, अरहांस हुसैन और परिवार के सभी सदस्य। कुमार गली कोलगांव से पांडु चंदन, उषा चंदन, प्रतीक्षा चंदन, प्रथमेश और इनके सभी साथी। आप सबकी फरमाइश पर पेश है ये गीत।

गीत आपके नाम कार्यक्रम में अब आगे बढ़ते हैं और आज के इस कार्यक्रम की अंतिम गीत की फरमाइश हमारे पास आई है। कबीर रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा तामुरिया, राधिका और प्रभा देवी तामुरिया और मास्टर अल कबीर। चपटा कॉलोनी रामपुर से मोहम्मद जमील खान और नुसरत जहां, रामपुर से ही फातिमा नाज और शाहीन नाज। गोकुल चौक गंजा सहरसा बिहार से राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे विद्यार्थी और राकेश कुमार। कांट रोड लदावली से माया देवी, ऋतिक, अजीत कसाना और आदित्य कसाना। रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना, बानो, एलिजा नायब और इनके सभी साथी। दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन, अंजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, शरीफ नवाज और इनके सभी साथी। एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, गणेश, कार्तिक, परी खर्चे, स्वाति, प्रयाग चौधरी और इनके सभी साथी। राजद्वारा कोठी अफसराला रामपुर से रूमा खान, मदिया, रजिया गफ्फार, गुलफशा, जीना तमान, शबनम अब्बासी और हाजी गफ्फार साहब। ऊपरकोट मोहल्ला चौकुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शाहनवाज सरफराज, फरदीन सुहान, अरजान और अबान अब्बासी। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। मालियान सरधना मेरठ से अनिल जैन, जैन साहब, संयम जैन और मुस्कान जैन, साथ में हैं जीवियम जैन। गंज डुंडवाला से शमसुल कमर राही, शाहीन, फातिमा और अदनान खान, साथ में हैं अनु खान। खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा। मोहल्ला हलवाइया शेरकोट बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी खान, बिट्टू, हिना कौसर और शबाना नाज। आप सबकी फरमाइश पर पेश है कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत आपके नाम। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। एक बजने वाला है, अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के निमंत्रण पर श्री मोदी स्वीडन जा रहे हैं। श्री मोदी की यात्रा का उद्देश्य तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों के दौर में सहयोग के नए आयाम तलाशना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस दौरान श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। दोनों प्रधानमंत्रियों के साथ साथ यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन भी यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को संबोधित करेंगी।
1: प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर स्वीडन के उद्योग जगत में उत्साह का माहौल है और कारोबारी समुदाय इस दौरे के परिणामों को लेकर काफी आशावान है। आकाशवाणी से बातचीत में इंडियन स्वीडन बिजनेस काउंसिल के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी श्री रॉबिन सुखिया ने जन से जन संपर्कों के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री की दूसरी बार मेजबानी करना स्वीडन के लिए अत्यंत उत्साह और गर्व का विषय है। इस बैठक में दोनों देशों के बीच समग्र द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जा सकती है। व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सहयोग के नए अवसरों पर भी चर्चा करी जा सकती है। दोनों नेता हरित परिवर्तन, एआई, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप, मजबूत सप्लाई चेन, रक्षा, अंतरिक्ष, क्लाइमेट एक्शन और जन से जन संपर्कों जैसे क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर भी विचार विमर्श कर सकते हैं। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: इससे पहले कल हेग में प्रधानमंत्री मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन के बीच वार्ता के बाद भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। सहयोग को मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स को भारत का एक प्रमुख यूरोपीय साझेदार बताया। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन ने कहा कि भारत के साथ संबंधों का महत्व लगातार बढ़ रहा है और दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक और रणनीतिक सहयोग जरूरी है। भारत ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेमी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने तथा जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को उचित नहीं ठहराया जा सकता। श्री हरीश ने ये बात वैश्विक ऊर्जा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की एक विशेष बैठक में कही। मकानों की गिनती का पहला चरण 5 राज्यों में शुरू हो गया है। इसके तहत राजस्थान, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में मकानों की सूची तैयार की जाएगी। घर घर जाकर सूची तैयार करने का काम आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी चल रहा है। स्वगणना सुविधा आज से गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पुदुचेरी में शुरू की गई है। ये सुविधा 31 मई तक उपलब्ध रहेगी। स्वगणना सुविधा उत्तर प्रदेश में भी जारी है जो 21 मई तक चलेगी। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज से सीएनजी की कीमतों में 1 रुपए की बढ़ोतरी की है। इस सप्ताह की शुरुआत में भी आईजीएल ने सीएनजी की कीमतों में 2 रुपए की वृद्धि की थी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि सोने और प्लेटिनम से मढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को संशोधित करके मुक्त से प्रतिबंधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। दिल्ली मेट्रो निजी वाहनों के बजाय मेट्रो के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए अतिरिक्त ट्रेनें चलाएगी। दिल्ली मेट्रो के अनुसार ये फैसला ऊर्जा और धन की बचत तथा पर्यावरणीय सुरक्षा में मेट्रो की भूमिका को देखते हुए लिया गया है। इसके लिए प्रत्येक सोमवार को 24 अतिरिक्त मेट्रो ट्रेन चलाई जाएंगी। टेनिस में यूक्रेन की एलिना स्वितोलिना ने इटालियन ओपन का महिला सिंगल्स खिताब जीत लिया है। 7वीं वरीयता प्राप्त एलिना ने फाइनल में अमरीका की कोको गॉफ को हराया। आज इटली के यानिक सिनर का मुकाबला नॉर्वे के कैस्पर रूट से होगा। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लिया रूली कार्नेंडो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से जारी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 1:05 हुए हैं। अब सुनिए आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कुछ विशेष कार्यक्रमों की जानकारी।

0: श्रोताओं, से कुछ ही देर में यानी कि आज दोपहर 1:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम कलियां। युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युवाणी आप तक पहुंचेगा 5:15 पर। कृषि जगत, ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे 6:20 पर। सुगम संगीत, ये कार्यक्रम आप तक पहुंचेगा 7:31 पर। इस पे हम आपको सुनवाएंगे पंकज उदास की गाई चंद गजलें। रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा आप सुन सकेंगे 10:00 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। श्रोताओं, ये थी आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कुछ विशेष कार्यक्रमों की जानकारी। आइए अब सुनते हैं जरूरी संदेश।
1: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: बंदूक से निकली गोली का कोई नाम, कोई जाति, कोई धर्म नहीं होता। जब ये गोली लगती है किसी इंसान को तो घायल होती है मानवता, छूट जाता है एक बचपन, वीरान हो जाता है किसी का जीवन, टूट जाती है किसी के बुढ़ापे की लाठी, बुझता है एक दीपक उम्मीद का। अपने इस देश में बारूद का ढेर नहीं, फूलों का चमन महकाएं, जीवन के हर रंग से इंद्रधनुष बनाएं।

0: फूलों का कुंज दिलकश भारत में एक बनाएं, हुब्बे वतन के पौधे इसमें नए लगाएं।
1: मिल मिल के हम तराने हुब्बे वतन के गाएं, बुलबुल हैं जिस चमन के गीत उस चमन के गाएं।
0: हम सब भी मिलकर गीत गाएं
1: अमन के भाईचारे के।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: हमारा प्रथम कर्तव्य इस राष्ट्र के प्रति है,
4: जिस देश पे हमने जन्म लिया,
3: जिस भूमि पर हमने चलना सीखा,
4: जिसका अन्न हमारे शरीर में लहू बनकर दौड़ रहा है,
3: उस धरती का ऋण है हम पर।
4: हमारा कर्तव्य है हम अपने देश की रक्षा करें और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दें।
5: राष्ट्र, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का सम्मान हम सबकी जिम्मेदारी है। माँ, मातृभाषा, मातृभूमि हमको प्राणों से भी प्यारी है। शहीद, सैनिक और संस्कृति पर हम सबको अभिमान है। तिरंगे के रंगों में हर एक रंग का मान है। तिरंगे की रक्षा में तन मन धन कुर्बान है। धर्म, जाति और नाम से पहले भारतीयता पहचान है।
6: हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 1:10 हुए हैं। अब सुनिए इलाकाई खबरें आकाशवाणी के लखनऊ मरकज से।
7: आकाशवाणी लखनऊ है, इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 के तहत मुनक़िद एक प्रोग्राम में शामिल हुए, जहां वजीर आला ने अपने खिताब में कहा,
8: केंद्रीय संगठन के द्वारा दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल जिसने अपनी स्थापना काल के से लेकर के अब तक 50 वर्ष से भी कम समय में दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में देश के अंदर केंद्र के साथ साथ 22 राज्यों में अपनी सरकार, अपने दम पर अपनी विचारधारा को प्रभावी ढंग से लागू करने के जिस अभियान को आगे बढ़ाया है, उस राजनीतिक दल के गोरखपुर जनपद के विशेष प्रशिक्षण शिविर के अवसर पर मैं आप सबका इस पूरे आयोजन के प्रति मैं जिला इकाई को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं।
7: इससे कबल वजीरे आला ने आज सुबह गोरखनाथ मंदिर में मुनक़िद जनता दर्शन प्रोग्राम में मुख्तलिफ अज़ला से आए लोगों से मुलाकात कर उनकी दिक्कतें सुनी। इस दौरान वजीरे आला ने अफसरान को अहकाम दिए कि वो पूरी हसासियत से ये यकीनी करें कि बगैर किसी तफरीक के सबको इंसाफ मिले और जल्द ही उनकी दिक्कतों का तस्फिया किया जाए। अंशकालिक अनुदेशकों के बढ़े हुए एजाजिया तकसीम को लेकर आज पूरी रियासत में उनके एजाज में प्रोग्राम मुनक़िद किए जाएंगे। लखनऊ के लोक भवन में मुनक़िद रियासती सतही जलसे में वजीर आला योगी आदित्यनाथ अंशकालिक अनुदेशकों के एजाज में इजाफा शुदा एजाजिया तकसीम प्रोग्राम का इनेकाद करेंगे। वाज़ह रहे कि इनका एजाजिया 9,000 रुपये से बढ़ाकर 17,000 रुपये फी माह करने का फैसला किया गया है। इजाफा शुदा एजाजिया 1 अप्रैल से नाफिज किया गया है। रियासत में जारी डिजिटल मर्दमशुमारी के पहले मरहले के तहत खुदशुमारी का अमल 7 मई से जारी है। 21 मई तक चलने वाले इस अमल में वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने भी कल गोरखपुर में खुदशुमारी का डिजिटल फॉर्म भरा। वजीर आला ने रियासती आवाम से इस अमल में शराकत दारी दर्ज कराने की अपील करते हुए कहा कि यह मुल्क की पहली मुकम्मल तौर से डिजिटल मर्दमशुमारी है। इसका खास मकसद सही एदादोशुमार जुटाकर मुल्क की तरक्की और बहबूदकारी स्कीमों की आउटलाइन तैयार करना है। मरकजी सानवी तालीम बोर्ड CBSE ने तालीमी सेशन 2025-26 के दर्जा 12 के बोर्ड इम्तिहान के नतायज के ऐलान होने के बाद तलबा और तालिबात के लिए मुख्तलिफ सहूलियात का ऐलान किया है। बोर्ड ने इस मरतबा तशखीस के अमल को और ज्यादा सही और शफाफ बनाने के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम का इस्तेमाल किया है। पेश है एक रिपोर्ट।
9: पहले चरण में छात्र अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां मांग सकते हैं। ये ऑनलाइन लॉगिन के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी और समीक्षा के लिए डाउनलोड की जा सकती हैं। जबकि दूसरे चरण में छात्र विसंगतियों के सत्यापन के लिए आवेदन कर सकते हैं या अंकन योजना के आधार पर विशिष्ट उत्तरों के पुनः मूल्यांकन का अनुरोध भी कर सकते हैं। बोर्ड ने कहा है कि सभी आवेदन निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन जमा किए जाने चाहिए और प्रत्येक चरण के लिए केवल एक आवेदन स्वीकार किया जाएगा। छात्र 19 से 22 मई के बीच मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं स्कैन की गई प्रति प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसका शुल्क प्रति विषय 700 रुपए है।
7: सीबीएसई ने यकम जुलाई से दर्जा 9 के तलबा के लिए तीन जुबानों की पढ़ाई लाजमी करार दी है। बोर्ड ने एक बयान में कहा है कि कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 और कौमी स्कूल तालीमी निसाब 2023 के मुताबिक इन तीन जुबानों में से कम दो हिंदुस्तानी ओरिजिन की जुबानें होनी चाहिए। सीबीएसई ने वाजह किया है कि दर्जा 10वीं में तीसरी जुबान R3 के लिए कोई बोर्ड इम्तिहान नहीं होगा और R3 के लिए मुकम्मल तशखीस पूरी तरह से स्कूल पर मबनी और इंटरनल होगी। दिल्ली NCR की तरह उत्तर प्रदेश में भी SCR तैयार हो रहा है। UPSCR के डेवलपमेंट प्लान के तहत कानपुर, उन्नाव, लखनऊ, अयोध्या के दरमियान नमो भारत कॉरिडोर बनाने और रैपिड रेल चलाने की तैयारी है। इस प्रोजेक्ट का वसीय खाका लखनऊ तरक्याती अथॉरिटी में मुशीर एजेंसी ने दिया है। इसमें नयागंज कानपुर, उन्नाव बशीरतपुर, नवाबगंज बंथरा, अमौसी लखनऊ, सुशांत गोल्फ सिटी, जुग्गौर बरेल, सफदरगंज भिटरिया और अयोध्या में स्टेशन की तजावीज है। इस पूरे प्रोजेक्ट पर तकरीबन 32,000 करोड़ रुपए खर्च होने का इम्कान है। NCRTC और उत्तर प्रदेश हुकूमत मिलकर मुश्तरका तौर से इस पर आगे काम करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस महीने की 31 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्याल बांटेंगे। यह इस महाना रेडियो प्रोग्राम की 134वीं कड़ी होगी। और महकमे मौसमियात के कयास के मुताबिक मानसून 18 जून को गोरखपुर के रास्ते रियासत में दस्तक देगा। इस साल मानसूनी सीजन में मामूल से कम बारिश के इम्कान है। महकमे आबपाशी और आबी वसायल की जानिब से रियासत के सभी 18 डिवीजनों में 31 मई तक सैलाब कंट्रोल रूम कायम करने के अहकाम दिए गए हैं। सैलाब और मुतासर इलाकों की निगरानी के लिए ये कंट्रोल रूम 15 जून से 15 अक्टूबर तक 24 घंटे अलर्ट रहेंगे। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश किया जाएगा।
6: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 1:15 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम कलियां।

0: गुड आफ्टरनून बच्चों, तो कैसे हैं आप? आशा करती हूँ रविवार की छुट्टी का आनंद ले रहे होंगे। मैं आपकी आज की साथी दिशा दीदी
1: और मैं बच्चों आपकी दोस्त प्रियंका दीदी आ गए हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम कलियां लेकर, जिसमें हम ज्ञान के पिटारे से लेकर बच्चों की रंग बिरंगी की दुनिया की सैर करते हैं।
0: प्रियंका, एक सवाल पूछूं?
1: हाँ हाँ पूछो ना।
0: अगर अचानक से पूरी दुनिया से रोशनी गायब हो जाए, मतलब कि ना सूरज, ना बल्ब, ना मोबाइल की लाइट, तो क्या होगा?
1: ओहो, फिर तो मजा नहीं, मुसीबत हो जाएगी। दिशा, बच्चों सोचो ना, आप खेल पाओगे, ना पढ़ पाओगे, ना टीवी, ना कार्टून,
0: और सबसे बड़ी बात, हम एक दूसरे को देख भी नहीं पाएंगे।
1: तो बच्चों, आज हम जिस चीज़ को इतना कैजुअली यूज़ करते हैं, वही हमारे ज़िंदगी का सबसे ज़रूरी हिस्सा है, और उसी के लिए एक ख़ास दिन मनाया जाता है, जो कि हमने कल यानी 16 मई को मनाया, इंटरनेशनल लाइट डे,
0: यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस। ये दिन हमें याद दिलाता है कि लाइट यानी रोशनी हमारे जीवन में कितनी ज़रूरी है।
1: बच्चों, लाइट क्या है? लाइट एक तरह की एनर्जी है जो हमें चीज़ों को देखने में मदद करती है,
0: जैसे सूरज की रोशनी, बल्ब, मोमबत्ती।
1: बच्चों, अभी अपने आसपास देखो, आपको कितनी सारी चीज़ें दिख रही हैं, ये सब पता है लाइट की वजह से ही हमें दिख पाती हैं।
0: प्रकाश पढ़ने में मदद करता है, पौधों को बढ़ने में मदद करता है, और हमारी टेक्नोलॉजी को भी चलाता है।
1: और सबसे खास बात, साइंस में लाइट का बहुत ज़्यादा रोल है।
0: क्या आप जानते हैं बच्चों, एक साइंटिस्ट थे अल्बर्ट आइंस्टीन, उन्होंने लाइट के बारे में बहुत बड़ी खोज की थी,
1: और इसी खोज की याद में 16 मई को इंटरनेशनल लाइट डे मनाया गया। दिशा,
0: आइंस्टीन ने बताया, लाइट सिर्फ रोशनी ही नहीं बल्कि एनर्जी का एक खास रूप है जो पूरी दुनिया को बदल सकता है।

0: हो, मतलब ना फोन, ना इंटरनेट, ना मैसेज।
1: और ना ही हेलो, ना हाय, ना गुड मॉर्निंग।
0: तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे दिन की जो कि हमें जोड़ता है दुनिया के हर कोने से।
1: यानी वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे, जो कि हम आज मना रहे हैं।
0: बच्चों, एक छोटा सा किस्सा सुनो। एक बच्चा था राहुल, उसे अपने दोस्त से बात करनी थी जो कि दूसरे शहर में रहता था।
1: लेकिन उसके पास ना तो फोन था और ना ही इंटरनेट। तो उसको पता है क्या किया? एक चिट्ठी लिखी।
0: और वो चिट्ठी पहुंचने में पूरे 5 दिन लग गए।
1: अब सोचो, अगर आज ऐसा हो जाए तो आप तो तुरंत बोलोगे कि अरे व्हाट्सएप कर देते हैं।
0: बिल्कुल। तो बच्चों, यह दिन हमें याद दिलाता है कि कम्युनिकेशन कितना जरूरी है
1: और टेक्नोलॉजी की वजह से दुनिया कितनी छोटी भी हो गई है।
0: अब बच्चों, ये बताओ कि टेक्नोलॉजी आखिर होता क्या है?
1: मैं बताती हूँ। जब हम दूर बैठे किसी इंसान से बात करते हैं या मैसेज भेजते हैं तो उसे कहते हैं टेलीकम्युनिकेशन।
0: जैसे कि बच्चों, फोन कॉल, व्हाट्सएप, ईमेल, टीवी।
1: बच्चों, पहले लोग चिट्ठियों से बात करते थे और फिर आया टेलीफोन और फिर मोबाइल।
0: और अब तो दिशा वीडियो कॉल भी हो जाती है। बच्चों, कम्युनिकेशन की वजह से हम दूर बैठे लोगों से जुड़ सकते हैं। जैसे कि आप दूर बैठे हमें सुन पा रहे हैं, ये भी तो कम्युनिकेशन का ही पार्ट है।
1: लेकिन बच्चों, टेक्नोलॉजी का सही यूज़ भी बहुत ज़रूरी है। जैसे ज़्यादा मोबाइल यूज़ मत करो, अननोन लोगों से बात मत करो, और हाँ, हमेशा अपने पेरेंट्स की बात सुनो।
0: बच्चों, अभी हमने बात की कम्युनिकेशन की कि कैसे फोन और इंटरनेट हमें जोड़ता है।
1: लेकिन एक चीज और है जो लोगों को जोड़ती है।
0: अच्छा, वो क्या है?
1: जब घर में कोई मेहमान आता है तो सबसे पहले सवाल क्या होता है?
0: हाँ, चाय लेंगे।
1: बिल्कुल। और बस वहीं से शुरू हो जाती है बातें, हंसी और कनेक्शन।
0: जी हाँ बच्चों, इमेजिन करो, सुबह सुबह बारिश हो रही है, खिड़की से ठंडी ठंडी हवा आ रही है,
1: और किचन में चाय बन रही हो, अदरक की खुशबू और इलायची की महक।
0: और जैसे ही चाय कप में आती है तो आपका पूरा मूड कैसा हो जाता है? भाई, मेरा तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा।
1: क्योंकि चाय सिर्फ ड्रिंक ही नहीं, एक फीलिंग है। और इसलिए हर साल 21 मई को हम इंटरनेशनल टी डे मनाते हैं।
0: जी हाँ बच्चों, यह दिन हमें चाय के महत्व के बारे में बताता है और उन लोगों की मेहनत को याद दिलाने के लिए भी मनाते हैं जो चाय उगाते हैं।
1: अब सोचो बच्चों, ये चाय आपके कप में आती कैसे है?
0: सबसे पहले पहाड़ों में टी प्लांट्स उगाए जाते हैं और फिर उनके पत्ते तोड़े जाते हैं और उन्हें सुखाया जाता है, उसके बाद प्रोसेस किया जाता है
1: और फिर वो हमारे घर तक पहुंचती हैं।
0: मतलब एक कप चाय के पीछे कितनी मेहनत होती है ना?
1: प्रियंका, कभी नोटिस किया है जब कोई थका होता है तो उसे क्या याद आती है?
0: चाय।
1: जब दोस्त मिलते हैं तब
0: चाय,
1: जब बारिश होती है
0: तब भी चाय।
1: मतलब कि हर मूड का सोल्यूशन चाय है। बच्चों, एक जरूरी बात, चाय बड़ों के लिए ठीक होती है लेकिन बच्चों को ज्यादा चाय नहीं पीनी चाहिए।
0: ये तो तुमने बहुत जरूरी बात बताई। तो बच्चों, आपके लिए बेस्ट है दूध और जूस।
1: बच्चों, अभी हमने बात की चाय की, लेकिन एक सवाल, चाय बनती किससे है?
0: दिशा, दूध से। और कई बच्चे तो ऐसे होते हैं जो दूध पीना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं।
1: तो आज हम आपके लिए एक मजेदार कहानी लेकर आए हैं, चीकू और गोलू की दूध वाली कहानी।
2: एक गांव में दो दोस्त रहते थे, चीकू और गोलू। चीकू बहुत शरारती था और उसे दूध पीना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। दौड़ लगाते हैं।

होता है दूध में।

0: अगले दिन चीकू खेलते खेलते गिर जाता है। इस तरह चीकू रोज दूध पीने लगा और धीरे धीरे वो भी स्ट्रॉन्ग बन गया।
1: अरे वाह, आज तो मैं भी जीत सकता हूँ, मुझे कोई नहीं हरा सकता। देखा दूध का कमाल, जो हमें स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनाते हैं। इसलिए रोज दूध पियो और बनो सुपर स्ट्रॉन्ग।
2: तो बच्चों, अभी हमने गोलू और चीकू की ये कहानी सुनी और जाना कि दूध पीना कितना ज़रूरी है। तो जिस प्रकार चीकू ने समझा, इसी प्रकार मुझे लगता है बच्चे भी समझ गए होंगे दिशा, और बच्चे भी आज से ही दूध पिएंगे और अपने आप को हेल्दी और फिट रखेंगे।
3: मुझे तो लगता है ये छोटी सी कहानी सुनकर बच्चों में जोश आ गया होगा, और जोश को यूं ही बनाए रखने के लिए चलिए हम सुनते हैं प्यारा सा बाल गीत।

0: वाह दिशा बालगी, सुनकर तो मजा आ गया। तो बच्चों, ज्ञान के पिटारे से आज का आखिरी ज्ञान निकालते हैं और देखते हैं कि क्या खास होने वाला है।
1: तो बच्चों, अब समय है आज के एक और खास दिन के बारे में जानने का, और ये दिन जुड़ा है एक बहुत ही प्यारे, शांत और समझदार जानवर से।
0: जी हाँ, जो कि धीरे धीरे चलता है लेकिन कभी रुकता नहीं है, और वो है कछुआ।
1: बच्चों, हर साल 23 मई को हम वर्ल्ड टर्टल डे मनाते हैं। इस दिन का मतलब है कछुए के बारे में लोगों को जागरूक करना।
0: जी हाँ, और उन्हें बचाने के लिए लोगों को प्रेरित करना।
1: पता है बच्चों, कछुआ बहुत लंबे समय तक जीते हैं, कई तो 100 साल से भी ज्यादा।
0: क्या बात है। और पता है बच्चों, उनके पास हार्ड शेल होता है, जो कि खतरा होने पर अपने शेल में वो लोग छुप जाते हैं।
1: कछुओं ऐसा जीव है जो जल और जमीन दोनों में रह सकते हैं।
0: बच्चों, आपने कछुआ और खरगोश की कहानी तो सुनी ही होगी कि कैसे कछुआ अपनी मेहनत से खरगोश को हरा देता है।
1: और पता है बच्चों, कछुआ हमें सीख भी देता है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और धीरे धीरे मेहनत करते रहना चाहिए।
0: जी हाँ, और इसी के साथ ही बच्चों, कछुआ हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये समुद्र को साफ रखने में मदद करता है और नेचर का बैलेंस बनाए रखता है।
1: लेकिन बच्चों, आज कछुए खतरे में हैं प्लास्टिक और पॉल्यूशन की वजह से।
0: अगर हम कचरा समुद्र में फेंकते हैं तो बच्चों, कच्चे कछुओं को नुकसान पहुंचता है।
1: तो बच्चों, अगर आप गर्मी की छुट्टियों में अगर बीच साइड जाएं तो ध्यान रखें कि कचरा इधर उधर ना डालें।
0: दिशा, अभी गर्मी की छुट्टियां तो शुरू ही हो गई हैं, तो चलिए बच्चों को जानकारी देते हैं कि गर्मी की छुट्टियों का सदुपयोग कैसे करें।
1: बच्चों, चलिए।

0: ये सुनते हैं ये वार्ता कमल कुमार आर्या की।
1: आज हम आपको आपके एक मनपसंद विषय के बारे में बताएंगे। यह विषय है गर्मियों की छुट्टियों का सदुपयोग कैसे किया जाए। पूरे साल आप पढ़ाई करते हैं, होमवर्क पूरा करने के लिए मम्मी पापा के उपदेश सुनते हैं, उनकी डांट सुनते हैं और क्लास में काम पूरा ना करने पर टीचर की नाराजगी को सहन करना पड़ता है और सफाई देने के लिए तरह तरह के बहाने बनाने पड़ते हैं। कभी कभी तो पढ़ाई के कारण अपने पसंद के कार्यक्रमों को भी छोड़ना पड़ता है। इस प्रकार पूरे साल पढ़ाई करके आप लोग थक जाते हैं। इस थकान को दूर करने के लिए आपको गर्मियों की छुट्टियों का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार रहता है। इस तरह से गर्मियों की छुट्टियां आपके लिए बहुत महत्व रखती हैं। गर्मी की छुट्टियों का मतलब बहुत सारी मौज मस्ती, ना जल्दी उठने की चिंता और ना ही स्कूल जाने का टेंशन। लेकिन हमें छुट्टियों का महत्व और समय का मूल्य समझना चाहिए। छुट्टियों में आने वाले समय, लक्ष्य और भविष्य के लिए खुद को तैयार करना चाहिए। छुट्टियों में हमें अपने मन के अंदर झांकने का अवसर मिलता है। हमें अपनी कमियों कमजोरियों को जानने की कोशिश करनी चाहिए। इस कार्य में स्वयं के अलावा मित्रों, गुरुजनों एवं परिवारजनों का सहयोग बहुत महत्वपूर्ण होगा। छुट्टियां केवल मौज मस्ती और घूमने में बिताने की अपेक्षा अपने व्यक्तित्व का विकास करने में किया जाना चाहिए। अभिभावकों को ये भी ध्यान देना चाहिए कि छुट्टियों में बच्चों के खेलकूद, मनोरंजन, खान पान और समुचित देखभाल रखें। गर्मियों की छुट्टियां लगभग 1.5 माह की होती हैं, जो एक लंबा समय है जिसे योजनाबद्ध तरीके से व्यतीत करना चाहिए। हमें कुछ छुट्टियां बाहर भ्रमण करने में भी व्यतीत करनी चाहिए, जिससे आप लोगों को वहां की कल्चर, रहन सहन, भाषा, ऐतिहासिक एवं भौगोलिक जानकारी प्राप्त हो सके, जो आपके सामान्य ज्ञान में वृद्धि के लिए आवश्यक है। इसके अलावा गर्मियों की छुट्टियों का उपयोग आप अपनी हॉबी के अनुसार तैराकी, घुड़सवारी, चित्रकारी, संगीत, खेलों में अपनी योग्यता बढ़ाने में किया जा सकता है। गर्मियों की छुट्टियों में विद्यालय में समर कैंप भी आयोजित किए जाते हैं। इन कैंपों में कई प्रकार की रचनात्मक गतिविधियां सिखाई जाती हैं। गर्मियों की छुट्टियां आपको अपने रिश्तेदारों एवं दोस्तों से मिलने का भी एक अवसर प्रदान करती हैं। ग्रीष्मावकाश एक ऐसा अवसर है जिसे हमें सिर्फ मौज मस्ती करने में ही नहीं गंवाना चाहिए। गर्मियों की छुट्टियों का सदुपयोग ऑनलाइन शॉर्ट टर्म कोर्सेज को पूरा करने में भी किया जा सकता है। शॉर्ट टर्म कोर्सेज नॉलेज एवं स्किल को तो बढ़ावा देते ही हैं, साथ ही साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी करते हैं। बच्चों, आप गर्मियों की छुट्टियों का उपयोग अपने घर के कार्यों में अपने परिवार का सहयोग करने में भी व्यतीत कर सकते हैं, जैसे घर के फर्नीचर, सजावटी वस्तुओं, गिफ्ट आइटम्स, कपड़ों, किताबों, पुस्तकों, कंप्यूटर आदि के रख रखाव में अपने घर वालों की मदद कर सकते हैं। बच्चों, इस प्रकार आप अपनी गर्मियों की छुट्टियों को यादगार बना सकते हैं। धन्यवाद।
0: गर्मियों की छुट्टी का सदुपयोग। बच्चों, अभी इस विषय पर हमने वार्ता सुनी। वार्ताकार थे कमल कुमार आर्या। दिशा, इसी के साथ अब आगे बढ़ चलते हैं और अब बच्चों समय आ गया है कार्यक्रम के विशेष क्रम का यानी कि

0: माय नेम इज यश।
1: ओके यश, कौन से क्लास में पढ़ते हैं आप?
0: फोर्थ सी।
1: कौन से स्कूल में पढ़ते हैं यश आप?
0: मैं नेशनल स्कूल में।
1: ओके गुड। अच्छा यश, ये बताइए आपको पढ़ाई करना कैसा लगता है?
0: अच्छा।
1: अच्छा यश, ये बताइए आपको कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगता है?
0: मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है मैथ।
1: अरे वाओ। अच्छा पता है यश, काफी बच्चे तो मैथ से डरते हैं ना, बट आपको मैथ अच्छा लगता है, तो बहुत अच्छी बात है। तो ये बताइए यश, तो फिर आपको टेबल्स भी आते होंगे?
0: यस मैम।
1: कहाँ तक आते हैं आपको टेबल्स?
0: मुझे 20 तक टेबल आते हैं।
1: क्या बात है यश, आप तो बड़े अच्छे बच्चे हैं, आपको 20 तक टेबल्स भी आते हैं, और आपने जैसा बताया कि आपको मैथ अच्छा लगता है, तो यश हम ये भी जानना चाहेंगे, इसके अलावा जब आप फ्री होते हैं तो फ्री टाइम में आप क्या करते हैं, क्या करना आपको पसंद है? खेलना अच्छा लगता है, ड्राइंग करना अच्छा लगता है, बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है, घूमना पसंद है, क्या पसंद है आपको?
2: जो पसंद हो,
0: जो भी, क्रिएटिविटी।
1: क्रिएटिविटी करना पसंद है, चलिए अच्छी बात है। अच्छा यश, अब ये जानना चाहेंगे, कल्याण कार्यक्रम में हमारी आपसे बात हो रही है, तो आज आप क्या सुनाओगे हमें?
0: पोएम
1: सुनाइए।
0: ऑल थिंग्स ग्रेट एंड ब्यूटीफुल, ऑल क्रिएचर ग्रेट एंड स्मॉल, ऑल थिंग्स विश एंड वंडरफुल, द लॉर्ड गॉड मेड देम ऑल, ईच लिटिल फ्लावर दैट opens, each little world that sings, he made them glowing color, he made their tiny wings, the purple haired mountain, the river running by, the sunset and the morning that brightens up the sky, the cold wild and in the winter, the pleasant summer sun, the ripe fruit in the garden, he made them everyone, he gave us eyes and see them and lips that we might let, how great is God
2: almighty
0: who has made all things will।
1: क्या बात है यश, आपने बहुत अच्छी पोयम सुनाई, नेचर पे आपने हमने पोयम सुनाई है ना, सारी चीजें आपने बताई, डिस्क्राइब करी, काफी अच्छी लगी आपकी पोयम, और आपने बहुत ही अच्छे से भी सुनाई। अच्छा ये बताइए, इसके साथ ही कुछ और भी सुनाना चाहेंगे आप हमें?
0: जी मैम, मैं एक हिंदी की पोयम सुनाना चाहता हूँ।
1: क्या बात है यश, अभी आपने इंग्लिश की पोयम सुनाई, इसके बाद आप हमें हिंदी की पोयम भी सुनाने वाले हैं, तो भाई हम तो भाई तैयार हैं सुनने के लिए, सुनाइए।
0: छोटे मुंह से कैसे कह दूं इस भारत की बात रे, सुनो जैसे दिन सोने जैसे दिन है, इसके चांदी जैसी रात रे, उजाला मुकुट हिमालय इसका, ओ नदियों की माला है, पद पद वंदना करता श्रद्धा से, नील सिंधु मतवाला है, अनुपम सुंदरता ने दी है सोर सारे जग को, मत रे मात रे, एक बगीचा देश हमारा, फूल अनेकों
2: फूल अनेकों खिले यहाँ,
0: फूल अनेकों खिले यहाँ, अलग अलग है रूप रंग पर सभी प्रेम से मिले यहाँ, पतझड़ में भी मुस्कुराते हैं इस उपवन के पत्ते, रंग रंग बिरंगे पक्षी आकर गाते, जागृति का गाना गान नहीं गाते, जागृति का गाना नहीं, किसी का हृदय दुखाते खाते मेहनत का खाना, नीले नव से होती है नित अमृत की बरसात रे, अच्छाई सच्चाई का ये आराधक, शांति प्रेम ही नारा है, हिंसा का काले पनवाला नाग किसी से हारा है, इसके माध्य लिखी हुई है खुशियों की सौगात दे। मैम कंप्लीट हो गई।
1: वाह वाह, बहुत अच्छी थी आपकी यश कविता, मजेदार थी और प्रेरणादायक भी थी, है ना, जिस तरह से आपने सारी चीजों को डिस्क्राइब किया अच्छा लगा। यश आपकी दोनों पोएम भी बहुत ही अच्छी थी। अच्छा ये बताओ यश, आपकी फैमिली में कौन कौन है?
0: मेरी फैमिली में 4 लोग हैं।
1: अच्छा, मम्मी पापा और
0: मैं और मेरे छोटे भाई।
1: अच्छा आपके छोटे भाई भी हैं?
0: यस मैम।
1: अच्छा वो भी स्कूल जाते हैं?

0: यस मैम।
1: ओके, तो आप अपने छोटे भाई को कितना प्यार करते हैं?
0: बहुत।
1: अच्छा, मारते तो नहीं है उसके साथ? लड़ाई तो नहीं करते? करते
0: यस मैम।
1: हो? अरे मैं देखो, थोड़ा बहुत तो चलता है ना भाइयों के बीच में, प्यार भी लड़ाई भी, पर ज्यादा नहीं करना चाहिए, है ना? क्योंकि जितनी लड़ाई करते हैं या उतनी बार प्यार भी होता है ना, फिर बहुत ज्यादा मनाते भी आप उसे?
0: जब मैं उसको मारता हूँ, जब वो शैतानी करता है, फिर मैं उतनी प्यार से उसे मनाता हूँ।
1: क्या बात है, क्या बात है भाई, यही तो बड़े भाई का फर्ज भी होता है ना, कि शैतानी पे हल्का सा डांट दे और उसके बाद उसको प्यार से समझा के प्यार भी करे, है ना? तो
0: यस
1: यश,
0: मैम।
1: हमें तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और लग रहा है कि यश जो है बहुत ही समझदार बच्चे है ना। यश को पढ़ाई करना भी अच्छा लगता है, मैथ भी पसंद है, और यश ने हमें इतनी प्यारी प्यारी सी कविताएं भी सुनाई, और इसी के साथ ही वो अपने भाई से जिस तरह से उन्होंने अपना प्यार और लड़ाई का बताया, तो मुझे लगता है आपके अंदर काफी समझ है यश। काफी अच्छा लगा यश आपसे बात करके, मजा आया। आपको कैसा लग रहा है हमसे बात करके? क्या
0: बहुत अच्छा।
1: बात है, धन्यवाद यश, आपसे हमने हमें टाइम दिया, हमसे बात करी, थैंक यू,
0: वेलकम मैम।
1: वेलकम।
0: हेलो मैम। वैष्णवी।
1: हाय, सबसे पहले तो अपना नाम बताइए, क्या नाम है आपका? वैष्णवी। अच्छा वैष्णवी, कौन से क्लास में पढ़ती हैं आप?
0: थर्ड
1: थर्ड क्लास में पढ़ती हैं, ओके। अच्छा, कौन से स्कूल में जाती हैं आप?
0: मैं गार्डियन इंटरनेशनल स्कूल में जाती हूँ।
1: बहुत अच्छी बात है वैष्णवी। तो वैष्णवी, आपकी अभी स्कूल में कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई?
0: मैम अच्छी। यस
1: अच्छी चल रही है, तो अब आपके समर वेकेशन भी आने वाले होंगे ना?
0: मैम।
1: अच्छा, तो समर वेकेशन का कुछ सोचा है, कुछ प्लान किया है आपने कि इस समर वेकेशन में आप क्या करोगी?
0: मुझे जो हॉलीडे होमवर्क मिला है, मैं उसको कंप्लीट करूंगी और बाद में अपने पेरेंट्स के साथ घूमने जाऊंगी।
1: क्या बात है, क्या बात है। मुझे लगता है वैष्णवी, सबसे बढ़िया तो यही प्लान होता है ना, कि सबसे पहले तो जो हमें पेंडिंग होमवर्क है हमारा, हम उसे कंप्लीट कर लें तो हम टेंशन फ्री हो जाते हैं, और उसके बाद हम आराम से अपनी छुट्टी को एंजॉय करें, अपनी फैमिली के साथ घूमने जाएं, चीजें एक्सप्लोर करें, है ना? तो कहाँ घूमने का सोचा है वैष्णवी, कहाँ जाएंगी आप?
0: नानी घर। यस
1: नानी के घर। मुझे लगता है सबसे अच्छा जो घूमने का होता है वो नानी का घर ही होता है ना, जब भी छुट्टी पड़े तो नानी के घर जाके ही हमें सबसे ज्यादा मजा भी आता है। कहाँ रहती है आपकी वैष्णवी नानी?
0: रामपुर में।
1: अच्छा, रामपुर में ही रहती हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो नानी हमें कितना प्यार करती हैं, सारी चीजें करते हैं, तो मजा आता है ना उनके यहाँ रह के।
0: यस मैम।
1: तो आपकी मुझे लगता है जो समर वेकेशन है ना, वो बहुत अच्छी जाने वाली है। और अभी आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है वैष्णवी? अच्छा
0: मैम अच्छी।
1: वैष्णवी, आपके दोस्त हैं तो
0: यस
1: कोई बेस्ट फ्रेंड भी होगा ना स्कूल में?
0: मैम। यस
1: कौन है आपकी बेस्ट फ्रेंड?
0: मैम। मेरी बेस्ट फ्रेंड तंजीला है।
1: तनशीला, ओके। तो अच्छा वैष्णवी, वो आपके क्यों है बेस्ट फ्रेंड, मतलब आपको उसके अंदर क्या ऐसी क्वालिटी लगती है, अच्छा लगता है आपको उसके अंदर जो आपने उसको अपना फ्रेंड बनाया?
0: मैम उनकी पढ़ाई अच्छी है बहुत।
1: ठीक है, अच्छा पढ़ने में अच्छी है वो,
0: यस मैम।
1: तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमें हमेशा कहा जाता है ना कि जो पढ़ाई में अच्छा होता है, जिसकी अच्छी संगत करोगे वैसे ही आप बनोगे, तो बहुत अच्छी बात है। आप पढ़ाई वाली, आपने अपनी दोस्त बना रखी है, तो आपको पढ़ाती है, मतलब हेल्प करती है आपकी, कहीं पे आप कंफ्यूज हो जाते हो तो?
0: यस
1: चलिए बहुत अच्छी बात है। तो मुझे तो लगता है वैष्णवी, आपने बहुत अच्छी दोस्त बनाई है अपनी, और इन दोस्ती को ऐसे आप चलाते रहिए, है ना? ऐसे ही दोस्त होने भी चाहिए लाइफ में। अच्छा वैष्णवी, अब ये पूछना चाहेंगे हम आपसे, आप हमें आज क्या सुनाएंगे, आपकी क्या तैयारी है हमें सुनाने के लिए?
0: मैम हिंदी की पोयम।
1: सुनाइए।
0: हर पल चलती जाती चींटी, शम का रंग सुनाती चींटी, कड़ी धूप हो या हो वर्षा, दाना चुनकर नाती चींटी, सचमुच कैसे कलाकार हैं, घर को खूब सजाते हैं चींटी, छोटे तन पर बड़े इरादे, नहीं कभी घबराते हैं चींटी, नन्हे नन्हे पैरों से पर्वत पर चढ़ जाते हैं चींटी, काम बड़ा करके दिखाते हैं चींटी, जहाँ कहीं अड़ जाते हैं चींटी, मेहनत ही पूजा है प्रभु की, हमें यह सिखाते हैं चींटी।
1: क्या बात है, क्या बात है, इतनी प्यारी आपने कविता सुनाई, परिश्रम पे सुनाई, है ना, कि चींटी किस तरीके से मेहनत करती है ना, तो हमें भी
0: यस
1: ऐसी मेहनत करनी चाहिए तो सफलता जरूर मिलेगी। बहुत ही प्रेरणादायक कविता थी वैष्णवी आपकी, काफी अच्छा लगा आपसे बात करके और आपकी पोयम सुन के भी। तो वैष्णवी आगे इसी तरह फिर हमसे जुड़ेंगी? चलिए
0: मैम।
1: वैष्णवी, काफी अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, थैंक यू।
2: तो आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हो चुके हैं दो प्यारे और नटखट से बच्चे। चलिए जानते हैं उनसे उनका नाम और देखते हैं वो आज हमारे कलियर प्रोग्राम के बच्चों को क्या सुनाएंगे। हेलो, क्या नाम है आपका?
3: मेरा नाम अक्षम सिन्हा है।
2: आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं?
3: मैं कक्षा पंचम का छात्र हूँ।
2: बहुत बढ़िया बात है, आप कक्षा पंचम के छात्र हैं। आपको इतनी शुद्ध हिंदी कैसे आती है?
3: किताब से।
2: किताब से आती है। अच्छा बढ़िया। अच्छा ये बताइए, आपके स्कूल की छुट्टियां तो हो गई होंगी ना?
3: नहीं।
2: क्यों, अभी नहीं हुई? कब से होंगी? अच्छा ये बताइए,
3: 20 तारीख।
2: अच्छा ये बताइए, आप गर्मियों की छुट्टियों में सबसे ज्यादा कहाँ घूमते हैं, क्या करना पसंद करते हैं, कैसे आप लास्ट समर आपने कैसे बिताया?
3: मैं चाचा के सबसे ज्यादा रहता हूँ।
2: चाचा के सबसे ज्यादा रहते हैं, बहुत बढ़िया। और कुछ नया, कुछ एक्टिविटी सीखते हैं आप गर्मी की छुट्टियों में?
3: मैं बुक्स पढ़ता हूँ।
2: अच्छा बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताइए, आज आप क्या सुनाएंगे?
3: मैं आज काली माता के ऊपर एक सॉन्ग सुनाना चाहता हूँ।
2: सुनाइए।
3: ऊंचा है भवन, ऊंचा है मंदिर, ऊंची है शान मैया तेरी, चरणों में झुके बादल भी तेरे, पर्वत पे लगे शैया तेरी, हे काले रात्रि कल्याणी तेरा जोड़ धरा, पर कोई नहीं मेरी माँ के बराबर, कोई नहीं मेरी माँ के बराबर, कोई नहीं तेरी ममता से जो गहरा हो ऐसा तो सागर, कोई नहीं मेरी माँ के बराबर, कोई नहीं मेरी माँ के बराबर, कोई जैसे धारा और नदियाँ, नदी जैसे फूल और बगिया, मेरे इतना

0: दुख दूर हुआ मेरा सा अंधियारों में चमका तारा, नाम तेरा जब भी है पुकारा, सूरज भी यहाँ है चंदा भी, तेरे जैसा उजागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं।
1: अरे वाह अक्षरम, ये तो तुमने बहुत ही सुंदर भजन सुनाया हमें। ये बताइए, आपको ये किसने सिखाया?
0: मेरी दादी ने,
1: आपकी दादी ने सिखाया? अच्छा ये बताइए, आपकी दादी और क्या क्या सिखाती है?
0: मेरी दादी मुझे म्यूजिक सिखाती है, मैथ सिखाती है और इंग्लिश सिखाती है।
1: ये तो बहुत अच्छी बात है। चलिए अक्षरम, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। अब बारी है एक और नन्हे से नटखट से बच्चे की, वो बहुत देर से इंतजार कर रहा है। चलिए जानते हैं उनसे उनका नाम। क्या नाम है आपका?
0: मेरा नाम है अर्णव।
1: आज आप क्या सुनाएंगे?
0: मैं आपसे एक पोयम सुनाना चाहता हूँ।
1: सुनाइए।
0: तुम मन की आवाज सुनो, जिंदा हो ना शमशान बनो, पीछे नहीं आगे देखो, नई शुरुआत करो, मंजे नहीं तरम बदलो, तुझे समझ ना आए तो जरूर ता ध्यान करो, तुम मन की आवाज सुनो।
1: अर्णव, ये तो तुमने बहुत अच्छी कविता सुनाई। ये बताइए, आपने ये कहाँ से सीखी?
0: मैंने ये मोबाइल से सीखी।
1: मोबाइल से सीखी? ये तो बहुत अच्छी बात है। आजकल बच्चे मोबाइल में ज़्यादा वीडियो गेम्स और यूट्यूब वगैरह देखते हैं, और आपने ये बहुत अच्छी कविता सीखी है ना। अच्छी अर्णव, ये बताइए आपको सबसे ज़्यादा क्या करना पसंद है?
0: मुझे सबसे ज्यादा बुते दिन पसंद
1: बुक रीडिंग करना पसंद है? खेलना पसंद नहीं है आपको?
0: है
1: तो सच सच बताइए, सबसे ज्यादा क्या पसंद है?
0: थे ना।
1: खेलना पसंद है। अच्छा बढ़िया। अच्छा ना, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। आप अगली बार फिर से हमारे स्टूडियो में आइएगा, और हमारे कलिया प्रोग्राम के बच्चों को अपनी अच्छी अच्छी बातें बताइएगा।
2: भगवान का रूप, निर्मल मन और सच्ची धूप, इनकी हसी में जादू होता, हर गम का भी इलाज होता, नन्हे हाथों में बड़े सपने, आंखों में उजले अपने, हर दिन कुछ नया सिखाते, जीवन जीना हमें बदलाते, कभी तितली बन उड़ जाते, कभी बादल संग मुस्काते, छोटी छोटी खुशियों में ही अपनी दुनिया बसाते, ना कोई चिंता ना कोई डर, बस मस्ती भरा इनका सफर, गिरते हैं तो फिर संभलते, हिम्मत से आगे बढ़ते हर पल, इनकी बातें मीठी मीठी जैसे शहद की प्यारी बूंदे, इनकी इनके मासूमियत के आगे फीकी पड़ जाए सब धुने, इसलिए इनको प्यार दो, अच्छे संस्कारों को उपहार दो।
3: दिशा, काफी सारे बच्चों से हमारी बातचीत हुई है, तो बातचीत के सिलसिले को यूं ही बरकरार रखते हैं, और इसी के साथ ही बच्चों को बता देते हैं कि हमारे साथ स्टूडियो में एक और बच्चा जुड़ चुका है, और ये बच्चा आज पहली बार हमारे स्टूडियो में आया है। और तो जल्दी से जानते हैं दिशा इनका नाम। देखिए काफी मुस्कुराहट है इनके चेहरे पे, काफी एक्साइटेड है ये कि पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं। क्या नाम है आपका?
0: नित्यांश सक्सेना।
1: नित्यान सक्सेना। अच्छा ये बताइए, आपको अभी कैसा लग रहा है, क्योंकि आप पहली बार आए हो हमारे स्टूडियो में, आप नर्वस तो नहीं हो रहे हो?
0: नो
3: क्या बात है दिशा, देखिए काफी कॉन्फिडेंस में है नित्यांश। नित्यांश भले ही फर्स्ट टाइम आए हैं, बट नित्यांश जो है ना काफी फ्रेंडली है, और ये हमारे भी दोस्त बन चुके हैं। तो अब जानते हैं नित्यांश से कि नित्यांश आप पढ़ाई करते हैं?
0: यस।
3: कौन से क्लास में पढ़ते हैं?
0: थर्ड।
3: थर्ड क्लास में पढ़ते हैं, ओके। अच्छा नित्यांश, आप कौन से स्कूल में जाते हैं?
0: दयावती मोदी अकेडमी।
3: ओके गुड। तो ये बताइए नित्यांश, आपको पढ़ाई करना कैसा लगता है?
0: अच्छा।
3: अच्छा लगता है, और खेलना कैसा लगता है?
0: अच्छा।
1: सब चीजें नित्यांश को अच्छी लगती है, कोई चीज बुरी नहीं लगती।
3: अच्छा ऐसा कुछ है जिसको करने में आपको बहुत गुस्सा आता है कि मैं नहीं कर रहा ये काम, मुझे नहीं करना, आपको इंटरेस्ट नहीं आता, वो ऐसा कोई काम है?
0: No.
3: मुझे लगता है नित्यांश अभी बहुत कुछ हमें बताएंगे भी। तो नित्यांश ये बताइए कि आपके फ्रेंड्स हैं?
0: Yes.
3: कितने फ्रेंड्स हैं आपके? 6 फ्रेंड्स हैं
0: स्कूल में।
3: स्कूल में, ओके। मुझे लगता है नित्यांश का पूरा ग्रुप है ना? ग्रुप है ना आपका? क्या बात है।
1: तो ग्रुप का लीडर कौन है?
4: गर्ल
1: गर्ल बनी है।
3: अच्छा आपके ग्रुप में आपकी गर्ल्स में कौन क्या नाम है उनका जो आपकी लीडर है ग्रुप की?
4: वानिया।
3: हाँ
4: श्रीनिका
3: जी।
4: और कोई नहीं।
3: अच्छा
4: और
3: बॉयज में?
4: आरव भटनागर, माधव पांडे
3: और नित्यांश सक्सेना है।
1: अच्छा नित्यांश
4: एक और
3: कौन है?
4: हिफ़्ज़ान हुसैन।
3: वाओ आपका तो बहुत अच्छा ग्रुप है दिशा, देखिए पूरा फ्रेंड ग्रुप है इनका, मुझे लगता है काफी अच्छी दोस्ती होगी ना फिर आप सबकी।
1: अच्छा नित्यांश आप अपने फ्रेंड्स को कुछ कहना चाहेंगे? वो आपको सुनेंगे तो उन्हें आप कुछ कहना चाहेंगे?
4: बहुत अच्छे दोस्त है, कुछ कुछ शैतान भी है।
1: कुछ शैतान भी है। अच्छा सबकी ना एक एक तारीफ कर दीजिए, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा कि नित्यांश ने हमारी क्या क्या तारीफ करी, हम भी तो सुने।
4: मेरे दोस्त बहुत अच्छा पढ़ते हैं और बहुत अच्छा और हेल्प करते हैं, खेलते हैं।
3: अच्छा नित्यांश अब आपसे ये जानना चाहेंगे, आपको खेलना जैसे आपने बताया पसंद है, तो ऐसा कौन सा स्पोर्ट है जो आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है?
4: क्रिकेट।
3: अच्छा आपका फेवरेट कोई है क्रिकेटर जो आपको बहुत पसंद है, जिसको आप फॉलो करते हो?
4: विराट कोहली।
1: देखा प्रियंका हर बच्चे के मुंह पे विराट कोहली नाम, कुछ भी पूछ लोगी क्या कि कौन सा क्रिकेटर पसंद है, सब बच्चों को विराट कोहली पसंद है।
3: जी हाँ तो आप विराट कोहली को फॉलो करते हैं, अच्छी बात है ना। अच्छा इसके बाद ये बताइए आज आप हमारे स्टूडियो में आए हैं तो कुछ तैयारी भी करी होगी ना हमने बच्चों को सुनाने के लिए, क्या सुनाने वाले हैं आप?
4: स्टोरी
3: सुनाइए।
4: एक बार की बात है, एक बच्चा था जो हर दिन खेलने जाता था, जो वो सुबह जाता था और रात को आता था, उसके मम्मी पापा उसे बहुत डांटते थे। एक दिन वो सुबह चला गया और रात को 9:30 बजे आया, उसके पापा ने उसे बहुत डांटा। यही तक।
3: उसके बाद क्या हुआ?
4: उसके बाद फिर वो एक दिन बिना बताए चला गया।
3: कहाँ चला गया?
4: खेलने।
3: फिर
4: उसके पापा ने उसको घर में बहुत ढूंढा, फिर बाहर लोगों से पूछा, फिर पुलिस से पूछा, फिर जाके वो मिला पुलिस के। यही तक
1: स्टोरी थी,
3: बस यही तक स्टोरी थी। फिर उसके पापा ने उसको नहीं डांटा?
4: नहीं, फिर उसको गले से लगा लिया।
3: चलिए कोई बात नहीं, नित्यांश वैसे भी हमारे साथ फर्स्ट टाइम जुड़े हैं, फर्स्ट टाइम हमारे स्टूडियो में आए हैं, और मुझे लगता है ना कि अब नित्यांश हमेशा हमारे साथ स्टूडियो में आएंगे, हमसे जुड़ेंगे और धीरे धीरे हमें बहुत कुछ सुनाएंगे, है ना?
4: हाँ।
3: जी तो चलिए नित्यांश बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और आपके संग ढेर सारी बातें हमने करी, बहुत कुछ अच्छा अच्छा भी हमें नित्यांश ने अपने बारे में बताया, अपने दोस्तों के बारे में बताया, काफी मजा आया। और नित्यांश आपको कैसा लगा?
4: अच्छा लगा।
3: चलिए थैंक यू सो मच।
5: जय हिंद।

0: बच्चों, अभी हम सुन रहे थे नन्हे बोल कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत बच्चों ने हमें अपनी प्यारी प्यारी सी प्रस्तुतियां सुनाई। काफी मजा आया बच्चों के संग बातचीत करके, उनकी मीठी मीठी बातें सुन के। और देखिए दिशा, कार्यक्रम का समय समापन की ओर हो चला है, तो अब हमें जाना होगा। पर जाने से पहले बच्चों, आपको हमारा आज का कल्याण कार्यक्रम कैसा लगा हमें लिख भेजिएगा। इसके लिए आप हमें अपने पत्र भेज सकते हैं, मेल कर सकते हैं। पत्र भेजने के लिए हमारा पता है कल्याण कार्यक्रम द्वारा के निदेशक आकाशवाणी रामपुर, पिन 2449-01।
1: और हमारा ईमेल एड्रेस है patramila@rampur.gmail.com।
0: उम्मीद करते हैं बच्चों आपने नोट कर लिया होगा और आप हमें लिख भेजेंगे। तो अगले रविवार फिर होगी आप संग मुलाकात। तब तक के लिए अपने दीदी प्रियंका
1: और दीदी दिशा
0: को दीजिए अनुमति और प्रेम से बोलिए जय हिंद।

0: pressure regularly. Defeat the silent killer. The day is a part of Hypertension Awareness Month, aiming to raise global awareness about high blood pressure, promote prevention, detection and control. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to reach Gothenburg this afternoon on a two-day visit to Sweden will hold talks with Swedish Prime Minister Ulf Kristersson to review cooperation in trade, green transition, AI and defence. India and Netherlands elevate bilateral relationship to strategic partnership. 17 agreements signed to strengthen collaboration in key areas. India condemns attacks on commercial shipping in Strait of Hormuz as unacceptable. Says disrupting freedom of navigation cannot be justified. World Health Organization declares Ebola outbreak in Congo and Uganda a public health emergency of international concern. IMD issues heavy to very heavy rainfall alert at isolated places over Andaman and Nicobar Islands, sub-Himalayan West Bengal and Sikkim today. And Nepali mountaineer Kamilita Sherpa creates history by climbing Mount Everest for 32nd time, breaking his own record. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। वे स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ व्यापार, प्रदूषण रहित तकनीक अपनाने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रक्षा क्षेत्र में सहयोग पर वार्ता करेंगे। भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। भारत ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यापारिक जहाजों पर हमलों की निंदा करते हुए उन्हें अस्वीकार्य बताया। कहा, जहाजों की बेरोक टोक आवाजाही में बाधा उचित नहीं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो और युगांडा में इबोला के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय बताया। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज वर्षा की चेतावनी जारी की और नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए 32वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के निमंत्रण पर स्वीडन जा रहे हैं। श्री मोदी की यात्रा का उद्देश्य तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों के दौर में सहयोग के नए आयाम तलाशना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस दौरान श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। दोनों प्रधानमंत्रियों के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन भी यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को संबोधित करेंगी।
2: प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर स्वीडन के उद्योग जगत में उत्साह का माहौल है और कारोबारी समुदाय इस दौरे के परिणामों को लेकर काफी आशावान है। आकाशवाणी से बातचीत में इंडियन स्वीडन बिजनेस काउंसिल के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी श्री रॉबिन सुखिया ने जन से जन संपर्कों के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री की दूसरी बार मेजबानी करना स्वीडन के लिए अत्यंत उत्साह और गर्व का विषय है।
3: मैं एक बिजनेस काउंसिल की सोच के साथ काम करता हूं, जहां लोगों और मीटिंग्स को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। हर मीटिंग हमारे लिए आगे बढ़ने का एक नया कदम होती है। उनके स्वीडन आने से हमें बेहद खुशी और गर्व है। वे जिन क्षेत्रों पर काम कर रहे हैं उनकी जल्द घोषणा होने की उम्मीद है। इससे कई उद्योगों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। मुझे भरोसा है कि इस आर्थिक सहयोग से हमें बेहतर और मजबूत परिणाम देखने को मिलेंगे।
2: इस बैठक में दोनों देशों के बीच समग्र द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जा सकती है और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सहयोग के नए अवसरों पर भी चर्चा करी जा सकती है। दोनों नेता हरित परिवर्तन, AI, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप, मजबूत सप्लाई चेन, रक्षा, अंतरिक्ष, क्लाइमेट एक्शन और जन से जन संपर्कों जैसे क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर भी विचार विमर्श कर सकते हैं। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
1: कल अपनी यात्रा के दूसरे चरण में भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक स्तर पर ले जाकर 17 समझौते किए। ये समझौते रक्षा, महत्वपूर्ण खनिज और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित हैं। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया और

0: सुरक्षा, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक रोडमैप जारी किया। इनमें सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष, यांत्रिक मेधा और क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र के में सहयोग भी शामिल है। दोनों नेताओं ने ग्रीन हाइड्रोजन के विकास के लिए भी साझा रोडमैप जारी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स को भारत का एक प्रमुख यूरोपीय साझेदार बताया।
1: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत के स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
0: नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटेन ने कहा कि भारत के साथ संबंधों का महत्व लगातार बढ़ रहा है और दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक और रणनीतिक सहयोग जरूरी है। भारत ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने तथा जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। श्री हरीश ने यह बात वैश्विक ऊर्जा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की एक विशेष बैठक में कही। कुछ दिन पहले ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाले एक जहाज पर हमला हुआ था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप टेक्नोलॉजी ही भविष्य की अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार होंगे। आज गुजरात के अहमदाबाद में मिलियन माइंड्स टेक पार्क के पहले चरण और ग्रेमी सिटी कैंपस का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि भारत विश्व के हर उभरते क्षेत्र में अग्रणी बन गया है।
2: आने वाले 25 साल में जो सेक्टर विश्व की अर्थनीति को, विश्व के अर्थतंत्र को दिशा देंगे, वो सभी क्षेत्र में आज भारत फाउंडर बनकर अपनी मजबूत उपस्थिति को दर्ज करा रहा है और यही बता रहा है कि भारत का भविष्य बहुत सुनहरा है। AI और डीप टेक के जो भविष्य है, इसके लिए इसके जैसे टेक पार्क बहुत बड़ा काम भी करेंगे और इसको आगे भी बढ़ाएंगे।
0: श्री अमित शाह ने गांधीनगर में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान में नवाचार और इनक्यूबेशन केंद्र का उद्घाटन भी किया। वे गांधीनगर निगम के विकास कार्यों का भी उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री शाह गांधीनगर जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड मधुर डेयरी के नवनिर्मित 5 लाख लीटर क्षमता वाले संयंत्र का भी उद्घाटन करेंगे। श्री शाह 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। मकानों की गिनती का पहला चरण 5 राज्यों में शुरू हो गया है। इसके तहत राजस्थान, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में मकानों की सूची तैयार की जाएगी। एक रिपोर्ट।
3: घर घर जाकर सूची तैयार करने का काम आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी चल रहा है। सूची तैयार करने के लिए घर के सामानों, उपलब्ध सुविधाओं और परिसंपत्तियों का विवरण जुटाया जा रहा है। स्वगणना सुविधा आज से गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पुदुचेरी में भी शुरू की गई है। ये सुविधा 31 मई तक उपलब्ध रहेगी। स्वगणना सुविधा उत्तर प्रदेश में भी जारी है, जो 21 मई तक उपलब्ध रहेगी। अब तक 25 राज्यों में 1,44,00,000 से अधिक घरों के निवासी स्वगणना प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASI ने मध्य प्रदेश के धार जिले में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के 7 अप्रैल 2003 के उस आदेश को भी रद्द कर दिया था, जिसमें मुसलमानों को हर शुक्रवार को भोजशाला परिसर के भीतर नमाज अदा करने की अनुमति दी गई थी। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज से CNG की कीमतों में 1 रुपए की बढ़ोतरी की है। अब दिल्ली में 1 किलोग्राम CNG की नई दर 80.09 रुपए, गाजियाबाद और नोएडा में 88.70 रुपए और गुरुग्राम में 85.12 रुपए हो गई है। इस सप्ताह की शुरुआत में भी CNG की कीमतों में 2 रुपए की वृद्धि की गई थी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि सोने और प्लैटिनम से मढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को संशोधित करके मुक्त से प्रतिबंधित कर दिया गया है।

0: दिल्ली सरकार महिला स्व सहायता समूहों और स्टार्टअप्स को 10 करोड़ रुपए तक की बिना गारंटी वाला ऋण उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि सरकार स्वयं इन ऋणों की गारंटर बनेगी। दिल्ली मेट्रो निजी वाहनों के बजाय मेट्रो के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए अतिरिक्त ट्रेन चलाएगी। दिल्ली मेट्रो के अनुसार यह फैसला ऊर्जा और धन की बचत तथा पर्यावरणीय सुरक्षा में मेट्रो की भूमिका को देखते हुए लिया गया है। इसके लिए प्रत्येक सोमवार को 24 अतिरिक्त मेट्रो ट्रेन चलाई जाएंगी। केरल से दिल्ली आ रही तिरुवनंतपुरम हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस के B1 कोच में आज तड़के आग लग गई। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, कुछ रेलगाड़ियों की आवाजाही पर असर पड़ा है। ये घटना मध्य प्रदेश के रतलाम में कोटा डिवीजन के लूणी रिच्छा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशनों के बीच तड़के 5:20 पर हुई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो और युगांडा में इबोला के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए आपात स्थिति घोषित किया है। इस बीमारी से 300 से अधिक लोग पीड़ित हैं और 88 की मौत हुई है। हालांकि संगठन ने स्पष्ट किया है कि इबोला का संकट COVID-19 जैसी महामारी जैसा नहीं है। संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को बंद न करने की सलाह भी दी है। इबोला के इलाज के लिए फिलहाल कोई टीका या उपचार उपलब्ध नहीं है। आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस है। इसका उद्देश्य उच्च रक्तचाप के बारे में वैश्विक जागरूकता, रोकथाम, पहचान और नियंत्रण को बढ़ावा देना है। इस वर्ष का विषय है उच्च रक्तचाप को मिलकर नियंत्रित करें, नियमित रूप से अपने रक्तचाप की जांच करें और इस बीमारी को हराएं। आज विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस भी मनाया जा रहा है। आज ही के दिन 1865 में पेरिस में संयुक्त राष्ट्र डिजिटल प्रौद्योगिकी एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना की गई थी। इस दिवस का उद्देश्य इंटरनेट और इससे जुड़ी तकनीकों के सकारात्मक उपयोग को बढ़ावा देना है। नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए 32वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर इतिहास रच दिया है। 56 वर्षीय कामी रीता एवरेस्ट पर सबसे अधिक बार चढ़ाई करने वाले शेरपा हैं। इस बीच पर्वत रानी के नाम से मशहूर लाखपा शेरपा ने भी एवरेस्ट पर लगातार 11वीं बार सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली पहली नेपाली महिला होने का अपना रिकॉर्ड बरकरार रखा है। विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने कहा है कि भारत संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ अपनी साझेदारी के माध्यम से डोमिनिका के कलिनागो समुदाय को सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मार्गरीटा ने डोमिनिका के कलिनागो क्षेत्र का दौरा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत डोमिनिका के साथ साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और दक्षिण दक्षिण सहयोग पर आधारित अपनी मैत्री को और प्रगाढ़ कर रहा है। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों और सिक्किम में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, दक्षिण कर्नाटक के भीतरी इलाकों, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल, केरल, माहे और लक्षद्वीप में भी भारी बारिश हो सकती है। अगले 2 दिन तक बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, ओडिशा, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कोंकण, गोवा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तर पूर्वी राज्यों में बिजली और तेज हवाओं के साथ तूफान की संभावना है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक लू की स्थिति रह सकती है। मध्य प्रदेश में इंदौर और उज्जैन भीषण गर्मी की चपेट में है। कल खंडवा और नौगांव में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया, जबकि प्रदेश के 15 शहरों में पारा 43 डिग्री या उससे अधिक रहा। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग के अनुसार आज रतलाम, खरगोन और खंडवा में तेज लू चलने की संभावना है और तापमान 44 डिग्री के पार जा सकता है। इसके अलावा इंदौर, उज्जैन, सागर, रीवा, छतरपुर समेत प्रदेश के दर्जन भर से ज्यादा जिलों में लू का असर बना रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों ने लोगों को दोपहर 12 से 3 बजे के बीच जरूरी काम होने पर ही घर से निकलने की सलाह दी है। साथ ही दिन भर पर्याप्त पानी पीते रहने और शरीर को हाइड्रेट रखने की अपील भी की है। मौसम विभाग के मुताबिक 19 मई तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भीषण गर्मी का दौर जारी रहेगा। आज कहीं भी बारिश का अलर्ट नहीं है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी, भोपाल।
0: अभी प्राप्त समाचार के अनुसार रेल मंत्रालय ने त्रिवेंद्रम नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के 2 पिछले डिब्बों में लगी आग की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। मंत्रालय ने बताया कि डिब्बे की सुरक्षा प्रणाली के कारण ट्रेन स्वतः रुक गई। और अब खेल खबरें। IPL क्रिकेट में आज धर्मशाला में दोपहर बाद 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला

0: मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इधर दिल्ली में शाम 7:30 बजे से राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने होंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। वे स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ व्यापार, प्रदूषण रहित तकनीक अपनाने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रक्षा क्षेत्र में सहयोग पर वार्ता करेंगे। भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए और भारत ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यापारिक जहाजों पर हमलों की निंदा करते हुए उन्हें अस्वीकार्य बताया। कहा, जहाजों की बेरोकटोक आवाजाही में बाधा उचित नहीं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 2:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुनहरा दौर।

0: आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं 1950 के दशक के कुछ फिल्मी नगमे। आइए कार्यक्रम का पहला गीत सुनते हैं बावरे नैन फिल्म से, आवाजें हैं गीता दत्त और मुकेश की।
1: ये तस्वीर तो मेरी है।
2: नहीं, ये दस की है जो हमेशा मेरे ख्यालों में आता है।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म डिटेक्टिव से हेमंत कुमार और गीता दत्त को। आप 1950 के दशक के फिल्मी नगमे सुन रहे हैं और हम आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम सुनहरा दौर के अंतर्गत। आइए कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं, फिल्म सट्टा बाजार से।

सुनहरा दौर, ये कार्यक्रम इस वक्त आप सुन रहे हैं और हम आपको 1950 के कुछ फिल्मी नगमे सुनवा रहे हैं। आइए अब आज के इस कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनते हैं फिल्म CID से। आवाज़ें हैं शमशाद बेगम, आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनहरा दौर और हम आपको सुनवा रहे थे 1950 के दशक के कुछ फिल्मी गीत। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 3 बजे हैं। मीडियम वेव पर हमारी आज की सभा के प्रसारण यहीं संपन्न होते हैं, लेकिन अब से शाम 5 बजे तक एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम उपलब्ध होंगे। शाम 5 बजे हमारी दूसरी सभा मीडियम वेव और एफएम पर एक साथ आरंभ होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।

नमस्कार श्रोताओ, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के ठीक 3:01 हुए हैं। वक्त हो चला है आपके कार्यक्रम पसंदीदा कार्यक्रम मन चाहे गीत का। तो मन चाहे गीत कार्यक्रम लेकर हम हाजिर हैं। हो चला है इस कार्यक्रम का वक्त। आपके ढेरों पत्र हम तक पहुंचे हैं श्रोताओ, और पहुंच भी रहे हैं, जिनमें आपके प्यारे प्यारे से नख़्मे हैं। आपके कुछ इन्हीं सरगमी गीतों से हमने सजाया है आज का मन चाहे गीत कार्यक्रम। तो सुनिए, कहीं ये आपकी पसंद का गीत तो नहीं?

आए दिन बहार के इस गीत का, इस फिल्म का गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। और इस गीत के लिए हमें पत्र लिखे गर्ल्स स्कूल मनिहारी रोड से अवधेश गुप्ता, भोलो नीलू, विशाल राज और वंशराज, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से इस गीत की फरमाइश की हरदेव मीका, बलविंदर विरक, जितेंद्र विरक और मीका विरक ने।

लैला मजनू फिल्म का ये गीत था मोहम्मद रफी लता मंगेशकर की आवाजों में, साहिर लुधियानवी के बोलों को सुरों में ढाला मदन मोहन ने, और फरमाइश थी आप सभी की बदायूं उत्तर प्रदेश से डॉक्टर मसूर खान, मोहम्मद सरफराज खान, विकास सक्सेना और प्रवीण राउत इस गीत को सुनना चाहते थे, और इसी गीत की फरमाइश की विश्वकर्मा नगर नागपुर से शैलेश गवाड़कर, वैशाली गवाड़कर, कुमारी ध्वनि गवाड़कर परी और अभिजीत गवाड़कर राही भी यहीं से, सरिता सिद्धांत और प्रिंस एकांश गवाड़कर की ये फरमाइश थी। मंचा गीत कार्यक्रम का ये अगला मनचाहा गीत है कभी कभी फिल्म से, लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाजें हैं, साहिर लुधियानवी की बोलें हैं, खयाम का संगीत।

इस गीत की फरमाइश की चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, हेवरखेड़ तहसील तेलहारा अकोले महाराष्ट्र से विनोद कुमार आढ़िया, सौभाग्यवती भारती आढ़िया, पारस पायल, श्वेता आढ़िया और उर्वी बेन आढ़िया ने इसे पसंद किया। और ककराला उत्तर प्रदेश से विकास सक्सेना, कर्मवीर गोखले, प्रवीण राउत और अनीता नागर की फरमाइश थी। विविध भारती से आप सुन रहे हैं मन चाहे गीत।

राहुल देव बर्मन के संगीत निर्देशन में इसे गाया परवीन सुल्ताना ने। मजरू सुल्तानपुरी का लिखा यह नगमा था फिल्म कुदरत से। इस गीत को पसंद किया था छत्तीसगढ़ करगी रोड से शैलेश सिंह, नीलेश सिंह, संध्या सिंह और शैलू ठाकुर ने, और इसी गीत की फरमाइश की थी सौभाग्यवती मीरा प्रकाश ने। और इन्होंने सब कुछ तो लिखा है श्रोताओं, लेकिन अपनी जगह का नाम नहीं लिखा कि इन्होंने कहां से पत्र लिखा है। आप सुन रहे हैं मन चाहे गीत।

आप सुन रहे थे धरती फिल्म का गीत, मोहम्मद रफी की आवाज में। राजेंद्र कृष्ण के बोल थे, शंकर जयकिशन की तर्ज थी। इस गीत को सुनना चाहा राजस्थान से शंभु दयाल खटक, विमला देवी और पूजा खटक, और जिला अमरावती प्रवीण नगर से। इस गीत की फरमाइश की चंदू हातोले, सीमा हातोले, स्नेहल ने। और इसी गीत के लिए हमें पत्र लिखे गंज डंडवारा उत्तर प्रदेश से बीपी गौतम, सरिता गौतम, अनन्या गौतम, ऐश्वर्या गौतम, श्रेय गौतम, कुश गौतम, रिंकू, टिंकू और रीना। तो मंच है गीत कार्यक्रम की यही थी आखिरी पेशकश। श्रोताओ, आपने इतने प्यार से हमें पत्र लिखे और आपके प्यारे प्यारे नगमे हमने शामिल किए आज के मंच है गीत कार्यक्रम में। इसी तरह अगली मुलाकात के लिए बस और थोड़ा इंतजार करना होगा। भेजिए अपने फरमाइशी पत्र इस कार्यक्रम के लिए। मन चाहे गीत कार्यक्रम से अब दीजिए संगीता श्रीवास्तव को इजाजत। नमस्कार।

यह है विविध भारती। नाट्य तरंग, आइए सुने महाकवि कालिदास लिखित मूल संस्कृत नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर शकुंतला। रूपांतरकार और प्रस्तुतकर्ता हैं राजेश रेड्डी।

0: शकुंतला?
1: आप कहीं कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख रही हूं?
0: नहीं शकुंतला, ये सत्य है, ये सत्य है कि मेरी दशा भी तुम्हारी दशा से भिन्न नहीं है। तुम्हें तो कामदेव केवल संताप ही देता है, किंतु मुझे मुझे तो उसने झुलसा ही डाला है। तुम्हारा ये गीत तो तेरी ही अनुभूतियों का अनुवाद है शकुंतला।
1: ओह, अब मैं क्या करूं? इनके आने तक तो मन इतना उतावला हो रहा था, किंतु अब कुछ सोचता ही नहीं।
0: तुम्हारे शरीर का संताप अब कैसा है शकुंतला?
2: जी, अब आप आ गए हैं तो शांत हो ही जाएगा। अनुकूल औषधि पाकर संताप कहाँ रह सकता है?
0: आप,
2: हम लोग आपके दर्शनों के लिए उत्सुक थे आर्य,
3: किंतु आप इतनी जल्दी यहाँ मिल जाएंगे इसकी आशा नहीं थी।
0: अच्छा, तब तो मेरा यहाँ आना उचित ही रहा।
2: हाँ आर्य, शकुंतला के संताप का कारण आप ही हैं।
3: आपका सानिध्य ही इसके प्राणों की रक्षा कर सकता है आर्य।
0: मेरे प्राण भी इनसे दूर रहकर बचे नहीं रह सकते भद्रे।
1: अनुसुईया, रनिवास की रानियों के विरह में व्याकुल राजर्षि को क्यों इस संकट में डाल रही हो?
0: नहीं शकुंतला, मेरे हृदय की व्याकुलता का कारण तुम हो, केवल तुम। तुम्हारे अतिरिक्त और किसी का ध्यान भी नहीं है इस मन को। इस पर भी यदि तुम्हें विश्वास ना आए तो मैं।
1: महाराज, शकुंतला का संदेह निराधार नहीं है। रनिवास की इतनी रानियों के रहते हुए
0: भी आप निश्चिंत रहें कि मेरे कुल में समुद्र से घिरी इस पृथ्वी के अतिरिक्त आपकी सखी शकुंतला का ही स्थान रहेगा।
1: हम निश्चिंत हुई आर्य।
2: अनसुईया, देख तो वो मृगछाना माँ को ढूंढता हुआ इधर उधर भाग रहा है।
3: हाँ चलो, इसे इसकी माँ के पास पहुँचाएं।
1: अरे अरे, मुझे अकेली छोड़कर कहाँ जा रही हो? रुको ना,
2: अब हमारी क्या आवश्यकता है शकुंतला?
3: सारी पृथ्वी का स्वामी तो तेरे पास ही है।
1: रुको ना, प्रियंवदा, अनसुईया, चली गई।
0: चली गई तो क्या हुआ? तुम्हारा सेवक यहाँ उपस्थित है
1: जी।
0: कहो, मेरे लिए क्या आज्ञा है? तुम्हारी थकान को दूर करने के लिए ठंडे कमलिनी के पत्तों से पंखा चलूं या?
1: नहीं नहीं, मेरे सर पाप क्यों मर रहे हैं यार?
0: पाप?
1: पूज्य लोगों से सेवा करवाना पाप से कम है क्या?
0: प्रेम में पूज्य कोई नहीं होता शकुंतला, केवल प्रिय होते हैं। और मैं अपनी प्रिय शकुंतला को इस दशा में देखकर चुपचाप कैसे बैठा रहूं?
1: अब जाने भी दीजिए मुझे।
0: क्यों जाने दूं तुम्हें?
1: पूर्ववंशी राजा को कुछ तो शील का ध्यान रखना ही चाहिए ना।
0: शील और संकोच की दीवार हमारे बीच और कब तक रहेगी शकुंतला?
1: मैं आपकी तरह स्वतंत्र नहीं हूं आर्य। प्रेम में आपसे अधिक व्याकुल होने पर भी मैं अपने मन से कुछ नहीं कर सकती।
0: इतना भय उचित नहीं शकुंतला।
1: नहीं आर्य, मेरे मन की उलझन को आप नहीं समझ सकते।
0: क्या उलझन है तुम्हारी, बताओ तो।
1: अब कैसे बताऊं आर्य?

0: पिता कर्ण को यदि हमारे आकर्षण का पता चल गया तो?
1: गुरुजनों से डरने की कोई बात नहीं है शकुंतला। पूज्य कुलपति धर्म को भली भांति जानते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे बारे में सब कुछ जानकर भी वो पूरा नहीं मानेंगे। और ऋषि कन्याओं के गंधर्व विवाह तो पहले भी हुए हैं और उनके पिताओं की सहमति से हुए हैं।
0: आपकी बात सही होते हुए भी मेरी दुविधा दूर नहीं हो पा रही है आर्य।
1: तुम चाहो तो अपनी सखियों से पूछ लो।
0: हाँ ठीक है, मैं अभी उनसे बात करती हूँ।

0: क्या कर रहे हैं आप?
1: अरे चपली, आप अपने प्रिय से विदा ले, रात आ पहुंची है।
0: ओह, लगता है मुझे देखने के लिए आर्या गौतम इधर ही आ रही है। आर्या, आप इस वृक्ष की ओट में छिप जाइए।
2: ठीक है।
1: शकुंतला, अब कैसी हो बेटी? शरीर का ताप कुछ कम हुआ?
0: हाँ माँ, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ताप भी कुछ कम हो गया है।
1: लो, इस कुशा के जल से बिल्कुल भी नहीं रहेगा, पूरी तरह स्वस्थ हो जाओगी।
0: अच्छा,
1: चलो बेटी, दिन ढल गया, आओ कुटिया में चलें।
0: हाँ चलो माँ। चलना ही होगा, अब पछताने से रोने कलपने से क्या होता है। मन, जब वो तुम्हारे साथ थे तब तो तुम भयभीत बने रहे, अब तो अतृप्ति की पीड़ा को झेलना ही होगा तुम्हें। हे संताप हरने वाली लता कुंज, बिहार के लिए बहुत शीघ्र मैं फिर उपस्थित होंगी और तब तुम अतृप्त नहीं रहोगे।
2: मन की साध हर बार अधूरी ही रह जाती है। सुंदर पलकों वाली शकुंतला के उस मनोहर मुख को चूमने का अवसर पाकर भी मैं चूम नहीं सका। अब उस लता कुंज में उस स्पर्श की स्मृतियों में खोए रहने के अतिरिक्त और क्या उपाय है? उसके शरीर से मसला हुआ ये फूलों का बिछावन, उसके हाथों से सूख कर गिरे हुए कमलनाल के ये आभूषण, कमलिनी के पत्तों पर नखों से लिखा हुआ ये प्रेम पत्र।
3: बचाइए, बचाइए राजन, बचाइए। यहाँ वेदी के चारों ओर काले काले राक्षस फिर मुड़ने लगे हैं। नमोवन की पवित्रता की रक्षा कीजिए राजन।
4: वो इन राक्षसों ने फिर से रूठा लिया, मैं अभी जाता हूँ।

0: किंतु बहुत अच्छा हुआ प्रियंवदा कि शकुंतला का गंधर्व विवाह हो गया। किंतु एक चिंता भी है सखी।
1: चिंता?
0: अब क्या चिंता है अनुसुया?
1: यही कि आज यज्ञ हो चुकने के बाद ऋषियों से विदा लेकर जब ये राजन अपने रनिवास में पहुंच जाएंगे तब इन्हें यहाँ की सुध भी रह जाएगी या नहीं।
0: ये चिंता व्यर्थ है अनुसुया। ऐसे विराट व्यक्तित्व वाले लोग कपटी नहीं हुआ करते। हाँ, पिता कण्व को लेकर मैं अवश्य कुछ आशंकित हूँ।
1: उनकी ओर से मुझे कोई आशंका नहीं। मुझे तो पूरा विश्वास है कि वो इस विवाह का विरोध नहीं करेंगे।
0: वो क्यों?
1: क्योंकि शकुंतला के विवाह का संकल्प तो वो पहले ही कर चुके थे। उनकी तो कामना ही थी कि कोई योग्य वर मिल जाए, और संयोग से ये कामना भी बिना परिश्रम के पूर्ण हो गई। नहीं,
0: तेरा कहना सही है अनुसुया। पिता कण्व भी कम प्रसन्न नहीं होंगे।
2: अरे कोई है? कुटिया में कोई है?
1: अरे ये तो किसी अतिथि का स्वर जान पड़ता है।
0: शकुंतला तो कुटिया में ही है।
1: है तो, किंतु आज वो कुछ अनमनी सी है।
0: अच्छा देख तो, पूजा के लिए इतने फूल पर्याप्त होंगे ना?
1: कैसे होंगे, अभी शकुंतला के सौभाग्य देवता की पूजा भी तो करनी है।
0: ओह, मैं तो भूल ही गई थी। चलो चलो कुछ और फूल चुन ले।
1: चलो।
2: अरे ओ अतिथि का अपमान करने वाली संसद, मैं तुझे शाप देता हूँ कि जिसके ध्यान में तू मुझ जैसे तपस्वी की सुध नहीं ले रही है, वो भी तुझे बहुत स्मरण दिलाने पर भी पहचान नहीं पाएगा। वो तुझे भूल जाएगा। वो तुझे भूल जाएगा। वो तुझे भूल जाएगा।
0: हाय, ये क्या अनर्थ हो गया। लगता है अपने बेसुधपन में शकुंतला ने किसी महात्मा का अपमान कर दिया है। अरे ये तो कोप की साक्षात मूर्ति ऋषि दुर्वासा है।
1: जा प्रियंवदा, उनके पैरों पड़कर उनको लौटाना। तब तक मैं अर्घ्य का जल लेकर आती हूँ।
0: जा, जल्दी जा। हे भगवान, इस फूल की टोकरी को भी अभी गिरना था। अनसुया
1: आ गई। प्रियंवदा, ऋषि कहाँ है?
0: ऋषि दुर्वासा कब किसकी सुनते हैं।
1: क्या ऋषि का कोप शांत नहीं हुआ?
0: कोप तो शांत नहीं हुआ अनसुया, किंतु फिर भी मेरी अनुनय से वे कुछ कृपालु अवश्य हो गए।
1: अच्छा।
0: हाँ, जब वे किसी प्रकार लौटने के लिए तैयार नहीं हुए
1: तो
0: तब मैंने उनसे प्रार्थना की कि हे भगवान, शकुंतला का ये पहला ही अपराध है और वो भी अनजाने में हुआ है।
1: फिर
0: इस पर उन्होंने कहा, मेरा वचन तो झूठा नहीं हो सकता, किंतु इतना अवश्य हो सकता है कि यदि यह कन्या अपने प्रेमी को अपनी पहचान का कोई आभूषण दिखा दे तो मेरे शाप से मुक्त हो सकती है।
1: चलो, इतना ही पर्याप्त है। उस राजर्षि के नाम वाली अंगूठी शकुंतला को शाप से मुक्त कराने में काम आएगी।
0: आओ अनुसुया, अब देव पूजन का काम पूरा कर ले।
1: प्रियंवदा, ये शाप वाली बात हम तक ही रहनी चाहिए। बहुत कोमल स्वभाव की है बेचारी शकुंतला।
0: हाँ अनुसुया, उसकी रक्षा तो करनी ही होगी।

0: ये तो दिन निकल आया। कितना मनोहर दृश्य है। एक ओर औषधिपति चंद्रमा अस्ताचल की ओर जा रहे हैं तो दूसरी ओर अरुण रूपी सारथी को आगे किए हुए सूर्य का रथ चला आ रहा है। एक के अस्त होने के साथ ही दूसरे का उदय, जैसे दुख के पीछे सुख और सुख के पीछे दुख। चलो, हवन का समय हो रहा है, गुरुजी प्रतीक्षा कर रहे होंगे।
1: अनुसुया, ये अनुसुया, उठना।
2: क्या हुआ प्रियंवदा?
1: अरे होना क्या है, भोर हो गई, आज उठना नहीं है क्या?
2: मैं सोई कहाँ हूँ प्रियंवदा।
1: अच्छा, आश्रम में कोई राजर्षि आए हैं क्या?
2: परिहास न कर प्रियंवदा, मेरा मन वैसे ही कुछ ठीक नहीं।
1: क्यों, ऐसा क्या हो गया?
2: कुछ नहीं सखी, बस रह रहकर ऋषि दुर्वासा का शाप सता रहा है। मुझसे अब शकुंतला की दशा देखी नहीं जाती प्रियंवदा।
1: किंतु शकुंतला तो पूरी तरह ठीक है अनुसुया।
2: हाँ ठीक है, किंतु कब तक? उस राजर्षि को गए इतने दिन बीत गए, किंतु शाप के वशीभूत उसने अब तक शकुंतला की सुध नहीं ली, और कब तक प्रतीक्षा करती रहेगी बेचारी?
1: चिंता क्यों करती है अनुसुया, शकुंतला को शाप से मुक्त कराने के लिए राजर्षि की दी हुई अंगूठी तो है अपने पास।
2: है तो सही प्रेमवदा, किंतु उस अंगूठी को दिखाने वहां जाएगा कौन?
1: कौन जाएगा? शकुंतला जाएगी।
2: उस बेचारी को तो इस दुर्भाग्य का भान ही कहां, और उस पर एक अनर्थ और हो गया है, वो मां बनने वाली है।
1: तू ही तो एक बावली है, इतनी अच्छी बात को अनर्थ कह रही है।
2: तू नहीं समझ रही प्रियंवदा, पिता कण्व को जब इन बातों का पता चलेगा तो।
1: पिता कण्व को इन सब बातों का पता चल भी गया और वे अप्रसन्न भी नहीं हुए।
2: सच?
1: हाँ।
2: तू सच कह रही है प्रियंवदा?
1: हाँ अनुसुया, मैं भी शकुंतला के पास से ही आ रही हूँ। पिता कर्ण वहाँ उसे आशीर्वाद दे रहे थे।
2: आशीर्वाद दे रहे थे?
1: हाँ, और कह रहे थे कि योग्य शिष्य को विद्या देने के समान ही योग्य पति को कन्या सौंपने में भी अपार संतोष मिलता है।
2: हे भगवान।
1: और ये भी कह रहे थे कि मैं आज ही ऋषियों के साथ तुझे तेरे पति के पास भेज दूंगा।
2: ओह, इससे अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती। किंतु प्रियंवदा, पिता कर्ण

0: इस घटना का पता कैसे चला?
1: आकाशवाणी से।
0: आकाशवाणी से?
1: हाँ, यात्रा से लौटकर पिता कर्ण जैसे ही यज्ञशाला में पहुंचे आकाशवाणी हुई।
2: जैसे शमी वृक्ष के भीतर होता है पावक का वास, वैसे ब्राह्मण शकुंतला में जगहित पौरव तेज निवास।
0: हे भगवान, तुमने शकुंतला ही नहीं हम सबकी लाज रख ली। तुम सचमुच बहुत कृपालु हो भगवान।
3: किंतु अनुसुया, इस कृपा में बहुत गहरा अवसाद भी छिपा हुआ है।
0: हाँ प्रियंवदा, शकुंतला अब चली जाएगी, आज ही चली जाएगी।
3: हमारी इस अवसाद से शकुंतला का सुख बहुत बड़ा है अनुसुया, उसे अपने प्रियतम के पास जाना ही चाहिए।
4: गौतमी, शरद्वत आदि से कहो शकुंतला को पहुंचाने के लिए तैयार हो जाए।
3: चलो अनुसुया, हस्तिनापुर जाने वाले ऋषियों की बुलाहट हो रही है।
0: हाँ चलो प्रियंवदा।

0: देखतो अनुसूया, मंगल कामनाओं की मधुर वर्षा में भीगी हुई शकुंतला का सौंदर्य कितना निखर उठा है ना?
1: हाँ प्रियंवदा, ऐसे स्वाभाविक सौंदर्य को अब बाहरी आभूषणों की क्या आवश्यकता?
0: सखी, पगली ऐसे शुभ अवसर पर भी रो रही है?
2: नहीं शकुंतला, नहीं, इस तरह तो तू हमें भी।
3: अरे ये क्या हो रहा है? तुम लोग शकुंतला को सजाने आई हो या रुलाने? बस बस अब चुप करो, अब चुप करो। पता है शकुंतला को सजाने के लिए लताओं और वृक्षों ने भी फूलों पत्तों के स्थान पर आभूषण दिए हैं। देखो ये देखो,
2: कितने सुंदर,
0: कितने अलौकिक है ये शुभ्र वस्त्र,
2: ये सलोनी महावर,
0: ये आकर्षक आभूषण।
3: जानती हो इन लक्षणों का क्या अर्थ है?
0: क्या अर्थ है आर्या?
3: ये लक्षण बता रहे हैं कि शकुंतला अपने पति के घर राज लक्ष्मी बनकर रहेगी।
2: माँ,
3: माँ, प्रियंवदा, अनुसुईया, अब और देर न करो, चलो जल्दी से इसे ये आभूषण पहना दो।
2: अच्छा।

0: आज शकुंतला चली जाएगी, सोचते ही मेरा जी बैठा जा रहा है। आंसुओं को रोकने से गला इतना रुंध गया है कि मुंह से शब्द निकल ही नहीं पा रहे। चिंता में आंखों की ज्योति भी धुंधली पड़ती जा रही है। जब मुझ जैसे वनवासी की ये दशा है तो बेचारे गृहस्थों का क्या हाल होता होगा।
1: बेटी शकुंतला, देखो तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए तात कर्ण इधर ही आ रहे हैं। प्रणाम करो बेटी।
2: प्रणाम पिताजी।
0: बेटी, मेरा आशीर्वाद है शर्मिष्ठा की तरह तुझे भी अपने पति से आदर और पुरु जैसा चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त हो।
1: आपका तो आशीर्वाद भी वरदान है भगवान।
0: आओ बेटी, अग्नि में अभी आहुति पड़ी है, चलो उसकी प्रदक्षिणा कर लो।

वन देवताओं से भरे हुए तपोवन के वृक्षों, आज तुम्हारी प्रिय शकुंतला जा रही है। स्वयं प्यासी रहकर भी जो पहले तुम्हारी प्यास बुझाया करती थी, आभूषणों का आकर्षण और श्रृंगार की इच्छा होने पर भी तुम्हारे स्नेह के कारण जिसने कभी तुम्हारे कोमल पत्तों को हाथ तक नहीं लगाया, वही शकुंतला आज अपने पति के घर जा रही है। उसे विदा दो वन देवताओं, उसे विदा दो।

शकुंतला की यात्रा कल्याणमय हो। इसके मार्ग में नीली कमलनियों से भरे हुए ताल हो, धूप से बचाने के लिए घनी छांव वाले वृक्ष हो, इसके पथ की धूल में कमल के पराग की कोमलता हो, और इसके मन को शांति देने के लिए यात्रा पर्यंत मंद मंद पवन बहता चले। शकुंतला की यात्रा कल्याणमय हो।

0: दोनों पांव आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं।
1: तपोवन से बिछुड़ने का दुख केवल तुम्हें ही नहीं है शकुंतला, तपोवन भी कम उदास नहीं है। देखो औरों ने नाचना छोड़ दिया है, कैसे चुपचाप खड़े हैं। हिरणियां भी अनमनी होकर चबाई हुई कुशा को बार बार उगल रही हैं। आंसुओं के रूप में लताओं से पीले पीले पत्ते झड़ रहे हैं।
0: बाबा बाबा बाबा, मैं एक क्षण वन ज्योत्सना से मिलूं बाबा।
2: हाँ बेटी, मैं जानता हूं उस लता से तुम्हारा सगी बहन जैसा प्रेम है। मिल लो बेटी।
0: चलती हूँ वन ज्योत्सना, चलती हूँ। देखो आम के वृक्ष के अनुराग ने अपनी बहन को नहीं। पता नहीं अब तुमसे मिलना होगा भी या अनुसुया मेरी सखी, तुम इसका ध्यान रखना।
2: बेटी निश्चिंत रहो, अपने पुण्य प्रभाव से इसने भी तो आम के वृक्ष के रूप में अनुरूप पर पा लिया है। मुझे भी तुम दोनों की चिंताओं से एक साथ ही मुक्ति मिल गई है।
0: अरे आजल कौन खींच रहा है?
3: ये तेरा लाडला हरे शावक है बेटी।
0: मेरे लाडले, अब तो मुझे जाना ही होगा। देख देख मेरी जगह अब तेरी देखभाल बाबा करेंगे।
4: सरोवर का तट आ गया है भगवान।
2: हाँ शारंग्राव, पूर्वजों ने कहा है कि प्रियजनों को विदा करते समय जलाशय तक पहुंचाकर ही लौट आना चाहिए।
4: माननीय राजा दुष्यंत के लिए कोई संदेश हो तो आदेश प्रदान करें भगवान।
2: हाँ वत्स, शकुंतला को राजा दुष्यंत के हाथों में सौंपते हुए मेरी ओर से कहना, राजन हम तो सीधे साधे संयमी तपस्वी लोग हैं, आपके ऊंचे राजघराने के सामने हम कुछ भी नहीं हैं, फिर भी आपने आश्रम की इस कन्या को अपनाया है, ये हमारा सौभाग्य ही है। शकुंतला को आपकी दूसरी रानियों के समान प्रेम और आदर मिले, बस इतनी ही विनती है हमारी, और इससे अधिक क्या कह सकते हैं हम लोग।
0: बाबा, बाबा।
2: पति के घर पहुंचकर घर के सब बड़े बूढ़ों की सेवा करना, अपनी सौतों को भी अपनी सखियों जैसा प्रेम करना बेटी, और देख पति ही स्त्री का परमेश्वर होता है, उसे कभी अप्रसन्न नहीं करना। दास दासियों से भी स्वजनों का सव्यवहार रखना
0: बाबा।
2: और अपने सौभाग्य पर कभी इतराना मत बेटी।
3: इन सब बातों को अच्छी तरह गांठ में बांध लो शकुंतला, कुलवधुओं के लिए इससे अच्छा और क्या उपदेश होगा।
0: प्रियमता आओ शकुंतला, हमसे गलत मिला हो सकी।
3: तो क्या
0: तो क्या तुम लोग भी यहीं से लौट जाओगे?
2: हाँ बेटी, अब इन दोनों को भी तो उपयुक्त वरों को सौंपना है ना, इसलिए इनका यहां रहना ही ठीक है। फिर आर्या गौतमी तो तुम्हारे साथ ही जा रही है।
0: अनसुया, शकुंतला, तुम लोगों से अलग रहकर मैं कैसे जी पाऊंगी? बोलो।
2: इतनी अधीर न हो बेटी, पति के घर पहुंचकर वहां की व्यस्तता में बिछड़ने का सारा दुख भूल जाएगी, पटरानी बनकर राज करेगी, सूर्य के समान तेजस्वी और पवित्र पुत्र की मां बनेगी।
0: शकुंतला, ये राजा दुष्यंत की दी हुई अंगूठी है, इसे अच्छी तरह संभाल कर रखना।
3: और यदि इतने दिनों बाद वे तुझे पहचानने में भूल करें तो मैं ये अंगूठी दिखा देना, समझी?
0: ये तुम लोग कैसी बातें कर रही हो? डरने की कोई बात नहीं शकुंतला,
3: हम तो यूं ही तुझे हर परिस्थिति के लिए सचेत कर रहे हैं।
0: किंतु मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है।
4: दिन बहुत चढ़ाया है भगवान, अब हमें चलना चाहिए।
2: हाँ शरणक्रो, अब तुम लोगों को जाना ही चाहिए। जाओ बेटी शकुंतला, चिरकाल तक इस समूची पृथ्वी की सौत बनकर राज करो, और उसके बाद अपने अद्वितीय वीर पुत्र को राज्यभार सौंपकर अपने पति के साथ इस आश्रम में आओ। यहां के शांत वातावरण में सुख से विश्राम करो। जाओ बेटी, ईश्वर तुम्हारा पथ प्रशस्त करे, तुम्हारा मार्ग

कन्या सचमुच प्रायधन होती है। शकुंतला को आज उसके पति गृह भेजकर मन पूरी तरह निश्चिंत हो गया। किसी की धरोहर

महाकवि कालिदास लिखित मूल संस्कृत नाटक अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर शकुंतला। रूपांतरकार और प्रस्तुतकर्ता है राजेश रेड्डी।

उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं जाने माने फिल्म निर्देशक रमेश तलवार। एक लंबी यात्रा रही है रमेश तलवार की। एक फिल्म निर्देशक, रंगमंच की दुनिया के निर्देशक और साथ में प्रोड्यूसर भी। सन 1977, दूसरा आदमी।

0: 1984 दुनिया।
1: तू चांद नगर की शहजादी, मैं इस धरती का बंजारा।
0: 1985 जमाना।
2: एक बात है हमसे कहीं नहीं जाए।
3: क्या?
0: 1993 फिल्म।

0: बतौर प्रोड्यूसर उन्होंने बनाई फिल्म रंगमंच पर भी रमेश तलवार का लंबा काम रहा है। हम रमेश तलवार जी के घर गए और उनसे की लंबी बातचीत। रमेश तलवार से बातचीत की है आपके इस दोस्त यूनुस खान ने। आज सुनिए तीसरा भाग। पिछले एपिसोड में आपने सुना,
1: हमने जाना था नेगेटिव कटिंग का मुहूर्त होता है जब पिक्चर एंड में उस जमाने में, तो रेमनॉल्ड लैब में गए, नेगेटिव कटिंग का मुहूर्त किया, कैंची वो लगाई, नीचे लिफ्ट से नहीं आए, सीढ़ियों से नीचे उतरे, जैसे कंपाउंड में आए मेरे प्रोड्यूसर साहब गिर गए। उनके बहुत शरीर बहुत हैवी था उनका,
0: जी जी जी,
1: हाथ वहां देखा उन्होंने गड़बड़ है, क्योंकि तो जा चुके जो। अब ये सोचो कब सोचा था कि साहिबा जैसी फिल्म एक डेढ़ साल लेट भी हो गई
0: और सलमान खान ड्रॉप हो गए,
1: जो वो ड्रॉप हो गए और वो पिक्चर जो है चली नहीं।
0: पिछले एपिसोड में आपने सुना, रमेश तलवार साहब इन सब बातों के दौरान बसेरा की बातें छूट गई हैं जहां से आपका सफर डायरेक्शन का शुरू होता है।
1: बसेरा का भी इसी तरह सा भाई, देखिए दूसरा आदमी जब रिलीज हुई,
0: हाँ,
1: तो बहुत तारीफ हुई, राखी जी का बहुत योगदान था कि उन्होंने काम किया।
0: नहीं तो एक काम करते हैं, पहले दूसरे आदमी की बात करते हैं फिर बसेरा की बात करते हैं।

0: दूसरा आदमी में ऐसा हुआ कि जब पिक्चर की स्टोरी बन गई, आइडिया मतलब सोच लिया गया, पहले मैंने एक स्क्रिप्ट बनाई जिसमें अमिताभ बच्चन शशि कपूर थे, मतलब दीवार के बाद का थॉट था, मतलब ऐसा कुछ करके अलग किस्म की थी, वो बन गई आइडिया वाइडिया ओके हो गया, वन लाइन बना ली हमने, नए राइटर से कुछ, और मैं अमित जी के पास गया, बहुत ख्याल रखते हैं, मतलब मैं उनके छोटे भाई की तरह हूँ, चाहे हमने काम नहीं किया, तीन चार फिल्मों में त्रिशूल था ना,
1: जी जी
0: सारी फिल्म त्रिशूल में भी था, उसमें था, और सब हर शूटिंग में स्टोरी स्ट्रिंग में भी होते थे, शूटिंग में मुझे देखते हुए काम करता हूँ कोई ऐसा। फिर जया जी के साथ मैंने जो ड्रामे डायरेक्ट किए थे
1: जी,
0: वो भी अमेरिका टूर की, तो अलवत्ता उन्होंने मुझसे कहा ये देखो भाई शॉर्ट ये है कि यश जी के साथ मैं एक पिक्चर कर रहा हूँ और तुम्हारी पिक्चर भी मैं करूं तो एक कंपनी की दो पिक्चर हो जाएंगी, डायरेक्टर की और उसके असिस्टेंट की पिक्चर, तो दो भी हो आप डायरेक्टर हो गए लेकिन कहलाते तो यश चोपड़ा के असिस्टेंट है, दो प्रोजेक्ट एक ही जगह दूंगा, डीटेल भी जाएंगी वो भी होगा, बाकी लोगों को नहीं काम, इस तरह की कुछ बात बोला। पहले भी मैंने एक प्रोड्यूसर के साथ ऐसा किया था, मेरे शायद प्रकाश मेहरा के टाइम पे, प्रकाश मेहरा जी के साथ उनके असिस्टेंट के साथ एक पिक्चर की थी जिसमें उनको थोड़ा सा डेट और जैसे में गड़बड़ हुई थी, तो एक काम करो तुम एक पिक्चर किसी और के साथ बना लो, फिर तुम मैं कहूंगा आपकी पिक्चर कभी ना नहीं करता
1: जी।
0: और उस वक्त वो मेरे ख्याल में इलेक्शन भी लड़ रहे थे, वो शायद दिल्ली में जाके या कहीं उन्होंने वो भी किया था
1: जी। हाँ। जी जी
0: अलबत्ता मैं आया, मैंने जी से कहा कि उन्होंने तो मना कर दिया, फिर मैंने इनके अलग सब्जेक्ट जैसे ढूंढते रहते हैं आप लोग और चलता है, तो मुझे ऋषि कपूर का एक दोस्त है उसने आइडिया सुनाया और उसने कहा कि ऐसा है, तो वो जो आइडिया सुनाया उसमें ऋषि कपूर है, नीतू सिंह वाला रोल है और बाप और माँ है वो है, उसमें राखी का रोल नहीं था।
1: ओके ओके
0: जो सब्जेक्ट सुनाया
1: जी,
0: तो लेकिन सब्जेक्ट बड़ा अच्छा था और ऋषि कपूर को पसंद था, तो मैंने उनके दोस्त से कहा कि भाई तेरी स्टोरी में लेता हूं लेकिन उसमें चेंजेस वेजेस, नया न्यू कमर था राइटर
1: जी जी जी
0: उन्हीं का नाम है राइटर है, राइटर स्टोरी राइटर उनका नाम ही है, तो उन्होंने कहा मैं तुम्हारे साथ हूं जो भी है, तो मैंने चिंटू से कहा, मैंने कहा भैया ये ऐसा ऐसा है सागर सरदी साहब से कहे करने के लिए, बोला बहुत अच्छा अगर सागर सरदी कर लिया, तो मैंने सागर साहब से कहा कि साहब ऐसा मुझे चांस मिल रहा है यश चोपड़ा की पिक्चर और आप लिखे अगर तो ये स्टोरी आइडिया है, तो उन्होंने सुनो ने कहा ये आठ फिल्म का आइडिया है।
1: अच्छा
0: हाँ, जब ओरिजिनल तो बाकी कहानी आप राखी निकाल दो बाकी जो है बहुत कम आया उसमें, तो बड़ी कमर्शियल यश चोपड़ा पिक्चर मतलब कमर्शियल पिक्चर बड़ी पिक्चर, तो इसमें कोई और कहानी मिक्स करते हैं कुछ और डालते हैं, तो सागर साहब एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करते रहे तीन चार साल, वो जो एक्सपीरियंसेस उनको थे वो उन्होंने इसमें डाले, और इलेक्ट्रिकली में किसी का फोटो आया था, एक कोई सीनियर थी एडवर्टाइजिंग में उसका फेस बहुत आता था, उनका फेस आया उन्होंने वो भी दिखाया, ऐसी कोई औरत, और फिर करते करते ये आइडिया आ गया कि 40 साल की वो और 20 साल का लड़का,
1: हाँ
0: ये करे, तो ये करते करते करते फिर उसने लॉजिक लिया कि हमने एंड में 40 साल के साथ लड़के को भेजना नहीं है, 20 साल का लड़का 20 साल की लड़की नहीं, उनकी जो उनका ही करना है ये सब, तो हमको एक विलन का नया नेगेटिव कैरेक्टर मिल गया, विलन मतलब जो हीरो हीरोइन के बीच में आता है,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: उस तरह का,
2: ये रिस्की नहीं था उस वक्त?
0: रिस्की था
1: जी,
0: रिस्की था, लेकिन यश चोपड़ा भी प्रोग्रेसिव आदमी थे
1: जी,
0: सागर साहब भी प्रोग्रेसिव थे, हम भी प्रोग्रेसिव थे, सोचने का जो ढंग था हम लोग एक्साइटेड हो गए, तो हमने एक आइडिया ये सोचा कि हम शुरू में ऐसा करेंगे कि राज कपूर और लूटन को डालते हैं,
1: अरे बाप रे
0: उन लोगों ने अपने जमाने में मोहब्बत की थी,
1: हाँ हाँ,
0: और आज सेम चीज ये बच्चा कर रहा है, और राज कपूर फिर बाप का रोल करेगा, फादर के रोल में राज कपूर को ले ले, तो जब डाल तो दिया हमने, यश जी ने मुझसे आयशा से कहा बेटा तेरी पहली पिक्चर है, राज कपूर साहब के टाइमिंग अलग है, तेरा सोचने का तुम्हारा काम करने का ढंग अलग है, वो डायरेक्टर भी है उनका काम करने का ढंग अलग है, सोच लो, मैं तुम्हें डिस्करेज नहीं करता।
1: सही कहा जी,
0: और मैं चिंटू से बात कर चुका था, फिर मेरे जाकर उसको ऐसा कह रहे, बोला यार ये तो है देख ले तू, तो वो पोर्टल बिगिनिंग का मैंने काट दिया चिंटू से, शुरू में जो सोच रहे थे, और फिर हमने नॉर्मल बाप रखा जो सत्यन कपूर को रोल दिया था
1: जी,
0: गीता सिद्धार्थ उनकी वाइफ है
1: जी,
0: और नूतन के बदले। अब साहब ये जब हो गया आइडिया, अब मैंने पहला मेरा ख्याल था कि शर्मिला टैगोर ये रोल करे
1: जी जी जी जी,
0: क्योंकि इस तरह के रोल करती थी
1: जी।
0: तो मैंने राखी जी ने ऐसे पूछा शूटिंग

0: दौरान यश जी की पिक्चर में, रमेश तू क्या कर रहा है पिक्चर में? मैंने कहा ऐसा ऐसा सोचा हूँ, मुझे सब्जेक्ट सुना। मैंने कहा वो शर्मिला टैगोर जी का रोल है।
1: सीधे कह दिया।
0: हाँ
1: फिर सुनाया।
0: फिर मैंने कहा बताओ सुनाओ, मुझे लगेगा अगर मुझे करना चाहिए तो मैं करूंगी
1: जी।
0: और वो हमारे घर की आर्टिस्ट थी, मतलब कंपनी की आर्टिस्ट जैसे होते ना।
1: हाँ।
0: इतना कोऑपरेट करती थी, कभी डेट की नहीं, कभी किसी किस्म का कोई होता ना जिग जिग नहीं, कुछ नहीं, कमरा को छोटा है फला क्यों नहीं, मेरा रूम अच्छा नहीं, कभी कोई बात नहीं की
1: जी जी जी।
0: इस तरह से काम करती रही, बहुत डिवोटेडली काम किया। तो मैंने उनको सब्जेक्ट सुनाया, उन्होंने कहा मैं ही करूँ।
1: वाह।
0: मैंने यश जी को यश जी कहते सोच लो बेटा वो कैसे ग्लैमरस और वो सब है तेरा। फिर मैंने राखी जी से कहा, उन्होंने कहा कल मेकअप टेस्ट लो, मैं वो सब बन के पहले आई जो पिक्चर में अभी है।
1: हाँ, हाँ, हाँ।
0: वो खुद अपना वो सब किया उन्होंने।
1: अरे वाह।
0: वो असिस्टेंट के लिए कौन करेगा भाई।
1: हाँ।
0: मैं तो असिस्टेंट डायरेक्टर था,
1: बहुत बड़ी बात,
0: नया बन रहा था।
1: पहली फिल्म थी आपकी?
0: पहली फिल्म, और वो कर रही है और हेल्प कर रही है इस फिल्म से। वो तो उस वक्त तक, आज भी और उस वक्त भी, जिसको नहीं करना है वो जाओ भाई दूसरे के पास, हम नहीं करेंगे
1: जी।
0: लोग तो चुनते इस तरह करते, पर उनको मेरा काम करने का ढंग भी पसंद था, बहुत सारी फिल्मों में संग काम किया हुआ था, और उनको लगा कि इस लड़के को चांस मिलना चाहिए, वो किया। अब साहब इस फिल्म की हो गया पिक्चर जो होना था, 15 हफ्ते चली, और जब चली दिल्ली में भी अच्छा गया, और जब गुलशन जी ने कोई पिक्चर रिलीज करनी थी अपनी, तब मेरे 2 दिन कम थे 15 हफ्ते से।
1: हाँ हाँ।
0: तो उन्होंने यश जी से कहा कि यार मेरे को ट्रेन मिलती है और मेरे को मेन थिएटर ये सब मिल जाएगा, रमेश को समझाओ कि तुम्हें कोई बुरा ना लगे, हम पिक्चर उतारने लगे और पिक्चर अच्छी चल रही है। तो उन्होंने आपस में बात कर ली, एक काम करते हैं कि मैथिली में कहीं लगा देंगे, वो साथ में चलती रहेगी। मैं बोला जी आपकी पिक्चर है जी, जैसा आपको लगे। उतार दी गई पिक्चर उनकी, चैन अगली पिक्चर जो थी, मेरे शत्रुघ्न सिन्हा की कोई पिक्चर हो, गुलशन जी रिलीज कर रहे।

0: क्या मौसम है, चल कहीं दूर निकल।
1: क्या बात है, क्या बात है, क्या अच्छा कर रहा है। अब जो आया इसका वक्त, जो नूरी की बात मैं आपसे कह चुका हूँ कि दो पेज की कहानी का होता, मैं पिक्चर के बाद फिर मैं थोड़ा सा यश जी से थोड़ा सा रूठा था दूसरे आदमी के उतरने के बाद।
0: इसके म्यूजिक के बारे में बताइए,
1: किसके?
0: राजेश रोशन को चुना आपने, मजरू को चुना?
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, राजेश रोशन उनके असिस्टेंट थे,
0: हाँ,
1: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के, और मैं यश जी के साथ था। तो जब हम दाब के टाइम पे मिला करते थे तो वो कहता था कि मैं म्यूजिक बनूंगा, और मैं कहता मैं तेरे को लूंगा।
0: अरे वाह,
1: हम दोनों साथ में काम करेंगे, ऐसा जब से पैसे होती है जो असिस्टेंटों में होती है। फिर उसको पिक्चर मिल गई, वो
0: जूली,
1: वो जूली भी मिल गई, और एक पहले कुंवारा बाप,
0: कुंवारा बाप मिली।

0: को अब जब टाइम आया तो मैं क्या भैया मुझे जी से कहा जी तो खयाम साहब ऑलरेडी पिक्चर कर रहे थे हमारे साथ, तो उधर और भी सब जो पहले दिन उनके साथ कर रहे होते हैं तो बड़ा सारा मुश्किल होता है तुझे, बट एनी वे उन्होंने कहा बेटा देख लो तुम जैसा भी, तो मैं उससे मिलने गया। बोला भाई ऐसा ऐसा है आइडिया करेगा पिक्चर? बोला हाँ बिल्कुल, मैं तो यश जी की बातें माननी पड़ेंगी थोड़ी सी, और यश जी के यहाँ जाकर सेटिंग करनी पड़ेगी गिरनार अपार्टमेंट में पालेन पे, बोला कहूंगा। और उसने पिक्चर ले ली, उसने बहुत मेहनत की, बड़े अच्छे ढंग से सारा कुछ हुआ, जबरदस्त म्यूजिक बना,
1: बहुत अच्छी गाने चले,
0: बहुत नहीं। फिर मैं गया था उस टाइम पे आनंद बख्शी जी के पास,
1: अच्छा
0: करने के लिए, तो आनंद बख्शी जी ने कहानी सुनी और उन्होंने कहा अच्छी है कहानी तेरी, लेकिन मैं तेरी पिक्चर नहीं करूंगा।
1: ओ
0: क्योंकि यश जी की किसी पिक्चर में से उनको लेके निकाला था उन्होंने, यश जी ने ओके ओके कर दिया था,
1: हाँ, हाँ, हाँ।
0: वो कुछ हुआ था ऐसा।

0: तो मेरे ख्याल में ये हुआ था कि जावेद साहब जब गाने लिखने के लिए तैयार हो गए थे नए दो तीन, और नशा जी ने रिकमेंड किया किसी के कहने पे कि जावेद साहब गाने लिखेंगे, उनकी कोई दिल्ली की सहेली है नशा जी की कि जावेद अख्तर बहुत अच्छा लिख रहा है आजकल, तो उन्होंने कर दिया। अब ये आनंद बख्शी को नहीं मिली थी पिक्चर, तो उन्होंने मेरी पिक्चर ना बोल दी।
1: ओ
0: फिर मैं आया तो मजरू साहब के पास चलते, मजरू साहब के साथ मैंने ये फिल्म एक बनाई है, मजरू साहब ने इसने दो नाम दिए थे मुझे, राजेश रोशन ने आनंद बख्शी और मजरू साहब,
1: बिल्कुल उन्होंने पहले भी
0: दोनों पिक्चरों के साथ काम किया, दोनों के साथ किया था। तो फिर उनके साथ उन्होंने ओके कर दी पिक्चर।
1: बड़े अच्छे गाने बने। आपको सबसे ज्यादा कौन सा गाना पसंद है?
0: इसमें सारे गाने अच्छे हैं।

0: रमेश जी, अब बसेरा की बात कीजिए।
1: बसेरा में भाई ऐसा हुआ कि दूसरा आदमी इंडस्ट्री को बहुत पसंद आई, मुझे काम मिलना शुरू हो गया था
0: जी।
1: लोगों ने अप्रोच करना शुरू कर, कहना शुरू कर दिया था हमारे लिए करो। तो व्योम जी ने भी कहा, ऐसे दो चार बड़े प्रोड्यूसर ने कह दिया था क्या मेरे साथ करो पिक्चर। ऐसे बड़े प्रोड्यूसर जो हुआ ये कि रमेश बैल के साथ मेरा उतरा आना जाना था, उसका बांद्रा में ऑफिस था, मैं पाली हिल से उसके यहाँ कई बार चला जाता था, साइन में रहता था, कोई आते जाते जैसे कि यहाँ जाना है अगर पाली हिल तो वहाँ पे उसके पास रहता था, बैठते चाय पीते गपशप मारते, भला आदमी, बहुत अच्छा आदमी था। उसे शॉर्ट, वो भी शॉर्ट ही बोलता था, शॉर्टी क्योंकि अमिताभ जी शॉर्ट बोलते थे, शॉर्टी कर मेरे लिए पिक्चर, रोज मूवीज के लिए तेरी एक पिक्चर,
0: हाँ
1: मेरी ये कंप्लीट हो तो शुरू कर दे पिक्चर। मैंने कहा तेरा साला तेरी पिक्चर कर रहा है अभी अभी, हाँ। वो करे तू भी कर, एक पिक्चर दो बनाऊंगा मैं, तुम दोनों की बनाऊंगा, तब मेरी अपनी नहीं होगी। तो मैंने कहा ठीक है आइडिया, वो कोई कहानी है कोई कोई राइटर उसके पास आए मेरे पास भेजे, मैं ओके नहीं करता था। ऐसा चलता रहा, बोला सारी दुनिया को कहानी मिलती है कि रमेश तलर को ऐसा होता था। फिर एक आदमी ने जो इनके राज खोसला जी के राइटर थे, उन्होंने कहानी सुनाई ये वाली बचेरा की, उन्होंने कहा भाई मैंने एक ड्रामा देखा है
0: मराठी,
1: मराठी में
0: वो हमेशा ऐसे ही करते थे राज खोसला के,
1: वो मैंने देखा है और उसका आइडिया ये है
0: जी।
1: वो आइडिया मुझे पसंद आ गया तो उनके साथ बैठ के मैं कुछ लाइन वाइन बनाना शुरू हो गया। तो हम लोग यंगस्टर थे ना, हम आदत फटाफट करते थे
0: जी,
1: और ये लोग ट्रेडिशनल जो एक आध सीन करके बैठते थे, एंजॉय करते थे लाइफ को, वो छह महीने का पैटर्न, और मुझे था कि बस एक महीने के बाद पिक्चर शुरू होनी चाहिए,
0: यस
1: ये था। रमेश बाल ने कहा मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ, एक महीने बाद आऊंगा तेरी पिक्चर शुरू होनी चाहिए, ऐसा कुछ हो गया था। तो उनके घर ही शूटिंग कर रहे थे, और फिर वो राइटर साहब ने कहा भाई मैं आप किसी दूसरे को ले लो स्क्रीन प्ले के लिए, तो हमने थ्रेड बनाना शुरू कर दिया। जब बन गया तो मैंने कहा सागर साहब उधर बिजी है ये है, तो मैंने गुलजार साहब का सोचा,
0: वाह वाह,
1: तो उनके पास जाऊं तो कैसा रहेगा,
0: पुरानी दोस्ती है ही,
1: वो पापा बुलाता हूँ मैं अभी भी, गुलजार पापा
0: जी,
1: सागर को सागर पापा बुलाता था, गुलजार पापा मिलने आऊं, आजा बेटा एक आइडिया सुनिए, तो आप इसके गाने लिख दीजिए, अलग किस्म के गाने हो जाएंगे, आपका और आरडी बर्मन का वो भी है समथिंग समथिंग, रमेश भाई प्रोड्यूसर है, और डायलॉग भी लिख लीजिए आप।
0: बाबा
1: तो मैंने थ्रेड बनाया हुआ है, उनका बेटा मैं अजीब सा लग गया डायलॉग एंड मेमोरी करना, तो स्क्रीन प्ले, स्क्रीन प्ले डायलॉग एंड सॉन्ग ऐसा। तो मैंने कहा मैं अपना सुना सकता हूँ आपको, जो मैंने हल्का डायरेक्टर का दिमाग सुना सकता हूँ कि नहीं आपको लगे कि यार आपको कुछ बंदिश में रोक रहा हूँ, उन्होंने सुना, तो मैंने अपना आइडिया सुना दिया। तो उनका नहीं, तो मेरा मद्रास की तरफ ज्यादा था, मद्रास की फिल्मों की तरफ ज्यादा, इतनी फिल्में देखी, तो उन्होंने कहा नहीं बेटा इसका स्क्रीन प्ले लिखना पड़ेगा, मैं करता हूँ, और वो मेरी लाइन थी उसको ऊपर नीचे करके दो चार नए अच्छे सीन डाल के, बहुत अच्छे वाले जो सीन बीच में डाले उन्होंने, वो गाने लिखे, तो हो गया। अब जब स्क्रिप्ट बन गई तो अब दो लड़कियां हैं,
0: हाँ ये कौन आए।
1: अब मैं गया राखी जी के पास, राखी जी मैं आपको कहानी सुनाता हूँ, आपको जो रोल पसंद आए, अगर बड़ी बहन का रोल पसंद आता है तो आप वो करिए, छोटी बहन हम किसी और को ले लेंगे, अगर आपको छोटी बहन का पसंद आता है, मैंने तो आपको छोटी समझ के लिया है, छोटी बहन आप है रेखा वाली रोल, और नूतन है बड़ी बहन,
0: ओके
1: नूतन के साथ मैंने कभी काम नहीं किया, लेकिन उनकी फिल्मों का मैं फैन था, उनका उनकी फिल्में देख लेके मेरे बहुत तबीयत खुश होती थी। तो उन्होंने कहा सब्जेक्ट सुना, उन्होंने कहा रमेश मैं बड़ी बहन का रोल करूंगी, छोटी बहन के लिए तुम रेखा को लो,
0: उन्होंने ही बोला,
1: हाँ बोला। मैंने कहा मेरा रेखा के साथ कोई लेना देना नहीं है, कुछ काम नहीं किया कभी, और मूडी किस्म की है मेरे को तो बोले मैं अभी फोन करती हूँ, उन्होंने फोन लगाया, रेखा ने कहा मैं यहाँ व्यू पार्टनर स्क्रीन में फलाने बंगले में शूटिंग कर रही हूँ,
0: हाँ
1: तो रमेश को मेरे पास भेज दो। तो मुझे एक आध बात पहले उत्तर मिली है, एक आध यश चोपड़ा का असिस्टेंट की तरह एक आध जोक भी मारा था उन्होंने मेरे पर, एल्बम वेल्बम देख रहे पुराने किसी के देख रही थी और कुछ हमारी फिल्मों की एल्बम देख रही थी, कुछ एक आध जोक मारा था मेरे ऊपर समथिंग लाइक। तो मैं गया, मैंने कहा ये ऐसा, तो लंच

0: खाना खाओगे? मैंने कहा नहीं खा के आ रहा हूँ। अच्छा दो दिन में मैं खा रहा हूँ, फटाफट खाना खा, आ जाओ सुनो। अब मैंने सुनाना शुरू किया, इंटरवल हुआ, जाओ मैं ये पिक्चर करूंगी। मैंने कहानी पूरी सुन तो लो, मैंने कह दिया ना ये पिक्चर करूंगी,
1: डन हो गया।
0: इंटरवल तक सुन के ओके कर दिया।
1: वाह वाह वाह, क्या बात है।
0: मैंने आके रमेश भाई को खबर दे दी, प्रोजेक्ट उसका बड़ा अच्छा बन गया। रेखा चली हुई रूम थी, राखी चली हुई रूम थी, है। अब सब प्रॉब्लम आ गई, हीरो कौन रोल करेगा? शशि कपूर जी के टाइम पे दूसरा आदमी में लोग डबल रोल रखा करते थे, हीरोइन को पहला ऋषि कपूर याद आता है वो ऋषि कपूर, लेकिन राखी हीरोइन थी पहला ऋषि कपूर के साथ नहीं। तो मैंने एक इलिस्ट्रेट वीकली में फोटो देखा था, ऋषि कपूर के गले में स्कार्फ है या शशि कपूर के गले में स्कार्फ है, और नीचे लाइन थी हाउ मच ही लुक्स लाइक हिज अंकल शशि कपूर।
1: वाह वाह वाह।
0: मैं तस्वीर ली, कटिंग काटी, शशि कपूर के पास पहुंच गया। सर एक प्रॉब्लम है बुरा, मैं डबल रोल नहीं करना चाहता और मुझे चांस मिल रहा है यश चोपड़ा की पिक्चर डायरेक्ट करने का। मेरे असिस्टेंट तो उनकी बहुत सारी पिक्चर उनके सामने, वो मेरी टैलेंट देख चुके थे। बोला बेटा मैं गेस्ट रोल नहीं करता, मैंने कभी गेस्ट रोल नहीं किया। मैंने कहा आप मेरे सब्जेक्ट सुन लीजिए, अगर आपको लगे कि आपके बिना पिक्चर नहीं बन सकती तो आप करिएगा, अगर आपको ऑब्सेशन दीजिए मैं क्या करूं। अच्छा तो घर आ जाओ हार्कनेस रोड पे, नाश्ता साथ में करेंगे। मैं हार्कनेस रोड पहुंच गया, सुबह उनके फ्लैट पे उनके साथ नाश्ता किया। बोला बैठ जा गाड़ी में, मुझे नटराज शुरू हो जाना है, बहुत दूर है, आराम से कहानी सुनाओ, जल्दबाजी नहीं करना, पूरी सुनाना फिर मेरा रोल नहीं, क्योंकि एक बार हमने उनको खाली उनका रोल सुनाया था कभी कभी में चलाकी की थी, अच्छे अच्छे सीन सुना दिए थे तो उन्होंने हाँ कर दी थी, रोल छोटा था 420 की। मैंने कहा ना हम लोग भेजा करते थे लोगों को,
1: जी जी जी,
0: तो उन्होंने पूरी कहानी सुनी। नटराज स्टूडियो गेट तक कहानी एंड हो गया था, दी एंड।
1: हाँ।
0: गेट में गाड़ी रुकी, उतर जा मैं तेरी पिक्चर कर रहा हूं, लेकिन एक शर्त पे, मेरा नाम कहीं नहीं आना चाहिए, कहीं फोटो नहीं, सरप्राइज आऊंगा, किसी को नहीं पता होना चाहिए कि मैं फिल्म में काम कर रहा हूं।
1: अरे बाप रे,
0: किसी पब्लिसिटी में मेरा नाम नहीं आएगा, जब मैं स्क्रीन पे आऊं लोग कहें शशि कपूर, ऐसा होना चाहिए। मैंने कहा ये तो उल्टा अच्छा आइडिया,
1: हाँ
0: ये तो कमाल की बात थी बोली आपने, डन। वो अंदर चले गए, मैं बड़ा खुशी खुशी सीधा यश चोपड़ा के पास पहुंचा और ये बात बता दी।
1: तो आप यश चोपड़ा के पास पहुंचे?
0: मैं बोला ऐसा ऐसा हो गया, मिल गया।
1: ये दूसरे आदमी की बात हो रही है?
0: जी
1: जी,
0: दूसरा आदमी में ही है, मैं वापस गया ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: अब मैं जब इनके पास गया तो इन्होंने फिर कहा, मैंने कहा आपका रोल तीसरा है, दोनों हीरोइनों से आपका रोल छोटा है,
1: हाँ,
0: लेकिन मुझे आप चाहिए।
1: गजब।
0: मैं आप कहता हूं इसमें बहुत क्रेडिट मिलेगा आपको, आपने मेरा गेस्ट रोल किया था तब से मैं, अच्छा कोई और हीरो नहीं है उनके,
1: हाँ,
0: सामने?
1: हाँ।
0: मैंने कहा नहीं कोई नहीं है।
1: हाँ, हाँ,
0: हाँ। तो आ जाओ घर पे, आ जाओ सुबह नाश्ता करेंगे
1: वापस वैसे।
0: और फिर कर अब उन्होंने कहानी सुनी, उन्होंने कहा रोल अच्छा है, कहानी बहुत अच्छी है, लेकिन मेरा रोल तीसरा है। अब मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई, तो ना कर देंगे, करूंगा तेरी। ये आउटडोर में कहीं बैठे हुए थे, अपना जो हमारा पोई लेक पे जो आउटडोर स्टूडियो था तो वहां पे थे, और मुझे उन्होंने कहा वहां पहुंचे हम, तो उन्होंने कहा तेरी फिल्म करूंगा मैं।
1: बसेरा के लिए हाँ हो गया?
0: हाँ हो गई। और मतलब यह है कि बेटे तुमको ऐसे चाहिए तो तुमको वेट करना पड़ेगा, तो मैं अभी से नहीं कर, मैं ये कर रहा हूँ राज्य की पिक्चर लिया वो चल रहा है सब, अभी मैं नहीं दे पाऊंगा डेटे, जनवरी में करो, दिसंबर जनवरी में, तो कुछ अप्रैल मई जून था ऐसा कुछ था। मैं रमेश बैल को बताया ऐसा है कि ठीक है बॉडी, वैसे भी तू सेट लगाना चाहता है, नीम सेट तो तुम्हारा घर है, बंगला है ना, उसका सेट लगाएंगे अपन, तो ये एडजस्ट हो जाएगा दोनों, तुम पहले आउटडोर शुरू कर दो 15 दिन पहले, राखी के साथ रेखा के साथ बाहर वाले सड़कों के सीन शुरू कर दे, और फिर सब ये हो गया। ऐसे मतलब क्या कब दो चार चीजें बनती है, कैसे फिल्म बन जाती है।

0: कमाल है। लेकिन शशि कपूर और ऋषि कपूर मल्टीपल टाइम्स आपकी फिल्मों में आते हैं
1: जी,
0: उनके साथ नाते जो हैं
1: नहीं बहुत अच्छे रहे थे मेरे, मतलब भाई देखिए शशि कपूर का थिएटर से ताल्लुक, खुद थिएटर वाले। अब ये देखिए कि इतने हम लोग उस तरह क्लोज थे, मुझे क्रिटिसाइज भी करने को खुले करते थे कुछ बात। मैं दाढ़ी अचानक सीन सुना रहा हूँ, शेव नहीं की हुई थी मैंने, हम ऐसे किसी बंगले में शूटिंग कर रहे, नीचे बैठे दीवार की शूटिंग थी, इन्होंने उसके लिए अपना पुलिस वाले का रोल करने के लिए हेयर कट करवाया स्पेशल, डिटेल्स दी कि वो टाइम पे मैं बाल कटवा लूंगा, मैं पुलिस ऑफिसर लगूंगा। बैठे हुए सीन सुना रहा हूँ, अचानक मेरी तरफ देखा, शेव क्यों नहीं की? मैंने कहा सर मैं एक दिन छोड़कर एक दिन शेव करता हूँ, वो आज मंगलवार है ना, मंगलवार तो करता ही नहीं हूँ ना। हीरोइनों को देखो तीन तीन घंटे मेकअप के लिए बैठती है, सेट पे आओ शेव करके आओ। नेक्स्ट डे से मैंने रोज शेव करने शुरू कर दी।
0: वाह वाह,
1: चाहे ट्यूजडे है चाहे सैटरडे है, या कोई गरीब लोग सोचते हैं कैसे बचेगा एक ब्लेड, ट्यूजडे नहीं करूंगा सैटरडे नहीं करूंगा, भगवान के नाम पे होगा ना, देखो तुम्हारे लिए नहीं किया। गरीबों की है थिंकिंग जो है, गरीबी की है।
0: जी जी जी जी,
1: अलबत्ता तब से मैं आज तक रोज शेव करता हूँ। और शशि कपूर दो बार शेव करते थे, एक बार 7 बजे की शिफ्ट में आते थे करते थे, वहां आते ही स्टूडियो में करते थे, फिर 2 बजे शिफ्ट जहां पे जाते थे वहां पहले शेव करते थे।
0: अच्छा, तीन लुक के लिए
1: एकदम।
0: वाह वाह वाह,
1: तो वो फिर मुझे मालूम था कि ऐसा करते हैं।
0: और ऋषि कपूर की यादें?
1: और ऋषि कपूर तो मेरा यार ऐसा लंगोटिया था, उसने शुरू में ही जैसे असिस्टेंट करनी शुरू की,
0: हाँ
1: वो पिक्चर जब कहानी सुनी थी यश चोपड़ा जी की पहली बार,
0: हाँ
1: मेरे, तो मैं मिलने जाता था उसको, और वो कहता यार रोल छोटा है मुझे, अमिताभ बच्चन शशि कपूर के सामने मैं क्या लगूंगा। तो करते करते मैं कन्विंस करता था, फिर देखो मैं 3-4 दिन काम करके देखूंगा
0: जी,
1: अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं करूंगा
0: जी।
1: मैंने कहा ये शर्त जो मंजूर है, और वो आया आउटडोर में और उसने वहां शूटिंग की कश्मीर में 3-4 दिन, और यहाँ आया तो रोजमुनी में सारे दोस्त जो बैठते हैं यहाँ, ये भी आकर रोजमुनी बैठता था, डबू साहब भी आते थे वहां पे, अपना गुलशन बावरा रमेश बैल सब ये सब, और बातचीत बातचीत करने में कुछ बोलते, बोले यार बड़ा अच्छा काम हुआ। तो डबू ने बोला क्या, तो तीन दिन के लिए 12 सीन करके आ गया, अच्छा क्या किया? घबरा गया, कुछ गड़बड़ हो गई है, मुझे कहना है रमेश कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो ऐसा मेरा चाहे तो मैं तेरे फिल्म लिख सकता हूँ, ख्याल रख सकता हूँ, लेकिन तो भरोसा कर मैं बोल रहा हूँ कि तेरे को बहुत क्रेडिट मिलेगा। और इस तरह दोस्ती हमारी बढ़ती रही, फिर आउटडोर वो सीन वीन सब मैं रीडिंग करवाता था, सब करवाता था, और एंड तक उसने जब यश जी ने कहा कि पिक्चर करो तो मैंने कहा यश जी ने ऑफर दे दी है, तो उसने कहा मैं करूंगा तेरी पिक्चर, वही बोल दिया। और वो दोस्ती जो थी, जब मैं पालील पे आया तो 7 वाले बंगले में था, जब दिल आए मैं उसके घर चला जाता था, शाम को अकेला बैठा है वो क्या कर रहा है, मैं कुछ नहीं देर पिएगा, वहां पे भी आउटडोर में बसों में काम कर रहा था दूसरा आदमी का, और वहां बार थी ओबराय होटल में, बड़ी अच्छी बार थी, बार बर्फ गिरी हुई है, और मैं ठंड करके आया ठंडी में कांप रहा हूं, साले ये मर जाएगा कल सुबह शूटिंग नहीं कर सकेगा। कौन है एक्टिंग? नहीं नहीं मैं शराब नहीं पीता। अरे ये शराब नहीं होती। फिर यश जी ने अपनी किसी फिल्म में ये सीन में डाला हुआ है।
0: अच्छा,
1: यश जी को मैंने सुनाया था कोनेक शराब नहीं होती, तो बोले उसने मुझे कोनेक गर्म पानी के साथ पहली बार पिलाई थी। फिर ऐसा करते करते कभी एक बार होली का दिन था, एक बियर का गिलास दे दिया था उसने, फिर मैं रेगुलर बियर पीना शुरू हुआ, मतलब हफ्ते में 5 दिन पीता हूँ, तो वो बुला लेता था बियर के लिए, तो मैं गर्म बियर पीता हूँ।
0: अच्छा।

मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स एवं FM 102.9 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। संध्या के 5 बजे हैं। FM 102.9 मेगा हर्ट्स पर अभी तक आप विविध भारती प्रसारण सेवा मुंबई केंद्र के कार्यक्रम सुन रहे थे। हमारी दूसरी सभा मीडियम वेव और FM पर एक साथ आरंभ हो रही है। सभा के आरंभ में प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम आज शाम।

कार्यक्रम आज शाम के सभी श्रोताओं को अर्शी मसूद का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं कैसे हैं आप? उम्मीद पूरी है कि आप खुश होंगे, हंसते मुस्कुराते हुए होंगे और अपनों के साथ होंगे और स्वस्थ भी होंगे। श्रोताओं मौसम ही ऐसा है, जिस कदर मौसम में गर्मी है, ज़रूरत है कि हम अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें, बच्चों का, बुज़ुर्गों का। गर्मी से बचाव के लिए हम ताज़ा जूस पीते रहें, मौसमी फल खाएं और खूब सारा पानी पिएं। श्रोताओं जिस तरह हम गर्मी का कहर सह रहे हैं, उसी तरह जब सर्दी होती है तो वो भी एक्सट्रीम लेवल होती है। श्रोताओं आपको नहीं लगता कि ज़िंदगी भी कुछ ऐसी ही है? कभी कभी बहुत तेज़ गर्म धूप सी जब ज़िंदगी हमें दर्द देती है, और कभी ठंडी छाया सी, बारिश की फुहार सी हमें उसकी ज़रूरत भी होती है। ज़िंदगी को एक सफ़र ही तो कहा है। कभी धूप है तो कभी छांव है, कभी खुशियां हैं तो कभी गम है। जब हमें सफलता

मिलती है तो चारों तरफ खुशी का माहौल होता है। सपने पूरे होते हैं तो हम खुद को मजबूत और आत्मविश्वास संतुष्टि सा महसूस करते हैं। लेकिन जब दुख होता है, असफलता होती है, निराशा होती है, संघर्ष होता है, हम अपने बहुत सारे प्रयासों के बाद भी हार जाते हैं, तब हमें लगता है कि गहरे काले बादल हैं, सब कुछ हमसे छिनता जा रहा है, मन टूटता है, हिम्मत डगमगाती है और रास्ते कठिन लगने लगते हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं कि अगर धूप है तो छांव भी होगी। जिंदगी खुशियों का नहीं, गम का भी नाम है, उसे भी सकारात्मक रूप से अपनाना है। खुशियों की कदर भी करनी है और गम को भी, दुखों को भी, असफलता को भी, उन चुनौतियों को भी हमें मजबूती के साथ निपटना है। दोनों में संतुलन रखना हमें सीखना है, तभी तो हम जिंदगी के सफर में हंसते मुस्कुराते बस आगे ही बढ़ते जाएंगे।

श्रोताओं, बात हम जिंदगी की कर रहे हैं। जिस तरह मौसम गर्म होता है, कभी कभी जिंदगी भी हमें गर्म धूप जैसी लगती है। अगर कहा जाए कि जिंदगी एक खेल की तरह है जिसमें जीत और हार दोनों होती है। जब हम जीतते हैं तो हमें खुशी होती है, पर जब हम हारते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन श्रोताओं, क्या जिंदगी में जो गम होते हैं, क्या जो हार होती है, वो हमें नया सबक नहीं सिखाती? हमें तो लगता है कि जिंदगी में जो गम होती हैं, जो हार होती है, वो हमें अगली चुनौती के लिए तैयार करती है। इसलिए वो हमें एक नया सबक देकर जाती है। वैसे हंसते हुए पल तो बहुत जल्दी गुजर जाते हैं, लेकिन दुखों के पल हमें बहुत बड़े लगते हैं। एक लंबा सफ़र लगता है, और है भी। जीवन एक लंबा सफ़र ही तो है, जिसमें कई मोड़ आते हैं, कई मौसम आते हैं, खुशियाँ आती हैं, दुख होते हैं, अनुभव बढ़ता है, हम बहुत सीखते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। मुश्किलों का सामना हिम्मत से करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये तो एक समय का खेल है जो पल पल बदलेगा। बस हमें खुद को मजबूत बनाना है और आगे बढ़ते जाना है।

श्रोताओं, कार्यक्रम आज शाम में वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। जाते जाते आपसे बस यही कहेंगे कि कहते भी है ना कि सीधी सीधी चले तो जिंदगी है जिंदगी, और बहके बहके हो कदम तो जिंदगी शर्मिंदगी। कार्यक्रम समाप्त करने की अर्शी मसूद को इस वादे के साथ इजाजत दीजिए कि आप खुश रहेंगे, हंसते मुस्कुराते हुए रहेंगे और दुआओं में याद रखेंगे। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम आज शाम। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 5:15 हुए हैं। प्रस्तुत है युवा साथियों का दैनिक कार्यक्रम युवावाणी।

0: हेलो हाय गुड इवनिंग नमस्ते आदाब, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में, जिसे लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी खिदमत में आपकी अपनी रेडियो मेज़बान हुमा सलीम आफाकी
1: और मैं आपकी रेडियो मेज़बान फरहीन समत।
0: तो दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने मनपसंद प्रोग्राम का इंतजार भी कर रहे होंगे। तो देर किस बात की, लीजिए करते हैं प्रोग्राम का आगाज आज के सवाल के साथ।
1: साथियों, हमारा आज का सवाल है, किस भारतीय स्टार्टअप ने दृष्टि लॉन्च किया है जो दुनिया का पहला हाइब्रिड उपग्रह है? साथियों, सवाल एक बार फिर और ध्यान से सुन लीजिए। हमारा आज का सवाल है, किस भारतीय स्टार्टअप ने दृष्टि लॉन्च किया है जो दुनिया का पहला हाइब्रिड उपग्रह है?
0: और इस सवाल का सही जवाब देने के लिए जाइए हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी रामपुर पर और आज के अपडेटेड पोस्ट के कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिए हमें अपना सही जवाब, और सही जवाब देने वाले सभी श्रोता साथियों का नाम हम अनाउंस करेंगे कार्यक्रम के अंत में।
1: हुमा, आज हम एक ऐसी साइलेंट समस्या के बारे में बात करने जा रहे हैं जो बिना शोर किए धीरे धीरे हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती रहती है।
0: हाँ फरहीन, आज हम बात कर रहे हैं उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर की, जो कि हर साल 17 मई को पूरे विश्व में विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को हाई बीपी के प्रति जागरूक करना और समय रहते सावधान करना है।
1: बिल्कुल, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी, तनाव, गलत खानपान, नींद की कमी और मोबाइल की दुनिया में उलझी हमारी दिनचर्या, ये सब मिलकर धीरे धीरे हमारे स्वास्थ्य पर असर डाल रहे हैं और इन्हीं समस्याओं में सबसे तेजी से बढ़ रही है हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी। तो हुमा, आप हमें ये बताइए, हाई ब्लड प्रेशर होता क्या है?
0: फरीन, जब हमारे शरीर में बहने वाला खून नसों की दीवारों पर जरूरत से ज्यादा दबाव डालता है तो उसे उच्च रक्तचाप कहा जाता है। खतरनाक बात यह है कि कई बार इसके लक्षण तुरंत दिखाई नहीं देते, इसीलिए इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है। इसके कुछ सामान्य संकेत हो सकते हैं, जैसे बार बार सिर दर्द होना, चक्कर आना, थकान महसूस होना, घबराहट या बेचैनी होना, सांस फूलना। लेकिन कई लोगों को कोई लक्षण नहीं होते, फिर भी उनका बीपी बढ़ा हुआ होता है। इसीलिए नियमित जांच बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल, ज्यादा नमक, जंक फूड, तनाव, चिंता, धूम्रपान व शराब, व्यायाम की कमी, मोटापा, कम नींद लेना, ये सब भी हाई ब्लड प्रेशर बढ़ने के मुख्य कारण हो सकते हैं। लेकिन हुमा, अब सवाल ये आता है कि हम इससे अपना बचाव कैसे करें?
0: तो इसके लिए हमें छोटी छोटी आदतें ही बड़ा बदलाव हमें ला सकती हैं, जैसे कि रोज कम से कम 30 मिनट टहलें, ज्यादा नमक और तली चीजों से दूरी रखें, भरपूर नींद लें, योग और मेडिटेशन करें, खुश रहें और तनाव कम लें, समय समय पर ब्लड प्रेशर चेक करवाते रहें, क्योंकि शरीर हमें बार बार संकेत देता है, जरूरत है उन्हें समझने की।
1: क्योंकि स्वस्थ शरीर ही खुशहाल जीवन की असली पूंजी है। तो इस विश्व उच्च रक्तचाप दिवस पर आइए एक छोटा सा संकल्प लें, अपनी सेहत को नजरअंदाज नहीं करें, खुद भी जागरूक रहें और दूसरों को भी जागरूक करें। और इसी के साथ साथियों, बढ़ेंगे प्रोग्राम में आगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।

0: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
1: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया।
2: बन गया बजट?
1: हाँ, 5,000 बच गए।
2: तो नई साड़ी ले ले।
1: ना, पिछले महीने तो ली थी।
2: एक और?
1: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
2: बढ़िया,
1: जाओ भाई।
3: RBI कहता है,
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
0: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
5: ओह लवली, वेल डन।
0: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
5: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स।
2: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
5: नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से EMI चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
2: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
5: आप कौन?
3: RBI कहता है,
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
6: मिस सीमा
1: जी,
6: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
1: क्यों? लेकिन मैं
6: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
1: डिजिटल अरेस्ट?
6: 1,00,000 बच जाओगे।
1: इतने पैसे?
6: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
1: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
7: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
0: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने मनपसंद प्रोग्राम युववाणी में। सत्य, अब बढ़ते हैं सेगमेंट कुछ खास है आज की तरफ और जानते हैं कि आज का दिन हमें क्या बता रहा है।
9: कुछ ख्वाबों की बात,
10: कुछ अपनों का साथ,
9: नरम धागे से बंधे कुछ पन्ने
10: और उन पर नीली स्याही से

0: साल 17 मई यानी आज ही के दिन मनाया जाता है विश्व दूरसंचार एवं सूचना समाज दिवस। दोस्तों इस दिन की शुरुआत 1865 में हुई जब पेरिस में इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन यानी ITU की स्थापना हुई थी। यही संस्था दुनिया भर में संचार और डिजिटल तकनीकों को बेहतर बनाने का काम करती है।
1: दोस्तों इस खास दिन का मकसद सिर्फ तकनीक का जश्न मनाना नहीं बल्कि ये समझाना भी है कि डिजिटल सुविधाएं हर इंसान तक पहुंचनी चाहिए, चाहे वो शहर में रहता हो या गांव में। और दोस्तों इस साल की थीम है डिजिटल लाइफलाइन स्ट्रेंथनिंग रेजिलियंस इन अ कनेक्टेड वर्ल्ड। डिजिटल जीवन रेखाएं, एक जुड़े हुए विश्व में मजबूती और सहनशीलता को बढ़ाना।
0: आज इंटरनेट सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं रहा, अब ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, घर बैठे इलाज की सलाह मिल रही है, छोटे व्यापारी अपने कारोबार को दुनिया तक पहुंचा रहे हैं और सरकारी योजनाओं की जानकारी भी लोगों तक तुरंत पहुंच रही है।
1: भारत भी तेजी से डिजिटल क्रांति की ओर बढ़ रहा है लेकिन अभी भी कई ऐसे गांव और परिवार हैं जहां इंटरनेट और डिजिटल सुविधाएं पूरी तरह नहीं पहुंच पाई हैं। इसीलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम तकनीक का सही इस्तेमाल करें और दूसरों को भी डिजिटल दुनिया से जोड़ें।
0: तो आइए साथियों आज के दिन हम एक छोटा सा संकल्प लेते हैं, सही जानकारी साझा करेंगे, साइबर सुरक्षा का ध्यान रखेंगे और डिजिटल दुनिया को सबके लिए आसान और सुरक्षित बनाएंगे। इन्हीं खूबसूरत बातों के साथ विश्व दूरसंचार एवं सूचना समाज दिवस की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं।
1: जुड़े रहिए, मुस्कुराते रहिए क्योंकि दुनिया अब दिलों से भी जुड़ रही है और डिजिटल सिग्नलों से भी।
2: कुछ ख्वाबों की बात,
3: कुछ अपनों का साथ,
2: नर्म धागे से बंधे कुछ पन्ने
3: और उन पर नीली स्याही से लिखे हुए कुछ नगमे
2: कह रहे हैं बहुत कुछ आज।
3: वाकई कुछ खास है आज,
2: कुछ खास है आज।
0: साथियों अभी आपने सुना आज का इस पहला सेगमेंट कुछ खास है आज, जिसमें आज हम बात कर रहे थे विश्व दूर संचार और सूचना समाज दिवस के बारे में।
1: साथियों अब वक्त हो गया है प्रोग्राम में हमारे स्पेशल सेगमेंट सिने एक्सप्रेस एपिसोड नंबर 27 का, लेकिन आइए उससे पहले जान लेते हैं एपिसोड नंबर 26 में पूछे गए सवालों के सही जवाब। हमने आपको पहला गीत सुनवाया था कभी शाम ढले तो मेरे दिल में आ जाना, और हमने इसमें आपसे सवाल किया था कि ये गीत किस फिल्म से लिया गया है और इसका सही जवाब है सुर। अगला गीत हमने आपको सुनवाया था इश्क हुआ, और इसमें हमने आपसे सवाल किया था कि ये गीत जिस फिल्म से लिया गया है उस फिल्म के निर्देशक कौन है, और सही जवाब है सैयद वजाहत हुसैन। अगला गीत एपिसोड नंबर 26 का जो हमने आपको सुनवाया था धिकताना धिकताना, और इसमें हमने आपसे पूछा था कि ये गीत किस गायक कलाकार द्वारा गाया गया है, और इसका सही जवाब है SP बाला सुब्रमण्यम। एपिसोड नंबर 26 का अंतिम गीत जो हमने आपको सुनवाया था तू कितनी अच्छी है, और इसमें हमने आपसे सवाल किया था ये गीत किस अभिनेत्री पर फिल्माया गया है, और इसका सही जवाब है निरपा रॉय।
0: आइए साथियों अब शुरुआत करते हैं एपिसोड नंबर 27 की आज के पहले सब सेगमेंट सितारों की बात के साथ। वेलकम फ्रेंड्स इन आवर स्पेशल सेगमेंट सिने एक्सप्रेस।

दोस्तों, कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जो सिर्फ कानों तक नहीं पहुंचती, बल्कि सीधे दिल में उतर जाती हैं। जब भी गज़लों की दुनिया का नाम लिया जाता है, एक आवाज़ बेहद प्यार और सम्मान के साथ याद आती है। जी हाँ साथियों, आज की इस खास प्रस्तुति में हम बात करेंगे उस महान गायक की, जिन्होंने अपनी मधुर आवाज़ और दिल छू लेने वाली गज़लों से करोड़ों दिलों में खास जगह बनाई। जी हाँ साथियों, आपने बिल्कुल सही पहचाना, हम बात कर रहे हैं पंकज उधास जी के बारे में।

दोस्तों पंकज उदास जी का जन्म 17 मई 1951 को गुजरात के जयपुर में हुआ था। उनका परिवार संगीत से जुड़ा हुआ था और बचपन से ही उन्हें गायकी का शौक था। धीरे धीरे उन्होंने गजलों को अपनी पहचान बना लिया। उनकी आवाज में सादगी, दर्द और अपनापन था। यही वजह थी कि लोग उनकी गजलों से खुद को जुड़ा हुआ महसूस करते थे। लेकिन वर्ष 1986 में आई फिल्म नाम का गीत चिट्ठी आई है उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ।

0: इस गीत ने उन्हें घर घर में पहचान दिलाई। आज भी ये गीत लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है।
1: साथियों, पंकज उदास सिर्फ एक गायक नहीं थे, वो एहसासों के कलाकार थे। उनकी गजलें लोगों को सुकून देती थी। जब भी उनकी आवाज सुनाई देती, दिल को एक अलग ही शांति महसूस होती थी। उन्होंने भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी कई शानदार लाइव कॉन्सर्ट किए और पूरी दुनिया में अपनी गायकी का जादू बिखेरा। संगीत के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया है।
0: 26 फरवरी 2024 को पंकज उदास जी इस दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन उनकी आवाज और उनकी गजलें आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। उनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि सादगी और सच्चाई से भी दुनिया के दिलों पर राज किया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक पंकज उदास साहब की गजलें महसूस नहीं की हैं, तो आज जरूर सुनिए, क्योंकि कुछ आवाजें सिर्फ सुनी नहीं जाती, उन्हें दिल से महसूस किया जाता है। इसी खूबसूरत एहसास के साथ हमारा सब सेगमेंट सितारों की बात यहीं समाप्त होता है।
1: आइए साथियों, अब बढ़ते हैं एपिसोड नंबर 27 के पहले गीत की ओर, जिसमें आपको बताना है कि ये गीत जिस फिल्म से लिया गया है वो फिल्म कब रिलीज हुई थी।

0: दोस्तों, अभी आपने सुना एपिसोड नंबर 27 का ये पहला गीत, जिसमें आपको बताना है कि यह गीत जिस फिल्म से लिया गया है वो फिल्म कब रिलीज हुई थी। आइए साथियों, बढ़ते हैं सिने एक्सप्रेस एपिसोड नंबर 27 के दूसरे सब सेगमेंट फिल्मी पिटारा की ओर। दोस्तों, जिंदगी में कई बार रास्ते मुश्किल लगते हैं, कभी हालात पहाड़ बनकर सामने खड़े हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हार नहीं मानते, बल्कि अपने हौसले से पहाड़ों का सीना चीर देते हैं। जी हाँ साथियों, आज के सब सेगमेंट फिल्मी पिटारा में आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी ही प्रेरणादायक फिल्म की, जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि जुनून, प्यार और संघर्ष की मिसाल है। जी हाँ दोस्तों, आज आप सुनेंगे मांझी द माउंटेन मैन के बारे में।
1: दोस्तों, ये फिल्म बिहार के एक साधारण मजदूर दशरथ मांझी की सच्ची कहानी पर आधारित है। एक ऐसा इंसान जिसने अकेले अपने दम पर पहाड़ काटकर रास्ता बना दिया। फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने दशरथ मांझी का किरदार निभाया है। उनकी दमदार एक्टिंग इस फिल्म की जान है। वहीं राधिका आप्टे ने उनकी पत्नी फाल्गुनी देवी का किरदार निभाया है।
0: फिल्म की कहानी बिहार के एक छोटे से गाँव गहलोर से शुरू होती है, जहां गरीबी, भेदभाव और कठिनाइयां लोगों की जिंदगी का हिस्सा होती हैं।
1: दशरथ मांझी एक गरीब मजदूर होते हैं, लेकिन उनके दिल में अपनी पत्नी के लिए बेहद प्यार होता है। दोनों की जिंदगी खुशहाल चल रही होती है, लेकिन एक दिन ऐसा आता है जो सब कुछ बदल देता है।
0: फाल्गुनी देवी पहाड़ पार करके अपने पति के लिए खाना लेकर जा रही होती है, लेकिन रास्ता कठिन होने के कारण उनका पैर फिसल जाता है और वो गंभीर रूप से घायल हो जाती है।
1: गांव से अस्पताल की दूरी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि बीच में विशाल पहाड़ होता है। समय पर इलाज न मिलने के कारण फाल्गुनी की मौत हो जाती है। दोस्तों, यही वो पल था जिसने दशरथ मांझी की जिंदगी बदल दी।
0: जहां एक आम इंसान हालात के आगे हार मान लेता है, वहीं दशरथ मांझी ने फैसला किया कि वो इस पहाड़ को काट कर रास्ता बनाएंगे, ताकि किसी और को अपनी जान न गंवानी पड़े। लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, उन्हें पागल कहा, लेकिन उन्होंने किसी की बात नहीं सुनी। एक हथौड़ा और छेनी लेकर उन्होंने अकेले पहाड़ काटना शुरू कर दिया।
1: दोस्तों सोचिए, ना कोई मशीन, ना कोई मदद, सिर्फ एक इंसान और उसका अटूट हौसला। 22 साल तक लगातार मेहनत करने के बाद दशरथ मांझी ने पहाड़ के बीच रास्ता बना दिया। ये रास्ता करीब 360 फीट लम्बा, 30 फीट चौड़ा और 25 फीट ऊँचा था, जिससे गाँव और अस्पताल के बीच की दूरी काफी कम हो गयी।
0: दोस्तों, यही वजह है कि दशरथ मांझी को माउंटेन मैन कहा जाता है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि अगर इरादे मजबूत हो तो दुनिया की कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। फिल्म में कई ऐसे दृश्य हैं जो दिल को छू जाते हैं, विशेषकर वो पल जब पूरा गांव उनका मजाक उड़ाता है, लेकिन वो बिना रुके अपना काम करते रहते हैं।
1: नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने इस किरदार को इतनी सच्चाई से निभाया है कि दर्शक खुद को कहानी से जुड़ा हुआ महसूस करने लगते हैं। उनके चेहरे के भाव, संवाद और मेहनत, सब कुछ फिल्म को बेहद प्रभावशाली बनाते हैं। दोस्तों, ये फिल्म सिर्फ मनोरंजन नहीं करती, बल्कि जिंदगी का एक बड़ा संदेश देती है। यह हमें बताती है कि अगर इंसान ठान ले तो असंभव भी संभव हो सकता है। कभी कभी जिंदगी में हमें भी मुश्किलों के पहाड़ दिखाई देते हैं, लेकिन अगर दशरथ मांझी जैसा हौसला हो तो हर पहाड़ छोटा पड़ जाता है।
0: साथियों, फिल्म का निर्देशन केतन मेहता ने किया है। उन्होंने इस कहानी को बहुत ही भावनात्मक और प्रेरणादायक तरीके से पर्दे पर उतारा है। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी, गांव का माहौल और संगीत, सब कुछ कहानी को और मजबूत बना देता है। साथियों, आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हम छोटी छोटी परेशानियों से हार मान लेते हैं, लेकिन दशरथ मांझी की कहानी हमें याद दिलाती है कि मेहनत, धैर्य और विश्वास से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। उनकी जिंदगी एक प्रेरणा है, एक ऐसा संदेश जो हर इंसान को कभी हार न मानने की सीख देता है।
1: तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मांझी द माउंटेन मैन नहीं देखी है तो इसे जरूर देखिए। ये फिल्म आपको सिर्फ भावुक नहीं करेगी, बल्कि जिंदगी में आगे बढ़ने की ताकत भी देगी। इसी खूबसूरत संदेश के साथ हमें दीजिए इजाजत सब सेगमेंट फिल्मी पिटारा को समाप्त करने की। आइए साथियों, अब बढ़ते हैं सिने एक्सप्रेस एपिसोड नंबर 27 के अगले गीत की ओर, जिसमें आपको बताना है कि ये गीत जिस फिल्म से लिया गया है उस फिल्म के निर्देशक कौन हैं।

0: साथियों, अभी आपने सुना ये दूसरा गीत, जिसमें आपको बताना है कि ये गीत जिस फिल्म से लिया गया है उस फिल्म के निर्देशक कौन है। आइए साथियों, बढ़ते हैं आज के लास्ट सेगमेंट बॉक्स ऑफिस बस की ओर, जहां बात होती है आने वाली फिल्मों, उनके ट्रेलर्स, कहानियों और सिनेमाई दुनिया की हलचल की। तो चलिए शुरू करते हैं आज की फिल्म की यात्रा, और सबसे पहले बात करते हैं फिल्म हे जवानी तो इश्क होना है की। नाम सुनते ही पुरानी बॉलीवुड वाइब्स याद आ जाती हैं, है ना। ये एक अपकमिंग कॉमेडी फिल्म है जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं डेविड धवन। फिल्म में नजर आएंगे वरुण धवन, मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े। फिल्म की कहानी फिलहाल ज्यादा सामने नहीं आई है, लेकिन इतना तय है कि इसमें होगा भरपूर कॉमेडी, रोमांस और एंटरटेनमेंट का तड़का। फिल्म रिलीज होगी 22 मई 2026 को, तो अगर आपको हल्की फुल्की मस्ती और बॉलीवुड कॉमेडी पसंद है तो ये फिल्म आपकी वॉच लिस्ट में जरूर होनी चाहिए। साथियों, देखना ना भूलें हे जवानी तो इश्क होना है।
1: साथियों, हमारी अगली फिल्म है चांद मेरा दिल। इस रोमांटिक फिल्म में नजर आएंगे अनन्या पांडे और लक्ष्य। फिल्म की कहानी कॉलेज लाइफ, दोस्ती, इमोशंस और एक अनप्रेडिक्टेबल लव स्टोरी के इर्द गिर्द घूमती है। कहानी में प्यार है, दर्द है और वो एहसास भी कि हर पहला प्यार हमेशा मुकम्मल नहीं होता। युवा दर्शकों को ये फिल्म काफी रिलेटेबल लग सकती है। ये फिल्म रिलीज होगी 22 मई 2026 को।
0: साथियों, बॉक्स ऑफिस बस का ये सेगमेंट यूं ही कंटिन्यू रखेंगे इस प्यारे से गीत के साथ, जिसमें आपको बताना है कि ये गीत किस गायक कलाकार द्वारा गाया गया है।

0: साथियों, अभी जो आपने सॉन्ग सुना है, इसमें आपको बताना है कि ये गीत किस गायक कलाकार द्वारा गाया गया है।
1: आइए साथियों, कंटिन्यू करते हैं बॉक्स ऑफिस बस को, और अब बात करते हैं एक दमदार कोर्ट रूम ड्रामा मूवी सिस्टम के बारे में। इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभा रही हैं सोनाक्षी सिन्हा और साथ में हैं ज्योतिका। फिल्म की कहानी एक ऐसे सिस्टम के इर्द गिर्द घूमती है जहां सत्ता और प्रभाव न्याय को प्रभावित करती है। एक तरफ है एक पावरफुल प्रोसिक्यूटर और दूसरी तरफ एक साधारण स्टेनोग्राफर। दोनों की जिंदगी एक ऐसे मुकाम पर टकराती है जहां सच, नैतिकता और इंसाफ की असली परीक्षा होती है। ये फिल्म रिलीज होगी 22 मई 2026 को प्राइम वीडियो पर। अगर आपको सीरियस और कंटेंट बेस्ड सिनेमा पसंद है तो ये फिल्म जरूर देखने लायक हो सकती है। फिल्म का नाम याद रखिएगा, सिस्टम।
0: साथियों, बॉक्स ऑफिस बस की आखिरी हमारी फिल्म है स्वयंभू। ये एक पीरियड एक्शन ड्रामा है जिसमें नजर आएंगे निखिल सिद्धार्थ, नभा नटेश और संयुक्ता मेनन। फिल्म का म्यूजिक दिया है मशहूर संगीतकार रवि बसरूर ने, जिनके म्यूजिक का अंदाज काफी ग्रैंड माना जाता है। फिल्म की कहानी और विजुअल्स दोनों ही बड़े स्केल पर तैयार किए जा रहे हैं, इसलिए दर्शकों में इसका अच्छा खासा बज बना हुआ है। ये फिल्म रिलीज होगी 28 मई 2026 को। तो दोस्तों, ये थी इस हफ्ते की कुछ चर्चित फिल्में और उनका बॉक्स ऑफिस बस।
1: आइए साथियों, अब सुनते हैं सिने एक्सप्रेस एपिसोड नंबर 27 का ये लास्ट सॉन्ग, जिसमें आपको बताना है कि ये गीत किस अभिनेता और अभिनेत्री पर फिल्माया गया है।

0: साथियों, अभी आपने सुना सिने एक्सप्रेस एपिसोड नंबर 27 का ये लास्ट सॉन्ग, जिसमें आपको बताना है कि यह गीत किस अभिनेता और अभिनेत्री पर फिल्माया गया है। और हमारे सभी श्रोता साथी हमें इन सवालों का जवाब दे सकते हैं हमारी ईमेल पर। हमारी ईमेल एड्रेस है patramila@rampur.com। और इसी के साथ साथियों, हमारा आज का स्पेशल सेगमेंट सिने एक्सप्रेस एपिसोड नंबर 27 यहीं समाप्त होता है। और साथियों, अब वक्त हो गया है प्रोग्राम की स्टार्टिंग में पूछे गए आपसे सवाल का जवाब देने का। हमारा आज का सवाल था, किस भारतीय स्टार्टअप ने दृष्टि लॉन्च किया है जो दुनिया का पहला हाइब्रिड उपग्रह है? और इसका सही जवाब है,
1: और इस सवाल का सही जवाब है गैलेक्स आई स्पेस। और सही जवाब देने वाले हमारे श्रोता साथी हैं आप सभी, सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र जी शाह, पंजा जी नहकार, निर्मला नहकार, विशाल नहकार, धर्मेंद्र छिपा, इरशाद अहमद, नंद कुमार ठाकुर, अशोक सिंह, जॉन डिकैस्ट्रो, नानक खन्ना, हल्के जयपाल यादव, अभिजीत कंगवार, दुर्गाराम साहू, एमडी यासीन अंजान, प्रवीण चौहान, मोहम्मद रफीक पवार, बेनजीर कोसर, मोहम्मद साकिब पवार, मोहम्मद हसनैन पवार, दिनेश वर्मा, ताज अंसारी, रियासत हुसैन सिद्दीकी, राष्ट्रपाल गजभैये, विमल सक्सेना भारती, विट्ठल सुरोशे, नवी हसन अब्बासी, लालगिरी गोस्वामी, किशन सपकाल, दिग्दर्शन गोड़, राधेश्याम पांडे, महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, दिलशाद हुसैन, सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, हीरामानी वर्मा, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी, श्री कृष्णा भाटे, बी कमाल, जाकिर मंसूरी, फागुराम यादव, गजानन येले दरियापुर भाबली, रामशरण, सत्येंद्र चंसोलिया पंजोनिया, शाहजी भोड़के, संजय ढींगिया, रवि रस्तोगी, मुजफ्फर अली खान, राजू मिगलानी, जगदीश ढाकर, भेरूलाल वाक्तरिया धाकर, राणा तलत, महेंद्र मोदी, मोहम्मद सईद अब्बासी, रमेश सक्सेना, निसार सलमानी, गुरमीत सिंह मीता, उत्तम सिंह

0: उत्तम सिंह, आमिर हुसैन, मोहम्मद आमिर अंसारी, मोहम्मद जाहिद अली, शकील अहमद इदरीसी, अजीत कसाना, धीरज भाई रबारी, सुरेश गगनेजा, आकाश रसोगी, सुनील पाठक, शाहरुन नूर अंसारी, दीपेश वर्मा, लाल मोहम्मद अंसारी, रवि कुमार राहुल, भाई रफत साहब, भगवत चौबे लाडला जी, एम हफीज़, मोहम्मद हफीज़ुर रहमान, नितेश कुमार, मुकेश कश्यप, गंगा सिंह रावत, चौधरी राजवीर सिंह, राजवीर सिंह यादव। बस आप सभी ने सवाल का सही जवाब हम तक पहुंचाया है।
1: और साथियों, आप सभी को आज का कार्यक्रम कैसा लगा हमें बताना मत भूलिएगा हमारे इस पते पर। हमारा पता है कार्यक्रम चिट्ठी आई है युववाणी अनुभाग द्वारा, केंद्र निदेशक आकाशवाणी रामपुर, पिन संख्या 244901। हमारे जो श्रोता साथी हमें व्हाट्सएप के माध्यम से अपना फीडबैक भेजना चाहते हैं वे हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें। हमारा नंबर है 9410087876। और इसी के साथ दीजिए आज का प्रोग्राम संपन्न करने की अनुमति अपनी रेडियो मेज़बान फरहीन समद
0: और हुमा सलीम आफाकी को। नमस्कार।

अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी, फरीन समद और हुमा सलीम अफाकी के साथ। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 6 बजने वाले अब हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे।

मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पांच देशों की यात्रा के तीसरे चरण में स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंच गए हैं। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। स्वीडन की दो दिवसीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी आज अपने स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता आपसी संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे, साथ ही व्यापार, पर्यावरण अनुकूल विकास, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती प्रौद्योगिकी, स्टार्टअप, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु संरक्षण के प्रयास और आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसरों पर भी चर्चा करेंगे। दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन के साथ यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को भी संयुक्त रूप से संबोधित करेंगे। गोथेनबर्ग रवाना होने से पहले नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रोब येटेन स्वयं एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पहुंचे और प्रधानमंत्री मोदी को विदाई दी। नीदरलैंड्स की दो दिवसीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रोब येटेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों ने रक्षा, महत्वपूर्ण खनिजों और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति और उसके वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति तथा व्यापार नेटवर्क पर पड़ रहे प्रभाव को लेकर गहरी चिंता भी व्यक्त की। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनकी नीदरलैंड्स यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को नई गति दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री रोब येटेन के साथ प्रसिद्ध अफ्सलाउटाइक बांध का भी दौरा किया। ये यात्रा गुजरात की महत्वाकांक्षी कल्पसर परियोजना के लिए भारत नीदरलैंड्स तकनीकी सहयोग की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। इस परियोजना के तहत खंबात की खाड़ी पर 30 किलोमीटर लंबा बांध बनाकर विशाल मीठे पानी का जलाशय तैयार किया जाएगा। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान में नवाचार और इंक्यूबेशन केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान के महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि एक ऐसा संस्थान है जो रचनात्मकता को उद्यमिता से जोड़ता है। उन्होंने कहा कि एनआईडी जैसे संस्थान युवाओं को नवाचार और

0: कौशल विकास के लिए सही मंच प्रदान करते हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वर्चुअल माध्यम से बेंगलुरु और मुंबई के बीच नई एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि दक्षिण और उत्तर कर्नाटक के लोगों की लंबित मांगें अब पूरी हो रही हैं। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु और मुंबई के बीच वंदे भारत स्लीपर रेलगाड़ी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। रेल मंत्रालय ने त्रिवेंद्रम नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के दो पिछले डिब्बों में लगी आग की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। मंत्रालय ने बताया कि डिब्बे की सुरक्षा प्रणाली के कारण ट्रेन स्वतः रुक गई। घटना में कोई भी यात्री घायल नहीं हुआ। जनगणना 2027 के लिए मकानों की गिनती का पहला चरण 5 राज्यों में शुरू हो गया है। इसके तहत राजस्थान, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में मकानों की सूची तैयार की जाएगी। एक रिपोर्ट।
1: घर घर जाकर सूची तैयार करने का काम आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी चल रहा है। स्वगणना सुविधा आज से गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पुदुचेरी में भी शुरू की गई है। ये सुविधा 31 मई तक उपलब्ध रहेगी। स्वगणना सुविधा उत्तर प्रदेश में भी जारी है, जो 21 मई तक उपलब्ध रहेगी। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: भारत ने कहा है कि हॉर्मूज जल डमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नैनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने और जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। ईरान ने घोषणा की है कि रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हॉर्मूज जल डमरू मध्य से सैन्य उपकरणों से लदे शत्रु पोतों को गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ एवं एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 6:05 हुए हैं। श्रोताओं, आप सुनिए सूचना खोए हुए व्यक्ति के संबंध में। प्रभारी थाना निरीक्षक जनपद संबल से हमें सूचित करते हैं कि पूनम, जिनकी आयु 32 वर्ष है, रंग गेहुआ है, 25 अप्रैल 2026 से गुमशुदा हैं। इन्होंने पीला सूट और पीली शलवार पहन रखी है। जिस किसी व्यक्ति को इनके संबंध में कोई भी सूचना प्राप्त हो, कृपया इस पते पर सूचित करें। पप्पू पुत्र मुनेश कुमार, निवासी ग्राम गोजनी, संभल। सूचित करने के लिए मोबाइल नंबर इस प्रकार है 8630849516। मोबाइल नंबर एक बार पुनः सुन लीजिए 8630849516।

गुमशुदा व्यक्ति के संबंध में एक और सूचना सुनिए। प्रभारी थाना निरीक्षक जनपद संभल से हमें सूचित करते हैं कि नेहा, जिनकी आयु 20 वर्ष है, कद 5 फुट, रंग गोरा है, 29 अप्रैल 2026 11 बजे से गुमशुदा है। इन्होंने शलवार सूट पहन रखा है। जिस किसी व्यक्ति को इनके संबंध में कोई भी सूचना प्राप्त हो, कृपया इस पते पर सूचित करें। गुलफशा पुत्री नबी जान, निवासी मोहल्ला सादक सराय, कस्बा सिरसी, थाना हजरत नगर, गढ़ी, जनपद संभल। सूचित करने के लिए मोबाइल नंबर इस प्रकार है 8057062635। मोबाइल नंबर एक बार पुनः सुन लीजिए 8057062635। गुमशुदा व्यक्ति के संबंध में एक और सूचना सुनिए। प्रभारी थाना निरीक्षक जिला संभल से हमें सूचित करते हैं कि मोहम्मद तनवीर, जिनकी आयु 19 वर्ष है, कद 4 फीट, रंग सांवला है, 21 दिसंबर 2024 से गुमशुदा है। जिस किसी व्यक्ति को इनके संबंध में कोई भी सूचना प्राप्त हो, कृपया इस पते पर सूचित करें। परवेश आलम, पुत्र गामा, निवासी ततारपुर, हजरत नगर, गढ़ी, जनपद संभल। सूचित करने के लिए मोबाइल नंबर इस प्रकार है 7983367

9 6। मोबाइल नंबर एक बार पुनः सुन लीजिए, 7983-36-7596। गुमशुदा व्यक्ति के संबंध में सूचना समाप्त हुई।

0: फूलों का कुंज दिलकश भारत में एक बनाएं, हुब्बे वतन के पौधे इसमें नए लगाएं।
1: मिल मिल के हम तराने हुब्बे वतन के गाएं, बुलबुल हैं जिस चमन के गीत उस चमन के गाएं।
0: हम सब भी मिलकर गीत गाएं
1: अमन के भाईचारे के।

0: कौमों को नाज है वतन पर मर मिटने वालों पे।
1: उठकर जरा तो देखो दुनिया का रंग क्या है, रफ्तार क्या जहाँ की, कौमों का ढंग क्या है।

0: हमारे भारत में सदा एकता का वास रहे,
1: समाज में सदा आपसी प्रेम का आश्वास रहे,
0: देश में सदा भाईचारे और नैतिकता का निवास रहे
1: और हमारी सांप्रदायिक सौहार्दता में सदा उजास रहे।
0: आइए मिलकर हम एक ऐसा समाज बनाएं जिसमें भारतीयता का, मनुष्यता का सदा वास रहे।
2: हमारा प्रथम कर्तव्य इस राष्ट्र के प्रति है,
3: जिस देश पे हमने जन्म लिया,
2: जिस भूमि पर हमने चलना सीखा,
3: जिसका अन्न हमारे शरीर में लहू बनकर दौड़ रहा है,
2: उस धरती का ऋण है हम पर।
3: हमारा कर्तव्य है हम अपने देश की रक्षा करें और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दें।
4: हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं, 6:10 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट संगीत। कार्यक्रम में आइए सुनते हैं मोहित चौहान को फिल्म दिल्ली 6 में।

इस समय आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत। कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं शाहिद माल्या को फिल्म मौसम में।

फिल्म मौसम में शाहिद माल्या की गायसी गीत के साथ कार्यक्रम चित्रपट संगीत अभी संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ एवं एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर 6:20 हुए हैं। प्रस्तुत है किसान साथियों का दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत।

0: आबो आबो अब्दुल हबीब भैया, राम राम।
1: राम राम अखिलेश भैया और कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भाइयों को हमारे अब्दुल हफीज भैया की तरफ से
0: और अपने अखिलेश भैया की तरफ से राम राम।
1: राम राम।
0: और भैया कैसे हो, ठीक हो?
1: हाँ अखिलेश भैया ठीक हैं, और सुनाइए।
0: बस भैया हम भी ठीक हैं, और साथ ही हम आशा करते हैं कि हमारे जो भी किसान साथी हैं वो सब कुशलता से होंगे और स्वस्थ होंगे और अपने सभी काम, चाहे वो खेतीबाड़ी के हों या पशुपालन के हों, अन्य कोई काम हो, समय रहे तो अच्छी तरीके से कर रहे होंगे।
1: हाँ अखिलेश भैया।
0: हाँ भैया, और हमारे पास एक सूचना है, क्योंकि जो हमारे कृषि जगत कार्यक्रम जाता है ना, उसमें 1 मई से कुछ थोड़े से बदलाव हुए हैं कार्यक्रमों को लेकर, तो ये सूचना है हमारे पास, अगर आप कहो तो अपने किसान साथियों को बता दी जाए।
1: हाँ अखिलेश भैया क्या है सूचना?
0: भैया बुधवार को हम अपने किसान साथियों को सुन मांगे सफल कृषक से बातचीत।
1: हाँ, और अगर दूसरा बुधवार होता है तो सफल महिला कृषक से बातचीत की जाएगी,
0: और तीसरे बुधवार को मासिक कृषि गोष्ठी हम अपने किसान साथियों को सुन मांगे,
1: और चौथे बुधवार को सफल कृषि स्टार्टअप कार्यक्रम सुनाया जाएगा,
0: और साथ ही पांचवा बुधवार यदि हो तो सफल कृषक के अनुभव अपने किसान साथियों को सुनवाए जाएंगे।
1: हाँ अखिलेश भैया, अगर गुरुवार की बात करें तो आकाशवाणी गांव में ग्राम पंचायत संकलन विशेष पर कार्यक्रम सुनवाया जाएगा,
0: और इसी तरह भैया दूसरे गुरुवार को कृषि पत्रिका खेत खलियान कार्यक्रम हम अपने किसान साथियों के लिए सुनवाएंगे।
1: हाँ भैया, और तीसरे गुरुवार को भी आकाशवाणी गांव में सुनवाया जाएगा।
0: इसी तरह भैया चौथे गुरुवार को भी कृषि पत्रिका खेत खलियान कार्यक्रम अपने किसान साथियों को सुनवाया जाएगा।
1: अगर पांचवा गुरुवार होगा तो आकाशवाणी गांव में भी सुनवाया जाएगा।
0: और इसी तरह भैया अगर हम बात करें दिन शुक्रवार की, तो पहले शुक्रवार को लोक मंजरी कार्यक्रम, जो किसान साथियों के फरमाइशी लोकगीत पर आधारित कार्यक्रम है, वो हम अपने किसान साथियों को सुनवाएंगे।
1: हाँ अखिलेश भैया, और शुक्रवार दूसरे को कृषि संघ का समाधान, जो समस्या व उससे जुड़े समाधान है वो बताए जाएंगे,
0: और तीसरे शुक्रवार को भी हम अपने किसान साथियों को लोक मंजरी कार्यक्रम, जो फरमाइशी लोकगीत पर आधारित कार्यक्रम होता है, वो सुनवाएंगे।
1: हाँ भैया, और चौथे शुक्रवार को कृषि संघ का समाधान, समस्या व उससे जुड़े समाधान बताए

0: ईमेल आईडी की बात करें तो पत्र मिला रामपुर @gmail.com पर हमारे किसान साथी मेल के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
1: हाँ अखिलेश भैया, अगर सोशल मीडिया की बात करें तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, यूट्यूब और आकाशवाणी रामपुर, इस पे सुन सकते हैं।
0: और पत्रचार की अगर हम बात करें तो हमारे कार्यक्रम को पता है कार्यक्रम कृषि जगत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी रामपुर पिन 2449-01। तो भैया जी थी हमारी सूचना जो कि हमारे कार्यक्रमों को लेकर थी। और भैया अब अगर हम बात करें खेती बाड़ी की तो जा समय आप देख ही रहे हो कि हमारी जो खेती बाड़ी हमारे किसान साथी बहुत मेहनत से खेती बाड़ी करते हैं और कोई ना कोई प्राकृतिक आपदा से हमारे किसान साथियों को फसलों में नुकसान होता है।
1: हाँ अखिलेश भैया, तो एक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है जो लगातार कई वर्षों से चल रही है और हमारे किसान भाई अगर इसका लाभ उठाते हैं तो जैसे अभी देखा होगा आपने कि गेहूं की जो फसल थी उसमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ किसान भाइयों को और गेहूं जीरे की तरह हो गया। तो ऐसी स्थिति में अगर 15-20% जो नुकसान होता है उसकी भी भरपाई हमारे किसान भाइयों को इससे मिल जाती है।
0: हाँ, तो हम तो अपने सभी किसान साथियों से यही कहना चाहेंगे कि अगर हमारे किसान साथी अपनी खेती बाड़ी में मेहनत करते हैं, सारा खर्चा करते हैं, बहुत मन से उसमें लागत लगाते हैं और आप देख ही रहे हो खाद उर्वरक इतने महंगे हुए हैं, लेकिन फिर भी हमारे किसान साथी अपनी फसल से अच्छी पैदावार लेने के लिए खाद उर्वरक लगाते ही हैं। तो अगर इतना वो खर्चा कर रहे हैं तो हम अपने किसान साथियों से यही कहने जाएंगे कि अपनी फसल का बीमा वो जरूर कराएं, ताकि भैया कोई ओलावृष्टि है या बाढ़ आ जाती है या कोई आंधी तूफान आ जाता है, उससे अगर हमारी किसानों की फसलों को अगर कोई नुकसान होता है तो उनकी जो इस बीमे के माध्यम से उनकी जो है भरपाई वो हो जाए।
1: हाँ अखिलेश भैया, अगर प्रीमियम बीमा किस्त की बात करें तो किसानों को अपनी जेब से बहुत ही कम प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। खरीफ में धान, मक्का आदि फसलों के लिए 2%, वार्षिक वाणिज्य और बागवानी फसलों के लिए 4-5%, और रबी की अगर हम बात करें तो गेहूं है, चना है, इन फसलों के लिए 1.5% जो है इसका प्रीमियम देना पड़ता है।
0: तो देखा जाए तो जो इसका प्रीमियम है वो भी कोई ज़्यादा नहीं है। अगर हमारे किसान साथी थोड़ा सा ध्यान देंगे, अपने जो फसलों में वो खाद उर्वरक लगाते हैं उनको थोड़ा कम करके अगर ये बीमा कराएंगे तो उनके लिए बहुत फायदेमंद चीज़ है।
1: हाँ अखिलेश भैया, पहले क्या था, ये ऐच्छिक कर दिया गया था, यानी कि जैसे हमारे किसान भाई किसान क्रेडिट कार्ड लगभग सभी के पास है और वो लोन लेते थे, क्रॉप लोन लेते थे, उसमें वो कट जाता था, बैंक वाले कार्ड लेते थे। अब इसको ऐच्छिक कर दिया गया, यानी कि जो हमारे किसान भाई हैं वो अपनी मर्जी से करा सकते हैं। तो अभी हमारे किसान भाइयों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, जैसे अभी जो गेहूं में परेशानी आई है, बहुत ज्यादा कम फसल निकली है, वो ऐच्छिक की वजह से, यानी कि वो उन्होंने अपनी मर्जी से कराया नहीं, जिन्होंने अपनी मर्जी से बीमा कराया उनको लाभ मिला है और जिन्होंने नहीं कराया उनको लाभ नहीं मिला। पहले क्या था कि बैंक वाले खुद काट लिया करते थे और सबको लाभ मिलता था, तो अब ये स्वैच्छिक कर दिया गया, इससे हमारे किसान भाइयों को नुकसान भी होता है। तो हमारे किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो फसल बीमा है ये कराएं, इससे बहुत ज़्यादा लाभ होते हैं।
0: तो ये तो बात रही भैया फसल बीमा की, और आपको पता है आज 17 मई है और आज के दिन हमारे जो है एक बीमारी जो देख रहे हो हम और आप लोगों में बहुत ज़्यादा चल रही है कि पता लगता है कि किसी को हार्ट अटैक आ गया, किसी को जो है ब्रेन हेमरेज हो गया, दिमाग की नस फट गई। तो ये सब किस कारण से होता है ये थोड़ा सा किसान साथियों को हम बताना चाहेंगे। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं वो होती हैं उच्च रक्तचाप की वजह से। तो जैसे कि आज 17 मई है, 17 मई को मनाया जाने वाला इसका जो मुख्य उद्देश्य है हाई ब्लड प्रेशर या उच्च रक्तचाप के प्रति जागरूक हमारी जो जनता है, हमारे जो किसान साथी हैं उनको करना, इसके कारणों की पहचान करना और इससे होने वाली गंभीर बीमारियां जैसे दिल का दौरा है, स्ट्रोक है, से बचाव और किस तरीके से इससे बचाया जा सकता है, इसके उपाय हम अपने किसान साथियों को बताते हैं।
1: हाँ अखिलेश भैया, जो हाई ब्लड प्रेशर होता है इसे अगर हम मापन की बात किए करें तो ये 120, यानी कि वो जो ज़्यादा वाला होता है वो 120 होता है और जो कम वाला होता है वो 80 होता है। अगर ये है तो नॉर्मल रेंज है, अगर इससे कम बढ़ती होता है तो ये ज़्यादा नुकसानदायक होता है। अगर हम बात करें 90 और 140 की, जो नीचे वाला होता है वो अगर 90 होता है और 140 तक पहुंच रहा है तो ये एक तरह से साइलेंट किलर होता है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा घातक होता है। तो हमारे जो सुनने वाले हैं, श्रोता सुन रहे हैं, वो ध्यान रखें कि नमक इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, इससे नमक है, ऑयली चीज़ें हैं, तेल वाली जितनी भी चीज़ें होती हैं ये ज़्यादातर ब्लड

0: प्रेशर को बढ़ाती हैं, और हाइपर टेंशन यानी कि जो टेंशन होती है वो ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है। तो जितने भी चाहे वो हमारे कृषि जगत में कार्यक्रम सुनने वाले हों या श्रोता हों, तो वो इसका ध्यान रखें कि नमक का इस्तेमाल जो है वो कम से कम करें, और हाइपर टेंशन यानी कि टेंशन से बचें, और उच्च रक्तचाप की समय समय पर जांच कराते रहें।
1: हाँ, मतलब कहने को आपको मतलब जो है संतुलित आहार लें, नमक का कम सेवन करें, नियमित व्यायाम करें, और भैया समय समय पर अपने जो है ब्लड प्रेशर की जांच कराते रहें ताकि इस समस्या से वो प्रभावित ना हो सकें। और भैया जैसे कि बात बीमारी की चली रही है, तो हमारे जो किसान साथी हैं वो खेती बाड़ी करते हैं, तो खेती बाड़ी भी हमें तभी अच्छी पैदावार अपनी खेती बाड़ी से मिलेगी जब हमारी मिट्टी स्वस्थ होगी। तो जाके लिए हमारे किसान साथी अपनी मिट्टी की जांच जरूर कराएं, तो क्यों ना जाइए विषय पर अपने किसान साथियों को विस्तार से जानकारी दिलवा दी जाए।
0: हाँ अखिलेश भैया,
1: विषय है मिट्टी की जांच क्यों जरूरी। जाइए विषय पर बातचीत के माध्यम से जानकारी दे रहे हैं आप हैं डॉक्टर रविंदर कुमार, आपसे बातचीत कर जानकारी करा रहे हैं हमारे भैया श्री विक्रांत जी। तो आप भी सुनो और हमारे किसान साथी भी सुने ये बातचीत।
2: किसान भाइयों नमस्कार। कार्यक्रम कृषि जगत के अंतर्गत हम समय समय पर आपको विशेषज्ञों के रूप में हमारे प्रसारण क्षेत्र में स्थित अनेकों कृषि विज्ञान केंद्रों के विशेषज्ञों को अपने बीच स्टूडियो तक लाते हैं। उनके द्वारा दी गई जानकारी आप सभी किसान भाइयों के लिए लाभप्रद हो, इन्हीं सब विषय को लेकर आपके बीच में रहते हैं। और एक महत्वपूर्ण विषय जो हम सभी के लिए ज़रूरी है वो है मिट्टी की जांच क्यों आवश्यक है, क्यों ज़रूरी है, क्या कुछ तत्व हैं जिनके होने से मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ती है और फसलों को लाभ मिलता है। इस विषय में एक विशेषज्ञ के रूप में हमें जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच स्टूडियो में हैं डॉक्टर रविंद्र कुमार। डॉक्टर रविंद्र कुमार जी कृषि विज्ञान केंद्र ठाकुर द्वारा मुरादाबाद से हमारे बीच में आए हैं। डॉक्टर साहब आकाशवाणी के स्टूडियोज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद
2: डॉक्टर साहब, हम सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि मिट्टी की जाँच क्यों ज़रूरी है।
3: मिट्टी की जाँच फसलों के लिए बहुत ही आवश्यक है। आज हमारे कृषक भाई जिन फसलों को लगा रहे हैं उनमें उनको ये पता नहीं है कि किस फसल के लिए कौन कौन से पोषक तत्व तो कितनी मात्रा में आवश्यक हैं, और जिस मिट्टी में जिस खेत में हम वो फसल लगाने जा रहे हैं उसमें कौन कौन से पोषक तत्व तो हैं, कौन से कम हैं, कौन से ज़्यादा हैं, किन की अवेलेबिलिटी है, किन की उपलब्धता है, किन की नहीं है, ये जानने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उर्वरकों का मिट्टी की जांच के बाद ही उनका प्रयोग करें। अक्सर होता यह है कई बार किसान भाई आपस में या एक दूसरे को देखकर उर्वरकों का चयन करते हैं और उनको मात्रा का पता नहीं है, बस एक साथ लगे हुए हैं कि मेरे पड़ोसी ने अगर 10 किलो 20 किलो या 50 किलो प्रयोग किया है तो मैं उससे कम नहीं करूँगा ज़्यादा करूँगा
2: जी।
3: उनको पता ही नहीं है कि कितने या अधिक मात्रा में पोषक तत्व डालने से पैदावार नहीं बढ़ती है, इससे नुकसान होता है, बीमारियां बहुत आती हैं फसलों में, कीड़े बहुत लगते हैं और हानि हो जाती है और पैसा बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता है। इसके साथ साथ जो उर्वरक हम किसान भाई अधिक मात्रा में डाल रहे हैं वो अनेकों रूप से हमारे पानी को, हमारे वातावरण को, इवन हवा को भी दूषित करते हैं। एक सबसे बड़ी समस्या आज तारीख में जो यूरिया अधिक किसान भाई प्रयोग कर रहे हैं उस वो नाइट्रेट पौधा उसको दो रूप में लेता है, नाइट्रेट और एक अमोनियम, और नाइट्रेट बहुत जल्दी पानी के साथ घुलकर वो नीचे चला जाता है जो पीने वाले पानी में जाकर बहुत ही हानिकारक और उसके बहुत ही दुष्परिणाम हमारे सामने हैं। एक जांच का मैं आपको बताना चाहूंगा इस समय कि अभी मैंने ठाकुर द्वारा के काफी सारे क्षेत्रों की मिट्टी की जांच की और पानी की जांच का कुछ विश्लेषण कराया था, उसमें देखा पीने वाले पानी में नाइट्रेट की मात्रा 4 से 5 PPM कहीं कहीं 6 PPM तक भी पाई गई है
2: जी,
3: जबकि WHO के अनुसार पीने वाले पानी में नाइट्रेट की मात्रा 1 PPM से कम होनी चाहिए
2: जी।
3: तो इस तरह से बहुत सारे गलतियां हम अनजाने में कर रहे हैं, उसका बहुत सारा नुकसान हमारे पशुओं को, हमारे जीवों को, पक्षियों को, मनुष्यों को, सभी को उसका भुगतान करना पड़ रहा है और सभी बीमार हैं। इसी कारण मिट्टी भी इस समय अस्वस्थ है और मिट्टी अस्वस्थ होने के कारण हम सभी का जो स्वास्थ्य है उस पर एक प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और हम बहुत ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं, और बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो हमारे केवल खान पान और हमारे अधिक मात्रा में उर्वरकों का या रसायनों का प्रयोग करने से हमारे बीच मौजूद हैं और सभी उससे पीड़ित हैं। इसलिए किसानों को सलाह दी जाती है कि किसी भी फसल को लगाने से पहले मिट्टी की जाँच अवश्य कराएँ। मिट्टी की जाँच हर जिले में कृषि विभाग, द्वारा जिले में लैब में मृदा परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित है। इसके अलावा कृषि विज्ञान केंद्र बिलारी में मृदा परीक्षण प्रयोगशाला है, कृषि विज्ञान केंद्र रामपुर में हमारे पास में मृदा परीक्षण प्रयोगशाला है, पास में हमारी पंतनगर यूनिवर्सिटी है, पंतनगर में मृदा परीक्षण प्रयोगशाला है। इसके साथ साथ जो सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी मेरठ है, वहाँ भी मिट्टी की जाँच की सुविधा उपलब्ध है। तो किसान भाई जहाँ उनको सुविधा लगती है सुविधा अनुसार अपने खेत की मिट्टी की जाँच अवश्य कराएँ, उसके बाद ही उर्वरकों का प्रयोग करें।
2: जी जी जी, डॉक्टर साहब आपने बात की थी पीपीएम की, नाइट्रेट की। हम देखते हैं कि मिट्टी का पीएच एक समान स्टैंडर्ड वैल्यू में हो तभी वो बेहतर है। क्या वो स्टैंडर्ड वैल्यू है, मानक क्या है, और किस प्रकार से पीएच अधिक या कम मिट्टी की उर्वरकता को कम करता है?
3: मिट्टी का जो सामान्य एक पीएच होता है किसी फसल के लिए
2: जी,
3: और फसलों के साथ साथ उर्वरकों की उपलब्धता के लिए भी
2: जी,
3: एक पीएच जो 7.0 से 7.5 का जो पीएच मान होता है वो एकदम सामान्य होता है, जिसमें सारे पोषक तत्व लगभग उपलब्ध फॉर्म में होते अवस्था में होते हैं। इसके अलावा अगर नीचे का जाता है तो वो एसिडिक कंडीशन, अम्लीय कंडीशन कहते हैं उसे, अम्लीय हो जाता है। और जहाँ अम्लीय होता है तो अम्लीय का भी कुछ ऐसे पोषक तत्व हैं जो उनकी उपलब्धता कम हो जाती है, कुछ की बढ़ जाती है, यानी टॉक्सिसिटी भी आ जाती है
2: जी।
3: तो उसको जहाँ पीएच कम है वहाँ हम रिकमेंड करते हैं, कहते हैं किसानों को कि वहाँ चूने का प्रयोग करें। और जहाँ पीएच अधिक है 8.5 उसके ऊपर भी चला जाता है तो वहाँ कहा जाता है कि उनको जिप्सम या पायराइट का प्रयोग करें, जिससे उसको पीएच को कम किया जा सके। अगर पीएच सामान्य रहेगा तो पोषक तत्व की उपलब्धता रहेगी और फसलों की बढ़वार अच्छी होगी, जिससे पैदावार भी अच्छी होगी
2: जी। बहुत से हमारे किसान भाई मिट्टी की जांच करवाते हैं और जांच करवाने के बाद भी वो ऐसा महसूस करते हैं कि कोई बहुत बड़ा लाभ उनको नहीं मिल पाया है। कई बार उसका कारण ये भी होता है कि नमूना लेने का सही तरीका क्या है, उसके बारे में सही जानकारी होना भी जरूरी है। तो क्या कुछ तरीका है नमूना लेने का, किस प्रकार से अपने नज़दीकी लैब तक पहुँचे और खेतों के किन किन हिस्सों से किस प्रकार से मिट्टी ली जाए, इकट्ठी की जाए, पूरा वो प्रोसेस क्या है, हमारे किसान भाइयों को ज़रूर बताएं।
3: मिट्टी की जांच का सबसे महत्वपूर्ण जो पहलू है वो एक प्रतिदिन नमूना अपने खेत से प्राप्त करना, ये बहुत ही जरूरी है। आप अगर नमूना लेने में कहीं भी आपसे चूक हो गई है, कोई भी कण किसी खाद का या किसी पेड़ की पत्ती का या कहीं से ऐसा उसमें आता है तो वो एकदम जांच को प्रभावित कर देता है
2: जी।
3: इसलिए ये सलाह दी जाती है किसानों को कि जिस खेत का हमें नमूना लेना है, माना कि एक एकड़ क्षेत्र से हमें एक नमूना एकत्र करना है, तो किसान भाइयों को चाहिए कि अपने खेत को इस तरह से देखें कि कंडीशन देखें खेत की, कि अगर खेत में कोई पेड़ खड़ा है तो पेड़ के पास से नमूना ना लें, मेढ़ के पास से नमूना ना नहीं लेना चाहिए
2: जी।
3: इसके अलावा जिग जैग मोशन कहते हैं, जगह जगह से लगभग 6 से 7 एक एकड़ में कम से कम 6-7 जगह से आपको नमूना लेना है। उसके लिए करना यह है कि खुरपी की सहायता से जहां से हमने नमूना प्राप्त करना है, जहां चिन्हित कर लिया हमने 6-7 स्थान के, यहां से हमें नमूना प्राप्त करना है, तो उस हल्की सी परत ऊपर की, क्योंकि ऊपर ऑर्गेनिक कार्बन या जैवांश मात्रा ज्यादा होती है, इसके लिए थोड़ा सा रिमूव करने के बाद एक खुरपे की सहायता से एक वी आकार का कट दोनों तरफ से लगाएंगे, जो लगभग 0 से 15 सेंटीमीटर का जनरली हम लेते हैं नमूना। अगर हम फसलें ले रहे हैं और यदि बागवानी के लिए ले रहे हैं, पेड़ पौधे लगाने हैं, तो वहाँ 1 मीटर तक भी हम उन्हें ओवर की सहायता से लेते हैं। तो इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस तरह से नमूना लें। उसके बाद वी आकार जो हमने आपका एक गड्ढा आपके सामने बन गया, उसके दोनों साइड से एक एक परत, लगभग 1-1 इंच की परत निकाल लें और इस तरह से उसको सारे जितने भी हमने चिन्हित स्थान है उन सबसे वो एकत्र कर लें, और किसी साफ कोई सीट हो ऐसी जिसपे कोई फर्टिलाइजर या कोई केमिकल ना लगा हो, उस पर एकत्र करने के बाद उसको अच्छे से मिक्सिंग करनी है। मिक्सिंग करने मिलाने के बाद उसको चार भाग करने, चार भाग करने के बाद आमने सामने के दो भाग आपने हटा दिए, उसके बाद जो दो भाग बचे उनको फिर दोबारा मिक्सिंग करनी है। ये तब तक प्रक्रिया तब तक अपनानी है जब तक के लिए हमारे पास लगभग 500 ग्राम जो मिट्टी है नमूना, जिसे प्रतिदिन नमूना कहते हैं, वो प्राप्त ना हो जाए। ये होने के बाद उसको एक साफ बैग में, किसी भी पॉली बैग हो या कुछ जो साफ हो, उसमें कोई फर्टिलाइजर का या किसी खाद का इत्यादि उसमें ना हो, उसके बाद उसमें टैगिंग बहुत जरूरी है। उसमें अपने खेत की एक सबसे पहले देखना कि अभी इस खेत में पहले फसल कौन सी लगाई गई थी, ये भी जरूर लिखना है
2: जी।
3: इसके बाद कौन सी फसल हम लगाने जा रहे हैं जिसके लिए हम उसकी उर्वरकों की मात्रा का निर्धारण करना है। इसके अलावा किस तारीख में नमूना लिया गया, किस खेत का नमूना लिया गया, उसकी पहचान क्या है, क्योंकि हर खेत की एक पहचान होती है। किसान ना जैसे हमारे नाम होते हैं वैसे किसान भाई अपने खेत के नाम रखते हैं,
2: बिल्कुल, बिल्कुल।
3: तो अपने जो अपने लोकल लैंग्वेज में नाम से पता रहे कि हमने, क्योंकि हम कई बार 10 नमूने भेजे या ज्यादा नमूने भेजे, हम भूल गए कौन सा नमूना कहां से लिया था, तो इसलिए पहचान लिखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये करने के बाद एक टैग थैली के अंदर और एक टैग बाहर से, उसे लगाने के बाद और उसको फिर जो जो भी आपकी नजदीकी प्रयोगशाला है वहां आप उसको भेजिए और उसके जो रिजल्ट आते हैं उसके अनुसार उनका उर्वरकों का प्रयोग करिए तो निश्चित रूप से पैदावार बढ़ेगी और एक संतुलित उर्वरक की जो हमारी आज की आवश्यकता है उसको हम पूरा कर सकते हैं।
2: जी डॉक्टर साहब, ये भी बताइए कि क्या एक ही खेत के अलग अलग नंबर की उर्वरता अलग अलग होगी, क्या उनकी मिट्टी अलग अलग हो सकती है?
3: खेत में उर्वरता ढाल के अनुसार भी हो जाती चेंज हो जाती है। यदि खेत लेजर लेवल नहीं है और कई बार क्या होता है कि एक बड़ा खेत है तो उसकी मिट्टी का टेक्सचर और स्ट्रक्चर अलग अलग हो सकते हैं, सदस्य अलग अलग हो सकती है, कई बार कलर भी अलग अलग होता है तो इसलिए उसकी उर्वरता भी अलग अलग कई बार हो सकती है। लेकिन इसीलिए हम कहते हैं कि उसको कम से कम 5-7 जगह से ऐसे चिन्हित करने के बाद नमूना लिया जाए कि जो खेत ढाल डाल रहे गहरे से भी ऊंचे से भी इस तरह नमूने लिए जाए कि एक सभी जगह की मिट्टी हमारे पास उस प्रतिदिन नमूने के रूप में एकत्र हो जाए।
2: जी जी डॉक्टर साहब, ये भी बताइए कि जो मुख्य पोषक तत्व हैं उनके बारे में तो जानकारी मिल ही जाती है, लेकिन हमारी मिट्टी में कुछ अति सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जिन जो भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं जितने कि बड़े तत्व, तो क्या फाइंडिंग्स में ये भी पता लग जाता है कि किन किन सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी है?
3: ये जानना किसानों के लिए बहुत ही आवश्यक है। ये पता चल जाता है जांच में सारे तत्व लगभग आजकल हमारे पास जो भी लेबोरेटरी हैं वहाँ सभी जगह सूक्ष्म जो सारे तत्व हैं उनकी सुविधा हमारे पास उपलब्ध है। अगर मैं तत्वों की बात करूँ तो अपने किसी भी पौधे को अपना जीवन काल पूरा करने के लिए 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसमें 3 पोषक तत्व ऐसे हैं जैसे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो हमें पानी और हवा से मिल जाते हैं, जिनको हमें बाहर से देने की आवश्यकता नहीं होती और जो लगभग पौधे का 95% भाग इन्हीं 3 तत्वों से मिलकर बना होता है। इसके अलावा जो 14 पोषक तत्व हैं जिसमें 3 तत्व मुख्य रूप से आते हैं जिनको प्राइमरी तत्व कहते हैं, वो आते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, जिनको किसान बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग भी कर रहे हैं, तो इनकी भी अगर हम जांच कर लेंगे पहले पता चल जाएगा, तो अधिक मात्रा प्रयोग करने से जो हानि हो रही, पैसे की हानि हो रही और वातावरण दूषित हो रहा, पानी दूषित हो रहा, उससे बच सकते हैं। इसके अलावा कुछ सेकेंडरी दूसरे पोषक तत्व होते हैं जैसे जो कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, ये 3 तत्व हैं। इसके बाद इनकी भी जो किसान भाई बहुत कम पहले प्रयोग करते थे, कैल्शियम तो मिट्टी से मिल जाता है
2: जी।
3: इसके अलावा मैग्नीशियम और सल्फर बहुत सारे किसान भाई जांच जहां करा रहे हैं जहां कमी पाई जा रही है वो प्रयोग भी कर रहे हैं और उसका लाभ उठा रहे हैं
2: जी।
3: उसके बाद आते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व, जो 8 पोषक तत्व सूक्ष्म हैं जिनकी जो हमारी फसलों को बहुत ही कम मात्रा में उनकी आवश्यकता होती है, इसीलिए उन्हें सूक्ष्म पोषक तत्व भी कहा जाता है, लेकिन इनकी आवश्यकता बहुत अधिक है
2: जी।
3: क्योंकि ये ऐसे तत्व होते हैं जो पौधों को बीमारी से लड़ने की शक्ति पैदा करने के साथ साथ जो दूसरे पोषक तत्व हैं उनकी उपलब्धता को, उनके मेटाबॉलिज्म को भी प्रभावित करते हैं
2: जी, पूरक भी हैं।
3: हाँ, पूरे बहुत ज्यादा जरूरी हैं, जैसे जिंक है, आयरन है, मोलिब्डेनम है, बोरॉन है, मैंगनीज है, क्लोरीन है और एक तत्व निकिल है। इस तरह से 8 पोषक तत्व जो सूक्ष्म पोषक तत्व श्रेणी में आते हैं, ये भी बहुत सारी हम सैंपल जहाँ जांच करा रहे हैं देखने में आया कि इन तत्वों की कमी भी आजकल जिंक की कमी बहुत खेतों में जहाँ जो हमारे जहाँ धान गेहूं फसल चक्र अपना रहे हैं वहाँ देख रहे हैं कि खैरा एक बीमारी है जो जिंक की कमी से होती है, इसकी बहुत समस्या आ रही है। तो हम लोगों को कहते हैं, किसानों को हर लोग कहते हैं कि किसी भी फसल को लगाने से पहले 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हमें जो है जिंक सल्फेट का प्रयोग करना चाहिए, इससे बचना है। इसीलिए लोग जैसे कई बार देखा कटहल के मैंने पौधों में देखा है, कई बार किसान भाई भी समस्या भी आती है, कटहल टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, तो ये एक इंडिकेटर भी है कटहल का, यदि बोरोन की कमी हो जाती है तो कटहल टेढ़ा हो जाता है, टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, कई बार नींबू फट जाते हैं, तो बहुत सारी समस्या आती है कि कॉपर की कमी आ रही, कहीं आयरन की कमी दिखाई दे रही, यानी कि सूक्ष्म तत्व भी उतने ही आवश्यक हैं जितने कि मुख्य पोषक तत्व हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस अधिक मात्रा में डाल रहे हैं तो उनको अधिक मात्रा में न डाल के मिट्टी परीक्षण के आधार पर जो जो पोषक तत्व जितनी मात्रा में संस्तुत किए जा रहे हैं अगर हम उसी मात्रा में उनको प्रयोग करेंगे तो हमारी लागत भी कम आएगी और पैदावार बढ़ेगी, वातावरण शुद्ध रहेगा और हमारा जो मिट्टी और पानी जो दूषित हो रहे हैं जिसको हम कह रहे हैं कि मिट्टी का स्वास्थ्य लगातार बिगड़ता जा रहा है उसमें सुधार आएगा, तो निश्चित रूप से सभी के लिए फायदेमंद होगा
2: जी। तो किसान भाइयों, ये थे डॉक्टर रविंद्र कुमार जी, विस्तार से और बहुत ही सारगर्भित तरीके से अपनी बात कही, मिट्टी की जांच क्यों जरूरी है, उर्वरकता किस प्रकार से प्रभावित होती है और आगे चलकर पूरा फसल चक्र मौसम से, फर्टिलाइजर से, अन्य चीज़ों से किस प्रकार से प्रभाव डालती है उस पर आप बात कर रहे थे, मिट्टी की जांच क्यों जरूरी। डॉक्टर साहब, आप समय निकालकर आकाशवाणी के स्टूडियोज़ में आए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमें और किसान भाइयों तक आपने पहुँचाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
0: साथियों, अभी आप मिट्टी की जांच क्यों जरूरी इस विषय पर एक चर्चा सुन रहे थे, जानकारी दे रहे थे डॉक्टर रविंद्र कुमार, आपसे बातचीत कर जानकारी ले रहे थे विक्रांत जी। हम जानकारी साथियों अच्छी लगी होगी।
1: हम उम्मीद करते हैं कि हमारे किसान साथियों ने ये जानकारी बहुत अच्छी तरीका से और बहुत ध्यान से सुनी होगी और जानकारी को पूरा पूरा लाभ उठाएंगे। और भैया जब बात लाभ की आते हैं ना तो मन करता है कि कुछ गानों बजाने जाए, क्योंकि जो हमारे कार्यक्रम को समय है वो शाम को समय है, जहाँ समय लगभग हमारे सभी किसान साथी अपने खेती बाड़ी के कामन को निपटा के घर पे बैठे आराम कर रहे होते हैं या खाना खा रहे होते हैं। ऐसे पे अगर मनोरंजन है जाए तो सोने पे सुहागा वाली बात है। तो दिन नकद भाई हम अपने किसान साथियों के लिए सुनवाते हैं जो बढ़िया सो लोकगीत। बोल हैं मांगे ननद रानी, आवाज है नीलम रस्तोगी की। तो आप सुनो हम सुनते हैं जो बढ़िया सो लोकगीत, लेकिन बात से पहले सुनते हैं कुछ संदेश।
4: बड़ी बहू ये तुम्हारे ना,
5: इतनी भी क्या जल्दी थी।
4: अरे और छोटी ये तुम्हारे ना,
6: और ये
7: मेरी गुड़िया के नाम।
8: पर दादी
4: हाँ
8: आपके नाम
9: सब कुछ मैंने बैंक लॉकर फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
4: शुभ शुभ बोलो
8: क्या
10: आरबीआई कहता है।
11: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
12: मिस सीमा
8: जी
12: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
8: क्यों लेकिन मैं
12: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
8: डिजिटल अरेस्ट
12: 1,00,000 बन जाओगे।
8: इतने पैसे?
12: अच्छा ठीक है एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो वरना बेटा जेल जाएगा।
8: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस बैंक आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
13: हेलो मम्मा
10: आरबीआई कहता है।
11: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: किसान साथियों, अभी आप लोकगीत सुन रहे थे, सुनकर आनंद आ गया होगा।
1: और भैया, अब समय हो चला है क्षेत्र संकलित कार्यक्रम का। तो जो कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे अब्दुल हफीज भैया, यानी कि आप गए हैं ग्राम नरपत नगर, तहसील स्वार, जिला रामपुर में। वहाँ आपने एक प्रगतिशील कृषक अमीर अहमद जी से बातचीत कर उनके साथ उनके अनुभव साझा करे, तो आप सुनो और हमारे किसान साथी भी सुनते हैं इनके ये अनुभव।
2: अपना परिचय दीजिए।
3: जी, मैं अमीर अहमद बोल रहा हूँ
2: जी,
3: ग्राम पंचायत नरपत नगर, तहसील स्वार, जिला रामपुर से।
2: जी अमीर अहमद भाई, क्या काम करते हैं आप?
3: खेती करते हैं।
2: कितनी जमीन है अपनी?
3: जमीन 8 एकड़ है, 7-8 एकड़ जमीन है
2: जी। तो क्या क्या लगा रखा है इस समय?
3: इस समय हमने गन्ना लगा रखा है, ज्यादा क्वांटिटी में गन्ना ही लगा रखा
2: है। अच्छा, और क्या लगाया है?
3: और उसके अलावा गेहूँ था
2: जी। तो गेहूँ कौन सी प्रजाति का लगाया था?
3: गेहूँ लगाया था 327।
2: अच्छा, सही निकला
3: जी? कम निकला गेहूँ तो इस बार।
2: हाँ, इस समय बरसात जो पड़ी है वो फूल वाली अवस्था में, उससे दिक्कत तो आई थी, तो यील्ड तो कमी निकली है। तो गन्ना कितना है अपना मेरा भाई?
3: गन्ना 6 एकड़ है मेरे पास।
2: अगर हम प्रजाति की बात करें तो कौन कौन सी प्रजाति है?
3: 0118 लगाया है एक प्रजाति तो, और एक है 11015 की वैरायटी है
2: जी,
3: और बाकी ज्यादातर तो 0118।
2: 0118। तो ये नौलफ कितनी है अपनी और पेड़ी कितनी है?
3: पेड़ी इस बार नहीं है मेरे पास, इस बार जो है ऑटम है और फरवरी और मार्च का गन्ना है
2: जी। तो अक्टूबर वाला गन्ना तो बहुत अच्छा होगा इस समय।
3: हाँ, अक्टूबर वाला गन्ना तो अच्छा है।
2: तो आप जो गन्ने का लगाने का तरीका, किस तरीके से लगाते हैं गन्ना?
3: ये अक्टूबर वाला गन्ना तो हमने ढेंचे का प्रहल बनाया था उससे पहले, और वो प्रहल जोतने के बाद में ढेंचा, और उसमें लाई और गन्ना साथ लगाया था।
2: लाई भी ठीक ठाक निकली होगी?
3: लाई भी इस बार कम निकली थी।
2: अच्छा, तो दूरी क्या है?
3: दूरी है 31 इंची पे लगाया था।
2: अच्छा, 31 फीट से भी कम रह गया है।
3: जी जी।
2: आपके यहाँ ट्रंच भी तो लगता है काफी? यहाँ ट्रंच नहीं लगाते हैं?
3: ट्रंच हमारे यहाँ नहीं लगता अभी।
2: अच्छा, कितनी पैदावार निकल आती है गन्ने की आपकी?
3: गन्ने की 350 से 400-500 के आसपास चली जाती है
2: जी। तो आपका गेट एरिया में पहुँचाते हैं या सेंटर पे लेके जाते हैं?
3: ये सेंटर भी हमारे यहाँ और गेट एरिया पे भी जाता
2: जी। तो गन्ने में औसत आती है?
3: हाँ, गन्ने में तो लगभग कुछ औसत आ जाती है
2: जी,
3: लेकिन ज्यादा फायदा नहीं है गन्ने में भी इस समय, किसी कोई सी भी खेती में जो है।
2: हाँ,
3: बहुत ज्यादा
2: खर्च की बात करें तो लेबर खर्च है वो बहुत ज्यादा है,
3: लेबर चार्ज और सभी कॉस्ट जो है ज्यादा ही आ रही है
2: जी जी। तो इस समय गन्ने में क्या क्या कृषण क्रियाएं कर रहे हैं अपने?
3: गन्ने में हमने पहले 1-2 बार कसला करा दिया था, कसले की खुदाई है
2: जी,
3: और फिर एक बार हल करा दिया, एक बार हल जो है अब दोबारा करा रहे हैं
2: जी,
3: मिट्टी चढ़ाने का काम चल गया।
2: तो अपने यहाँ बंधाई चलती है?
3: हाँ, बंधाई चलती है।
2: इसमें रोग और कीट बहुत ज्यादा प्रकोप होता है, जैसे ब्लैक बग है जो काला चीटा होता है, बहुत ज्यादा लगता है और वो गन्ने में रस चूसता है, तो इसकी जो पहचान है वो कैसे करते हैं?
3: गन्ने की पत्ती एकदम से पीली पड़ना शुरू हो जाती है
2: जी,
3: और दिखाई भी देता है पत्ती जो है, हटा के देखते हैं तो
2: उसके चीर के देखा जाए तो काला चीटा बैठा हुआ,
3: काला चीटा बैठा हुआ दिखाई देता है, ऊपर तक भी आ जाता है जब ज्यादा क्वांटिटी में होता है,
2: जब वो रस चूसता है। कई बार हमारे किसान भाइयों को पता नहीं चलता है, जब वो रस चूसता है पीला पड़ जाता है तब वो अपने खेत पे जाके देखते हैं
3: जी जी।
2: जबकि जो तरीका ये है कि अपने खेत पे हर हफ्ते या 4-5 दिन में अपने चक्कर लगाते रहे, जब उसमें बीच बीच में देखते रहे, अगर वो हरा गन्ना दिख रहा है तब भी वो देखेंगे काला चीटे का प्रकोप तो नहीं है, अगर प्रकोप है तो सही दवा का इस्तेमाल करके उसको नष्ट करके और अपने गन्ने को बचाया जा सकता है। कई बार इससे थोड़ी थोड़ी जो ये कमियां होती हैं, इससे बहुत ज्यादा पैदावार में फर्क पड़ता है
3: जी। किसान को तभी पता लगता है जब पीला पड़ जाता है गन्ना
2: जी जी,
3: अगर पहले से देख लेते हैं तो उसका जो है सही समय से।
2: ट्रंचिंग होती है एक, और एक होती है मल्चिंग जो हम बिछावन कहते हैं। क्या गन्ने में आप बिछावन करते हैं पत्ती की?
3: जी नहीं करते।
2: बिछावन करना भी बहुत जरूरी होता है, जैसे अगर आप गन्ने में बिछावन करते हैं तो पानी की जो मात्रा होती है वो कम लगती है, नमी बनी रहती है, खरपतवार कम जमते हैं उससे। तो मल्चिंग करें तो मल्चिंग से बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है और गन्ने की जो पैदावार है वो भी बढ़ती है।
3: मल्चिंग में पत्ती वाली मल्चिंग में तो कभी कभी दिक्कत, जो ब्लैक बग है ना बहुत आता है इससे।
2: हाँ, ब्लैक बग आता है लेकिन जी जी कीट
3: फिर जो है घास नियंत्रण भी ठीक से नहीं हो पाता।
2: अच्छा, जुताई नहीं हो पाती, खुदाई नहीं हो पाती
3: जी जी, वो एप्लीमेंट वगैरह नहीं है ना जो
2: जी जी जी,
3: इसलिए जो है।
2: अच्छा, गन्ने की खुदाई जैसे अब रूटावेटर चल रहे हैं इस समय, उससे भी कराते हैं आप?
3: हाँ, एक बार रूटावेटर भी करा देते हैं।
2: हाँ, जब गन्ना छोटा होता है,
3: जब गन्ना छोटा होता है तब करा देते हैं
2: जी जी। तो अब इस टाइम टॉप बोरर के लिए क्या कर रहे हैं आप?
3: टॉप बोरर के लिए कोलेजन की सलाह दे रहे हैं फैक्ट्री वाले भी।
2: अच्छा, तो गन्ने के साथ सहफसली खेती में आप अब इस समय कुछ है?
3: सहफसली में इस समय कुछ नहीं है, मटर एक में मटर लगाया था, मटर गन्ना
2: जी,
3: कुछ जो है लाई गन्ना लगाया था और कुछ जो है लाई खाली लगाने के बाद लाई काट के बाद में गन्ना मार्च में लगाया, कुछ लहसुन काट के गन्ना लगाया
2: जी जी, लहसुन में गन्ना था, लहसुन गन्ना भी था
3: जी, लहसुन के बाद में गन्ना लगाया।
2: अच्छा, लहसुन खुदने के बाद?
3: लहसुन खुदने के बाद गन्ना लगाया एक एकड़
2: जी जी। अच्छा भाई, इसके अलावा खेती के अलावा और क्या काम करते हैं?
3: बस अभी तो खाली खेती करते हैं।
2: अच्छा, पशुपालन करते हैं?
3: नहीं, पशुपालन नहीं।
2: देखिए, सड़ी गली गोबर की खाद अपने खेतों में डालना बहुत जरूरी है। आप देख ही रहे हैं कि नाइट्रोजन पोटास फास्फोरस मिलना बड़ा मुश्किल हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में कुछ ऐसे उपाय हैं जो करके आप अपने खेती को और बेहतर बना सकते हैं। सड़ी गली गोबर की खाद है ये डालें, ढेंचा बोएं, हरी ग्रेन मैन्यूरिंग करें, तो इस तरीके से अपने खेत की अगर उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं तो पैदावार बढ़ेगा। तो ग्रीन मैन्यूरिंग में तो आप ढेंचा वगैरह बोलते हैं शायद?
3: ढेंचा वगैरह बोल लेते हैं क्योंकि गोबर की खाद नहीं मिल पाती है तो ढेंचे से काम चला लेते हैं थोड़ा बहुत।
2: जी जी, चलिए मेरा अहमद भाई, आपने बहुत अच्छी गन्ने की जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अभी हमारे किसान साथी क्षेत्र संकलित कार्यक्रम में सुन रहे थे अमीर अहमद जी के साथ साझा करे गए अनुभव। हम उम्मीद करते हैं कि इनके अनुभव को हमारे किसान साथी पूर्व लाभ उठाएंगे। और भैया, अब कार्यक्रम को आगे बढ़ात भय, अगर हम कृषि संकेत में जानकारी की बात करें तो जा समय हमारे सभी किसान साथी जो उनके पास फलदार पौधे हैं उनकी देखभाल किस तरीका से करें?
0: हाँ अखिलेश भैया, अगर हम फलदार वृक्षों की बात करें तो गर्मी के मौसम में फलदार पौधों को चिलचिलाती धूप और लू से बचाने के लिए जड़ों की में जो है ना नमी बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। अगर नमी रहेगी अखिलेश भैया उसमें, तो जो फूलों की अवस्था है वो फूल ज्यादा आएंगे और जो गिरने की समस्या है वो फूल उससे नहीं गिरेंगे तो पैदावार बढ़ेगा।
1: और भैया, गर्मी में अगर फलदार पौधों की देखभाल की प्रमुख तरीकों की बात करें तो गहरा और नियमित पानी दें। गर्मी के दिनों में पौधों को पानी देने का सबसे सही समय सुबह सुबह का होता है। फलदार पौधों को बार बार थोड़ा पानी दें ने के बजाय जड़ों तक गहराई से पानी दें ताकि नमी लंबे समय तक बनी रहे।
0: हाँ अखिलेश भैया, मल्चिंग की अगर हम बात करें, जैसे जो पत्तियां होती हैं, पराल होता है या जो फलों के जो पत्ते होते हैं वो अगर बिछा दें उस पे और उसके बाद पानी लगाएं तो जो नमी है वो ज्यादा दिन तक बनी रहती है और जो खरपतवार होते हैं वो भी नहीं जमते हैं।
1: और इसी तरह भैया, हम गर्मी से ग्रीन नेट का प्रयोग करके भी अपने जो पौधे हैं उनको अधिक तेज गर्मी और लू से फलों और पत्तियों को झुलसने से बचा सकते हैं। तो हमारे सभी किसान साथी ग्रीन शेड नेट का प्रयोग कर सकते हैं।
0: हाँ अखिलेश भैया, अगर हम खाद की बात करें तो कई बार क्या होता है कि हमारे किसान भाई नाइट्रोजन ज्यादा दे देते हैं, जबकि नाइट्रोजन गर्म होता है बहुत, फास्फोरस गर्म होता है, पोटास गर्म होता है, तो संतुलित मात्रा में खादों का प्रयोग करें और खासकर शाम के समय जो है सिंचाई करें और सुबह के समय जो है सिंचाई करें, और जब सिंचाई करें तभी वो खाद डालें। कई बार क्या होता है कि हमारे किसान भाई पहले खाद डाल के चले आते हैं और अगले दिन या दो दिन के बाद जो है सिंचाई करते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो पौधा होता है उसे सूखने का डर बना रहता है।
1: और भैया, साथ ही पौधों की कटाई छटाई और साफ सफाई जरूर रखें। पौधों पर सूखे या पीले पत्तों को हटा दें, साथ ही फलों के गुच्छे को सीमित करें। यदि पेड़ पर अत्यधिक फल आ गए हैं तो कुछ छोटे फलों को तोड़ दें ताकि पेड़ का भार कम हो और बचे हुए फलों का आकार अच्छा बन सके।
0: हाँ अखिलेश भैया, अगर हम नींबू या खट्टे और फलों की बात करें तो खट्टे फलों में पौधों में जैसे संतरा है, नींबू है, इनको गर्मियों में जो है धूप से बचाना बहुत जरूरी होता है। जो गमले वाले पौधे होते हैं इनको भी धूप से बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि गमले जो होते हैं बहुत तेजी से गर्म हो जाते हैं। जो जमीन में पौधे लगे होते हैं वो इतने जल्दी खराब नहीं होते हैं जितने कि गमलों वाले पौधे खराब हो जाते हैं, यानी सूखने की जो तादाद है वो ज्यादा हो जाती है उनकी। तो हमारे किसान भाई क्या करें कि जो गमलों में पौधे घरों पर लगा लेते हैं उसमें नियमित सुबह और शाम दो बार सिंचाई करते रहें, और जो पेड़ पौधे हमारे खेतों में लगे हैं उसमें हफ्ते में एक बार सिंचाई करना बहुत जरूरी है।
1: और साथ ही भैया, नए पौधे अगर हम लगाने की बात करें तो भीषण गर्मी में नए पौधों को लगाने से बचें, क्योंकि तेज गर्मी में उनकी जड़ें खराब हो सकती हैं, इसलिए नए पौधे ना लगाएं। तो हमारे सभी किसान साथी इन तमाम बातों को ध्यान रखेंगे तो अपने जो फलदार पौधे हैं उनकी देखभाल अच्छी तरीके से कर सकेंगे। और भैया, अब थोड़ी सी बात कर ली जाए कि कल के कृषि जगत कार्यक्रम में हम अपने किसान साथियों के लिए क्या सुनवाएंगे। कल हम अपने किसान साथियों को सुनवाएंगे एक चर्चा खेती के साथ साथ लघु उद्योग, साथ ही सुनवाएंगे एक भेंट वार्ता मुर्गी पालन।

0: प्रबंधन एवं सरकारी सहायताएं। जय विषय पर बातचीत के माध्यम से जानकारी देंगे डॉक्टर संदीप शरण जी, और साथ ही सुनाएंगे मनोरंजन के बढ़िया सो लोकगीत। और कृषि संकेत कार्यक्रम के अंतर्गत जानकारी का विषय होगा धान, मक्का, बाजरा जैसी फसलों के लिए खेत की तैयारी। साथ ही क्षेत्र संकलित कार्यक्रम में बदायूं से संबंधित अनुभव सुनवाए जाएंगे।
1: हाँ अखिलेश भैया, अब कल के मौसम की जानकारी दे दी जाए।
0: हाँ भैया, बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे जो खेती बाड़ी के काम है ज्यादातर मौसम पे ही आधारित है।
1: हाँ भैया, अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेंटीग्रेड, न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना व्यक्त की गई है। अगर हम आर्द्रता की बात करें तो 59% और हवा की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा बहने की भी संभावना व्यक्त की गई है।
0: और भैया, अब समय का तीन इजाजत न देर हुआ है कि अपने किसान साथी से हम और ज्यादा बातचीत कर सकें, तो अगले कार्यक्रम तक अपने भैया अखिलेश
1: और अब्दुल हफीज भैया को दें अनुमति।
0: राम राम।

0: अभी किसान साथी सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 7 बजे हैं। प्रस्तुत है क्षेत्र संकलित गतिविधियों की रिकॉर्डिंग पर आधारित कार्यक्रम आसपास। वाचन एवं संकलन सुहेल जैदी और प्रस्तुति राजीव सक्सेना की है।
1: नमस्कार। रामपुर और आसपास के क्षेत्रों में इस सप्ताह क्या हुआ खास, आप तक वो जानकारी पहुंचाने का हमारा प्रयास, साप्ताहिक कार्यक्रम आसपास। आसपास के आज के इस अंक में आपका स्वागत है।
2: आसपास के आज के इस अंक में शामिल है, राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय रामपुर में 12 मई को हुआ वार्षिकोत्सव एवं प्रतिभा अलंकरण समारोह। जिलाधिकारी रामपुर अजय कुमार द्विवेदी ने पोर्टल पर सौ गणना करने का जनपद वासियों से किया आह्वान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर तेल बचाने के लिए रामपुर में अधिकारी साइकिल से पहुंचे कार्यालय। शहर विधायक आकाश सक्सेना ने ई रिक्शा से किया सफर। आकाशवाणी के प्रसारण को 90 वर्ष पूर्ण होने पर आकाशवाणी रामपुर के तत्वावधान में 15 मई की रात संगीत संध्या सुरमई सफर का आयोजन गांधी समाधि के निकट एक मंडप में हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्य सूचना आयुक्त स्वतंत्र प्रकाश गुप्त ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। 12 मई को राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय कला रामपुर में वार्षिकोत्सव एवं प्रतिभा अलंकरण समारोह हुआ। कॉलेज सभागार में छात्राओं ने इस गीत पर नृत्य किया।

0: कार्यक्रम की मुख्य अतिथि राजकीय महाविद्यालय संबल की पूर्व प्राचार्य डॉक्टर प्रभा शर्मा ने कहा, जिलाधिकारी रामपुर अजय कुमार द्विवेदी ने जनपद वासियों से सौगणना करने की बाबत कहा।
1: प्रदेश में जनगणना का पहला फेज प्रारंभ हो चुका है, इसके अंतर्गत मैं जनपद वासियों से अपील करूंगा कि आप जो सौगणना का पोर्टल है उस पर जाके अपना मकान और उसके डिटेल्स को फिल करें। ये बड़ा ही सरल प्रक्रिया इसमें है, इसमें आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स और मकान का जो विवरण है वो भरना है। सभी भाषाओं में ये पोर्टल उपलब्ध है, आप अपनी पसंदीदा भाषा चुन के उसके अनुसार आप अपनी डिटेल्स उसमें फिल कर सकते हैं। और जब आप पूरी डिटेल्स फिल कर लेंगे उसके बाद एक आईडी जनरेट होगी, उस आईडी को आपके पास अपने पास सुरक्षित रखना है। जब हमारे इनुमरेटर्स भ्रमण के दौरान आपके घर आएंगे तो वो आईडी आपको दिखानी है, उसके आधार पर वो आपकी जो सौगणना आपने की है उसको कंफर्म करेंगे। मैं आप सभी से अपील करूंगा कि बड़ी से बड़ी संख्या में सौगणना में आप लोग शामिल हों। आप अपने पड़ोसियों, अपने सहयोगियों, अपने मित्रों को भी इसके लिए प्रेरित करें और सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप अपने जो मित्र हैं, परिवार के बंधु हैं, उनको प्रेरित करें कि बड़ी से बड़ी संख्या में लोग सौगणना करें। मैंने भी आज अपना सेल्फ इनुमरेशन किया है, ये बड़ी ही आसान प्रक्रिया है, एक 10 से 15 मिनट के अंतर्गत आप अपनी प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर तेल बचाने की कवायद शुरू हो गई है। इस संबंध में रामपुर के विधायक आकाश सक्सेना ने कहा,
2: प्रधानमंत्री जी का जो एक संदेश था पूरे देश के लिए, आज उसी के अंतर्गत हमने आज ये निर्णय लिया है कि हम आज से जितने भी जो हमारे शहर के जो कार्यक्रम रहेंगे, चाहे वो सरकारी कार्यक्रम हो या जितने भी जो काम चलते हैं उनका निरीक्षण हो, वो शहर में लोकल हम ई रिक्शा के माध्यम से ही जाया करेंगे। और बाहर जब अगर जाएंगे तो काफिले में जो पहले गाड़ियाँ चलती थी सबको हटाते हुए सिर्फ दो गाड़ियाँ ही रहा करेंगे। वजह यही है कि जो देश के सामने जो प्रधानमंत्री जी ने जो अपनी बात रखी है वो एकदम सही है। हम सबको, सब जनप्रतिनिधियों को इसकी शुरुआत करनी चाहिए और आगे जनता को भी इस चीज़ को फॉलो करके जहाँ चार गाड़ी का इस्तेमाल था उसको एक करना चाहिए और जहाँ एक गाड़ी का इस्तेमाल था तो उसको ये करना चाहिए कि वो गाड़ी कैसे ईवी कर सके वो कर सके। जैसे हम आज ई रिक्शा के माध्यम से जा रहे हैं तो इसमें 0% तेल की खपत होती है, 0% तेल का कोई इस्तेमाल ही नहीं है। तो मुझे लगता है ये एक अच्छा वो रहेगा, सभी के लिए अच्छा है। आम जनता के लिए संदेश यही है कि अगर कोई ज़रूरी काम नहीं है तो हम लोग कोशिश करें कि उसको सफ़र को टाला जाए और फ़ोन से काम कर चल सकता है तो उससे किया जाए। ज़रूरी है तो सबसे अच्छा तो ई रिक्शा का माध्यम मुझे लगता है सबसे अच्छा है। संकट नहीं है लेकिन हम आने वाले संकट को रोका जा सकता है। अगर आगे कोई दिक्कत अगर कभी ऐसी दिखती है तो उस संकट को रोका जा सकता है। बिल्कुल, शहर के जो भी कार्यक्रम रहेंगे उसमें अगर हम जाएंगे तो ई रिक्शा के माध्यम से जाएंगे और अगर अकेले कहीं और जाना है तो हम कोशिश करेंगे वो टू व्हीलर से जाए। देखिए सुरक्षा वाला जो पार्ट है वो एक अलग है, क्योंकि सुरक्षा का तो मैं भी तो यही किया है कि भाई सुरक्षा वाले जो लोग हैं वो भी ई रिक्शा में चलें, उसमें क्या दिक्कत है। तो ई रिक्शा जितने इतने सुरक्षा के लोग जो ज़रूरी है वही चलेंगे, बाकी ज़्यादा उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। और शहर में तो वैसे ही सब कुछ हमारा अच्छा शहर है, आप देखते होंगे, तो मुझे लगता है कि जितनी ज़रूरत है उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं।
0: आकाशवाणी के प्रसारण को 90 वर्ष पूर्ण होने पर आकाशवाणी रामपुर के तत्वावधान में 15 मई की रात संगीत संध्या सुरमई सफर का आयोजन गांधी समाधि के निकट एक मंडप में हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्य सूचना आयुक्त स्वतंत्र प्रकाश गुप्त ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इससे पहले आकाशवाणी रामपुर के कार्यक्रम प्रमुख एवं सहायक निदेशक राजीव कुमार सक्सेना ने अतिथियों को पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया। कार्यक्रम का निर्देशन कार्यक्रम प्रमुख राजीव सक्सेना और कार्यक्रम अधिशासी विक्रांत चौधरी ने किया। अवधेश कुमार गौतम का सहयोग रहा और केंद्र प्रमुख मंतोष विश्वास ने सभी का आभार जताया। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ उद्घोषक असीम सक्सेना और अपर्णा श्रीवास्तव ने किया। कार्यक्रम का आगाज सिद्धार्थ नेगी ने शास्त्रीय संगीत से किया।

0: आकाशवाणी रामपुर के कार्यक्रम प्रमुख एवं सहायक निदेशक राजीव सक्सेना ने कहा,
1: सबसे पहले आकाशवाणी रामपुर का जो प्यार शुरुआती चरण में ही नजर आ रहा है उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस उपस्थिति के लिए। और रामपुर आकाशवाणी का जो क्षेत्र है, लगभग सभी जगहों से लोग आए हैं, आकाशवाणी से प्यार उनका जो है ये दिखाई पड़ता है। स्वागत आप सभी का इस महफिल में, और 90 वर्षों का ये इतिहास, इसके जितने भी रंग हैं उन्हें इस सुरमई शाम में हमने पिरोया है, आप सब तक लेकर आए हैं कि आप इस शाम के भागीदार बने, गवाह बने हर उस दौर के जो आकाशवाणी ने इस राष्ट्र के निर्माण में दिया है। और सुख दुख के साथ साथ विदाई हो, चाहे हमारे देश के लिए कोई विशेष चीज़ें हों, योजनाएं हों, सभी जन जन तक पहुंचाई हैं जनवाणी के रूप में इस कार्यक्रम में, जो कि 90 साल के सफर को आप तक ले जा रहे हैं, पहुँचा रहे हैं। आप सभी का स्वागत, अभिनंदन।
0: आकाशवाणी रामपुर की पूर्व सहायक निदेशक मनदीप कौर बोली,
2: 90 साल का जो ये सफर है, जिस शिद्दत के साथ, जिस खूबसूरती के साथ, और ये कहिए कि जिस पंक्चुअलिटी के साथ, जिस समयबद्धता के साथ, जिस प्रतिबद्धता के साथ पूरा किया है ये सफर, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। पहली पंक्ति से आखिरी पंक्ति तक जहाँ तक नजर जा रही है इस समय, ये वो चेहरे हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने आकाशवाणी को सजाया संवारा है, और आकाशवाणी ने जिनको मार्गदर्शन दिया है, जीना सिखाया है, घड़ी की सुइयों के साथ चलना सिखाया है। तो आकाशवाणी और आप और हम, आज जो हम साथ बैठे हैं, जो सेलिब्रेशन हम सब मिलकर कर रहे हैं, जो संगीत की स्वर लहरी आप आकाशवाणी के जरिए सुनते हैं, आज वो आकाशवाणी, आज वो कलाकार आपके साथ हैं, आपसे रूबरू हैं, आपसे सीधी बातचीत कर रहे हैं। नाम किस किस के लूँ, वो लोग हैं जिन्होंने सन 1965 से आकाशवाणी केंद्र की स्थापना, जो नवाब रजा अली खान साहब ने जिसको इनॉग्रेट किया था ट्रांसमीटर का वो केंद्र, वो लोग यहाँ पर हैं। महेंद्र जी यहाँ मौजूद हैं, जहीर अली सिद्दीकी साहब यहाँ पर मौजूद हैं, सतीश जी यहाँ मौजूद हैं, ये सब वो लोग हैं। अजहर इनायती साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये उस दौर के लोग हैं जिन्होंने आकाशवाणी को सींचा है, पाला पोसा है, बढ़ाया है, हर वक्त साथ रहे हैं। और आकाशवाणी ने ये कहिए कि वो जिंदगी दी है इन लोगों को, जो आज हमारे साथ बैठकर वो लम्हे याद कर रहे होंगे कि हाँ, हम किस तरह से आकाशवाणी से हमारी जीवन की जिंदगी की शुरुआत हुई, आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं।
0: इस अवसर पर मुख्य अतिथि सूचना आयुक्त स्वतंत्र प्रकाश गुप्त ने कहा,
3: आज से 5-6-7 दिन पहले ही राजीव भैया ने ये कहा कि आकाशवाणी 90 साल पूरे करने जा रही है और आकाशवाणी रामपुर अपना एक कार्यक्रम इस पर आयोजित करेगी। मैंने बिना देर लगाए इस कार्यक्रम में सहभागी होने का की स्वीकृति इसलिए प्रदान की कि 90 साल में आकाशवाणी रामपुर के साथ 45 साल मैंने भी जी, ये मेरी जीवन की एक उल्लेखनीय बात है। मैं BA का स्टूडेंट था 78 और 80 के बीच की, और मेरे जो साहित्यिक मित्र थे उनमें से कई लोग, क्योंकि बदायूं कहा जाता है कि सूफियों और शायरों की जगह है और मैं बदायूं से ताल्लुक़ रखता हूँ, जन्मभूमि मेरी बदायूं है, तो मुझे ये पता लगा कि अगर गज़ल गीत भेजा जाए तो आकाशवाणी वाले जल्दी बुला लेते हैं। और आकाशवाणी रामपुर में जाना उस समय ऐसा था जैसे आप सेलिब्रिटी हो गए हों। तो मैं आपको सत्य बताता हूँ, आकाशवाणी रामपुर जाने के लिए मैंने 2 गज़लें लिखी थी, वो मेरे जीवन की सबसे पहली और सबसे आखिरी गज़ल हुई, क्योंकि मेरा मूल लेखन जो था वो गद्य में था। अब आकाशवाणी को भेजना है तो गज़ल थोड़ा उसकी परवाज ठीक होनी चाहिए, वजन ठीक होना चाहिए, कोई गलती ना हो। तो मुझे आज भी वो शेर याद है, मैंने लिखा कहा था कि गुजरने वाले को क्या पता था, सड़क का हर मोड़ हादसा था, और वहाँ के राही संभलते कैसे, खुद ही थी खाई कुआं बना था, लगा के दिल के भुला चुके स्वतंत्र उनसे यही गिला था। स्टूडेंट लाइफ थी, यही लिख सकते थे, लिखा और बड़ा खुशी हुई वो पहला कॉन्ट्रैक्ट जब आकाशवाणी रामपुर का आया।
4: आसपास के आज के इस अंक में बस इतना ही, अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर लिखें। हमारा पता है, आसपास कार्यक्रम द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी रामपुर, पिन 244901। इसी के साथ संपन्न होता है क्षेत्रीय गतिविधियों की रिकॉर्डिंग पर हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम आसपास।
0: वाचन एवं संकलन सुहेल जैदी का और प्रस्तुति राजीव सक्सेना की थी।
5: अभी आप सुन रहे थे क्षेत्र संकलित गतिविधियों की रिकॉर्डिंग पर आधारित कार्यक्रम आसपास। वाचन एवं संकलन सुहेल जैदी और प्रस्तुति राजीव सक्सेना की थी। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 7:15 हुए हैं। श्रोता, आपको बता दें हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में। रात्रि 9:30 पर आप सुनिएगा नाटकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम, इसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। रात्रि 10 आप सुन सकेंगे रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा, इसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। शाम 7:31 पर आप सुनिएगा कार्यक्रम सुगम संगीत। आज इस कार्यक्रम में आप सुनिएगा पंकज उदास की गाई कुछ गजलें। रात्रि 8 फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा गीत गाता चल। याद रखिएगा ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीत का कार्यक्रम। समय होगा रात्रि 8:00।

कल सवेरे 7 बजे आप सुनिएगा कार्यक्रम सेहतनामा। कल इस कार्यक्रम में अच्छी सेहत के लिए फिटनेस मंत्र विषय पर वार्ता सुनिएगा। वार्ताकार होंगे श्री दिनेश कुमार सक्सेना, प्रस्तुति असीम सक्सेना की होगी। सवेरे 7:31 पर फिल्मी गीतों का इन्फोटेनमेंट कार्यक्रम होगा सुबह सवेरे।

0: कल दिन में 11 बजे आप सुनिएगा धारावाहिक जिंदगी के आईने में। कल सुनिएगा एपिसोड 5। दिन में 11:30 पर आप सुनिएगा कार्यक्रम मन भावन। कल इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे एक ही गायक कलाकार को। गीत आपके नाम कार्यक्रम का समय रहेगा 12:10। श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे
1: हैं। मुझे कॉलेज का टाइम याद है।
2: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, कितनी बातें भूल गया हूँ। सबका बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
1: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है।
2: कहाँ से पता चलेगा?
1: उद्गम से। RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर कर लॉग इन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
2: आज ही सर्च करूंगा।
1: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
3: RBI कहता है
4: सरकार सतर्क रहिए।
1: बोल बोल के थक गया। क्या हुआ? नया किडबैग चाहिए
5: तो पहले कैप्टन से बोलो। नहीं सुना तो मैनेजर से।
1: करेक्ट। तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पर शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले ले आ गया नया किडबैग।
4: RBI कहता है
3: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
6: बड़ी बहू, ये तुम्हारी बात।
7: इतनी भी क्या जल्दी थी?
6: अरे और छोटी, ये तुम्हारे ना। और ये
7: मेरी गुड़िया के नाम।
6: और दादी, आपके नाम?
8: सब कुछ। मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
6: शुभ शुभ बोलो।
7: क्या?
4: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: मुझे कॉलेज का टाइम याद है।
2: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, कितनी बातें भूल गया हूँ। सबका बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
1: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है।
2: कहाँ से पता चलेगा?
1: उद्गम से। RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर कर लॉग इन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
2: आज ही सर्च करूंगा।
1: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
3: RBI कहता है
4: सरकार सतर्क रहिए।
9: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में अनदेशकों को 5 लाख तक स्वास्थ्य बीमा कवर देगी सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य में बेसिक शिक्षा का हुआ कायाकल्प। मुख्यमंत्री गोरखपुर के सहजनवा में आयोजित भाजपा जिला प्रशिक्षण में हुए शामिल। कार्यकर्ताओं को राष्ट्र प्रथम की भावना से काम करने के लिए किया प्रेरित। प्रदेश में अलग अलग सड़क हादसों में 7 लोगों की मौत। फतेहपुर में नदी में डूबने से 4 युवकों ने गंवाई जान। और प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों में अधिकतम तापमान में 30 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी का जताया अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अगर नींव ही मजबूत नहीं होगी तो मजबूत इमारत नहीं बन सकती। इसीलिए सरकार का मानना है कि अनुदेशक, शिक्षा मित्रों और बेसिक शिक्षकों के मानदेय से जुड़े मामलों को सम्मानजनक तरीके से हल किया जाना चाहिए। श्री योगी ने ये बात आज लखनऊ में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026-27 में समग्र शिक्षा अभियान के तहत 24,717 अंशकालीन अनुदेशकों का मानदेय 9,000 से बढ़ाकर 17,000 रुपये प्रतिमाह किए जाने के उपलक्ष्य में आयोजित अनुदेशक सम्मान समारोह और चेक वितरण कार्यक्रम में कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि मानदेय बढ़ाने के साथ ही राज्य सरकार अनुदेशकों को 5 लाख तक के स्वास्थ्य बीमा कवर का लाभ देने जा रही है। श्री योगी ने कहा कि राज्य सरकार की पारदर्शी नीतियों और सकारात्मक कदम से बेसिक शिक्षा में कायाकल्प हुआ है। सरकार की मंशा है जब हर बच्चा शिक्षा हासिल करे ताकि विकसित भारत का संकल्प पूरा हो सके।
10: जब साफ नियत से कोई सरकार कार्य करती है, स्पष्ट नीति हो तो परिणाम आने में देर नहीं लगती। प्रदेश के अंदर जो ड्रॉप आउट रेट था लगभग 17-18% के आसपास था, और आज हम इसको घटाते घटाते 3 तक पहुंचाने में सफल हुए हैं, और हमारा मानना है इसको 0 तक पहुंचाना चाहिए। हर बच्चा पढ़ेगा तब विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार हम कर पाएंगे।
9: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी देश का ऐसा राजनीतिक दल है जो देश को सुरक्षा, संस्कृति, सुशासन और समृद्धि को जोड़ने का काम कर रही है। वो आज गोरखपुर के सहजनवा विधानसभा क्षेत्र में आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण 2026 के क्रम में भाजपा के जिला प्रशिक्षण वर्ग के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। भाजपा का इतिहास और विकास विषय पर केंद्रित इस सत्र में श्री योगी ने कहा कि स्थापना के 50 वर्ष से भी कम समय में भाजपा ने दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में केंद्र और देश के 22 राज्यों में राष्ट्रवाद की विचारधारा को लागू करने के अभियान को आगे बढ़ाया है। श्री योगी ने केंद्र और भाजपा शासित राज्य सरकारों ने राष्ट्रप्रथम की भावना और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की अंत्योदय की संकल्पना के अनुरूप अपने कार्यक्रमों को तैयार किया है, जिससे देश के अंतिम पायदान पर बैठे लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो रहा है।
10: भारतीय जनता पार्टी ने देश के अंदर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के उन सपनों को भी साकार

0: कमलेश पासवान, सांसद रविकिशन शुक्ल, पार्टी पदाधिकारी और प्रमुख जनप्रतिनिधि मौजूद थे। प्रदेश में जारी डिजिटल जनगणना के पहले चरण के तहत स्वगणना प्रक्रिया 7 मई से जारी है। 21 मई तक चलने वाली इस प्रक्रिया में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी स्वगणना का डिजिटल प्रपत्र भरा। इस अवसर पर श्री योगी ने प्रदेशवासियों से स्वगणना प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर प्रतिभाग करने का आह्वान किया है। उधर मकानों की गिनती का पहला चरण 5 राज्यों राजस्थान, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में शुरू हो गया है, जहां मकानों की सूची तैयार की जा रही है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: घर घर जाकर सूची तैयार करने का काम आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी चल रहा है। सूची तैयार करने के लिए घर के सामानों, उपलब्ध सुविधा और परिसंपत्तियों का विवरण जुटाया जा रहा है। स्वगणना सुविधा आज से गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पुदुचेरी में भी शुरू की गई है। ये सुविधा 31 मई तक उपलब्ध रहेगी। स्वगणना सुविधा उत्तर प्रदेश में भी जारी है, जो 21 मई तक उपलब्ध रहेगी। अब तक 25 राज्यों में 1,44,00,000 से अधिक घरों के निवासी स्वगणना प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद और प्रदेश के राज्य मंत्री संजय गंगवार ने आज पीलीभीत में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को स्मार्टफोन वितरित किए। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री प्रसाद ने कहा कि डबल इंजन की सरकार के कामों में हमेशा पारदर्शिता रही है और सरकार ने जो कहा उसे करके दिखाया है। श्री गंगवार ने कहा कि जनपद में 1,985 आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और मुख्य सेविकाओं को मोबाइल दिए जाने का लक्ष्य रखा गया है।
2: मोदी योगी सरकार बड़े बड़े भाषण घोषणाओं में यकीन नहीं करती और जो घोषणा करती भी है वो धरातल पे, जमीन पे, गांव पे लोगों तक पहुंचाने का काम करती है और उन योजनाओं को, खासतौर से स्वास्थ्य की सेवाओं को धरातल पे पहुंचाने में आप लोगों की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती।
0: गाजियाबाद स्थित एनटीएच की उत्तरी क्षेत्र इकाई में अत्याधुनिक जूता परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की गई है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि इस प्रयोगशाला से एमएसएमई, निर्माता, निर्यातक, उपभोक्ता और नियामक संस्थाओं को भरोसेमंद और अच्छी क्वालिटी वाले फुटवेयर परीक्षण सेवाएं मिल सकेंगी। मथुरा सहित समूचे ब्रजमंडल में एक माह तक चलने वाला पुरुषोत्तम मास मेला आज से शुरू हो गया है। श्रद्धालुओं की भीड़ और सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने गोवर्धन और वृंदावन समेत पूरे ब्रज क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
3: मथुरा समेत समूचे ब्रज मंडल में आज से एक माह तक चलने वाला अधिक मास मेला शुरू हो गया है। चहू और 84 कोस परिक्रमा का उत्साह और राधे राधे की गूंज सुनाई दे रही है। आस्था और भक्ति में डूबे लाखों श्रद्धालु मथुरा, वृंदावन, गोकुल, बरसाना, नंदगांव और गोवर्धन में 84 कोसी परिक्रमा कर रहे हैं। एसपी ग्रामीण सुरेश चंद्र रावत ने बताया कि भीड़ और सुरक्षा को देखते हुए परिक्रमा मार्ग गोवर्धन, द्वारकाधीश और श्री कृष्ण जन्मस्थली समेत प्रमुख मंदिरों को सुपर जोन और सेक्टरों में बांटकर भारी पुलिस बलों की तैनाती की गई है और पूरे क्षेत्र की सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन से निगरानी की जा रही है। मोहम्मद उमर कुरैशी, आकाशवाणी समाचार, मथुरा।
0: प्रदेश में आज हुए अलग अलग हादसों में 11 लोगों की मौत और 5 अन्य घायल हो गए हैं। फतेहपुर जिले में रिंद नदी में नहाने गए 4 युवकों की डूबने से मौत हो गई, जबकि अन्य 2 को गोताखोरों ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। हमीरपुर के मौधा क्षेत्र के छिरका गांव के पास हाईवे पर खड़े ट्रक और कार की टक्कर में दुर्घटना होने से 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। ये सभी बागेश्वर से दर्शन कर घर वापस जा रहे थे। उधर शाहजहांपुर जिले के कांट इलाके में सुबह डंपर और ऑटो की टक्कर में दंपति सहित 3 लोगों की मौत हो गई। प्रदेश में अगले 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी जारी रहने और कोई खास बदलाव नहीं होने की संभावना है। मौसम विभाग ने आगरा, अमेठी, औरैया, आजमगढ़, बलिया, बांदा, चंदौली, चित्रकूट, उन्नाव और वाराणसी में कल भी लू चलने का येलो

0: अलर्ट जारी किया है। वहीं प्रदेश में मानसून के 18 जून को दस्तक देने की संभावना जताई गई है। इस साल मानसूनी सीजन में सामान्य से कम वर्षा होने का भी पूरा अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में अनुदेशकों को 5 लाख तक स्वास्थ्य बीमा कवर देगी सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, राज्य में बेसिक शिक्षा का हुआ कायाकल्प। मुख्यमंत्री गोरखपुर के सहजनवा में आयोजित भाजपा जिला प्रशिक्षण में हुए शामिल। कार्यकर्ताओं को राष्ट्र प्रथम की भावना से काम करने के लिए किया प्रेरित। प्रदेश में अलग अलग सड़क हादसों में 7 लोगों की मौत। फतेहपुर में नदी में डूबने से 4 युवकों ने गंवाई जान। और प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों में अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी का जताया अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
2: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
1: पीस द पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
2: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
1: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
2: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक।
1: बिल भरने के पहले तो आएगी ना।
2: सुगंध, क्या हो रहा है?
1: बिल हो रहा है।
2: चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंदर
4: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज एवं FM 102.9 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 7:31 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। आज इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं पंकज उदास की गाई कुछ गजलें।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत। आज इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे पंकज उदास की गाई कुछ गज़लें। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्ज़ एवं FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर रात्रि के 8 बजे हैं। प्रस्तुत है ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गाता चल।

कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को अर्शी मसूद का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गाता चल। आप भी हमें फरमाइश लिखकर अपने नाम लिखकर भेज सकते हैं, लेकिन व्हाट्सएप से नहीं, ईमेल से। कार्यक्रम का पहला गीत सुनने की फरमाइश की है पुराना तराब डुमराऊ से वलीउल्ला अंसारी, आसमानास अंसारी, जेल रोड बक्सर से शरफुद्दीन अंसारी और मोहम्मद सुल्तान अंसारी, इंदिरा चौक दिल्ली से अजीम वकार, माहिर अजीम और निशा अजीम, चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम, डॉक्टर सना, डॉक्टर अदीबा, जेल रोड जालंधर से रोशन जहां, मन्नत जहां, इशरत जहां और मक्कार जहां, इंदिरा विहार दिल्ली से बेबी अंसारी, निशा परवीन, डब्लू अंसारी और चंद्रनगर महाराष्ट्र से पथिक जाधव और आशा जाधव, जेल रोड बक्सर से असलम अंसारी, शमसुल हक, शरफुद्दीन अंसारी, जालंधर से संदीप कुमार जटोलिया, पटना बिहार से वसीम अकरम, सालिहा खातून, गुड़िया खातून, डोंडी लोहारा छत्तीसगढ़ से प्रभा रानी जयपुरिया। इसी गीत को सुनना चाहा है चंद्रनगर सहारनपुर से प्रभा रानी, आशा डोमीन, सोनाली डोमीन, सुरेश डोम, पथिक डोम, रायगढ़ बिहार से उमा राज, पवन उमा, प्रभा रानी। छत्तीसगढ़ रायपुर से नरेंद्र कुमार जाटव, संदीप जाटव, लड्डू जाटव, टुक टुक, उमरखेड़ से सिराज खान और शबाना खान। आप सभी की फरमाइश पर आइए, सुनते हैं कुमार सानू और अलका याग्निक को फिल्म कुरुक्षेत्र में।

श्रोताओं, कार्यक्रम गीत गाथाचल में इंतज़ार आपके ईमेल का। देखते हैं कि अगले गीत के लिए हमें किस किसने मेल भेजा है। हरियाणा से अंकित कांगड़ा, मोनी कांगड़ा, प्रिंस बोट, सीताराम कांगड़ा और साहिल कांगड़ा। एकता कॉलोनी रोहतक से बबीता, निखिल, तानवी बोट और सीताराम। जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना, दिव्या भारती और उमाराज। डुमराव से वलीउल्ला अंसारी। राजधानी दिल्ली से प्रमिला सिंह, हेमा और अंतरा सिंह। डोंडी लोहारा से शंकर देव जटोलिया, प्रभा। उमेरखेड़ महाराष्ट्र से सिराज और शबाना खान। मीन बाजार कुंडलवारी महाराष्ट्र से गंगाधर, प्रमोद, दीपक। जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना, दिव्या भारती, उमराज। डुमराव से वलीउल्ला अंसारी। इंतज़ार है श्रोताओं आपके मेल का। जब तक आपके मेल आते हैं तो आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं 1942 अ लव स्टोरी में कुमार सानू को।

श्रोताओं, कार्यक्रम गीत गाता चल में इंतज़ार आपके ईमेल का। अगले गीत के लिए हमें मेल किया है हरियाणा से अंकित कांगड़ा मोनी और प्रिंस आप ही के परिवार से साहिल कांगड़ा। राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा। डोंडी लोहारा बालोद से सुखदेव जाटव और राकेश जाटव। सहारनपुर से पथिक और अजय देव जाटव। वारसी क्लब सिंधौली मीरगंज से जीशान वारसी, इमरान शेख और रेहान शेख। गुवाहाटी असम से हरेन पांड्या, नरेन पांड्या और वीरेन पांड्या। मधुबनी बिहार से मोहम्मद साबिर परवाना, साजिद अली, रुखसाना खातून। बिलाई से प्रभा जाटोलिया। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुलरकर, रतनमाला और आरती। वीर गाम सिटी से उस्मान वोहरा, शहनाज वोहरा। राजकोट गुजरात से सुखदेव, प्रभा, तुषार और राकेश। जेल रोड शिमला से प्रमिला, अशोक, प्रभा रानी, संदीप श्याम जाटव। उमेरखेड़ से सबीता, डोमिन और आशा। कार्यक्रम में आप भी मेल कीजिए और सुनिए अपनी पसंद का नगमा। हमें अभी अभी मेल इसी गीत के लिए मिला है सरगुजा मेन पार्ट से। विनोद थापा, पूजा रानी, संदीप थापा, डॉली, डोंडी लोहारा से सुमित मोगा, देव मोगा, राधिका कबीर। सहारनपुर जंक्शन से सुरेश पासवान और आशा डुकर। आप सभी की फरमाइश पर आइए सुनते हैं अलका याग्निक और कुमार सानू को फिल्म कसूर में।

कार्यक्रम में इंतज़ार आप सभी के ईमेल का। कार्यक्रम में अगले गीत की फरमाइश के लिए मेल लिखा है गोल्डन रेडियो श्रोता संघ राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से प्रति वर्मा और कार्तिकारन वर्मा, शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकर पिंकी आर्यन कृष्णा पीहू। श्रोताओं आपके मेल हमें बेहद ही खूबसूरत अंदाज में यहाँ प्राप्त हो रहे हैं, किसी में फूल हैं तो किसी में बहुत खूबसूरत संदेश। जेल रोड रायगढ़ से फरमाइश के लिए मेल किया है उमरानी अजनबी, बेबी जोई अजनबी और डॉली बेलदार जाटव। छत्तीसगढ़ से प्रभा रानी, चंद्रनगर महाराष्ट्र से आशा और देवशंकर, मेहरनगर कॉलोनी राजकोट से बहुत ही खूबसूरत शब्दों में लिखा है सिस्टर जी नमस्ते और गाने के लिए फरमाइश भेजी है आप सभी ने। अजीता पॉल हेमा और उमेर खेड़ से अभिजीत मोगा, देवशंकर मोगा, प्रमिला कबीर नगर वाराणसी से देव जाटव बेलदार, शंकर बेलदार सरिता और पूजा टुनटुन बेलदार, बक्सर से शरफुद्दीन अंसारी और राज आशा अंसारी। मेहर रोड वेस्ट बंगाल से अभिजीत प्रसाद मेहरा, मिथुन सांगा, राधिका जाटव डोंडिया खेड़ा, देवशंकर डोम और प्रभा डोम। बगेरा दुर्ग से संतोष नामदेव सार्थक और समर्थ नामदेव, शौर्य नामदेव। दिल्ली से रेशमा अंसारी, निशा और शकील अंसारी। बिहार से आसमा परवीन, दुखना रानी, सदफारजू फिल्म सिटी मुंबई से इकबाल मोगा, अफसरी मोगा और अहमद मांगा। इसी गीत को सुनना चाहा है जालंधर से संदीप कौर, प्रभा कौर, राधिका कौर, प्रभा जाटोलिया, श्रोताओं आप भी हमें मेल कीजिए और सुनिए अपनी पसंद का नगमा। आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद पर लता मंगेशकर और उदित नारायण को फिल्म मोहब्बतें में।

इस समय आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत गाता चल। कार्यक्रम के अगले गीत के लिए हमें मेल किया है जिला मुरादाबाद ग्राम दोलापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून। सीमांध्र पार्क राजकोट से एस्किमोची संगीत कुमार, वाणी कुमार वीरमपुर गुजरात से अजीता कुमार, सोनाली कौर, ज्योति और संदीप कौर। रघुवीर नगर दिल्ली से जफर मौजम शेख, फलक फातिमा, बेबी अलिश्पा शेख, गंज डुंडवारा से मोहम्मद कलीम, बॉबी खान, मुंबई से मोहम्मद सलीम और निघत परवीन। छत्तीसगढ़ से प्रभा जयपुरी और अशोक, बलिया करजत मुंबई से अब्दुल कलाम राइन, अब्दुल सलाम राइन उमेरखेड़ से भाई सिराज खान, शबाना बेगम और फरीद खान। इसी गीत को सुनना चाहा है जेल रोड जालंधर से मीना कौर, मन्नत कौर और खंडवा से संदीप कौर, आप ही के परिवार से दुर्गा कौर। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा, सरगुजा से अजीता पॉल और आपके परिवार के समस्त सदस्य, मिश्री देवी छत्तीसगढ़ से, प्रियांशी, प्रभा रानी। कुरुक्षेत्र से दीपक ढींगरा, अनुश्री, प्रमिला, देवश्री ढींगरा, सहारनपुर से सुरेश और आशु, चंद्रनगर कॉलोनी से कौशल्या जोशी, प्रमिला, सोनाली, शंकरदेव और तुषार। बिहार स्टेट डुमराव से आसमान सारी आमना और आपके परिवार के समस्त सदस्य, नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी, प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगला, राजेंद्र जी शाह। गौरैया जालंधर से अशोक जाटव। श्रोताओं, इंतज़ार है आप सभी के मेल का, क्योंकि इस समय आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गाता चल। इसी गीत के लिए हमें मेल किया है महाराष्ट्र से कुमकुम, आरती, विद्या और वैष्णवी ने। आप सभी की फरमाइश पर आइए सुनते हैं अलका याग्निक को फिल्म धड़कन में।

कार्यक्रम का अगला गीत आप सभी की फरमाइश पर। इस गीत के लिए मेल भेजा है उमेर खेड़ से फरहा खान, आशिया और सरोज खान। वीर गम राजकोट से रुचि गुप्ता, ट्विंकल और उमा गुप्ता। सहारनपुर से एस के दुकर। मुंबई से अदीबा नाज, फातिमा, नसरीन अंसारी आलिया और सबा अंसारी। शिव मंदिर मऊ से मुन्ना भाई, पिंकी आर्यन, कृष्णा पीहू। दिल्ली शहर से आसमा परवीन, आमना वली, भाई अंसारी।

श्रोताओं, इस गीत के लिए हमें अभी तक इतने ही मेल मिले हैं। इंतज़ार आपके मेल का, कार्यक्रम का आखिरी गीत आप सभी की फरमाइश पर लता मंगेशकर और उदित नारायण को फिल्म दिल तो पागल है में।

इसी गीत के साथ अर्शी मसूद को कार्यक्रम गीत गाता चल समाप्त करने की इजाजत दीजिए। अभी आप सुन रहे थे

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, नीदरलैंड्स की यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को नई गति प्रदान की। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन कल केरलम के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मॉस्को पर यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले में एक भारतीय श्रमिक सहित चार लोगों की मौत। मौसम विभाग ने कल उत्तर भारत में भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया। बैडमिंटन में भारत की श्रियांशी वलीशेट्टी ने बाऊजी चाइना मास्टर्स के महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीदरलैंड्स की दो दिन की यात्रा के बाद पांच देशों की यात्रा के तीसरे चरण में आज स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंच गए हैं। स्वीडन की दो दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता और द्विपक्षीय संबंधों की व्यापक समीक्षा करेंगे। दोनों पक्ष व्यापार, पर्यावरण अनुकूल तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती हुई तकनीक, स्टार्टअप्स, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु कार्रवाई और आम जनता के आपसी संपर्क में सहयोग के नए अवसर तलाशने की संभावनाओं पर भी विचार करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।

0: सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
1: इससे पहले गोथेनबर्ग रवाना होने से पूर्व श्री मोदी को नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रोब येटेन ने व्यक्तिगत रूप से एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पर विदाई दी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस यात्रा ने भारत नीदरलैंड संबंधों को नई गति दी है। रिश्तों को रणनीति साझेदारी से लेकर जाने तक, जल संसाधन, सेमीकंडक्टर, इनोवेशन, रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने तक दोनों देशों ने भविष्य के लिए एक महत्वाकांक्षी रोडमैप तैयार किया है। उन्होंने विश्वास जताया कि भारत और नीदरलैंड की दोस्ती आने वाले सालों में और मजबूत होगी। उनकी यात्रा में यह एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक पल था जब लाइडन यूनिवर्सिटी ने 11वीं शताब्दी की चोल युग की ताम्र पट्टिकाओं को भारत को सौंपा। यह भारत की विरासत और सभ्यता का अनमोल अध्याय है। यात्रा के अंत में 17 अहम नतीजे सामने आए। इसमें शामिल है नवीनीकरण ऊर्जा पर संयुक्त कार्य समूह और ग्रीन हाइड्रोजन रोडमैप, क्रिटिकल मिनरल्स में सहयोग, गुजरात की कल्पसर परियोजना में जल प्रबंधन पर डच सहयोग, त्रिपुरा में फ्लोरिकल्चर और बेंगलुरु में डेयरी प्रशिक्षण के लिए भारत डच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, नालंदा और ग्रोनिंगन विश्वविद्यालय के बीच शिक्षा एवं शोध का समझौता और स्वास्थ्य एवं सीमा शुल्क में संस्थागत सहयोग। शुश्रुष शर्मा, आकाशवाणी, द हेग, नीदरलैंड्स।
1: कांग्रेस नेता वीडी सतीशन के नेतृत्व में केरलम की नई सरकार कल तिरुवनंतपुरम में शपथ लेगी। कांग्रेस ने 14 मई को वीडी सतीशन को केरलम का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया। हालांकि राजनीतिक खींचतान और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के विरोध के कारण गठबंधन मुख्यमंत्री पद के चेहरे पर फैसला नहीं कर पा रहा था।
3: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन कल सुबह केरलम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री के साथ 20 अन्य मंत्री भी शपथ लेंगे। मनोनीत मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने आज शाम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर से मुलाकात की और उन्हें मंत्रियों की सूची सौंपी। समारोह के लिए तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में 12,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था सहित व्यापक इंतजाम किए गए हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पलरोथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में 700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। राज्य के 2 दिवसीय दौरे पर आए श्री शाह ने गांधीनगर निगम की 600 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने शहर में 128 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित मधुर डेयरी के नवनिर्मित दूध प्रसंस्करण संयंत्र का भी उद्घाटन किया। इससे पहले दिन में श्री शाह ने गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान में नवाचार और इंक्यूबेशन केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान के महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि एक ऐसा संस्थान है जो रचनात्मकता को उद्यमिता से जोड़ता है।
4: एनआईडी एक प्रकार से रचनात्मकता के आधार पर इनोवेशन और उद्यमिता, ये तीनों को जोड़ने वाला एक संस्थान। जब एनआईडी की स्थापना हुई हो तब मुझे लगता है कि इसके उद्देश्यों को बहुत अच्छे तरीके से सोचा हो।
1: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा है कि देश ने एक दिन में रिकॉर्ड 256.4 गीगावाट बिजली की मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया। श्री जोशी ने कहा कि भारत का बिजली ढांचा अब पहले से ज्यादा मजबूत, भरोसेमंद और भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार हो गया है।
5: आज हमने एक ही दिन में 256.4 गीगावाट की अत्यधिक मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया है। ये अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि सिस्टम में लगातार सुधार हो रहा है। 256 गीगावाट में से जिसे हमने एक ही दिन में एक खास समय पर अत्यधिक मांग के तौर पर पूरा किया, उसका 33% हिस्सा नवीकरणीय ऊर्जा से आया है।
6: 33% इज फ्रॉम द रिन्यूएबल एनर्जी।
1: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वर्चुअल माध्यम से बेंगलुरु और मुंबई के बीच नई एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि दक्षिण और उत्तर कर्नाटक के लोगों की लंबे समय से लंबित मांगे अब पूरी हो रही हैं। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु और मुंबई के बीच वंदे भारत स्लीपर रेलगाड़ी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने भारत म्यांमार सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। एनसीबी ने दिल्ली से म्यांमार के सरगना थान सितवांग को गिरफ्तार किया है। थान सितवांग एनसीबी और मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े कई मामलों में वांछित था। ब्यूरो ने कहा कि वो वर्ष 2024 के एक एनसीबी मामले में मुख्य आरोपी है जिसमें 14 किलोग्राम मेथमफेटामीन और 2 किलोग्राम से अधिक हेरोइन जब्त की गई थी। वर्ष 2025 के एनसीबी मामले में भी ऐजोल में 49 किलोग्राम से अधिक मेथमफेटामीन जब्त की।

थी। हिमाचल प्रदेश में 51 शहरी स्थानीय निकायों के लिए मतदान आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। मतदान 25 नगर परिषदों और 22 नगर पंचायतों के साथ धर्मशाला, पालमपुर, सोलन और मंडी नगर निगमों में कराया गया था। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार मतदान में 69% से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रूस में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर सहित चार लोगों की मौत हो गई है। पिछले एक वर्ष में मॉस्को और करीबी इलाकों पर यूक्रेन का ये सबसे बड़ा ड्रोन हमला है। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबियानिन ने कहा कि रात भर हुए हमलों में 12 लोग घायल हुए। रूस के अधिकारियों ने दावा किया है कि मॉस्को को निशाना बनाने वाले 81 ड्रोन को रोक दिया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने हमलों की पुष्टि करते हुए इन्हें पूरी तरह से सही ठहराया है। इस बीच रूस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मॉस्को क्षेत्र में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर की मौत हो गई जबकि 3 अन्य घायल हुए। संयुक्त अरब अमीरात में आज अबू धाबी स्थित बाराका परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बाहर ड्रोन हमले के कारण आग लग गई। अबू धाबी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार संयंत्र के बाहर स्थित एक विद्युत जनरेटर में आग लगी। अधिकारियों ने बताया कि इस हमले में कोई घायल नहीं हुआ है और रेडियोलॉजिकल सुरक्षा स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भारत ने कहा है कि हॉर्मूज जल डमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने और जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। श्री हरीश ने यह बात वैश्विक ऊर्जा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की विशेष बैठक में कही। ईरान ने घोषणा की है कि वो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हॉर्मूज जल डमरू मध्य से सैन्य पोतों को गुजरने की अनुमति नहीं देगा। ईरान के प्रथम उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा आरेफ ने कहा कि ईरान ने पहले इस जलमार्ग से सैन्य उपकरणों से लदे पोतों को गुजरने की अनुमति दी है जो ईरान के विरुद्ध ही प्रयोग किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब ये नीति बदल जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून के केरलम में 26 मई तक पहुंचने की संभावना है, जिससे चार दिनों का अंतर हो सकता है। मौसम विभाग ने कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भीषण लू का अनुमान व्यक्त किया है। अगले दो दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में भी इसी तरह के मौसम रहने की संभावना है। अगले तीन से चार दिनों में उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। भारत की श्रेयांशी वली शेट्टी ने चीन के बाओजी में चाइना मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता। इस सुपर 100 प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में श्रेयांशी को चीन की आन क्यू युआन से सीधे गेमों में 14-21, 6-21 से हार का सामना करना पड़ा। आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हरा दिया। बेंगलुरु के 223 रन के लक्ष्य के जवाब में पंजाब 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 199 रन ही बना सकी। इस जीत के साथ ही बेंगलोर प्लेऑफ में क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई है। दिन का दूसरा मुकाबला दिल्ली में दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक राजस्थान रॉयल्स ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 168 रन बना लिए हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में जनगणना 2027 के चल रहे पहले चरण, मकान सूचीकरण और आवास गणना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय में उप रजिस्ट्रार जनरल वीए वराडे स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय वार्ता कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, नीदरलैंड्स की यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को नई गति प्रदान की। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन कल केरलम के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मॉस्को पर यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले में एक भारतीय श्रमिक सहित 4 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने कल उत्तर भारत में भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अब्दुल वाहिद। वजीर आजम नरेंद्र मोदी गोथेनबर्ग में स्वीडन के अपने हमनसब उल्फ स्टर्सन से वफ्त की सतह की बातचीत कर रहे हैं, जिसका मकसद दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाना है। वजीर आजम मोदी ने कहा है कि नीदरलैंड्स के उनके दौरे से दो तरफा ताल्लुकात को एक नई रफ्तार मिली है। कांग्रेस रहनुमा वी डी सतेसन को कल केरलम के नए वजीर आला का हलफ दिलाया जाएगा। मास्को पर यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर समेत चार अफराद हलाक हो गए। भारत के महकमे मौसमियात ने शुमाली भारत में कल शदीद गर्मी की पेशगोई की है। और बैडमिंटन में भारत की श्रियांशी विलिशेट्टी ने बाउजी चाइना मास्टर्स में खवातीन के सिंगल्स में चांदी का तमगा जीता। और आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराया। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड्स के अपने दो रोजा दौरे में इस मुल्क के अपने हम मनसब के साथ दो तरफा बातचीत की। दोनों मुल्कों ने दिफा, अहम मादनियात और दिगर बुनियादी शोबों में तआवुन को मुस्तहकम बनाने से मुतल्लिक 17 मुआहदों पर दस्तखत किए हैं। दोनों रहनुमाओं ने मगरबी एशिया की सूरतहाल और आलमी सतह पर तवानाई की सप्लाई, नेस तजारती नेटवर्क्स पर इसके असरात पर गहरी तशवीश का भी इजहार किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि नीदरलैंड्स के उनके दौरे से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में एक नई रफ्तार पैदा हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों ने मुस्तकबिल में अपने ताल्लुकात को फरोग देने और आबी वसायल, सेमी कंडक्टर्स, इख्तिरा, दिफा, पायदारी और नकलो हमल के शोबों में तआवुन को वसी करने के बारे में खाका तैयार किया है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी पांच मुल्कों के अपने दौरे के तीसरे मरहले में आज स्वीडन के शहर गोथेनबर्ग पहुंच गए हैं, जहां उनका खैर मकदम गोथेनबर्ग लैंडवेटर हवाई अड्डे पर स्वीडन के वजीर आजम वुल्फ क्रिस्टर्सन ने किया। जैसे ही वजीर आजम का तैयारा स्वीडन की फजाई हदूद में दाखिल हुआ, मेहमान खसूसी के तौर पर उनके हवाई जहाज की मुहाफजत स्वीडन के ग्रिपन लड़ाई जेट तैयारों ने शुरू कर दी। वजीर आजम मोदी को हवाई अड्डे पर बाकायदा गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया और उनका इस्तकबाल भारतीय बिरादरी के अरकान ने बड़ी गर्मजोशी से किया। इस दौरे की खासियत दो वज़रा आज़म की एक मुश्तरका खिताब है, जो वो सनद से मुतालिक यूरोपीय गोलमेज कॉन्फ्रेंस से करेंगे। सीओज की इस गोलमेज कॉन्फ्रेंस में जनाब मोदी के साथ यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला वोन देर लेयन शामिल रहेंगी। गोथेनबर्ग से साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद शहजाद।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी गोथेनबर्ग में स्वीडन के अपने हम मनसब उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ वफ्त की सतह की बातचीत कर रहे हैं। तवक्को है कि दोनों रहनुमा तिजारत, एआई, स्टार्टअप समेत मुख्तलिफ शोबों में तबादले ख्याल करेंगे। कांग्रेस रहनुमा वी डी सतीसन की क्यादत में केरलम की नई सरकार कल तिरुवनंतपुरम में हलफ लेगी। कांग्रेस ने इस महीने की 14 तारीख को वी डी सतेसन को केरलम का अगला वजीर आला नामजद किया था, जिसके साथ ही 10 दिन से जारी सियासी ड्रामा और गैर यकीनी की सूरतहाल खत्म हो गई। कांग्रेस की क्यादत वाले मुत्तहदा जमहूरी महाज यूडीएफ ने केरलम असेंबली इंतखाबात में दो तिहाई से ज्यादा अक्सरियत हासिल की, तहां मुख्तलिफ ग्रुपों की लॉबिंग और कारकुनों के एहतजाज के बायस मस्कूरा इत्तेहाद वजीर आला के नाम पर फैसला नहीं कर पा रहा था। तफसील हमारे नामानिगार से।
2: कांग्रेस के सीनियर लीडर वी डी सतीसन कल केरलम के वजीर आला के तौर पर हलफ लेंगे। उनके हमरा 20 दिगर वदरा भी हलफ लेंगे। नामजद वजीर आला वी डी सतीसन ने आज शाम गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से मुलाकात की और उन्हें वदरा की फेहरिस्त पेश की। तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में 12,000 अफराद के बैठने के इंतजाम समेत वसी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
0: दाखिली उमूर और इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह ने आज गुजरात के शहर गांधीनगर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन NID के इख्तिरा और इब्तदाई कारोबार के मरकज का इफ्तिताह किया। जनाब शाह ने इस मौके पर इस इदारे की अहमियत को उजागर किया। उन्होंने कहा कि एक ऐसा इदारा है जो तख्लीकी सलाहियत को कारोबार से जोड़ता है। उन्होंने कहा कि NID जैसे इदारे नौजवानों को इख्तिरा और पेशेवराना तरक्की के मौजूं प्लेटफॉर्म फराहम करते हैं।
3: एनआईडी एक प्रकार से रचनात्मकता के आधार पर इनोवेशन और उद्यमिता, ये तीनों को जोड़ने वाला एक संस्थान है। जब एनआईडी की स्थापना हुई हो तब मुझे लगता है कि इसके उद्देश्यों को बहुत अच्छे तरीके से सोचा हो।
0: मरकजी वजीर पीयूष गोयल भी इस मौके पर मौजूद थे। जनाब शाह गुजरात के दो दिन के दौरे पर हैं। उन्होंने आज गांधीनगर में मदर डेयरी के 5 लाख लीटर की गुंजाइश वाले नव तामीर शुदा प्लांट का भी इफ्तिताह किया। अहमदाबाद में उन्होंने मिलियन माइंड्स टेक पार्क और ग्लोबल कैपेबिलिटी मरकज कैंपस का भी इफ्तिताह किया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू इस महीने की 25 तारीख को साल 2026 के लिए पद्म अवार्ड्स अता करेंगी। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजारत दाखिला ने कहा है कि सदर जमहूरिया राष्ट्रपति भवन में मुनक़िद होने वाली पहली शहरी एजाज से मुतअल्लिक तकरीब के दौरान पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री अवार्ड्स अता करेंगी। इस साल भारत सरकार ने मजमूई तौर पर 131 पद्म अवार्ड्स का ऐलान किया है। रेलवे की वजारत ने त्रिवेंद्रम नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के पीछे के दो डिब्बों में आग लगने के वाकये की आला सतह पर तहकीकात का हुक्म दिया है। आज सुबह तकरीबन 5:15 बजे कोटा डिवीजन के नागदा जंक्शन के करीब त्रिवेंद्रम नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के पीछे के दो डिब्बों में आग लग गई। इन डिब्बों में एक गार्ड कोच और एक AC 3 टियर कोच शामिल था। वजारत के मुताबिक कोच में नस्ब हिफाजती निजाम फौरी तौर पर मुतहर्रिक हो गया और ट्रेन खुद ब खुद रुक गई। ट्रेन के अमले ने फौरन आग से मुतासिर दोनों डब्बों को अलग किया, जिसकी वजह से किसी भी मुसाफिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। रेलवे के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने आज बेंगलुरु और मुंबई के दरमियान एक नई एक्सप्रेस ट्रेन को वर्चुअल वसीले से झंडी दिखाकर रवाना किया। इस ट्रेन से कर्नाटक और महाराष्ट्र के दरमियान रेल कनेक्टिविटी में इजाफा हुआ है। जनाब वैष्णव ने इस मौके पर कहा कि जुनूबी और मशरकी कर्नाटक के लोगों का एक देरीना मुतालबा पूरा किया जा रहा है। उन्होंने ये ऐलान भी किया कि उम्मीद है कि बेंगलुरु और मुंबई के दरमियान वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जल्द ही शुरू हो जाएगी। शहरी हवाबाजी के मरकजी वजीर राम मोहन नायडू ने आज दिल्ली सरकार की जानिब से हवाई जहाजों के ईंधन ATF पर वैल्यू एडेड टैक्स को 25% से कम करके 7% करने के फैसले की तारीफ की। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने कहा कि ऐसे वक्त में जब हवाबाजी का शोबा आलमी सतह पर ऑपरेशनल और माली दबाव का सामना कर रहा है, रियासती हुकूमतों के इस किस्म के सरगर्म इकदाम एयरलाइंस को जरूरी सहारा फराहम करते हैं और मुसाफिरों के लिए फजाई सफर को सस्ता रखने में मदद फराहम करते हैं। सड़क, ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने कहा है कि महाराष्ट्र के विदर्भ जिले में किसानों की खुदकुशी की एक बड़ी वजह पानी की किल्लत है। उन्होंने ये भी कहा कि पानी की बचत इस बहरान का मुअस्सर तरीन हल है। नागपुर में कौमी कॉन्फ्रेंस नागपुर जल संवाद से खिताब करते हुए जनाब गडकरी ने कहा कि पानी के तहफ्फुज़ से मुतअल्लिक कोशिशों की कामयाबी के लिए लोगों का इनमें हिस्सा लेना लाजमी है। उन्होंने ग्राम पंचायतों से कानून साज अरकान तक तालमेल के साथ उठाए गए इकदाम पर जोर दिया ताकि गांवों और किसानों की खुशहाली को यकीनी बनाया जा सके। नशीली अशिया पर काबू पाने वाले ब्यूरो NCB ने मुल्कों के माबैन नशीली अशिया की नाजायज तिजारत के उन नेटवर्क्स के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी हासिल की है जो भारत म्यांमार सरहद पर अपनी कार्रवाइयां अंजाम देते हैं। ब्यूरो ने म्यांमार में मुकीम सरगना थांकिंग तुआंग को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। NCB ने एक बयान में कहा है कि यह गिरफ्तारी वसी तौर पर निगरानी, खुफिया मालूमात में इजाफे, तालमेल के साथ किए जाने वाले बैन रियासती तालमेल और लगातार पीछा करने की कार्रवाइयों की बदौलत की गई है। थांकिंग तुआंग कई तरह की मनशियात और नशीले मादों के कानून के तहत मतलूब था। यह केस NCB और मनशिया

0: ये है मेरा कूपन। जूडिस का प्रोग्राम अचानक बदल गया, मैं उसका टिकट वापस करने जा रहा था। आपको आपत्ति न हो?
1: मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आपके साथ तो 10 दिन तक साधना केंद्र में रही हूँ। एक अजनबी आदमी के साथ सफर करना मुझे बुरा नहीं लगता।
0: कूपे में भी?
1: क्यों, कूपे में क्या है, 2 बर्थ है, उन पर कोई भी 2 यात्री सफर कर सकते हैं, 2 स्त्री 2 पुरुष या 1 स्त्री 1 पुरुष।
0: जी हाँ, 1 स्त्री और 1 पुरुष 2 ही होंगे इस कूपे में। अच्छा सफर कटेगा।
1: हाँ, नींद अच्छी आएगी या शायद बिल्कुल नहीं आएगी।
0: आप में जीवट है, लेकिन 10 दिनों तक तो आप
1: वहाँ सबको वैसा ही व्यवहार करना चाहिए था जैसा मैंने किया। साधना करने आए थे हम लोग।
2: अच्छा, मैम साहब आ गई, आप तो कह रहे थे।
0: सुनो कलेक्टर, 2 कप कॉफी मिलेगी? लेकिन रुको शांतना जी, अब तो डाइनिंग कार में चलने का वक्त हो गया।
1: मैं नहीं जाऊंगी, रात को मैं नहीं खाती। कंडक्टर, मेरे लिए केवल 1 कॉफी।
2: जी हाँ मैम साहब, कॉफी आ जाएगी।
0: और मैं तो डाइनिंग कार में जाऊंगा, 10 दिन तक मन और तन दोनों ही भूखे रहे। ना ना, अब और मन को नहीं मार सकता।
1: तुमने मारा ही कहा है, मारने का ढोंग किया। अच्छा जाओ, मैं ध्यान करने के बाद कुछ देर काम करूंगी।
0: ओके, लौट कर बातें होंगी।
1: ओके।
2: मैम साहब, ये रही कॉफी, कुछ और चाहिए?
1: नहीं शुक्रिया। अब जरा एकांत मिला, सोने से पहले अपनी डायरी लिख लूं। गुरुजी दूसरे महात्माओं से कितने भिन्न हैं, वो न प्रभाव डालने के हथकंडे जानते हैं, न दूसरों पर छा जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे उन्होंने एक सहज सत्य का आविष्कार कर लिया है, क्योंकि उनमें एक मोहिनी शक्ति पैदा हो गई है, वही शक्ति देश विदेश के नाना प्रकार से त्रस्त व्यक्तियों को अपने पास खींच लेती है। अज्ञात शांति की खोज में भटकते ये व्यक्ति कैसे सहज विश्वास से अपने जीवन की कहानी खोल कर रख देते हैं उनके सामने। वो जूडिथ जिसकी नीली आंखों में गहरे आकाश की झलक है, जिस सहज भाव से खिलखिलाती है, उसी सहज भाव से अपने मन की सारी परतें खोल कर रख देती है। उस दिन वो अपनी प्यारी प्यारी सी बच्ची के लिए मेरे पास से गुजरी तो मैंने मुस्कुराकर कहा, हेलो जूडी, कितनी प्यारी है तुम्हारी बच्ची, कल बहुत देर तक मुझसे बातें करती रही।
3: ये जिसके पास जाती है उसी की हो जाती है, मेरी तरह। अब गुरुजी के पास सोने की जिद कर रही
1: है। अच्छा,
3: मानती ही नहीं, इसीलिए इसके पिता के पास ले जा रही हूँ।
1: क्या तुम्हारे पति भी यहाँ आए हुए हैं?
3: मेरी शादी नहीं हुई है।
1: क्या?
3: लेकिन इसके पिता बहुत सुंदर है, ऊपर की मंजिल में ही तो ठहरे हैं, उनसे ही इस लंबी यात्रा में मैंने ये सुंदर बच्ची प्राप्त की है।
1: आप कितने दिन से घूम रही है?
3: कई वर्ष हो गए।
1: आपके बहुत मित्र हैं?
3: स्वाभाविक है, अनेक देशों के अनेक युवकों के संपर्क में आई हूँ, उनको समझा परखा है, प्यार दिया है, पाया है।
1: बुरा तो नहीं मानूंगी, तुम ग्रास, डोप, चरस, LSD आदि का सेवन करते हो?
3: करती हूँ, उनसे मुझे आनंद मिलता है, उस आनंद का मैं वर्णन नहीं कर सकती, वो अनुभव करने की वस्तु है, जैसे जैसे स्वर्ग का द्वार खुल जाता है, प्रतिभा मुक्त हो जाती है।
1: तो फिर वो क्या है जो तुम्हें खाया जा रहा है, क्या है जो तुम्हारे जैसे युवक युवतियों को दर दर भटकने के लिए विवश करता है? साधुओं महात्माओं योगियों के पास तुम क्या पाना चाहते हो?
3: बहुत दिनों तक ये सब करते करते मैंने अनुभव किया है कि नशे में जो आनंद मिलता है वो जैसे मैकेनिकल, जैसे उद्धार का आनंद है। एक महात्मा है जो दैहिक सेक्स के द्वारा समाधि की ओर ले जाने का दावा करते हैं, लेकिन मैं बिना किसी की सहायता से अपने ही अंतर में से स्वर्ग जाने का मार्ग खोल लेना चाहती हूँ। सुना था भारत के योगी इस मार्ग को जानते हैं, इसलिए भटकती हूँ।
1: जितने लोगों से मैंने बात की है वो सभी इन अनुभवों से गुजर चुके थे, सेक्स, नशा, सब कुछ उनके लिए सहज है।

0: फिर भी वो भटक रहे हैं। कितनी सच्ची है उनकी ये भटकन। कुछ है जो परिवार के शासन से परेशान है, कुछ को आज के शोषण की राजनीति त्रस्त करती है। वो उद्योगीकरण से प्राप्त ऐश्वर्य और विलास से ऊब चुके हैं। ये यांत्रिक और कृत्रिम जीवन उनको खोखला कर रहा है और वो उस आनंद की तलाश में है जो उन्हें शांति के स्वर्ग द्वार के भीतर पहुंच जाने की शक्ति दे। आती हूं।
1: बाहर भी वर्षा होकर चुकी है। मौसम कितना सुहावना, कितना प्यारा है। अरे आप एक लिखे जा रही हैं? कैंप के अपने अनुभव लिख रही हैं शायद। देख सकता हूं?
0: ये मेरी डायरी है।
1: तब नहीं देखूंगा। डायरी चोरी करके पढ़ने की चीज है।
0: बड़ी समझदारी की बातें कर रही है।
1: समझदारी की बातें तो अब आरंभ होंगी।
2: खिड़की खोल दूं। वर्षा से भीगी हवा है।
1: मैं आपके पास बैठ सकता हूँ?
0: सब काम पूछकर ही करते हैं आप।
1: थैंक यू। मेरे पास स्कॉच है, 10 दिन से इसे छुआ ही नहीं। आप पीते हैं?
0: पीती तो नहीं पर प्रतिज्ञा भी नहीं की।
1: तो मेरा साथ दीजिए, थकान भी तो उतारनी है।
0: मैं बिल्कुल नहीं थकी हूँ।
1: प्लीज साथ देने के लिए एक पैक।
0: जी नहीं, आप ऊपर जाकर पीजिए।
1: और अगर मैं यहीं बैठकर पीऊं तो?
0: पीजिए।
1: बुरा मान गई। प्लीज, बात यह है कि मैं साथी के बिना रह ही नहीं सकता। बहुत घूमा हूं हिप्पियों के साथ, चिप्सियों के साथ। कितनी मुक्त और सहज है ये विदेशी युवतियां। बड़े मजे के साथ कह सकती हैं लॉट्स ऑफ बॉयफ्रेंड्स, लॉट्स ऑफ सेक्स। मैं भी कह सकता हूं लॉट्स ऑफ गर्लफ्रेंड्स, लॉट्स ऑफ।
0: मैं आपकी गर्लफ्रेंड नहीं हूं।
1: नहीं है तो हो जाएंगी। मुझे किसी के साथ एकाकार होते देर नहीं होती। दुई का भाव मुझे सुहाता ही नहीं। एक ओंकार, एक सत्ता, एक चेतना।
0: काफी गहरे उतर चुके हैं आप।
1: गणित विज्ञान और आध्यात्म की तरह नशे, सेक्स और योग की मंजिल एक ही है, ब्रह्मानंद सरोवर में डुबकी लगाना। प्लीज, मैंने कहा ना अकेले पीते अच्छा नहीं लगता। छोटा पैग लीजिए मेरे लिए, इस सुहावने मौसम के लिए।
0: मिस्टर सिंह, आप ऊपर नहीं जाना चाहते तो मैं जाती हूँ।
1: आप ऊपर कैसे जाएंगे?
0: जी हाँ, वो अधिकार तो जैसे आपका ही है। आप पुरुष है ना? मैं कहती हूँ ऊपर जाइए।
1: ना ना ना ना ना, नाराज ना होइए। अच्छा, मैं अब और नहीं पीऊंगा, आपके साथ बातें करूंगा। आप डाइनिंग कार में नहीं गई, वहां डिक था, वही जूडिथ के बच्चे का बाप। आपकी बहुत तारीफ कर रहा था, आना चाह रहा था, लेकिन जब उसे पता लगा कि हम कूपे में हैं तो मुस्कुरा कर लौट गया। अरे अब फिर नाराज हो रही है? प्लीज।
0: मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूं, जरा थोड़ा पीछे हटिए ना, मैं लेटना चाहती हूँ, फिर अपना भाषण जारी रख सकते हैं आप। आप तो जूडिथ के साथ बहुत रहे हैं।
1: बहुत से देशों में साथ साथ घूमा हूँ। We have made love many times, लेकिन वहां गुरुजी का आदेश था 10 दिन तक कुछ नहीं होना चाहिए, पूर्ण ब्रह्मचर्य, पूर्ण मौन। फिर दिख भी तो यही था, लेकिन उसे जरा भी ईर्ष्या नहीं हुई। जूडिथ को पूरी स्वतंत्रता है, वो किसी के साथ रहे।
0: इसलिए शायद वो तुम्हारे साथ आकर भी लौट गई।
1: उसके लौट जाने से मुझे दुख हुआ था, लेकिन तुम मिल गई तो मुझसे भी आकर्षक हो, सबसे आकर्षक। तुम्हारी मांसल देह, तुम्हारी चमकती आंखें, तुम्हारे लंबे सुनहरे बाल।
0: बहुत बहुत शुक्रिया। 10 बज चुके हैं।
1: प्लीज अभी कुछ देर और बैठूंगा।
0: बैठे रहो।
1: तुम्हारी डायरी पढ़ सकता हूं?
0: नहीं।
1: तुम छू सकता हूं?
0: नहीं।
1: मेरी प्रेम कहानियां सुनोगे?
0: नहीं।
1: क्यों?
0: क्योंकि सब एक जैसी होती हैं, वैसे ही जैसे तुम

0: पुरुषों का व्यक्तित्व एक जैसा होता है। सोने का समय हो गया, जाओ सो जाओ और स्वप्न देखो।
1: मेरा मन तो तुमसे बातें करने को करता है।
0: बातें मुंह से की जाती हैं, हाथों से नहीं।
2: सांत्वना, सांत्वना, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ सांत्वना।
0: मुझसे प्रेम करने वालों में एक और का इजाफा हुआ। लेकिन सरजीत, तुम सचमुच प्रेम करते होते तो जतलाते नहीं। प्रेम निर्लज्ज नहीं होता।
2: यानी नैतिक होता है। शरीर को बचाने के मुंह में तुम अच्छे तर्क कर लेती हो।
0: शरीर को बचाने का मुंह मुझे कभी नहीं रहा, परंतु वो मन से जुड़ा हुआ है। प्रेम का अर्थ केवल तन का मिलन नहीं है। जिन जूडिथ, मार्था और लिजा के लिए तन का मिलन सहज रहा है, वो भी मन के मिलने के लिए भटकती फिर रही है। न जाने कितनी गांठें पड़ी हैं उनके मन में। माँ बाप से विद्रोह, समाज से विद्रोह, अपने से विद्रोह। व्यवस्था को तोड़ने के लिए वो ड्रग का सेवन करती हैं। स्वर्ग के द्वार में प्रवेश करने
2: वही वही वही तो आनंद का मार्ग है। तुमने कभी अनुभव किया है उसे, उस आनंद को? मेरे पास है, पियोगी?
0: सरजीत, तुम सीमा को लांघते जा रहे हो, अब चले जाओ।
2: और न जाऊं तो? नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। प्लीज प्लीज सांत्वना, प्लीज।
0: नहीं नहीं, पीछे हटो, हटो पीछे।
2: मैं नहीं हटूंगा, मैं नहीं हटूंगा। किसी स्त्री ने मुझे आज तक पीछे नहीं हटाया।
0: लेकिन मैं हटा दूंगी। मर्द है तो उसे औरत चाहिए।
2: प्लीज
0: मत तेज पूछे, औरत उसके तेज को छीनने वाली है।
2: देखो,
0: ये दलीलें अब बासी होती।
2: प्लीज,
0: तुम्हारे लिए नारी केवल एक वेश्या।
2: मैं
0: कहती हूँ उसे क्षण उत्तर चले जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं।
3: सांत्वना,
0: कौन है, क्यों आए हैं इस समय?
4: क्षमा कीजिए, आप ठीक तो हैं?
0: बिल्कुल ठीक हूँ। आप ही बीमार नजर आते हैं जो दूसरों के कंपार्टमेंट में झांकते फिरते हैं। कुछ कहना है तो कहिए, नहीं तो जाइए यहाँ से।
4: माफी चाहता हूँ, बराबर के कंपार्टमेंट में हूँ। लगा जैसे आपके साथ कोई जबरदस्ती कर रहा है। लेकिन यहाँ तो आपके पति का अतिरिक्त और कोई दिखाई नहीं देता।
0: तो फिर जाइए अपने कंपार्टमेंट में।
4: देखिए, मुझे नींद कम आती है, आप लोग शोर मचाएंगे तो बेवश होकर मुझे।
0: क्या मतलब है आपका?
4: आप सब समझती हैं, इस डिब्बे में केवल आप दोनों ही नहीं, आप जैसे जोड़े बहुत देखे हैं। इस उम्र में इतना आवेश नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ मुझे फिर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंडक्टर, ये तुम्हारी जिम्मेदारी भी है कि हम लोग आराम से सो सके।
5: सचमुच मैम साहब, मैं तो डर गया था। कभी कभी फालतू आदमी भी चढ़ाते हैं।
0: मेहरबानी करके आप लोग चले जाइए। मैं माफी चाहती हूँ।
4: ठीक है, मैं जाता हूँ। गुड नाइट।
5: दरवाजा अंदर से बंद कर लीजिए, कोई बात हो तो मैं पास ही ना हूँ।
2: मुझे बहुत दुख है।
0: चुप रहो, ऊपर जाकर अपनी सीट पर बैठो।

0: सुरजीत का इसमें कोई दोष नहीं है। उसका संबंध जूडेथ, मार्था और लिजा जैसी नारियों से रहा है, जिनके लिए देह ही सब कुछ है। लेकिन फिर विद्रोहियों का बाना पहने इधर उधर क्यों भटक रही हैं? अंतर में कहीं न कहीं खोज की वो चाह है जो इन्हें स्थूल आनंद से ऊपर उठाती है। मैंने मार्था से पूछा था, मार्था बुरा तो नहीं मानोगी, एक बात पूछूं?
1: खुशी से पूछो।
0: तुम मां बनने वाली हो ना?
1: हाँ।
0: इसके पिता कौन है?
1: मेरे लिए जानना जरूरी नहीं है, मैं भी पुरुष की तरह प्यासी हूँ, मुझे भी तृप्ति चाहिए। पुरुष कोई भी हो, वो सर्वजीत भी हो सकता है, शायद वही है। लेकिन तुम ये सब क्यों जानना चाहती हो?
0: मैं जानना चाहती हूँ कि मुक्त साहचर्य और देह भोग के साथ सच्चे सुख की तलाश कैसे चल सकती है।
1: मुझे तो इसमें कोई विरोधाभास नहीं दिखाई देता। शरीर की अस्वीकार की बात तुम लोगों नहीं है, हम लोगों में समर्पण की प्यास है। समर्पित होकर हम पूर्णता का अनुभव करते हैं। तुम्हारे लिए प्रेम एक बना बनाया सांचा है, विवाह किया और वो सांचा ओढ़ लिया।
0: नहीं, मैंने भी प्रेम विवाह किया था, उसी का परिणाम है मेरे दो बच्चे, उन्हीं के लिए मैं दूसरी बार विवाह नहीं कर रही।
1: लेकिन इससे क्या तुम्हारी देह की प्यास बुझ गई? इतने सारे वर्ष तुमने इस छद्म को पालने में लगा दिए। मैंने गुरुजी से बहुत बहस की है इस बारे में।
0: क्या उत्तर दिया उन्होंने?
1: देह की प्यास से मुझे इनकार नहीं है, वो तो चाहते हैं कि साधना के इन 10 दिनों में परहेज किया जाए, उसके बाद जैसा अनुभव हो।
0: इसका अर्थ समझी?
1: समझी। वो कहना चाहते हैं जैसे जैसे साधना के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, देह भोग की प्यास वैसे वैसे शांत होती जाती है। सांत्वना, मैं नहीं जानती क्या होगा, मुझे चिंता नहीं कि वो प्यास शांत होती है या नहीं, लेकिन मुझे ऐसा अवश्य लगता है कि सच्चे सुख के प्राप्त हो जाने पर वो प्यास असंगत हो रहेगी।
0: फिर भी तुम कहती हो कि शरीर के अस्वीकार की बात हम ही लोगों में है।
1: अस्वीकार करने और असंगत हो रहे में अंतर है, क्या नहीं है?
0: कभी सोचा भी न था कि मुक्त देह मिलन के उपासक ये लोग इतनी गहराई में उतर सकते हैं। अस्वीकार करने और असंगत हो रहने का अंतर ही हम भूल चुके हैं, इसलिए अत्यधिक निषेध से परेशान होकर देह मिलन के लिए पागल हुए जा रहे हैं। मैंने भी जब चाहा है देह की प्यास बुझाई।
1: देह की इस प्यास को क्या तुमने अब भी बुझाना नहीं चाहा था?
0: कौन कौन हो तुम?
1: मैं कौन हूं ये पूछने का साहस है तुमने? अपने अंतर में झांक कर देखो, वहीं से बोल रही हूं। बार बार दूसरों के अंतर में झांकती हो पर अपने को नहीं खोजती। विधवा हो, संतान के प्यार के आदर्श में बंधी तुम देह की प्यास को छिपाए फिरती हो, लेकिन क्या सर्वजीत के साथ तुम्हारा मुक्त व्यवहार तुम्हारी देह की प्यास के ऊपर ही आधारित नहीं था?
0: अगर ऐसा था तो मुझे रोकने वाला कौन था?
1: तुम्हारा अपना अहम, जबरदस्ती शहीद बनने की लालसा।
0: शत्रु के माया जाल में फंसने की चेष्टा मत करो, ये ठीक है, छोटी उम्र के अपने दोनों बच्चों को मैं किसी की दया पर छोड़ने को तैयार नहीं थी, पर देह के मिलन को मैं अस्वीकार नहीं करती। शर्त केवल एक ही है कि दूसरों की वासना का शिकार होना मैं नहीं चाहती, वो देह का अपमान है।
1: लेकिन तब तुम साधना केंद्र में क्यों गई थी? क्या वो इस बात का प्रमाण नहीं है कि तुम भी अशांत हो? तुम्हें देह को बचाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन बचाने को विवश भी हो, इसी द्वंद से तुम पीड़ित हो। तीव्र निषेध मन की चाह में से ही पैदा होता है। तुम्हें स्पष्ट कह देना चाहिए था कि सर्वजीत तुम्हारा पति नहीं है, ये मेरा छद्म है, इस छद्म को उतार फेंको।
0: ये छद्म है, छद्म। सुनो, कहां गए तुम? बोलो। कहीं कोई नहीं, ये मैं अपनी ही आवाज सुन रही हूं। सचमुच मुझे सहज भाव से स्वीकार कर लेना चाहिए था कि सरजीत मेरा पति नहीं है। मैं डर गई। कंडक्टर और सही यात्री मुझे व्यभिचारी नहीं समझते और शायद स्टेशन से उतर जाने को विवश करते, या फिर कैसी है ये भूल भुलैया, कैसे मुक्ति मिलेगी इससे? क्या इसी मुक्ति की खोज में मैं साधना केंद्र में नहीं आई? इतनी सहज होकर भी लोग भटक रहे हैं, तुम में फंसे मैं भी भटक रही हूं। क्या इस भटकन का अंत देह के बिना नहीं है? कहां है सत्य? कौन सच्चा दिल इन तर्कों को ठगे हुए है? कैसे मिलेगी इस द्वंद से मुक्ति?
1: छद्म, ये छद्म है, इस छद्म से मुक्ति पाओ। सहज होने में ही मुक्ति है। मुक्ति, मुक्ति।
2: बहुत देर हो गई तुम्हें लिखते हुए, अब सो जाओ। जो कुछ हुआ उसके लिए लज्जित हो।
0: नहीं सरजीत, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं।
2: तुम बहुत अच्छी हो।
0: सच?
2: मैंने प्रतिज्ञा की थी कि सच बोलूंगा, केवल सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ न बोलूंगा।
0: अच्छा, अब सो रही हूँ। गुड नाइट।
2: गुड नाइट।
3: बहुत देर से आई हो। कॉलेज तो कभी का बंद हो चुका था।
0: हाँ, कमल अंकल के घर चली गई थी।
3: इतनी रात तक क्या वहाँ कोई उत्सव था? हमें क्यों नहीं ले गए?
0: कुछ ऐसी बात थी बेटे, गंभीर बातें करनी थी ना, हड़ताल होने वाली है।
3: बहुत देर हो गई थी इसलिए मुझे डर भी लगा। भैया ने वहाँ फोन भी किया था लेकिन हर बार अंगेज मिला, शायद खराब था।
0: हाँ हाँ शायद, असल में हम बहुत जरूरी बातें कर रहे थे, शायद तुम्हारे अंकल ने रिसीवर उतार कर रख दिया था।
3: हाँ, यही जवाब हमें भी मिला था, हमने कंप्लेंट की थी। खाना खाओगे मम्मा?
0: मैं तो खाई बेटा, लगता है तुम लोगों ने अभी तक नहीं खाया। बड़े दुष्ट हो तुम, मेरे बिना कुछ भी नहीं कर सकते। बुलाओ अपने भैया को।
4: पढ़ने का नाटक कर रहा है लेकिन सुन रहा है हमारी बातें। इधर आओ बाबा।
0: माँ को जरा भी मुक्ति नहीं दोगे? मुक्ति तो मैं ही उन्हें नहीं दे पा रही, मैंने ही तो उन्हें अपने ऊपर निर्भर कर लिया है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, वो बड़े हो गए हैं, सब कुछ समझते हैं। मुझे उनसे सब कुछ कह देना चाहिए, कहीं उनके किशोर मन में काट न पड़ जाए। स्वयं मैं भी तो नहीं झेल पाती इस सर्वग्रासी एकांत को। मैंने ही जानबूझकर इसे अपने ऊपर नहीं लाद लिया है, कैसे मुक्ति पालूं? क्या वो मुक्ति होगी?
5: सांत्वना? सांत्वना, तुम सो गई?
0: तुम्हारा स्पर्श पाकर मुझे नींद आ ही जाती है।
5: सांत्वना, हमें लुका छिपी का खेल बंद कर देना चाहिए।
0: हाँ, कर देना चाहिए। नहीं, ये कैसे हो सकता है? मेरे लिए तो फिर कोई और मार्ग नहीं रह जाएगा।
5: तुम शादी कर लो।
0: शादी नहीं कर सकती विनोद, जब तक मेरे बच्चे अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकती।
5: धोखा तुम आप दे रही हो।
0: मैं धोखा नहीं दे रही, अपनी इच्छा से जो चाहती हूँ करती हूँ।
5: इच्छा मेरी भी तो हो सकती है, जैसे तुम चाहती हो कि तुम किसी का शिकार न बनो, वैसे क्या मैं नहीं चाह सकता कि मैं तुम्हारा शिकार न बनूं?
0: शिकार? तुम क्या कह रहे हो विनोद? विनोद!
2: सांत्वना, क्या है सांत्वना, किसे पुकार रही हो?
0: कुछ नहीं, सपना देख रही थी।
2: या आपने बेरियों की याद कर रही थी? विनोद, कमल,
0: तुम ऐसा होती
2: है? स्वाभाविक है, सारी रात यहाँ ऊपर के बर्फ पर लेटा लेटा।
0: तुम सब पुरुष एक जैसे होते हो। उनके एक मित्र थे, एक बार उनके साथ भी इसी तरह एक कूपे में सफर किया था। सारा समय तुम्हारी तरह न जाने क्या क्या बकते रहे, अपनी प्रेम कहानियां सुनाते रहे।
1: बेचारे परवर्टेड।
2: अगर मैं यूरोपियन होता तो इस समय तुमसे पूछता, क्या उस रात उसके साथ तुमने प्रेम किया था?
1: आप नहीं पूछोगे?
2: बेकार है, हिंदुस्तानी प्रेम करना ही नहीं जानता।
1: ताने मत दो, मैं न तब समर्पित हुई थी और न अब हो सकूंगी।
2: जी मैं आता है कि नीचे उतरकर तुम्हारे शरीर को छंछोड़ डालूं और
1: फिर रुक क्यों गए?
2: जागने की राह देखता रहा, अब नहीं मानूंगा।
1: तुमने और उस पुलिस इंस्पेक्टर में अंतर ही क्या है जिसने सवेरे सवेरे दूध लेने जाती हुई एक औरत के साथ बलात्कार किया?
2: तर्कों की ये ढाल तुम्हारी मदद नहीं कर सके।
1: जब दो शरीर सैकड़ों मीलों की मानसिक दूरी के साथ मिलते हैं तो उस अर्थहीन मिलन में न सौंदर्य होता है न सत्य, न तन को बांध पाता है न मन को। इसी को कहते हैं अपवित्र होना।
2: पवित्र अपवित्र की मुझे चिंता नहीं, चिंता तुम्हारी है। सारी रात तुम अपने से लड़ती रही हो, तुम्हारा यही छद मैं उतार फेंकना चाहता हूँ। सांत्वना प्लीज।
1: इसे हटा, मैं कहती हूँ एक कदम भी आगे न बढ़। कौन आया, कौन हो तुम, क्या चाहते हो?
6: मैं सरजीत से मिलना चाहता हूँ। हेलो सरजीत। तुम्हारा नाम देखा तो आश्चर्य हुआ, विलायत से कब आए, कैसे हो? और माथा, ओह ये माथा तो नहीं है?
1: मेरा नाम सांत्वना है।
6: ओह देखता हूँ तुमने शादी कर ली है सरजीत, भाई बधाई।
2: निगम इनसे मिलो, ये है श्रीमती सांत्वना थापर। मैंने अभी तक शादी नहीं की है। तुम गाओ कहाँ कहाँ रहे?

0: दिनों के बाद मिल रहे हो।
1: वो तो है, तो तुम हो भाग्यशाली। अभी तक तो विदेशी नारियों की चर्चा ही तुम्हारे पत्रों में रहती थी, अब भारतीय नारी भी आ गई। बधाई दूंगा, चुनाव एक्सलेंट है। वाह, माफ कीजिएगा मिस्टर थापर, हम बहुत गहरे दोस्त हैं। यहां बैठ सकता हूं सर जी?
2: ये कूपे है मिस्टर निगम, और अभी रात बीती नहीं है।
1: हो आई एम सॉरी, मैं भूल गया था कि कूपे में तीसरे के लिए स्थान नहीं होता।
2: मैं अगले स्टेशन पर उतर जाऊंगी, तब आप आ सकते हैं। अब आप
1: जा रहा हूं, खेद है मैंने आपके एकांत में खलल डाला। तो सरजीत एक बात याद रखो, ये भारत है, यहां शोर नहीं मचाना चाहिए, वो बाहर वाले को भी खींच लेता है।
2: दरवाजा खुला रहने दो।
1: क्यों?
2: मेरी इच्छा।
1: कूपे में एक की इच्छा नहीं चलती।
2: तो आपने भी समझने की शक्ति है। स्टेशन आ रहा है, मैं यहीं उतरूंगी।
3: अभी तो अंधेरा है, बाहर बूंदाबांदी हो रही है, और ये स्टेशन भी बहुत छोटा सा है।
2: बड़ी सुंदर जगह है ये।
3: सुंदर तो तुम हो, जगह नहीं, ये तो क्रूर है, विछो का स्थान।
2: तुम्हारा ऐसा सोचना भी क्या एक छद्म ही नहीं है? जो तुम्हारी दृष्टि में विछो का स्थान है, वो किसी के लिए मिलन का भी हो सकता है। तुम्हारे साथ फिल्मी डायलॉग के आदान प्रदान से तो यहाँ उतरना हजार गुना अच्छा है। अच्छा, जा रही हूँ, बुरा ना मानना। प्यार का तुम्हारे लिए एक ही अर्थ है, औरत की देह का उपभोग। अच्छा, नमस्कार। क्या सोच रहे हो, जवाब भी नहीं दोगे?
3: नमस्कार। तुम भाग रही हो सांत्वना, कब तक भागती रहोगी?
2: कंडक्टर, मैं यही उतर रही हूँ, जरा बक्सा उतारने में मदद करो।
4: जी अभी आया। लाइए,
3: मैं उतारे देता हूँ, आप उतरिए।
2: ये लीजिए।
1: गई, अब तो मैं आ सकता हूँ। खूब बातें करेंगे दोनों, सामान ले।
3: क्या मेरी दशा उस मछुए जैसी नहीं है, जो तूफानी समुद्र में अपना जाल भी खोकर खाली हाथ लौट आया था? लेकिन इसी लेकिन के कारण तो मैं भी साथ में केंद्रों की खाक छानता फिर रहा हूं।

रूपे। अभी आपने श्री विष्णु प्रभाकर का लिखा यह नाटक सुना। निर्देशक थे श्री दीनानाथ। भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री जैमिनी कुमार वीरेंद्र, मंजू मैनी, सरल लांगिया, शर्मिला मलखानी, हरि मेहता, अरुण माथुर, बीएल टंडन, दीपा पांडे और नरेश कुमार सूरी। ये कार्यक्रम केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।

आकाशवाणी है। आज के रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। आज की सभा में प्रस्तुत हैं सुविख्यात बांसुरी वादक श्री विवेक सोनार का बांसुरी वादन। आप महाराष्ट्र के 40 गांव में जन्मे और पले बढ़े।

0: आप अपने पिता श्री रामचंद्र सोनार से प्रेरित थे। आपके पिता वारकरी संप्रदाय के एक जाने माने गायक रहे। आपने बहुत कम उम्र से ही बांसुरी बजाना शुरू किया। आपने अपने पिता से शुरुआती प्रशिक्षण लेने के बाद अपने पहले गुरु पंडित पुरुषोत्तम अंतापुरकर से औपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त किया। 1997 में मुंबई आए ताकि पंडित हरिप्रसाद चौरसिया के सानिध्य में पेशेवर प्रशिक्षण ले सके। इस तरह आपने पंडित हरिप्रसाद चौरसिया के मार्गदर्शन में अपनी संगीत यात्रा शुरू की, जिन्होंने आपको संगीत की खोज और अभिव्यक्ति की गहरी दुनिया से परिचित कराया। आप एक बेहतरीन बांसुरी वादक और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत परंपरा के वाहक हैं। आप न केवल अनगिनत शिष्यों के गुरु हैं बल्कि एक संगीतकार भी हैं। आप भारत के अग्रणी बांसुरी वादकों में से एक हैं। आप तंत्रकारी तथा लयकारी शैलियों पर अपनी जबरदस्त पकड़ के लिए जाने जाते हैं। बांसुरी वादन में अपनी बेजोड़ महारत के लिए आपको जाना जाता है। आप अपने कुछ अनूठे पहलुओं के लिए भी जाने जाते हैं, जैसे आपका भव्य बांसुरी उत्सव और फ्लूट सिंफनी एक शानदार संगीत समारोह है जिसमें 111 बांसुरियां एक साथ बजती हैं। आपने भारत के कई प्रतिष्ठित संगीत समारोह में संतूर, सितार, वायोलिन और कर्नाटक शैली के वाद्य संगीत के अग्रणी कलाकारों के साथ एकल और जुगलबंदी प्रस्तुतियां दी हैं। आपने कई जाने माने समारोह में अपनी प्रस्तुतियां दी हैं। सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव पुणे, मोगोबाई कुर्दिकर संगीत समारोह गोवा, हम्पी महोत्सव हम्पी, ऊर्जा संगीत समारोह दिल्ली, पंडित राम मराठे महोत्सव ठाणे, पंडित जितेंद्र अभिषेकी संगीत महोत्सव गोवा, गुणीजन संगीत महोत्सव इंदौर, गोवा कला अकादमी संगीत समारोह। आपको कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। आप भारतीय शास्त्रीय बांसुरी वादन के लिए आकाशवाणी के अश्रेणीय कलाकार हैं। हिंदुस्तान टाइम्स द्वारा ठाणे रत्न पुरस्कार, पंडित संगमेश्वर गुरव पुरस्कार, पंडित राम मराठे पुरस्कार, सुर श्रृंगार संसद मुंबई से सुरमणि शीर्षक, भारत सरकार की ओर से राष्ट्रीय छात्रवृत्ति तथा आपको वृंदावन गुरुकुल छात्रवृत्ति इन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। आज के कार्यक्रम में श्री विवेक सोनार राग चंद्र कंस प्रस्तुत करेंगे। आलाप जोड़ और मध्यलयगत रूपक ताल में निबद्ध है और द्रुतगत तीन ताल में निबद्ध है। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं श्री ओजस अधिया।
1: दिस इज आकाशवाणी, वेलकम टू द रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। टुनाइट वी प्रेजेंट अ फ्लूट रिसाइटल बाय रेनाउंड फ्लूटिस्ट श्री विवेक सोनार। Born and raised in Chalisgaon, Maharashtra, and inspired by his late father, Shri Ramchandra Sonar, an eminent vocalist of the Warkari Sampradaya, Vivek started playing the flute at a tender age. After initial training from his father, Vivek moved to his first guru, Pandit Purushottam Antapurkar. In 1997, Vivek moved to Mumbai to be professionally trained under Pandit Hariprasad Chaurasia. Vivek thus began his new journey under the maestro who took him into deeper realms of exploration and expression. Flautist par excellence and torchbearer of the Hindustani tradition of classical music, himself a guru to countless disciples as also a composer, Vivek Sonar is one of the leading flautists of India, renowned for his strong command over tantakari and layakari style. Blessed with powerful blowing skill, a multi-talented person, Vivek Sonar is widely regarded by music lovers and critics for having honed unparalleled skills of instrumentation in flute playing. He is also known for his initiatives like his Sui Generis, the Grand Bansuri Utsav, and the Flute Symphony, a magnificent concert that has 111 flutes playing together. Vivek has performed solo as well as jugalbandi concerts with leading exponents of the santoor, sitar, violin and also Carnatic instrumental music in many prestigious music festivals in India. Vivek has performed at many prestigious events like Savai Gandharva Bhimsen Mahotsav Pune, Mogubai Kurdikar Sangeet Samaroh Goa, Hampi Mahotsav in Hampi, ऊर्जा म्यूजिक फेस्टिवल दिल्ली, पंडित राम मराठे फेस्टिवल ठाणे, पंडित जीतेंद्र अभिषेकी संगीत महोत्सव गोवा, गुंजन संगीत महोत्सव इंदौर, गोवा कला अकादमी म्यूजिक फेस्टिवल. विवेक हैज रिसीव्ड मेनी प्रेस्टीजियस स्कॉलरशिप्स एंड अवार्ड्स. टू नेम सम, आकाशवाणी ए ग्रेट आर्टिस्ट फॉर इंडियन क्लासिकल फ्लूट, ठाणे रत्न अवार्ड बाय हिंदुस्तान टाइम्स, पंडित संगमेश्वर गुरव पुरस्कार, पंडित राम मराठे पुरस्कार. सुरमणि टाइटल फ्रॉम सुर श्रृंगार संसद मुंबई, नेशनल स्कॉलरशिप फ्रॉम यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वृंदावन गुरुकुल स्कॉलरशिप. टुनाइट श्री विवेक सोनार प्रेजेंट्स राग चंद्र कंस आलाप जोड़ एंड मध्यलयगत सेट टू रूपक ताल एंड द्रुतगत सेट टू तीन ताल. He will be accompanied on tabla by Shri Ojas Adhiya,

0: अभी आप बांसुरी पर सुन रहे थे राग चंद्र कंस, प्रस्तुत कर रहे थे श्री विवेक सोनार। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे श्री ओजस अधिया। इसी के साथ आज का रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा संपन्न होती है। इस कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण आकाशवाणी मुंबई में किया गया और इसे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: यू आर लिस्निंग टू राग चंद्र कंस बाय रिनाउंड फ्लॉटिस्ट श्री विवेक सोनार। He was accompanied on tabla by Shri Ojas Adhiya. With this tonight we conclude Ravi Vasariya Akhil Bhartiya Sangeet Sabha. This program was recorded in the studios of Akashwani Mumbai and this broadcast came to you from Akashwani Delhi.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की। दोनों पक्षों ने व्यापार, हरित बदलाव, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप्स, लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु कार्रवाई के अलावा द्विपक्षीय संबंधों में सहयोग के नए तरीकों पर भी चर्चा की। इस बीच स्वीडन के प्रधानमंत्री मोदी को देश के सर्वोच्च पुरस्कार रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी को मिला 31वां वैश्विक सम्मान है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके स्वीडिश समकक्ष यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन के साथ मिलकर एक प्रमुख अखिल यूरोपीय व्यापार मंच उद्योग जगत के लिए यूरोपीय गोलमेज सम्मेलन को भी संयुक्त रूप से संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा के सहयोग में बढ़ रहा है।
1: रक्षा के क्षेत्र में हमारा सहयोग निरंतर बढ़ रहा है। स्वीडन की कंपनियों द्वारा भारत में प्रोडक्शन फैसिलिटीज बनाए जाना इस बात का प्रमाण है कि हम बायर सेलर रिलेशनशिप से आगे बढ़कर लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप की ओर बढ़ रहे हैं।
0: नीदरलैंड की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद श्री मोदी आज शाम अपने 5 राष्ट्रों के दौरे के तीसरे चरण के लिए गोथेनबर्ग पहुंचे। गोथेनबर्ग हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। गोथेनबर्ग के लिए रवाना होने से पहले नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जटन व्यक्तिगत रूप से एम्स्टरडैम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी को विदाई देने आए। नीदरलैंड की अपनी 2 दिन की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अपने डच समकक्ष के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। दोनों देशों ने रक्षा, महत्वपूर्ण खनिजों और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के लिए 17 समझौते पर हस्ताक्षर किए। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नीदरलैंड की उनकी यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान की है। इस दौरे को गुजरात की महत्वाकांक्षी कल्पसर परियोजना के लिए भारत और नीदरलैंड के बीच तकनीकी सहयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और उनके डच समकक्ष ने ऊर्जा, बंदरगाह, स्वास्थ्य सेवा, कृषि, व्यापार और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों की प्रमुख डच कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से भी बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद शुक्रवार को 2 दिन की यात्रा पर द हेग पहुंचे थे। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन के नेतृत्व में केरलम की नई सरकार कल तिरुवनंतपुरम में शपथ लेंगे। कांग्रेस ने 14 मई को वीडी सतीशन को केरलम का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा है कि देश ने एक दिन में रिकॉर्ड 256.4 गीगावाट बिजली की मांग को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। श्री जोशी ने बताया कि भारत का बिजली ढांचा अब पहले से ज्यादा मजबूत, भरोसेमंद और भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार हो गया है। पश्चिम मध्य रेलवे ने तिरुवनंतपुरम सेंट्रल हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में आज हुई आग की घटना की जांच के लिए उच्च प्रशासनिक स्तर की जांच समिति गठित की है। ये आग ट्रेन के एक यात्री कोच और एक लगेज ब्रेक तथा जनरेटर कोच में लगी थी। घटना लूनी रिक्शा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशनों के बीच हुई। भारतीय रेलवे ने कहा कि समिति को निर्धारित समय सीमा के भीतर जांच पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। भारत ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने तथा जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस पोस्ट को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया है कि भारत के पास केवल 2 दिन का तेल भंडारण बचा है। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि ये दावा फर्जी है। इकाई ने कहा है कि भारत के पास 60 दिन का कच्चे तेल का भंडारण मौजूद है। भारत के श्रेयांसी वलीशेट्टी ने चीन के बाओजी में चाइना मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता। इस सुपर 100 प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में श्रेयांसी को चीन की आन क्यू युआन से सीधे गेमों में 14-21, 6-21 से हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी। Prime Minister Narendra Modi held delegation-level talks with his Swedish counterpart Ulf Kristersson in Gothenburg. The two sides also explored new avenues of cooperation in trade, green transition, artificial intelligence, emerging technologies, startups, resilient supply chains, defense, space, climate action, and people-to-people ties. Meanwhile, Sweden conferred the Royal Order of Polar Star, Commander Grand Cross, upon Prime Minister Modi. Sweden's Royal Order of Polar Star, Commander Grand Cross, is the utmost recognition and honor that can be conferred upon a head of government. This is the 31st global honor for Prime Minister Modi. Mr. Modi reached Gothenburg this evening on the third leg of his five-nation tour after concluding his visit to the Netherlands. Upon arrival at Gothenburg Airport, Prime Minister Modi was accorded a warm welcome and was personally received by the Swedish Prime Minister. During his two-day visit to the Netherlands, Prime Minister Modi held bilateral talks with his Dutch counterpart. The two countries signed 17 agreements to strengthen cooperation in defense, critical minerals, and other key sectors. In a social media post, Mr. Modi said his visit to the Netherlands has added new momentum to bilateral ties. He said the two countries have charted an ambitious roadmap for the future by elevating ties to a strategic partnership and expanding cooperation in water resources, semiconductors, innovation, defense, sustainability and mobility. He expressed confidence that the friendship between India and the Netherlands will continue to grow stronger in the years to come. He also thanked Prime Minister Jetten for the warm hospitality and for personally coming to the airport to bid him farewell. The new Keralam government led by Congress leader V.D. Satheesan will be sworn in tomorrow in Thiruvananthapuram. Congress had announced Satheesan as the next chief minister of Keralam on the 14th of this month, putting an end to the high drama and suspense that lasted for 10 days. The Congress-led United Democratic Front secured a more than two-thirds majority in the Keralam Assembly elections. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah today inaugurated and laid the foundation stone for development works worth over 700 crore rupees in Gandhinagar, Gujarat. Mr. Shah, who is on a two-day visit to the state, launched projects worth over 600 crore rupees of Gandhinagar Municipal Corporation. He also inaugurated a newly built milk processing plant of Madhur Dairy in the city, built at a cost of around 128 crore rupees. Earlier in the day, Mr. Shah inaugurated the Innovation and Incubation Centre at the National Institute of Design in Gandhinagar. Union Minister of New and Renewable Energy Prahlad Joshi said India has now successfully managed a record peak power demand of 256.4 gigawatt in a single day. In a conversation with a private English news daily, Mr. Joshi said nearly 33% of the power demand met through renewable energy sources. He said India's power infrastructure has become stronger, more resilient and future ready. The minister added that this transformation reflects the rapid expansion of energy capacity, grid strengthening and the growing contribution of clean energy in powering country's growth journey. Delhi Chief Minister Rekha Gupta today launched various development projects worth approximately 100 crore rupees in Dwarka Assembly constituency of National Capital. Addressing the gathering, the Chief Minister said that after completion of these projects, there will be significant improvement in problems such as waterlogging, damaged roads, sewer overflow and power supply in the area. Delhi Police has issued a memorandum regarding rationalization of government vehicle usage in its offices and units and measures for reduction of fuel consumption. The memorandum has been issued by the Office of Police Commissioner in view of the prevailing international situation and Prime Minister Narendra Modi's appeal for austerity measures and reduction in fuel consumption. In IPL cricket, Rajasthan Royals have set a target of 194 runs for Delhi Capitals in Delhi. Chasing the target, Delhi Capitals were 147 for 3 in 15.4 overs when reports last came in. Earlier, Delhi Capitals won the toss and elected to field. And that is the end of this news bulletin.
3: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्ज एवं FM 102.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। रात्रि के 11:10 हुए हैं। हमारी ये सभा संपन्न होती है प्रातः 5:55 पर मीडियम वेव और FM पर। हमारी प्रातःकालीन सभा एक साथ आरंभ होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि। जय।